0: ये कहा जा रहा है कि पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। क्या इसकी सच्चाई आगे बताएंगे? हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान एक मुस्लिम शख्स ने थार कार में आग लगाने की कोशिश करी। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की तीन मांगे मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नई शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को खोज खोज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किसी पुलिस थाने पर अफरा तफरी मची है और खूब हंगामा हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी दो लड़कियों को किसी घर के अंदर धकेलते हुए दिख रही है। वीडियो बनाने वाला शख्स उन लड़कियों को धमका भी रहा है। दरवाजे के बाहर गुस्साए लोगों की भीड़ है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और पुलिसकर्मी उन्हें रोक रही है। इस वीडियो को शेयर करने वाले कुछ यूजर्स का आरोप है कि पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों की पहचान कर उन्हें एक एक कर पकड़ रही है और पार्टी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रोटेस्ट में जो बच्चे थे अब वीडियो से ढूंढ ढूंढ कर पुलिस पकड़ रही है उनको। अगर ये सच है तो सीजेपी फॉर इंडिया कुछ करती क्यों नहीं। इन्हीं के कहने पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था ना, क्या प्रोटेस्ट के बाद उनकी सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी नहीं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लेकर कुछ ऐसी ही बातें कही जा रही है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसे शेयर करते हैं लोग। ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल बच्चों पर आज के वक्त में कार्रवाई का है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की और सबसे पहले वीडियो को गौर से देखा। वायरल वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि मामला दो पक्षों में हुई लड़ाई का है, क्योंकि दोनों लड़कियों और एक लड़के के बीच हो रही बातचीत से ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्षों में हो रही लड़ाई को शांत कराने के लिए पुलिस बीच बचाव कर रही है, क्योंकि पुलिस दोनों पक्षों को अलग अलग रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो का की प्रमाणिकता क्या है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
2: जब हमने पड़ताल शुरू की तो वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो में पुलिसकर्मी जैकेट पहने नजर आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि ये वीडियो सर्दियों का हो सकता है। वायरल वीडियो की फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर ये वीडियो हमें एक सोशल मीडिया हैंडल पर मिला जिसे 16 फरवरी 2026 को पोस्ट किया गया था, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये वीडियो हालिया किसी घटना का नहीं है और इसका सीजेपी के प्रदर्शन से भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद अभी तक जाड़े का मौसम आया नहीं है। वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा था कि ये घटना दिल्ली के मॉरिस नगर थाने की है और ये मामला केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए नियमों के विरोध से जुड़ा है। इसके बाद कुछ खास कीवर्ड्स के जरिए सर्च करने पर हमें इससे जुड़ी मीडिया आउटलेट्स पर कई रिपोर्ट्स मिली। इनके मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते में वामपंथी छात्र संगठन आईसा ने डीयू की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर नए यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन किया था, जबकि दूसरा पक्ष इन नियमों का विरोध कर रहा था। इसी बीच वहां यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर पहुंच गए जिनके साथ भी कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस को बुलाया गया और दोनों पक्षों के लोगों को मॉरिस नगर थाने जाना पड़ा। दोनों पक्षों की शिकायतों पर एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी। वायरल वीडियो में इसी विवाद के दौरान थाने के भीतर बाहर मची अफरा तफरी कैद है। हालांकि ये बात सच है कि सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को देश के अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में बिहार और असम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए केस वापस ले लिए। सीजेपी ने 27 जुलाई की रात केंद्र सरकार के साथ मीटिंग की और इन गिरफ्तारियों को लेकर विरोध जताया था। 28 जुलाई को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आदेश दिया कि सभी नाबालिगों और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और बिना ठोस वजह पुलिस बल का इस्तेमाल गलत है। इस तरह से हमारी पड़ताल से ये साबित होता है कि वायरल वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। जिस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि सीजेपी प्रदर्शन में शामिल बच्चों को पुलिस पकड़ रही है वो पुराना है, क्योंकि वायरल वीडियो को फरवरी 2026 में ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर हर रोज कई वीडियोस वायरल होते हैं। ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एक शख्स ने प्रदर्शन के दौरान एक कार को आग के हवाले करने की कोशिश की। यह दावा कितना सही है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन इस प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति थार गाड़ी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान एक मुस्लिम शख्स ने गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद जब पुलिस ने उसे काबू में करने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। वायरल वीडियो 23 सेकंड का है, जिसमें एक व्यक्ति थार गाड़ी में आग लगाने के लिए पहले माचिस जलाता है, फिर उस जलते हुए तिली को थार गाड़ी के पेट्रोल टैंक में फेंक देता है। हालांकि समय रहते पुलिस उसे रोक देती है, लेकिन फिर भी भीड़ गाड़ी में आग लगाने पर अड़ी रहती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक मुस्लिम आदमी एक थार गाड़ी की टंकी में माचिस की जलती हुई तीली डाल रहा है और थार गाड़ी को आग के हवाले करने की कोशिश करता है। ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये सीजीपी प्रोटेस्ट के दौरान का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा। वायरल वीडियो के 17 सेकंड पर थार गाड़ी का नंबर प्लेट हमें नजर आता है, जिसकी शुरुआत बीआर से हो रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह गाड़ी बिहार की हो सकती है और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि यह घटना बिहार के किसी एक इलाके की हो सकती है। दूसरी बात यह कि वीडियो को देखने पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर या फिर उसके आसपास के इलाके का है, क्योंकि वीडियो में सुनाई दे रही आवाजें लग रही हैं कि ये बिहार के किसी इलाके की हो सकती हैं। वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी किसी एंगल से छात्र नहीं लगते। इतना ही नहीं, पुलिस उग्र लोगों को रोकने आती है और पुलिस से बहस और धक्का मुक्की करने वाले लोग भी कहीं से स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं। सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि इस वायरल वीडियो की सच्चाई को साबित कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर घटना दिल्ली के किस इलाके की है। हमारा दूसरा सवाल ये, कहीं किसी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
3: हमने पड़ताल शुरू करने के लिए वीडियो को की फ्रेम में तोड़ा और गूगल लेंस की मदद से तहकीकात शुरू की तो हमें ये वीडियो सोशल मीडिया पर मिल गया। इस वीडियो के साथ पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक थार गाड़ी में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते स्थानीय लोग भड़क गए थे और वो गाड़ी में आग लगाना चाहते थे। पड़ताल के दौरान हमें ये क्लू तो मिल गया था कि ये घटना बिहार के किसी जगह पर हुई थी, जिसके चलते लोग थार गाड़ी में आग लगाना चाहते थे। पूरी खबर की जानकारी के लिए हमने कुछ खास कीवर्ड के सहारे इंटरनेट पर पड़ताल शुरू की तो हमें एक न्यूज आउटलेट पर इस खबर से जुड़ी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के गयाजी में थार ऑटो और बाइक में टक्कर हो गई थी, जिसके चलते दो लोग घायल हो गए थे। थार को एक महिला चला रही थी जो थार गाड़ी को छोड़कर भागने में सफल हो गई थी, इसलिए लोग गुस्से में थे और थार गाड़ी में आग लगाना चाहते थे, जबकि इस घटना को सीजेपी प्रोटेस्ट से जोड़कर वायरल किया जा रहा था। लेकिन ये घटना 16 जुलाई को हुई थी। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमने अपने रिपोर्टर से संपर्क किया तो उन्होंने हमें बताया कि ये घटना 16 जुलाई को गया सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के पास हुई थी। दुर्घटना के बाद वहां भीड़ जमा हो गई थी और कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। बाद में गुस्साई भीड़ ने कार में आग लगाने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने कार के मालिक और ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी में आग लगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि बिहार के गया जी के वीडियो को गलत तरीके से शेयर किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो CJP प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जिसमें कोई प्रदर्शनकारी कार में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चा अपने 3 डॉग्स के साथ खेल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा घर के फ्लोर पर आराम से बैठा है। उसके सामने उसके 3 पेट डॉग्स भी हैं, जिन्हें वो एक एक कर मस्ती भरे अंदाज में शूट करने की कोशिश करता है। बच्चा बारी बारी तीनों डॉग्स को शूट करता है और उसके शूट करते ही 2 डॉग्स गिरने की एक्टिंग करने लगते हैं। लेकिन जब बच्चा तीसरे डॉग को शूट करता है तो वो नहीं गिरता, जिसके बाद एक डॉग तुरंत उठता है और उसे पीटने लगता है, जिसके बाद वो भी गिरने की एक्टिंग करता है। इस दौरान बच्चा बेहद खुश नजर आ रहा है और मस्ती भरे मूड में है। ये सब देख पीछे सोफे पर बैठी उसकी माँ भी खूब हंस रही है। मोबाइल के लिए बच्चों की दीवानगी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने मोबाइल के लिए एक बिल्ली के बच्चे की दीवानगी देखी है? इस वायरल वीडियो में मोबाइल के लिए मासूम बच्चे के साथ बिल्ली के बच्चे की दीवानगी भी देखी जा सकती है। वीडियो में दिख रहा है एक मासूम और बिल्ली का बच्चा एक साथ ध्यान से मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने से मोबाइल हटाया जाता है वो रोने लगते हैं। पहले बिल्ली का बच्चा बिलखने लगता है, उसे देख मासूम बच्चा भी रोने लगता है। लेकिन इसी दौरान पीछे से एक बिल्ली आती है और अपने रो रहे बच्चे की पिटाई कर देती है। ये देख मासूम बच्चा भी सहम जाता है।

0: कुछ वीडियो इतने क्यूट होते हैं कि उन्हें बार बार देखने का मन करता है। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। कहते हैं कि माँ की ममता अनमोल होती है, वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। अब वो माँ चाहे किसी इंसान की हो या फिर बिल्ली के बच्चे की, माँ तो माँ ही होती है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बिल्ली जमीन पर बैठी है, इसी दौरान कोई उसके बच्चे को उसकी तरफ कर देता है, जैसे उसकी गोद में दे रहा हो। अपने बच्चे को देख बिल्ली उसे अपने सीने से लगा लेती है और पुचकारने लगती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा है, जो एक स्कूल की क्लासरूम का है। इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर ने क्लास में पीछे बैठने वाले छात्र को आगे की सीट पर बिठाने का आदेश दिया। शुरुआत में ये एक सामान्य घटना लगती है, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वीडियो में नजर आता है कि जैसे ही छात्र फ्रंट सीट पर बैठता है, वो अपना बैग नीचे फर्श पर रखता है और उसकी चेन खोलता है, लेकिन चेन खुलते ही उसमें से एक मोटा चूहा बाहर निकल आता है। क्लासरूम में मौजूद सभी छात्र छात्राएं एकदम घबरा जाते हैं और वहाँ हलचल मच जाती है। कोई कुर्सी पर चढ़ जाता है तो कोई इधर उधर भागने लगता है। फ्रेम में सभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने मजेदार होते हैं कि वीडियो देखते ही हंसी छूट जाती है। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि एक स्टूडेंट क्लास में पीछे की सीट पर बैठकर पहले प्याज काटता है, फिर मिर्च काटता है और फिर एक बर्तन में डालकर मुरमुरे मिला देता है। इसके बाद वो उसमें मसाले और नमकीन डालकर भेलपुरी बना लेता है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो ब्रेड पर जैम भी लगाता है। एक और स्टूडेंट उसे खाते हुए नजर आता है। बच्चों की इस हरकत को देखकर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ मस्ती और मजाक मानते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी बच्ची का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे छोटी सी बच्ची गाना बजते ही लटके झटके दिखाना शुरू कर देती है। पहले तो वो डांस करते वक्त कुछ लड़खड़ा जाती है, पर फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर दोबारा डांस करना शुरू करती है। पूरे स्कूल के सामने ये छोटी बच्ची बिना डरे और झिझके ऐसा डांस करती है कि सब बस एक टक उसे देखते ही रह जाते हैं। एक शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अखबार के साथ एक जादू दिखा रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर हैरान हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी अपने हाथ में अखबार लिए खड़ा है। वो साथ में खड़े आदमी को अखबार के पन्ने पलटकर दिखाता है कि सभी साबुत हैं। इसके बाद वो उन्हें फाड़ना शुरू करता है। पहले पूरे अखबार को बीच से फाड़ देता है, इसके बाद सभी को साथ में रखकर फिर से बीच में फाड़ता है। ऐसा वो कई बार करता है। अखबार के फटे पन्नों को साथ में रखता और फिर से उन्हें फाड़ता है। जब वो उन्हें अच्छे से फाड़ लेता है तो फिर उन्हें खोलता है और हैरानी ये देखकर होती है कि वो अखबार इतना फाड़ने के बाद भी जुड़ा हुआ होता है। हनी बेजर यानी बिज्जू भले ही छोटा सा जानवर हो, लेकिन वो बड़े बड़े शिकारी को मार देने की ताकत रखता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि झाड़ियों के किनारे से बहते पानी के पास तीन तेंदुओं ने एक हनी बेजर को पकड़ लिया है। तीनों तेंदुए उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पकड़कर खींच रहे हैं। बिच्छू भी अपनी जान बचाने के लिए तेंदुओं से लड़ रहा है। तभी बिच्छू एक तेंदुए पर हमला करता है, जिससे तेंदुआ घबरा कर उसे छोड़ देता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक तेंदुआ उसे अभी भी पकड़े हुए है और उसे अपने जबड़ों से कुचलने की कोशिश कर रहा है। एक तेंदुआ लगातार बिच्छू को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हनी बेजर तेंदुए के चंगुल से निकलकर पास में बैठे दूसरे तेंदुए पर हमला कर देता है। हनी बेजर के हमले से तेंदुआ घबरा जाता है और उछलकर दूर हो जाता है, लेकिन हनी बेजर फुर्ती से उसकी ओर बढ़ता है, उछलकर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ उछलकर पीछे की ओर हट जाता है। तब तक दूसरा तेंदुआ हनी बेजर को पकड़ लेता है, लेकिन हनी बेजर एक ही झटके में उसकी पकड़ से बाहर आ जाता है। लेकिन अब तक दूसरा तेंदुआ हनी बेजर को दबोच लेता है, बावजूद इसके वो हिम्मत नहीं हारता और फुर्ती दिखाते हुए तेंदुए के जबड़ों से बाहर निकल आता है। तीनों तेंदुओं और हनी बेजर के बीच काफी देर तक जंग चलती रहती है, लेकिन शिकारी तेंदुए हनी बेजर को अपना शिकार नहीं बना पाते। देखिए इनकी बेचैनी जरा, हैरान है कि ये जानवर यहाँ आए कैसे, और आए तो आए ये कोई हरकत क्यों नहीं कर रहे। कभी उसे छूकर देखा जा रहा है तो कभी उसे धक्का देने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोई सचमुच के जानवर हो तो हरकत करे, ये तो लोहे के बने नजर आ रहे हैं। जो भी हो, इन मूर्तियों को देखकर डॉगीज का इस तरह बेचैन होना लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। कुछ तस्वीरें सुकून देती हैं। कुत्ते और घोड़े की दोस्ती की ये खूबसूरत तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। देखिए कैसे रेस लगाई जा रही है। दिलचस्प बात ये है कि दोनों में से कोई भी जीत या हार नहीं रहा, बल्कि दोनों साथ साथ मंजिल पर पहुंच रहे हैं। बिना कुछ कहे एक दूसरे के प्रति उनका ये सम्मान का भाव, दोनों के बीच की बॉन्डिंग लोगों का दिल छू रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चलिए हम आपको अमेरिका की कैलिफोर्निया का एक रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव दिखाते हैं। वायरल हो रहा है ये, जहां पर 16 साल के एक लाइफगार्ड ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से 10 साल के एक बच्चे की जान बचाई है, और बच्चे के रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।
4: उफनती लहरें और इन लहरों के बीच फंसी एक जिंदगी। कैलिफोर्निया के सांता क्रूज में बीच पर एक लड़का समंदर की ऊंची लहरों के बीच फंस गया। लहरें अचानक तेज हो गईं और इन लहरों से बाहर निकलने में उस लड़के का दम निकलने लगा। लड़के को मुसीबत में फंसा देखकर वहां मौजूद एक लाइफगार्ड फौरन रेस्क्यू के लिए दौड़ पड़ा। अपनी जान की परवाह किए बिना उस लाइफगार्ड ने तेज लहरों के बीच लड़के को थामे रखा। जब जब लहरें वापस लौटती, लाइफगार्ड उस लड़के को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता। कुछ देर बाद एक लाइफगार्ड भी मदद के लिए दौड़ा। आखिरकार कोशिश रंग लाई और दोनों ने मिलकर डूबते लड़के को सही सलामत बाहर निकाल लिया।
5: Yeah, so I was working that weekend, that day as well out here, and we had some heavy surf conditions. We had some good rescues. Seeing the video was a great testament to what our lifeguards do every day. Seeing what they do, and the media outpouring from it was a lot. A lot of, you know, good support for our lifeguards and our program. And just pretty incredible how quickly that spread around, but definitely a good rescue, good one that we got on film, and we're happy that everything ended up okay.
4: दो लाइफगार्ड्स की सूझबूझ और फुर्ती की वजह से एक लड़के की जान बच गई। अब इन दोनों लाइफगार्ड्स की दिलेरी की खूब सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कला प्रकृति और शांति का ऐसा संगम जिसे देखकर हर कोई ठहरने को मजबूर हो जाए। कोलंबिया के मेडलिन शहर में इन दिनों 2,20,000 से ज्यादा फूलों से तैयार किया गया एक विशाल फ्लावर कार्पेट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 17 मीटर चौड़ा कबूतर दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि जहां प्यार होता है वहीं शांति खिलती है। देखिए रंगों और फूलों से सजा ये दिल जीतने वाला नजारा।
4: रंगों का समंदर, फूलों की खुशबू और उसके बीच अपने विशाल पंख फैलाए शांति का प्रतीक कबूतर। ये नजारा है कोलंबिया के मेडेलिन में स्थित सांताफे मॉल का, जहां 16वीं वार्षिक फ्लावर कार्पेट ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। करीब 1,000 वर्ग मीटर में फैली इस अनोखी कलाकृति को 2,20,000 से ज्यादा पेटूनिया और गेंदे के फूलों के साथ 27,000 पौधों से तैयार किया गया है। जमीन से करीब 15.5 मीटर ऊपर लटका 17 मीटर चौड़ा विशाल कबूतर मानो हर आने वाले को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा हो।
6: फ्लोरेंस सांता फे मेडेलिन en su 16ª edición trae este año una gran paloma floral suspendida a 15 metros de altura y queríamos dejar un mensaje para la
4: इस भव्य इंस्टॉलेशन को तैयार करने में 200 से ज्यादा लोगों ने महीनों तक मेहनत की। हर फूल, हर रंग और हर डिजाइन को इस तरह सजाया गया है कि ऊपर से देखने पर पूरा परिसर किसी जीवंत पेंटिंग जैसा नजर आता है। विशाल कबूतर अलग अलग एंगल से अलग एहसास देता है, जबकि नीचे बना फूलों का कालीन प्रकृति और कला का अद्भुत संगम पेश करता है। लोग यहाँ घंटों रुक कर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इस अनोखी कलाकृति को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं।
6: Entendidas que de lado a lado tiene 17 metros de longitud, nos abraza con ese mensaje. La vemos desde diferentes ángulos sonreír y entregar ese mensaje, además de un tapiz natural de más de 220,000 flores.
4: मेडेलिन के मशहूर फ्लावर फेस्टिवल का ये फ्लावर कार्पेट सबसे बड़े आकर्षणों में गिना जाता है। 16 जुलाई से 30 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले संस्करण में इस फ्लावर कार्पेट को करीब 31,00,000 लोगों ने देखा था और इस बार भी आयोजकों को बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
7: Agradecida por este tapete tan espectacular que nos da la ciudad. Es una de las maravillas que tenemos las flores en Antioquia.
4: हजारों रंगों से सजा ये फूलों का कालीन सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि इंसानियत के नाम एक खूबसूरत संदेश है। ये बताता है कि जब प्यार लोगों को जोड़ता है तो शांति अपने आप खिल उठती है और शायद यही वजह है कि मेडेलिन का ये फ्लावर कार्पेट आज सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद, एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव, भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार, चीन के कागजी शेर पर भारी सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: सावन में भगवान शिव का कौन सा मंत्र जपना चाहिए, शिव जी की कौन सी स्तुतियां करेंगी आपकी समस्या का समाधान और शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: केंद्रीय कैबिनेट के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी, किसान सम्मान निधि योजना को 2031 तक विस्तार, खेलो इंडिया के लिए अगले 5 साल में खर्च होंगे 36,441 करोड़ रूपए। कांवड़ रोड से जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए बिजनौर पुलिस मुस्तैद, ड्रोन कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा का रखा जा रहा खास ख्याल। बाबा वैद्यनाथ धाम में इतिहास और आध्यात्म का अनूठा संगम, देवघर के शिवलोक परिसर में भगत रून शो का आयोजन। श्रावणी मेले में भोले के भक्तों का लगा तांता। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में फंसे दो कांवड़ियों का रेस्क्यू। कांवड़ घाट पर मुस्तैद एनडीआरएफ टीम ने बचाई जान। प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब सहित देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग की ओर से गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में भी बूंदाबांदी के आसार।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज जीएनटी स्पेशल में कुछ स्पेशल, इसकी शुरुआत करेंगे गौरव पांडे की प्रसिद्ध कविता की एक लाइन के साथ। माँ भोर में उठती है कि माँ के उठने से भोर होती है, ये हम कभी जान नहीं पाए और ना ही हम जान पाए कि माँ के पास कितना काम होता था। घर को संवारना, संभलना, घर का काम, एक होम मेकर की जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन अब बदलते दौर ने घर के काम को निपटाने का अंदाज भी चेंज कर दिया है और ये बदलाव लेकर आए हैं इंस्टा हेल्प एप्स, जो बैकग्राउंड में भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्विक कैब हो जाती है, क्विक फूड डिलीवरी हो जाती है, ग्रोसरी डिलीवरी एक बटन दबाने से हो जाती है। तो अब क्विक हाउस हेल्प डिलीवरी का दौर आ चुका है। ऐप पर टैप कीजिए और 10 मिनट में हाउस हेल्प आपके घर के डोर पर आ जाएगी। 100 रुपए प्रति घंटा जितना किफायती दाम पर आपके घरेलू काम भी वो निपटा देगी। ना छुट्टी की किचकिच है, ना लेट होने की कोई टेंशन है। होम सर्विस की इस क्रांति ने सिर्फ यूजर्स के लिए ही सहूलियत को बढ़ाया नहीं है, बल्कि सालों से घरों में मेड के रूप में काम कर रही जो भी हमारी हेल्प्स हैं, रोजगार की उनके लिए गारंटी और आर्थिक सुरक्षा के रास्ते भी खोल दिए। आखिर कैसे ये इंस्टा हेल्प एप्स हमारी और आपकी घरेलू जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं क्लिक से सहूलियत तक वाली इंस्टा हेल्प क्रांति की ये कहानी।

0: सूरज की पहली किरण जब इन शहरों में कंक्रीट की दीवारों को छूती है तो दो अलग अलग दुनियाएं जागती हैं। एक दुनिया वो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दफ्तर की फाइलों और लैपटॉप की स्क्रीन में खो जाने को तैयार है, और दूसरी दुनिया वो जिसके कंधों पर इस पहली दुनिया को सहेजने, संवारने और चलाने की जिम्मेदारी है। ये वो हाथ हैं जो दूसरों के आशियानों को घर बनाते हैं ताकि देश की तरक्की का पहिया बेधड़क घूम सके। दो दुनिया, दोनों अलहदा, लेकिन एक दूसरे पर निर्भरता ऐसी कि एक साथ न दे तो दूसरे की जिंदगी की गाड़ी हिचकोले खाने लगती है।
1: जैसे मेट की सबसे पहले हम लोग काम किया तो ऐसे होता है, कोई घर खाली भी करके जाते हैं और कोई ऐसे बीमार भी पड़ते तो छूट जाते वो काम, तो हमारा खाली बैठना पड़ता है,
2: नहीं हो पाता, सारा मैनेज नहीं हो पाता कि सफाई करते हैं तो टिफिन छूटता है, टिफिन छूटता है तो सफाई छूटती है, ऐसे ही एक आध काम तो मिस होता है भाई। अब बच्चों का टाइमिंग होता है, सुबह स्पिन को भी ऑफिस जाना होता है, सारा नहीं मैनेज हो पाता, विदाउट मेट के नहीं हो पाता, मतलब हम पूरी तरीके से मेट पे निर्भर हो चुके हैं।
0: सुबह का समय यानी भारतीय घरों का सबसे तनावपूर्ण घंटा, दफ्तर जाने की जल्दी, बच्चों का स्कूल और उस पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज काम वाली बाई आएगी। बरसों से हमारी गृहस्थी की गाड़ी जिन कंधों पर टिकी है उन्हें ढूंढना, उन पर भरोसा करना और रोज रोज की अनिश्चितता से जूझना, ये हर घर की एक अनकही कहानी है। और इसी अनिश्चितता को पीछे छोड़ने के लिए उदय हुआ एक ऐसे बिजनेस मॉडल का जो दबे पांव चुपचाप मेट्रो शहरों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। नाम है इंस्टेंट हेल्प, यानी हाउस मेड ऑन क्लिक। इस बदलाव के बाद अब हाउस मेड का मिलना किस्मत का खेल नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लिक का फैसला है। फोन के ऐप पर एक क्लिक और मिनटों में घर के काम के लिए इंस्टा हेल्प हाजिर। इंस्टेंट इसलिए, न पहले से कोई करार, न बाद में कोई तकरार का झमेला, तुरंत फटाफट इंस्टेंट।
3: प्रियांशी जी मेरे साथ में है। कई बार घर के काम आसान नहीं होते, लोगों ने मेड रखी होती है लेकिन मेड कई बार बिना बताए छुट्टी मार जाती हैं, तो ऐसे में करें तो क्या करें। प्रियांशी जी के साथ भी आज यही हुआ। आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, घर सारा फैला पड़ा है, लेकिन मेड ने अचानक फोन किया कि आज नहीं आ रहे हैं। तो जब नहीं आ रही हैं वो, तो फिर ऐसे में कैसे मैनेज करते हो आप लोग?
2: मैनेज क्या, अब सुबह सुबह इतना काम होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल निकलना होता है, और मेड ने अचानक फोन करके बोल दिया कि आज हम नहीं आएंगे। एक शॉकिंग न्यूज सी लग जाती है कि मेड नहीं आ रही है। फिर अचानक से हमने इनको बुलाया, बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया, सारा क्लीनिंग वगैरह और प्रॉपर सफाई के साथ सारा काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सडनली अगर मेड छुट्टी कर जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास।
3: बट किस काम के लिए आप इनको बुलाया था?
2: हमने डस्टिंग के लिए बुलाया था, खाना बनाने के लिए बुलाया, और हमने एक दो काम और बताए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वो काम भी किए। हमने एक्स्ट्रा दो काम बता दिया, पौधों में पानी लगाना था, उन्होंने वो भी कर दिया था।
0: ये तकनीक सिर्फ ग्राहकों की सहूलियत के लिए नहीं है बल्कि इसने उन लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, मेडिकल बीमा और समाज में गरिमा दिलवाई है जो बरसों से हाउसमेट के रूप में कड़ी मेहनत करते हुए भी उपेक्षित थी।
1: घर में काम करते थे, 10 लाख 10 सवाल पूछते थे रहते थे, भाई क्या किस लिए छुट्टी करो, क्या किस वजह से, क्या हो गया, मतलब हर तरह से सवाल पूछते रहते। ये यहाँ से कभी अगर हम घर से छुट्टी लगा देते फोन कर लेते सर, तो हम कह देते हमारा यही मुश्किल है, तो और कुछ सवाल जवाब नहीं। और कई मेट की तरफ से काम करते तो 10 बातें भी सुना देते, और ऊपर से ऐसे भी हो सकता है कि उनको गुस्सा आए हटा भी दे देते।
4: लेकिन ये टेंशन अब नहीं रही है।
1: आप टेंशन नहीं है, अगर काम अच्छे से करो तो अच्छा,
4: मतलब सुविधा दोनों के लिए हो गई है। हाँ। घर वालों के लिए भी, जो घर के लोग हैं, कामकाजी महिलाएं जो है उनके लिए भी, और आप लोगों के लिए भी हो गई।
1: हम लोगों के लिए भी सुविधा, उन लोग अगर मेट छुट्टी करे तो हम लोग को बुला लेते हैं, अगर मेट काम करते तो फिर उस टाइम हमारा उनकी ड्यूटी, अगर फालतू काम होता तो हमें बुला लेते, तो कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं।
0: गृहस्थी की गाड़ी जिन दो लोगों के रिश्ते की वजह से किसी वेल ऑयल मशीन की तरह चल रही थी, परसों से इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। कभी काम वाली, कभी बाई, तो कभी सिर्फ एक परछाई। एक ऐसा काम जिसके बिना मिडिल क्लास भारतीय परिवार थम जाता है, लेकिन जिसे कभी श्रम का उचित सम्मान नहीं मिला। न कोई तय छुट्टी, न बीमारी में सहारा और न ही आत्म सम्मान की कोई गारंटी। हर सुबह एक डर होता था, कहीं आज काम न छूट जाए, कहीं कोई इल्जाम न लग जाए। भरोसा दोनों तरफ कम था, फासले बहुत ज्यादा थे। फिर वक्त ने करवट ली, जिस तकनीक ने हमें शॉपिंग और सिनेमा के लिए कतारों से बचाया, उसी तकनीक ने समाज के इस सबसे जरूरी हिस्से की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और डिजिटल उंगलियों ने इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नया पुल तैयार कर दिया। एक ऐसा सेतु जिसने अनिश्चितता को खत्म कर दिया, हाउसमेट्स को प्रोफेशनल्स में तब्दील कर दिया। अब वे सिर्फ एक अदृश्य सहारा नहीं है, बल्कि वे डोमेस्टिक एसोसिएट्स हैं, जिनका हुनर अब एक ऐप पर अपनी पूरी पहचान के साथ चमकता है।
4: घर में किसी दिन अगर काम वाली बाई छुट्टी ले ले, या काम पर ना आए, या फिर देरी से आए, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है कामकाजी महिलाओं को और उनके साथ जिनके घर पर सबसे ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन हो जाती है कि अब कैसे काम होगा, किस तरीके से काम किया जाए, या फिर कितनी देर अब जो मेड है उनका वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इन्हीं सब परेशानियों को दूर करते हुए एक ऑनलाइन ट्रेंड सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है, जिसमें ऐप बेस्ड एक ऐप है, जिसके जरिए आप मिनटों में घर पर जो है आप मेड बुला सकते हैं और प्रोफेशनल मेड कुछ ही मिनटों में आपके घर आएगी और हर तरीके का जो घर के काम होते हैं वो करेगी। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ, नोएडा की सोसाइटी मेरे पीछे है और आप ये बाहर का देख सकते हैं कि एक एरिया में आपको बहुत सारी महिलाएं जो है वो बैठी हुई नजर आ जाएगी। और ये जितनी भी महिलाएं आपको यहां पर दिख रही है, और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ घर के काम करने के लिए यहां पर है, इन्हें घर घर जाकर जो है वो भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये यहीं पर ही एक हाथों में इनके फोन आपको दिख जाएंगे और इसी फोन में एक घंटी बजती है जिसके ऊपर ये रेडी हो जाते हैं कि अब हमारा टाइम आ गया, अब हमारे को घर जाना है और हमारी बुकिंग जो है वो करनी है। तो कितना ज्यादा सरल हो गया है घर पर जो महिलाएं बैठी है उनके लिए भी, और जितनी भी ये महिलाएं जिनको काम करना है, जिनको नया रोजगार चाहिए, उनके लिए भी कितना ज्यादा ये आसान जो है वो अब हो चुका है।
0: अर्बन कंपनी, प्रॉन्टो, स्नैबिट और बुक माई बाई जैसी इंस्टा हेल्प कंपनियों ने इस असंगठित क्षेत्र को एक नया और सुरक्षित डिजिटल रूप दे दिया है। न केवल निश्चित और गरिमामय काम, बल्कि इन महिलाओं की कमाई में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। 10 से 12 हजार महीना की कमाई बढ़कर 25 से 30 हजार रुपया महीना तक पहुंच गई।
5: जैसे हमारा काम पसंद आया मैडम लोगों तो यहाँ पे हमारा रीडिंग दे देते हैं, इसी वजह से रीडिंग देख के हमारा ज्यादा बुकिंग आ जाते हैं।
4: अच्छा, मतलब ये एक्स्ट्रा पर्क्स जो है आपको जो अलग से मिलती है, रेटिंग्स जो मिलती है, इससे भी आपके काम में बहुत फायदा होता है।
5: हाँ, फायदा होता है और रेटिंग भी अच्छा होना चाहिए और हमारा 28 ड्यूटी जो है ना वो भी पूरा करना चाहिए, 4 संडे है वो भी पूरा करना चाहिए, तभी हमारा रेटिंग अच्छा, मतलब पैसे हमारा बोनस वोनस अच्छा मिल जाते
4: हैं। फुल कमाई मंथली अर्निंग दिखा रहे हैं आप, मतलब हाँ। ये देखिए आपको एक बार, मैं एक बार ये पूरी ऐप का मैं दिखा रही हूँ कि इन्होंने महीने में 24,255 रुपए की कमाई करी है और आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया है, जहाँ पर यही सब जो है 3,000-4,000 रुपए में एक एक घर जो है जाकर काम करते थे, ये यहाँ के मंथली आपको दिखा रही हूँ कि लगभग 25,000, और अगर ज्यादा लोग बुकिंग कर ले तो उससे भी ज्यादा जो है कमाई हो सकती है। कोई दिन में किसी भी वक्त बुला सकते हैं, चाहे रात हो, सुबह हो, शाम हो,
6: 12 घंटे ड्यूटी है तो 12 घंटे में चांजे बुला सकते हैं,
4: 12 घंटे में कभी भी बुला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 घंटे आपके पास होते हैं, आप कभी भी बुला सकते हो, लेकिन कमाई में कितना ज्यादा फर्क पड़ा और ये चीज इनको और भी मजबूत बनाती है कि जहां पर ये पहले 3-4 हजार रुपए में, 1500 रुपए में, 2000 रुपए में काम करते थे, वहीं अब इतनी ज्यादा अच्छी कीमत देखकर भी इनको और भी हौसला मिलता है और भी थोड़ी मजबूती इनको मिलती है कि किस तरीके से ये लोग जो है आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको टेंशन नहीं है कि कैश है, अभी ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है।
6: हाँ, सब
4: कि ऑनलाइन पैसे जो है वो मिल जाते हैं।
6: हाँ,
4: ठीक है, इसमें इनको बोनस भी मिलता है कि किस हिसाब से इनको बोनस मिल रहा है और अलग अलग तरीके की जो छूट है वो भी दी गई है हालांकि, लेकिन जो सुविधा है वो वाकई में हो गई है, क्योंकि ये जो नई तकनीक है, इस नई तकनीक ने इन लोगों को काफी ज्यादा राहत दी है।
0: पहले जिन महिलाओं को काम के लिए सोसाइटीज के चक्कर काटने पड़ते थे, छुट्टी और पैसे भी लोग मर्जी से देते थे, ऐप से जुड़ने के बाद उन्हें तय सैलरी मिलती है, तय छुट्टी मिलती है और सबसे बड़ी बात, लोग उन्हें अब काम वाली नहीं बल्कि डोमेस्टिक प्रोफेशनल कहकर इज्जत देते हैं।
5: हाँ सही है, यही मतलब जैसे मेट की सबसे पहले हम लोग काम किया तो ऐसे होता है कोई घर खाली भी करके जाते हैं और कोई ऐसे बीमार भी पड़ते तो छूट जाते वो काम, तो हमारा खाली बैठना पड़ता है। जो ये हमारा काम है तो हमारा ये फिक्स है काम, अगर हमारी तरफ से हम छुट्टी करें वो हमारी ड्यूटी नहीं उठाते हैं, और अगर हम ड्यूटी आ जाते तो हमारा पैसे अगर काम आए चाहे ना आए 10 घंटे के हिसाब से हमारा 700 रुपए आते
4: आ जाता है।
5: आ जाता है।
4: इससे पहले आपने घर में कभी काम किया है या फिर ये पहली बार ही इस ऐप के थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं?
5: नहीं पहले मैं तो 14 साल हो गया मेट की हिसाब से मैंने काम किया है
4: काम।
5: हाँ
6: इसमें थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है, काम भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत पैसा भी हो जाता है, रेस्ट भी हो जाता है।
0: सुरक्षा की गारंटी और रिप्लेसमेंट की सुविधा ने आज के शहरी परिवारों और इन डोमेस्टिक हेल्प के बीच भरोसे की एक नई मजबूत कड़ी जोड़ दी है, क्योंकि वास्तव में घर सिर्फ दीवारों और फर्नीचर से नहीं बनता बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों, उनकी खुशी और सुकून से बनता है, और इस सुकून को बनाए रखने में तकनीक और इंसानी हुनर का ये नया मेल एक मौन क्रांति ला रहा है, एक ऐसी क्रांति जो घर और समाज दोनों को बेहतर बना रही है।
7: हमारे साथ है हनी दास, आज आपकी मेड नहीं आई इसलिए आपने स्नैपचैट से बुलाया।
8: हाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग उसने फोन किया कि शी इज नॉट वेल, तो फिर मैंने फटाफट स्नैपचैट से बुला लिया।
7: कितनी बड़ी हेल्प लगती है, आपका क्या व्यू है इसको लेकर?
8: नहीं नहीं सही में मतलब इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए और इंस्टेंट हेल्प है, आपको वेट भी नहीं करना पड़ता, विद इन 10 मिनट्स आ जाती है और बहुत अच्छे से काम कर देती है, नो डाउट। तो अब सडनली यदि वो सुबह ही बोल दे कि नहीं आ रही हूँ तो सारे काम छूट जाते हैं, वो आ जाती है तो फिर बहुत कंफर्ट हो जाता है, मतलब आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
3: आज उनकी वाइफ की तबीयत खराब हुई, वैसे वो सब कुछ संभालती हैं, तो इसके लिए उन्होंने ऐप के जरिए मेड मंगवाई, घर की डस्टिंग करवाई और महज हमने देखा भी कि महज 26 रुपए में वो मेड आई, आधे घंटे तक उन्होंने काम किया और सारे घर की वो डस्टिंग करके चली गई। आपने खुद ऐप से उनको बुक किया था, ऐसे मौके पर जब घर में कोई दिक्कत हो आपको लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन मिला है अब?
9: नहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत ही इजी भी है और इंस्टेंट अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी बात है। जब भी आपको कुछ कराना हो इमरजेंसी में या जब आप फ्री हो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, और ठीक है अच्छा है ये।
3: अगर इसी काम के लिए आप अल्टरनेट ऑप्शन अगर जैसे अभी हमने ढूंढा ऐप पर, अगर आप किसी बाहर जो मेट्स आते हैं और आप उनसे बात करने जाती तो क्या 26 रुपए में काम हो जाता?
10: 26 रुपए में तो वो कुछ भी काम नहीं करती हैं, उनके चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो मतलब अपने अकॉर्डिंग पैसे मांगती हैं।
11: तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मुझे अच्छा लगा, मतलब लाइक क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अच्छी होगी जिसने भी बनाई है, इट्स वेरी हेल्पफुल जिसने भी सोचा है, क्योंकि आप अपना जो टाइम है आप अपना आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। समटाइम्स ऐसे था कि एक बार मतलब आई एम अ होम मेकर ऑल्सो आई टेक ट्यूशन एट होम, तो मेरा शेड्यूल जो बड़ा पैक्ड रहता है, तो एकदम अचानक मॉर्निंग में जैसे मेड ने कॉल कर दिया कि आई एम नॉट कमिंग, तो मैं अब परेशान हो जाए, स्नैपचैट है या फिर हमारा अर्बन क्लैप है, तो मैंने फटाफट से कॉल किया और आपको किसी भी टाइम कॉल करो इमरजेंसी में, देन यू कैन 5-10 मिनट में वो आ जाती हैं। उसके बाद बड़े मजे से उसने मेरा काम कर दिया।
0: अगर देखा जाए तो ये एक अद्भुत सामाजिक बदलाव है, तकनीक ने यहाँ 2 जिंदगियों को एक साथ आजाद किया है, एक को चौके चूल्हे की फिक्र से आजादी और दूसरी को आर्थिक अनिश्चितता और अपमान से। नोएडा से मनीष चौरसिया, मनीषा लड्डा और गाजियाबाद से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: अब देखिए इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि ये मेट्स को हायर करती हैं, उन्हें महीने की तय तनख्वाह देती हैं जो महीने का 20,000 से 25,000 के आसपास रहता है। बात अगर कमाई की जाए तो ये कस्टमर से मिलने वाले कुछ पैसे में भी एक निश्चित हिस्सा अपने पास रखते हैं और बाकी महिला पार्टनर्स को देते हैं। हैरानी तब होती है जब कई बार केवल 40, 50 या 60 रुपए जितनी कम कीमत पर यह सर्विस आपको मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कमाई तो इतनी कम है लेकिन मेट्स को सैलरी हर महीने देनी, ऐसे में इन क्विक हेल्प एप्स की कमाई कैसे होती है, क्या मुनाफा होता है, क्योंकि घाटे का सौदा कोई ज्यादा वक्त तो नहीं रहता। ऐसे में इन क्विक हेल्प एप्स का भविष्य क्या है?

0: बल्कि हमारी जरूरत बन चुके हैं। ये कहानी है तकनीक और इंसान के उस मेल की जिसने हमारे जीने के अंदाज को आसान बना दिया। लेकिन शहरों में ये इंस्टा हेल्प क्रांति यूं ही नहीं आई, बल्कि इसके प्रचार के लिए इंस्टा हेल्प कंपनियों ने शहरी सोसाइटीज में धुआंधार प्रचार किया। इस बिजनेस मॉडल और इसके फायदों को लेकर मेड्स और यूजर्स के बीच समान रूप से जागरूकता बढ़ाई, बकायदा डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया।
1: नहीं, संपर्क किया था कि इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन्स किए हैं, इन्होंने कैनोपीज लगाई हैं, इन्होंने लगातार इवेंट्स किए हैं, सोसाइटी को अवेयर कराया है। शुरुआत में कई रीजन्स में नहीं अवेलेबल थी, अब सारे रीजन्स में अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पे अच्छी चीज़ है क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जिसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। बेनिफिशियल फैमिलीज के लिए ये है कि उनको इंस्टेंटली हेल्प मिल जाती है जो पहले परेशानी हो रही।
2: आरडब्ल्यू की सरदर्दी कम हुई है क्योंकि मेज इश्यू बहुत ज्यादा आप लोगों को ही संभालने पड़ते हैं, वो कि हमारे रेट बढ़ा दीजिए, रेट्स कम कर दीजिए, ड्यूटी आज इतने होने चाहिए, ये सही नहीं, ये सही नहीं है।
1: अब ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। अच्छा। क्योंकि अब फैमिलीज जो है उनको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो आप समस्या बता रही हैं हुई हैं, फैमिलीज ने उठाया है कि मेड्स मनमाने रेट चार्ज करने लगी हैं। जब से लेबर कोड इंप्लीमेंट हुआ था उसके बाद मेड्स ने बोला कि व्हाई नॉट वी आर पुट इनटू दिस लेबर कोड थिंग। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट है, इसके अंदर आप रेगुलेशन नहीं कर सकते। तो ये अच्छी चीज़ है कि ये एप्लीकेशन उस रेगुलेशन को लेके आ रहे हैं।
0: क्विक कॉमर्स की तर्ज पर शुरू हुआ ये बिजनेस फिलहाल मुख्य रूप से दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे महानगरों में केंद्रित है। भारत में फिलहाल ऑन डिमांड इंस्टेंट हाउस हेल्प पहुंचाने वाले इस नए सेगमेंट में सबसे बड़े तीन प्लेयर्स हैं, अर्बन कंपनी, प्रॉन्टो और स्नैबिट। इन तीनों ही एप्स के बीच में फिलहाल बहुत कड़ी टक्कर है। इन तीनों कंपनियों के एप्स पर इंस्टा हेल्प बुक करने की प्रक्रिया लगभग समान है। स्टेप वन है ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना। स्टेप टू है उसमें एड्रेस और अपने घर की सही लोकेशन सेट करना। स्टेप थ्री है सर्विस और टास्क का चुनाव, यानी जो काम आपको करवाना है उसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगले स्टेप में टाइम स्लॉट चुनना है। बुक नाउ या दिन में उपलब्ध कोई भी समय चूज किया जा सकता है। समय चूज करके पेमेंट करना है। आखिरी स्टेप है लाइव ट्रैकिंग और प्रोफेशनल के पहुँचने पर OTP वेरिफिकेशन।
3: Like we, as I said, culturally in India, we're all used to like, you know, taking help consistently from folks around us. And I've also grown up in a very similar environment. So I think what stayed with me was the fact that, you know, this was my mom's biggest problem. So on a given day, if her mood's not really good, one of the possible reasons is that, you know, the house help hasn't shown up. And I think, again, it, like, you know, living and growing up in those situations, I just realized that this is a fundamentally broken problem that is existing for decades, shows up twice or thrice every month and messes with the entire, like, you know, harmony that a household operates with. And I think, like, you know, learning from those experiences, it gave me more conviction to build, operate and actually find a solution in this category. Because as you said, it was not very intuitive. There were so many examples that it had not worked in the past. So it needed some irrational conviction to just go after it and say that, you know, this is going to work. And this is a problem worth solving. And I think everything that I've seen at home growing up, whether it's with my mom or even when I was living alone as a bachelor, I think all of those things played an important role.
0: अगर इन कंपनियों की ग्रोथ की बात करें तो मार्च 2026 की मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस सेगमेंट की कुल मंथली एक्टिव यूजर्स फिलहाल 10.4 मिलियन यानी 1 करोड़ को पार कर चुके हैं। इस यूजर बेस में अर्बन कंपनी के पास फिलहाल लगभग 65 लाख, प्रॉन्टो के पास लगभग 27 लाख और स्नैबिट के पास लगभग 12 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। जहां अर्बन कंपनी के कोर बिजनेस को 50,000 डेली बुकिंग्स तक पहुंचने में 6 साल का समय लगा था, वहीं इसके इंस्टा हेल्प वर्टिकल ने लॉन्च के महज 11 महीनों के भीतर ही 50,000 प्लस डेली बुकिंग का आंकड़ा छू लिया है। ये आंकड़े गवाह हैं कि भारत में क्विक हाउस हेल्प सेगमेंट में इंस्टा हेल्प कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही एक सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर ये कंपनियां इतने किफायती दामों पर हाउस हेल्प कैसे दे पा रही हैं और इनका भविष्य क्या है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पूरा मार्केट इस समय 2021 के ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स एप्स के शुरुआती दौर की तरह काम कर रहा है, जहां मुनाफे को छोड़कर केवल कंज्यूमर बिहेवियर यानी ग्राहकों की आदत बदलने पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी ग्राहकों को आराम की आदत लगाने पर फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि ये पूरा सेक्टर इस समय भारी कैश बर्न यानी घाटे के दौर से गुजर रहा है।

0: जून 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने के चक्कर में इस पूरे सेक्टर का कुल मासिक कैश बर्न 16 से 17 मिलियन डॉलर यानी करीब 135 से 142 करोड़ रुपए प्रति महीने तक पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में ये कंपनियां ग्राहकों पर डिलीवरी चार्ज लगाना शुरू कर सकती हैं, जिसके बाद ही ये मुनाफे की तरफ बढ़ पाएंगी। लेकिन ये तो बिजनेस के आंकड़े हैं। जहां तक सवाल आम यूजर्स और मेड्स का है, उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि ये दो महिलाओं की आजादी की साझी दास्तां है। एक महिला को घर के काम से आजादी मिलती है ताकि वो अपने करियर को उड़ान दे सके, और दूसरी महिला को आर्थिक तंगी से आजादी मिलती है ताकि वो अपने बच्चों और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि ये दास्तां कामयाबी की राह पर ही आगे बढ़ेगी। नोएडा से मनीष चौरसिया, मनीषा लड्डा और गाजियाबाद से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
2: कला, प्रकृति और शांति का ऐसा संगम जिसे देखकर हर कोई ठहरने को मजबूर हो जाए। कोलंबिया के मेडलिन शहर में इन दिनों 2,20,000 से ज्यादा फूलों से तैयार किया गया एक विशाल फ्लावर कार्पेट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 17 मीटर चौड़ा कबूतर दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि जहां प्यार होता है वहीं शांति खिलती है। देखिए रंगों और फूलों से सजा ये दिल जीतने वाला नजारा।
3: रंगों का समंदर, फूलों की खुशबू और उसके बीच अपने विशाल पंख फैलाए शांति का प्रतीक कबूतर। ये नजारा है कोलंबिया के मेडेलिन में स्थित सांताफे मॉल का, जहां 16वें वार्षिक फ्लावर कार्पेट ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। करीब 1,000 वर्ग मीटर में फैली इस अनोखी कलाकृति को 2,20,000 से ज्यादा पेटूनिया और गेंदे के फूलों के साथ 27,000 पौधों से तैयार किया गया है। जमीन से करीब 15.5 मीटर ऊपर लटका 17 मीटर चौड़ा विशाल कबूतर मानो हर आने वाले को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा हो।
4: फ्लोरेंस डी सांता फे मेडेलिन इन सू 16वां एडिशन ट्राए इस्टे आन्यो उना ग्रान पालोमा फ्लोरल सस्पेंडिडा 15 मीटर्स डी अल्टुरा य केरियामोस डेजार उन मेसाजे पारा ला।
3: इस भव्य इंस्टॉलेशन को तैयार करने में 200 से ज्यादा लोगों ने महीनों तक मेहनत की। हर फूल, हर रंग और हर डिजाइन को इस तरह सजाया गया है कि ऊपर से देखने पर पूरा परिसर किसी जीवंत पेंटिंग जैसा नजर आता है। विशाल कबूतर अलग अलग एंगल से अलग एहसास देता है, जबकि नीचे बना फूलों का कालीन प्रकृति और कला का अद्भुत संगम पेश करता है। लोग यहाँ घंटों रुक कर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इस अनोखी कलाकृति को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं।
4: Tiene 17 metros de longitud, nos abraza con ese mensaje. La vemos desde diferentes ángulos sonreír y entregar ese mensaje, además de un tapiz natural de más de 220,000 flores.
3: मेडेलिन के मशहूर फ्लावर फेस्टिवल का ये फ्लावर कार्पेट सबसे बड़े आकर्षणों में गिना जाता है। 16 जुलाई से 30 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले संस्करण में इस फ्लावर कार्पेट को करीब 31 लाख लोगों ने देखा था और इस बार भी आयोजकों को बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
5: Agradecida por este tapete tan espectacular que nos da la ciudad. Es una de las maravillas que tenemos las flores en Antioquia.
3: हजारों रंगों से सजा ये फूलों का कालीन सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि इंसानियत के नाम एक खूबसूरत संदेश है। ये बताता है कि जब प्यार लोगों को जोड़ता है तो शांति अपने आप खिल उठती है और शायद यही वजह है कि मेडेलिन का ये फ्लावर कार्पेट आज सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद, एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: सावन में भगवान शिव का कौन सा मंत्र जपना चाहिए, शिव जी की कौन सी स्तुतियां करेंगी आपकी समस्या का समाधान और शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव, भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार, चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: केंद्रीय कैबिनेट के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी, किसान सम्मान निधि योजना को 2031 तक विस्तार, खेलो इंडिया के लिए अगले 5 साल में खर्च होंगे 36,441 करोड़ रुपए। कांवड़ रूट से जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए बिजनौर पुलिस मुस्तैद, ड्रोन कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा का रखा जा रहा खास ख्याल। बाबा वैद्यनाथ धाम में इतिहास और आध्यात्म का अनूठा संगम, देवघर के शिवलोक परिसर में भव्य ड्रोन शो का आयोजन, श्रावणी मेले में भोले के भक्तों का लगा तांता। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में फंसे 2 कांवड़ियों का रेस्क्यू, कांवड़ घाट पर मुस्तैद एनडीआरएफ टीम ने बचाई जान, प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब सहित देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग की ओर से गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर में भी बूंदाबांदी के आसार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं, यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। तो ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो फैक्ट चेक में आज जिन 2 खबरों की पड़ताल करेंगे उसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। क्या इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान एक मुस्लिम शख्स ने थार कार में आग लगाने की कोशिश करी। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
3: जनता पार्टी यानी सीजेपी की 3 मांगे मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नई शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को खोज खोज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किसी पुलिस थाने पर अफरा तफरी मची है और खूब हंगामा हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी 2 लड़कियों को किसी घर के अंदर धकेलते हुए दिख रही है। वीडियो बनाने वाला शख्स उन लड़कियों को धमका भी रहा है। दरवाजे के बाहर गुस्साए लोगों की भीड़ है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और पुलिसकर्मी उन्हें रोक रही है। इस वीडियो को शेयर करने वाले कुछ यूजर्स का आरोप है कि पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों की पहचान कर उन्हें एक एक कर पकड़ रही है और पार्टी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रोटेस्ट में जो बच्चे थे अब वीडियो से ढूंढ ढूंढ कर पुलिस पकड़ रही है उनको। अगर ये सच है तो सीजेपी फॉर इंडिया कुछ करती क्यों नहीं? इन्हीं के कहने पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था ना, क्या प्रोटेस्ट के बाद उनकी सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी नहीं? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लेकर कुछ ऐसी ही बातें कही जा रही हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसे शेयर करते हैं लोग। ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल बच्चों पर आज के वक्त में कार्रवाई का है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की और सबसे पहले वीडियो को गौर से देखा। वायरल वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि मामला दो पक्षों में हुई लड़ाई का है, क्योंकि दोनों लड़कियों और एक लड़के के बीच हो रही बातचीत से ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्षों में हो रही लड़ाई को शांत कराने के लिए पुलिस बीच बचाव कर रही है, क्योंकि पुलिस दोनों पक्षों को अलग अलग रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो का की प्रमाणिकता क्या है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: जब हमने पड़ताल शुरू की तो वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो में पुलिसकर्मी जैकेट पहने नजर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये वीडियो सर्दियों का हो सकता है। वायरल वीडियो के की फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर ये वीडियो हमें एक सोशल मीडिया हैंडल पर मिला, जिसे 16 फरवरी 2026 को पोस्ट किया गया था, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये वीडियो हालिया किसी घटना का नहीं है और इसका सीजेपी के प्रदर्शन से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद अभी तक जाड़े का मौसम आया नहीं है। वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा था कि ये घटना दिल्ली के मॉरिस नगर थाने की है और ये मामला केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए नियमों के विरोध से जुड़ा है। इसके बाद कुछ खास कीवर्ड्स के जरिए सर्च करने पर हमें इससे जुड़ी मीडिया आउटलेट्स पर कई रिपोर्ट्स मिली। इनके मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते में वामपंथी छात्र संगठन आईसा ने डीयू की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर नए यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन किया था, जबकि दूसरा पक्ष इन नियमों का विरोध कर रहा था। इसी बीच वहाँ यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर पहुँच गए, जिनके साथ भी कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस को बुलाया गया और दोनों पक्षों के लोगों को मॉरिस नगर थाने जाना पड़ा। दोनों पक्षों की शिकायतों पर एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी। वायरल वीडियो में इसी विवाद के दौरान थाने के भीतर बाहर मची अफरा तफरी कैद है। हालांकि ये बात सच है कि सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को देश के अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में बिहार और असम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए केस वापस ले लिए। सीजेपी ने 27 जुलाई की रात केंद्र सरकार के साथ मीटिंग की और इन गिरफ्तारियों को लेकर विरोध जताया था। 28 जुलाई को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आदेश दिया कि सभी नाबालिगों और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और बिना ठोस वजह पुलिस बल का इस्तेमाल गलत है। इस तरह से हमारी पड़ताल से ये साबित होता है कि वायरल वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। जिस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि सीजेपी प्रदर्शन में शामिल बच्चों को पुलिस पकड़ रही है, वो पुराना है, क्योंकि वायरल वीडियो को फरवरी 2026 में ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर हर रोज कई वीडियोस वायरल होते हैं। ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एक शख्स ने प्रदर्शन के दौरान एक कार को आग के हवाले करने की कोशिश की। यह दावा कितना सही है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
10: दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन इस प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति थार गाड़ी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान एक मुस्लिम शख्स ने गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद जब पुलिस ने उसे काबू में करने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। वायरल वीडियो 23 सेकंड का है, जिसमें एक व्यक्ति थार गाड़ी में आग लगाने के लिए पहले माचिस जलाता है, फिर उस जलते हुए तिली को थार गाड़ी के पेट्रोल टैंक में फेंक देता है। हालांकि समय रहते पुलिस उसे रोक देती है, लेकिन फिर भी भीड़ गाड़ी में आग लगाने पर अड़ी रहती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक मुस्लिम आदमी एक थार गाड़ी की टंकी में माचिस की जलती हुई तीली डाल रहा है और थार गाड़ी को आग के हवाले करने की कोशिश करता है। ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये सीजीपी प्रोटेस्ट के दौरान का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा। वायरल वीडियो के 17 सेकंड पर थार गाड़ी का नंबर प्लेट हमें नजर आता है, जिसकी शुरुआत बीआर से हो रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह गाड़ी बिहार की हो सकती है और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि यह घटना बिहार के किसी एक इलाके की हो सकती है। दूसरी बात यह कि वीडियो को देखने पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर या फिर उसके आसपास के इलाके का है, क्योंकि वीडियो में सुनाई दे रही आवाजें लग रही हैं कि ये बिहार के किसी इलाके की हो सकती है। वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी किसी एंगल से छात्र नहीं लगते। इतना ही नहीं, पुलिस उग्र लोगों को रोकने आती है और पुलिस से बहस और धक्का मुक्की करने वाले लोग भी कहीं से स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं। सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि इस वायरल वीडियो की सच्चाई को साबित कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर घटना दिल्ली के किस इलाके की है। हमारा दूसरा सवाल ये, कहीं किसी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
10: हमने पड़ताल शुरू करने के लिए वीडियो को की फ्रेम में तोड़ा और गूगल लेंस की मदद से तहकीकात शुरू की, तो हमें ये वीडियो सोशल मीडिया पर मिल गया। इस वीडियो के साथ पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक थार गाड़ी में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते स्थानीय लोग भड़क गए थे और वो गाड़ी में आग लगाना चाहते थे। पड़ताल के दौरान हमें ये क्लू तो मिल गया था कि ये घटना बिहार के किसी जगह पर हुई थी, जिसके चलते लोग थार गाड़ी में आग लगाना चाहते थे। पूरी खबर की जानकारी के लिए हमने कुछ खास कीवर्ड के सहारे इंटरनेट पर पड़ताल शुरू की, तो हमें एक न्यूज आउटलेट पर इस खबर से जुड़ी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के गयाजी में थार ऑटो और बाइक में टक्कर हो गई थी, जिसके चलते दो लोग घायल हो गए थे। थार को एक महिला चला रही थी, जो थार गाड़ी को छोड़कर भागने में सफल हो गई थी, इसलिए लोग गुस्से में थे और थार गाड़ी में आग लगाना चाहते थे, जबकि इस घटना को सीजेपी प्रोटेस्ट से जोड़कर वायरल किया जा रहा था। लेकिन ये घटना 16 जुलाई को हुई थी। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमने अपने रिपोर्टर से संपर्क किया, तो उन्होंने हमें बताया कि ये घटना 16 जुलाई को गया सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के पास हुई थी। दुर्घटना के बाद वहाँ भीड़ जमा हो गई थी और कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। बाद में गुस्साई भीड़ ने कार में आग लगाने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने कार के मालिक और ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी में आग लगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि बिहार के गया जी के वीडियो को गलत तरीके से शेयर किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जिसमें कोई प्रदर्शनकारी कार में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
3: वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चा अपने तीन डॉग्स के साथ खेल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा घर के फ्लोर पर आराम से बैठा है। उसके सामने उसके तीन पेट डॉग्स भी हैं, जिन्हें वो एक एक कर मस्ती भरे अंदाज में शूट करने की कोशिश करता है। बच्चा बारी बारी तीनों डॉग्स को शूट करता है और उसके शूट करते ही दो डॉग्स गिरने की एक्टिंग करने लगते हैं। लेकिन जब बच्चा तीसरे डॉग को शूट करता है तो वो नहीं गिरता, जिसके बाद एक डॉग तुरंत उठता है और उसे पीटने लगता है, जिसके बाद वो भी गिरने की एक्टिंग करता है। इस दौरान बच्चा बेहद खुश नजर आ रहा है और मस्ती भरे मूड में है। ये सब देख पीछे सोफे पर बैठी उसकी माँ भी खूब हंस रही है। मोबाइल के लिए बच्चों की दीवानगी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने मोबाइल के लिए एक बिल्ली के बच्चे की दीवानगी देखी है? इस वायरल वीडियो में मोबाइल के लिए मासूम बच्चे के साथ बिल्ली के बच्चे की दीवानगी भी देखी जा सकती है।
11: वीडियो में दिख रहा है एक मासूम और बिल्ली का बच्चा एक साथ ध्यान से मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने से मोबाइल हटाया जाता है वो रोने लगते हैं। पहले बिल्ली का बच्चा बिलखने लगता है, उसे देख मासूम बच्चा भी रोने लगता है। लेकिन इसी दौरान पीछे से एक बिल्ली आती है और अपने रो रहे बच्चे की पिटाई कर देती है। ये देख मासूम बच्चा भी सहम जाता है।

0: कुछ वीडियो इतने क्यूट होते हैं कि उन्हें बार बार देखने का मन करता है। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। कहते हैं कि माँ की ममता अनमोल होती है, वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। अब वो माँ चाहे किसी इंसान की हो या फिर बिल्ली के बच्चे की, माँ तो माँ ही होती है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बिल्ली जमीन पर बैठी है, इसी दौरान कोई उसके बच्चे को उसकी तरफ कर देता है, जैसे उसकी गोद में दे रहा हो। अपने बच्चे को देख बिल्ली उसे अपने सीने से लगा लेती है और पुचकारने लगती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा है, जो एक स्कूल की क्लासरूम का है। इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर ने क्लास में पीछे बैठने वाले छात्र को आगे की सीट पर बिठाने का आदेश दिया। शुरुआत में ये एक सामान्य घटना लगती है, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वीडियो में नजर आता है कि जैसे ही छात्र फ्रंट सीट पर बैठता है, वो अपना बैग नीचे फर्श पर रखता है और उसकी चेन खोलता है, लेकिन चेन खुलते ही उसमें से एक मोटा चूहा बाहर निकल आता है। क्लासरूम में मौजूद सभी छात्र छात्राएं एकदम घबरा जाते हैं और वहाँ हलचल मच जाती है। कोई कुर्सी पर चढ़ जाता है तो कोई इधर उधर भागने लगता है। फ्रेम में सभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने मजेदार होते हैं कि वीडियो देखते ही हंसी छूट जाती है। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि एक स्टूडेंट क्लास में पीछे की सीट पर बैठकर पहले प्याज काटता है, फिर मिर्च काटता है और फिर एक बर्तन में डालकर मुरमुरे मिला देता है। इसके बाद वो उसमें मसाले और नमकीन डालकर भेलपूरी बना लेता है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो ब्रेड पर जैम भी लगाता है। एक और स्टूडेंट उसे खाते हुए नजर आता है। बच्चों की इस हरकत को देखकर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ मस्ती और मजाक मानते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी बच्ची का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे छोटी सी बच्ची गाना बजते ही लटके झटके दिखाना शुरू कर देती है। पहले तो वो डांस करते वक्त कुछ लड़खड़ा जाती है, पर फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर दोबारा डांस करना शुरू करती है। पूरे स्कूल के सामने ये छोटी बच्ची बिना डरे और झिझके ऐसा डांस करती है कि सब बस एक टक उसे देखते ही रह जाते हैं। एक शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अखबार के साथ एक जादू दिखा रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर हैरान हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी अपने हाथ में अखबार लिए खड़ा है। वो साथ में खड़े आदमी को अखबार के पन्ने पलटकर दिखाता है कि सभी साबुत हैं। इसके बाद वो उन्हें फाड़ना शुरू करता है। पहले पूरे अखबार को बीच से फाड़ देता है, इसके बाद सभी को साथ में रखकर फिर से बीच में फाड़ता है। ऐसा वो कई बार करता है। अखबार के फटे पन्नों को साथ में रखता और फिर से उन्हें फाड़ता है। जब वो उन्हें अच्छे से फाड़ लेता है तो फिर उन्हें खोलता है और हैरानी ये देखकर होती है कि वो अखबार इतना फाड़ने के बाद भी जुड़ा हुआ होता है। हनी बेजर यानी बिज्जू भले ही छोटा सा जानवर हो, लेकिन वो बड़े बड़े शिकारी को मार देने की ताकत रखता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि झाड़ियों के किनारे से बहते पानी के पास तीन तेंदुओं ने एक हनी बेजर को पकड़ लिया है। तीनों तेंदुए उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पकड़कर खींच रहे हैं। बिच्छू भी अपनी जान बचाने के लिए तेंदुओं से लड़ रहा है। तभी बिच्छू एक तेंदुए पर हमला करता है, जिससे तेंदुआ घबराकर उसे छोड़ देता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक तेंदुआ उसे अभी भी पकड़े हुए है और उसे अपने जबड़ों से कुचलने की कोशिश कर रहा है। एक तेंदुआ लगातार बिच्छू को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हनी बेजर तेंदुए के चंगुल से निकलकर पास में बैठे दूसरे तेंदुए पर हमला कर देता है। हनी बेजर के हमले से तेंदुआ घबरा जाता है और उछलकर दूर हो जाता है, लेकिन हनी बेजर फुर्ती से उसकी ओर बढ़ता है, उछलकर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ उछलकर पीछे की ओर हट जाता है। तब तक दूसरा तेंदुआ हनी बेजर को पकड़ लेता है, लेकिन हनी बेजर एक ही झटके में उसकी पकड़ से बाहर आ जाता है। लेकिन अब तक दूसरा तेंदुआ हनी बेजर को दबोच लेता है, बावजूद इसके वो हिम्मत नहीं हारता और फुर्ती दिखाते हुए तेंदुए के जबड़ों से बाहर निकल आता है। तीनों तेंदुओं और हनी बेजर के बीच काफी देर तक जंग चलती रहती है, लेकिन शिकारी तेंदुए हनी बेजर को अपना शिकार नहीं बना पाते। देखिए इनकी बेचैनी जरा, हैरान है कि ये जानवर यहाँ आए कैसे, और आए तो आए ये कोई हरकत क्यों नहीं कर रहे। कभी उसे छूकर देखा जा रहा है तो कभी उसे धक्का देने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोई सचमुच के जानवर हो तो हरकत करे, ये तो लोहे के बने नजर आ रहे हैं। जो भी हो, इन मूर्तियों को देखकर डॉगीज का इस तरह बेचैन होना लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। कुछ तस्वीरें सुकून देती हैं। कुत्ते और घोड़े की दोस्ती की ये खूबसूरत तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। देखिए कैसे रेस लगाई जा रही है। दिलचस्प बात ये है कि दोनों में से कोई भी जीत या हार नहीं रहा, बल्कि दोनों साथ साथ मंजिल पर पहुंच रहे हैं। बिना कुछ कहे एक दूसरे के प्रति उनका ये सम्मान का भाव, दोनों के बीच की बॉन्डिंग लोगों का दिल छू रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: चलिए आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया का एक रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव दिखाते हैं। वायरल हो रहा है ये, जहां पर 16 साल के एक लाइफगार्ड ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से 10 साल के एक बच्चे की जान बचाई है, और बच्चे के रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।
5: उफनती लहरें और इन लहरों के बीच फंसी एक जिंदगी। कैलिफोर्निया के सांता क्रूज में बीच पर एक लड़का समंदर की ऊंची लहरों के बीच फंस गया। लहरें अचानक तेज हो गईं और इन लहरों से बाहर निकलने में उस लड़के का दम निकलने लगा। लड़के को मुसीबत में फंसा देखकर वहां मौजूद एक लाइफगार्ड फौरन रेस्क्यू के लिए दौड़ पड़ा। अपनी जान की परवाह किए बिना उस लाइफगार्ड ने तेज लहरों के बीच लड़के को थामे रखा। जब जब लहरें वापस लौटती, लाइफगार्ड उस लड़के को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता। कुछ देर बाद एक लाइफगार्ड भी मदद के लिए दौड़ा। आखिरकार कोशिश रंग लाई और दोनों ने मिलकर डूबते लड़के को सही सलामत बाहर निकाल लिया।
6: Yeah, so I was working that weekend, that day as well out here, and we had some heavy surf conditions. We had some good rescues. Seeing the video was a great testament to what our lifeguards do every day. Seeing what they do, and the media outpouring from it was a lot. A lot of, you know, good support for our lifeguards and our program. And just pretty incredible how quickly that spread around, but definitely a good rescue, good one that we got on film, and we're happy that everything ended up okay.
5: दो लाइफगार्ड्स की सूझबूझ और फुर्ती की वजह से एक लड़के की जान बच गई। अब इन दोनों लाइफगार्ड्स की दिलेरी की खूब सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कला प्रकृति और शांति का ऐसा संगम जिसे देखकर हर कोई ठहरने को मजबूर हो जाए। कोलंबिया के मेडलिन शहर में इन दिनों 2,20,000 से ज्यादा फूलों से तैयार किया गया एक विशाल फ्लावर कार्पेट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 17 मीटर चौड़ा कबूतर दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि जहां प्यार होता है वहीं शांति खिलती है। देखिए रंगों और फूलों से सजा ये दिल जीतने वाला नजारा।
5: समंदर, फूलों की खुशबू और उसके बीच अपने विशाल पंख फैलाए शांति का प्रतीक कबूतर। ये नजारा है कोलंबिया के मेडेलिन में स्थित सांतापे मॉल का, जहां 16वीं वार्षिक फ्लावर कार्पेट ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। करीब 1000 वर्ग मीटर में फैली इस अनोखी कलाकृति को 2,20,000 से ज्यादा पेटूनिया और गेंदे के फूलों के साथ 27,000 पौधों से तैयार किया गया है। जमीन से करीब 15.5 मीटर ऊपर लटका 17 मीटर चौड़ा विशाल कबूतर मानो हर आने वाले को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा हो।
7: Feta de Flores de Santa Fe Medellín en su 16ª edición trae este año una gran paloma floral suspendida a 15 metros de altura y queríamos dejar un mensaje para la...
5: इस भव्य इंस्टॉलेशन को तैयार करने में 200 से ज्यादा लोगों ने महीनों तक मेहनत की। हर फूल, हर रंग और हर डिजाइन को इस तरह सजाया गया है कि ऊपर से देखने पर पूरा परिसर किसी जीवंत पेंटिंग जैसा नजर आता है। विशाल कबूतर अलग अलग एंगल से अलग एहसास देता है, जबकि नीचे बना फूलों का कालीन प्रकृति और कला का अद्भुत संगम पेश करता है। लोग यहाँ घंटों रुककर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इस अनोखी कलाकृति को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं।
7: Además de un tapiz natural de más de 220,000 flores.
5: मेडेलिन की मशहूर फ्लावर फेस्टिवल का ये फ्लावर कार्पेट सबसे बड़े आकर्षणों में गिना जाता है। 16 जुलाई से 30 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले संस्करण में इस फ्लावर कार्पेट को करीब 31,00,000 लोगों ने देखा था और इस बार भी आयोजकों को बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
8: Agradecida por este tapete tan espectacular que nos da la ciudad. Es una de las maravillas que tenemos las flores en Antioquia.
5: हजारों रंगों से सजा ये फूलों का कालीन सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि इंसानियत के नाम एक खूबसूरत संदेश है। ये बताता है कि जब प्यार लोगों को जोड़ता है तो शांति अपने आप खिल उठती है और शायद यही वजह है कि मेडेलिन का ये फ्लावर कार्पेट आज सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद, एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: सावन में भगवान शिव का कौन सा मंत्र जपना चाहिए, शिव जी की कौन सी स्तुतियां करेंगी आपकी समस्या का समाधान और शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में खुशखबर, जैवलिन थ्रो में भारत ने झटके दो मेडल्स। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज। तेजस्विन शंकर ने मेंस डेकैथलॉन में ब्रॉन्ज जीत कर रचा इतिहास। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में डेकैथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। भारतीय बॉक्सर साक्षी चौधरी का ग्लासगो में जलवा बरकरार, 51 किलोग्राम में कैनेडाई बॉक्सर को हराकर फाइनल में बनाई एंट्री। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के दौरे पर, विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा। भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम। श्रीराम मंदिर की शानदार लाइटिंग, श्रद्धालुओं को रात के समय मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का मिल रहा सौभाग्य। आस्था और भक्ति के महीने सावन का आज तीसरा दिन, काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम और महाकाल मंदिर में दर्शन, जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, कांवड़ यात्रा के लिए उत्साह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

अच्छा व्यक्ति कौन? जो अच्छा बोले, अच्छा सोचे। पर जरूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते भी अच्छा हैं, सोचते भी अच्छे हैं, पर अंदर से बहुत खराब हो। तो किसी के बारे में पता करना है कि वो अच्छा है या बुरा, उसका सरल सा उदाहरण है, क्रोध में आदमी वही होता है जो वास्तविक होता है। क्रोध में और प्रेम में वही होता है जो वास्तविक होता है। तो किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसको क्रोध में देखो, और जब क्रोध में तुम्हें समझ में आ जाए तो समझ जाना किस स्तर का आदमी है। मेरे पागलों, हमें लगता जो भक्त होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता, भक्तों को तो भगवान का बोध आता है, और जिन्हें बोध आए वो भगवान के भक्त हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो संतों की भक्ति से, महापुरुषों की संगति से सदगति होगी। हनुमान जी ने एक व्यक्ति की सदगति कराई। बोलो सीताराम, किसकी? आहा हा।

कहते हुए विभीषण उठे, वो जगाया किसने? किसने जगाया विभीषण को? हनुमान जी ने। बोलो बोलो किसने? बोलो बोलो। अच्छा, लंका में हनुमान जी ने विभीषण को ही क्यों जगाया? सो तो सब रहे थे, कुंभकर्ण भी वहीं था, वो भी सोता था, विभीषण भी सो रहे थे और कुंभकर्ण भी सो रहा था, लेकिन जगाया किसको? विभीषण को जगाया, कुंभकर्ण को नहीं जगाया। क्यों? हनुमान जी दुर्जन को नहीं जगाते, हनुमान जी सज्जन को जगाते हैं। जो सज्जन होता उसे ही तो जगाते हैं। अच्छा, सोते तो सब लोग हैं, हम भी सोते, तुम भी सोते हैं, ये बात अलग है कि कोई ज्यादा सोता कोई कम सोता। विभीषण थोड़ा कम सो रहे थे, कुंभकर्ण थोड़ा ज्यादा सोता था, वो 6 महीना तक सोता। पर आज के लोग भी कौन सा कम है, 6 बजे के बाद तक सोते। आओ, आओ, आओ। तो कोई ज्यादा सोता है, कोई कम सोता। अब ये मत कहना कि जो 6 बजे के बाद तक सोते हमने उन्हें कुंभकर्ण कहा है, गलत मत समझ लेना। और यदि समझो तो गलती नहीं है, आपकी मर्जी है, तो आपका विचार है खुद का। तो सोते तो सब है, कोई 6 बजे के बाद तक, कोई 6 बजे तक। तो विभीषण जी भी सो रहे थे, कुंभकर्ण भी सो रहे थे, पर जगाया किसने? बोलो बोलो। हनुमान जी ने। क्यों? क्योंकि विभीषण सज्जन है। क्या है? सज्जन। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, सज्जन है। अच्छा, सज्जन की पहचान क्या है? दुर्जन में और सज्जन में हमें एक अंतर नजर आता है, पूछो क्या? जो अपने भले के लिए दूसरों का बुरा चाहे वो है दुर्जन, जो अपने भले के लिए खुद का भी बुरा ना चाहे वो है सज्जन। हाँ, सज्जन में और दुर्जन में इतना अंतर। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। विभीषण जी मिले हनुमान जी से, हनुमान जी बोले कहो विभीषण, और सुनाओ लंकेश, और सुनाओ। विभीषण बोले हम और लंकेश, हम नहीं है लंकेश, हम नहीं, हमारा भाई है, भाई दशानन, दशानन दशग्रीव, दशग्रीव रामण है, रामण हम तो उनके भाई हैं। विभीषण विभीषण। हनुमान जी बोले हम वर्तमान नहीं बता रहे, फ्यूचर बता रहे, भविष्य बता रहे, वर्तमान नहीं। विभीषण बोले मतलब? हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के गए, बोले देखो भाई हम तो भविष्य वक्ता हैं, भविष्य जानते हैं, और हमें दिखाई पड़ रहा है कि तुम भविष्य में लंका के राजा बन गए, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो विभीषण बोला बुरा ना मानो तो एक बात बोले, बोले बोलो, बोलो आपकी भविष्यवाणी विफल है। हनुमान जी बोले कैसे? बोले हम मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हलवा में बने, कोई पद पे ही नहीं है, प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे? हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बनोगे बनोगे पक्का है, एक गलती है। बोले क्या? बोले पार्टी गलत है। आओ, तुम जिस पार्टी में हो उसमें नहीं बन सकते हो। विभीषण बोला मतलब? हनुमान जी बोले सीधी सी है, उस पार्टी में हो। तो विभीषण बोले करें क्या? हनुमान जी बोले हमारी वाली में आ जाओ, बन जाओगे। तो आपकी कौन सी है? हनुमान जी बोले तुम विचार करो कौन सी हो सकती है। तो विभीषण ने बताया हनुमान जी को देखकर, लोग कुल जरूर निम्न होता पर काम बड़े उच्च होते, जो सबरी ने किया वो भला कौन कर सकता है। तो हनुमान जी बोले जन्म से कुछ नहीं होता कि तुम राक्षस हो तो भगवान कृपा करेंगे कि नहीं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद कहते हैं, भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। इसलिए तुम कह, अच्छा सुनो ध्यान से, एक बात याद आ गई, भगवान ये नहीं देखते कि तुमने नहाया है या नहीं। यदि नहाए धोए वालों को ही भगवान मिलते होते तो मछली को पहले मिलते, हमेशा पानी में रहते। अच्छा, भगवान बड़े बड़े बाल वालों भर को ही नहीं मिलते, केवल बड़े बड़े जटा रखाने से यदि भगवान मिलते होते तो रीछ को सबसे पहले मिलते, क्योंकि वो कटिंग ही नहीं करवा। अच्छा, हो सकता भगवान सुंदर रूप वालों को मिले, केवल सुंदर रूप वालों को भगवान मिलते होते तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको ना मिलते। अच्छा, हो सकता भगवान अमीरों भर को मिलते हो, यदि अमीरों को ही भगवान मिलते होते तो वर्तमान में जितने अमीर हैं केवल उन्हीं भर को मिलते, या पूर्व काल में सुदामा को ना मिलते। अच्छा, हो सकता भगवान पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते, यदि केवल पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलते होते, भैया
तो एक बात बताओ, हाथी किसी स्कूल में पढ़ने गया क्या पर गज को मिले? तो भगवान किसको मिलते? जिसका भाव शुद्ध होता है भगवान उसी के सामने प्रकट होता है। जिसका भाव प्यारा होता, भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान नाम जाति गुण नहीं देखते। इसलिए आप चिंता ना करो विभीषण जी, आपने कहा जरा हमारी सुनो। अब हनुमान जी कह रहे क्या,

हम तो बंदर है, तो बंदर का स्वभाव क्या है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पर, चंचल भी है, लेकिन भगवान हमें मिल गए। और हनुमान जी ने विभीषण से कहा, सुनो एक कमी तुम्हारे अंदर है, एक कमी हमारे अंदर। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले भैया तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली, तुम हमें जानकी माता से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे, बस दोनों का काम हो जाएगा। बोले ये बात तो सही है। विभीषण जी ने जानकी माता का पता बताया, हनुमान जी ने वचन दे दिया हम तुम्हें राम जी से मिलाने का पता बताएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो

भैया मेरे पागलो, जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, बताओ विभीषण राक्षस वंश में जन्म लेता है वो भी राम जी का प्यारा बन जाता है। हम ये कहना चाह रहे, बुरा न मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुरा न मानना, समझदार हो, और मान भी जाओ बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए। सुनो भैया, जब लंका में रहने वाले विभीषण जो राक्षस कुल में जन्म लेता उसको राम जी मिल सकते हैं, तो हम लोग भी यदि भगवान का भजन करें, भारत में रहते हैं तो हम लोगों को तो भारत के राम जल्दी ही मिल जाएंगे, हैं? हम लोगों को तो मिल ही जाएंगे, वो तो भारत में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन हमने कल, शायद कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, वो लोग क्योंकि ये समझते यही तो है अभी चले जाएंगे, तब तक ट्रेन निकल ही जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और इसी पे बोले, कह दो बोलो, अभाव में जितना भजन हो सकता प्रभाव में उतना भजन नहीं होता है। हाँ, अभाव में बहुत भजन होता है, इसलिए तुम देखना गरीब आदमी ज्यादा भक्त होता अमीरों के मुकाबले। अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोग। एक बात और मेरे पागलो, अच्छे लोग कौन है? अब ये भी बड़ा विषय, अच्छे लोग कौन है? कुछ लोग ऐसे शुभ चिंतक होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसे भी शुभ चिंतक होते हैं, उनसे सावधान रहना। कुछ ऐसे शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ देखते ही खुद चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, वो दिखने में अच्छे होते हैं, इसीलिए हमने एक विचार दिया था, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है। काले नाग से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक है। तो अच्छा कौन है? जो तुम्हारी बुराई, हाँ क्षमा करना, अच्छा कौन? जो तुम्हारे सामने किसी की बुराई ना करे तुमसे, वो अच्छा है। जो तुमसे किसी और की बुराई करे तो समझ जाना ये औरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा, ये स्वभाव है। तो अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोगों की वाणी नहीं आचरण बोलता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमारी नजर में अच्छे लोग ज्यादातर भगवान के भक्त होते, लेकिन भक्तों में भी सावधान रहना, कुछ काल नेमी भी होते, ये भी सावधान रहना। जैसे अभी हमने परसों एक अपील की कि माताओं बहनों को किसी भी गुरु के पास बाबा के पास जाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहिए, या तो पति के साथ या पिता के साथ या भाई के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमारी ये विशेष आज्ञा है, इस बात को बहुत गम्य। तो अब अच्छे कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त कौन है? जो अपनी पूजा ना करवाकर भगवान की पूजा कराए। मेरा तार प्रभु से जोड़े।

0: कौन सा?
1: मेरे मन के घोड़े मोड़े ऐसा कोई संत मिले,
0: जो हमारा तार भगवान से जोड़े ऐसा संत मिले। लेकिन सुनो, बुरा न मानना, ये उदाहरण हमें देना पड़ रहा पर बोल देते हैं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। पूछो कौन कौन, पूछो। एक पालतू एक फालतू, दो, एक पालतू एक फालतू। अच्छा, पालतू में और फालतू में अंतर क्या है? पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू बिना पट्टे का होता है। पालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो पालतू को नहीं पीटा जाता, मालिक को समझाया जाता है, और फालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो टांगे तोड़ी जाती है। अच्छा एक बात और सुनो, इसी पे, भक्त भी दो प्रकार के होते, एक पालतू एक फालतू। अब आप कहो कि विश्लेषण बताओ, तो बुरा भी लग भी जाए तो क्षमा करना, पर हम रह नहीं पा रहे। दो प्रकार के भक्त होते, एक पालतू एक फालतू। जो पालतू भक्त होते हैं उनके गले में पट्टा होता है राम नाम का, हनुमान नाम का, अथवा कृष्ण नाम का, गुरु के द्वारा दिया हुआ माला का पट्टा होता। और फालतू वो तो अब ठीक है, कहने की जरूरत नहीं, विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं। बोलो सीताराम। अच्छा यहां से समझो, इसको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। रोड के किनारे, सड़क के किनारे पेड़ लगे रहते, लगड़े रहते कि नहीं, बोलो हाँ या ना। लेकिन तुमने कभी देखा हमारे मध्य प्रदेश में तो जो पेड़ सड़क के किनारे लगे रहते उनमें सफेद या लाल रंग पोत देते। तो एक दिन गाड़ी में एक अधिकारी बैठे थे, हमने उनसे पूछा ये सड़क के किनारे पेड़ों में लाल रंग या सफेद रंग क्यों लगाया जाता। अधिकारी ने कहा ये चिन्हित तो हो गए, ये सरकारी है, इन्हें आम जनमानस को काटने का अधिकार नहीं है, इस पर सरकार का हक है। हमें बहुत अच्छी बात लगी, हमने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, इसे सबको ही नहीं काट सकता, सरकार का हक है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता वो भी रजिस्टर्ड होता, जिसके माथे पर गुरु परंपरा का टीका हो तो यमराज समझ जाते हैं ये सरकारी है, ये भगवान का भक्त है। गरीब की भक्ति हृदय वाली होती है। लोग कुल जरूर निम्न होता पर काम बड़े उच्च होते, जो सबरी ने किया वो भला कौन कर सकता है। तो हनुमान जी बोले जन्म से कुछ नहीं होता कि तुम राक्षस हो तो भगवान कृपा करेंगे कि नहीं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद कहते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना, इसीलिए तुम कह। अच्छा सुनो ध्यान से, एक बात याद आ गई, भगवान ये नहीं देखते कि तुमने नहाया है या नहीं। यदि नहाए धोए वालों को ही भगवान मिलते होते तो मछली को पहले मिलते, हमेशा पानी में रहते। अच्छा भगवान बड़े बड़े बाल वालों भर को ही नहीं मिलते, केवल बड़े बड़े जटा रखाने से यदि भगवान मिलते होते तो रीछ को सबसे पहले मिलते, क्योंकि वो कटिंग ही नहीं करवा। अच्छा हो सकता भगवान सुंदर रूप वालों को मिले, केवल सुंदर रूप वालों को भगवान मिलते होते तो कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी थी उसको ना मिलती। अच्छा हो सकता भगवान अमीरों भर को मिलते हो, यदि अमीरों को ही भगवान मिलते होते तो वर्तमान में जितने अमीर हैं केवल उन्हीं भर को मिलते, या पूर्व काल में सुदामा को ना मिलते। अच्छा हो सकता भगवान पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते, यदि केवल पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलते होते

को मिलते, जिसका भाव शुद्ध होता है भगवान उसी के सामने प्रकट होता है। जिसका भाव प्यारा होता, भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान नाम जाति गुण नहीं देखते। इसलिए आप चिंता ना करो विभीषण जी, आपने कहा, जरा हमारी सुनो। अब हनुमान जी कह रहे क्या

हम तो बंदर है, तो बंदर का स्वभाव क्या है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पर, चंचल भी है, लेकिन भगवान हमें मिल गए। और हनुमान जी ने विभीषण से कहा, सुनो एक कमी तुम्हारे अंदर है, एक कमी हमारे अंदर। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले भैया तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली, तुम हमें जानकी माता से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे, बात दोनों का काम हो जाएगा। बोले ये बात तो सही है। विभीषण जी ने जानकी माता का पता बताया, हनुमान जी ने वचन दे दिया हम तुम्हें राम जी से मिलाने का पता बताएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।

0: सावन में भगवान शिव का कौन सा मंत्र जपना चाहिए? शिव जी की कौन सी स्तुतियां करेंगी आपकी समस्या का समाधान? और शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: कला, प्रकृति और शांति का ऐसा संगम जिसे देखकर हर कोई ठहरने को मजबूर हो जाए। कोलंबिया के मेडेलिन शहर में इन दिनों 2,20,000 से ज्यादा फूलों से तैयार किया गया एक विशाल फ्लावर कार्पेट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 17 मीटर चौड़ा कबूतर दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि जहां प्यार होता है वहीं शांति खिलती है। देखिए रंगों और फूलों से सजा ये दिल जीत लेने वाला नजारा।
8: रंगों का समंदर, फूलों की खुशबू और उसके बीच अपने विशाल पंख फैलाए शांति का प्रतीक कबूतर। ये नजारा है कोलंबिया के मेडेलिन में स्थित सांताफे मॉल का, जहां 16वें वार्षिक फ्लावर कार्पेट ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। करीब 1,000 वर्ग मीटर में फैली इस अनोखी कलाकृति को 2,20,000 से ज्यादा पेटूनिया और गेंदे के फूलों के साथ 27,000

0: पौधों से तैयार किया गया है। जमीन से करीब 15.5 मीटर ऊपर लटका 17 मीटर चौड़ा विशाल कबूतर मानो हर आने वाले को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा हो।
1: Flores de Santa Fe Medellín en su 16ª edición trae este año una gran paloma floral suspendida a 15 metros de altura y queríamos dejar un mensaje para la
0: इस भव्य इंस्टॉलेशन को तैयार करने में 200 से ज्यादा लोगों ने महीनों तक मेहनत की। हर फूल, हर रंग और हर डिजाइन को इस तरह सजाया गया है कि ऊपर से देखने पर पूरा परिसर किसी जीवंत पेंटिंग जैसा नजर आता है। विशाल कबूतर अलग अलग एंगल से अलग एहसास देता है, जबकि नीचे बना फूलों का कालीन प्रकृति और कला का अद्भुत संगम पेश करता है। लोग यहाँ घंटों रुक कर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इस अनोखी कलाकृति को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं।
1: Tiene 17 metros de longitud, nos abraza con ese mensaje. La vemos desde diferentes ángulos sonreír y entregar ese mensaje, además de un tapiz natural de más de 220,000 flores.
0: Madeline के मशहूर फ्लावर फेस्टिवल का ये फ्लावर कारपेट सबसे बड़े आकर्षणों में गिना जाता है। 16 जुलाई से 30 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले संस्करण में इस फ्लावर कारपेट को करीब 31 लाख लोगों ने देखा था और इस बार भी आयोजकों को बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
2: Agradecida por este tapete tan espectacular que nos da la ciudad. Es una de las maravillas que tenemos las flores en Antioquia.
0: हजारों रंगों से सजा ये फूलों का कालीन सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि इंसानियत के नाम एक खूबसूरत संदेश है। ये बताता है कि जब प्यार लोगों को जोड़ता है तो शांति अपने आप खिल उठती है और शायद यही वजह है कि मेडलिन का ये फ्लावर कारपेट आज सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद, एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से खुशखबरी, जैवलिन थ्रो में भारत ने झटके 2 मेडल्स, नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज। तेजस्विन शंकर ने रचा इतिहास, मेंस डिकैथलॉन में जीता ब्रॉन्ज मेडल, राष्ट्रमंडल खेलों में ऐसे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। भारतीय बॉक्सर साक्षी चौधरी का ग्लासगो में जलवा बरकरार, बॉक्सिंग में मेडल किया पक्का, 51 किलोग्राम के फाइनल में बनाई एंट्री। आज पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के दौरे पर, विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा, भोगापुरम में अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम, श्री राम मंदिर की शानदार लाइटिंग, श्रद्धालुओं को रात के समय मंदिर की दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का मिल रहा सौभाग्य। आस्था और भक्ति के महीने सावन का आज तीसरा दिन, काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम और महाकाल मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, कांवड़ यात्रा के लिए उत्साह।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, जैवलिन थ्रो में भारत की झोली में आए 2 मेडल्स। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज मेडल, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दोनों खिलाड़ियों को दी बधाई। नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर अपने नाम किया, यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का थ्रो फेंका और ब्रॉन्ज मेडल जीता। भाला फेंक मुकाबले का गोल्ड श्रीलंका ने जीता, रोमेश तरंगा पथिरागे ने 79.75 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ जीता, स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। तेजस्विन शंकर ने मेंस डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डेकाथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, जूडो में अस्मिता दे ने विमेंस 48 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को मात दी, जीता गोल्ड मेडल। भारतीय जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी ने महिलाओं के 57 किलो वर्ग में जीता सिल्वर मेडल, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर मेडल, पुरुषों के 110 किलो कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, 58.65 मीटर थ्रो किया, मां बनने के बाद मैदान पर लौटी फिर जीत लिया मेडल। भारतीय बॉक्सर साक्षी चौधरी का ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन, 51 किलोग्राम में कैनेडाई बॉक्सर को हराकर फाइनल में बनाई एंट्री। आज पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश का नया अलूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस, भोगापुरम में अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, पीएम ने कहा इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोभाल, देश के सुरक्षा आतंकवाद विरोधी अभियानों और रणनीति कूटनीति में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में आस्था संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला, रात्रि में और निखरी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता। अब सूर्यास्त के बाद भी मंदिर स्वर्णिम आभा में जगमगाता हुआ नजर आएगा, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रात में रोशनी से नहाए मंदिर की तस्वीरें जारी की। मंदिर का शिखर पर कोटा स्तंभ नक्काशी और परिसर रोशनी में हो रहे जगमग, श्रद्धालुओं को रात के समय में भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का मिल रहा है सौभाग्य। लाइटिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए और उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी अक्षुण बनी रहे। मंदिर में दान प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ट्रस्ट ने कई जटिल डिजिटल व्यवस्था लागू की, आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान करने वाले श्रद्धालुओं को भुगतान पूरा होते ही तुरंत डिजिटल रसीद मिलेगी। सावन के पावन महीने में देवघर में रौनक, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हुआ शानदार ड्रोन शो। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और प्राचीन परंपरा को किया गया प्रदर्शित, द्वादश ज्योतिर्लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का सुंदर चित्रण। देवघर के आसमान में दिखा आस्था और तकनीक का अनोखा संगम, लगभग 20 से 25 मिनट तक चले इस शो के माध्यम से जीवंत हुआ अध्यात्म और इतिहास। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में दिखा ड्रोन शो का अद्भुत नजारा, डिजिटल रोशनी से सराबोर इस अलौकिक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। देवघर के श्रावणी मेले में लगातार उमड़ रहे शिव भक्तों की भीड़, मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग और सजावट। आस्था और भक्ति के महीने सावन का आज तीसरा दिन, काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम और महाकाल मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा ने दिलाई सतयुग के श्रवण कुमार की याद, शिव भक्त कांवड़ के एक पलड़े में अपनी बुजुर्ग मां तो दूसरे पलड़े में बुजुर्ग चाचा को बैठा कर रहे यात्रा। अपनी मां और चाचा को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे यशवीर हरिद्वार से ले रहे हैं गंगा जल, रास्ते में हर किसी को अपने माता पिता की सेवा करने का दे रहे संदेश। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए चाक चौबंद तैयारी, डीएम मयूर दीक्षित ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में कांवड़ रूट पर नमो सेवा कैंप का शुभारंभ किया, कांवड़ यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा देखने को मिली, 3,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा से होगी निगरानी, पुलिस ने एकीकृत कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ पूरी तरह से तैयार, 224 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम किया गया। पूरे कांवड़ मार्ग पर सफाई, मेडिकल कैंप, मोबाइल टॉयलेट, बिजली आपूर्ति और पेयजल की व्यवस्था की गई, संबंधित अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शिव भक्तों को बेहतर और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सीएचसी में 100 बेड कांवड़ियों के लिए आरक्षित, पूरे कांवड़ मार्ग पर हेल्थ कैंप और एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था। धनबाद से चिरकुंडा कांवड़िया संघ का 111 श्रद्धालुओं का जत्था पूरे उत्साह और भक्ति के साथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ, बोलबम के जयकारों से गूंजा माहौल। भगवान शिव के रूप में एक कांवड़िया बना आकर्षण का केंद्र 111 श्रद्धालुओं के जत्थे में पुरुषों के साथ कई महिला शिव भक्त भी शामिल। बैद्यनाथ धाम में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचा डाक बम के नाम से मशहूर भागलपुर का शिव भक्त। डाक बम का 24 घंटे के अंदर बैद्यनाथ धाम में जल अर्पण करना अनिवार्य। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का समीक्षा दौरा, यात्रा मार्ग पर दुकानों की जांच की और खाने पीने के दुकानों पर लगाए QR कोड। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां हुई पूरी, पूरे जनपद को 11 जोन 24 सेक्टर्स में बांटा गया, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, क्लीन एनर्जी और खेल क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, कैबिनेट में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों तक बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला, किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना है उद्देश्य। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल, देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना है मकसद। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मिली मंजूरी, अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया आवंटित। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई, इसके तहत देश में तेल गैस की खोज और उत्पादन पर जोर दिया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो का आयोजन किया गया, छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यापारी ले रहे हैं इसमें हिस्सा। गिफ्ट एक्सपो में 750 से ज्यादा एक्सपोर्टर, 5,000 से ज्यादा ब्रांड्स और 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स शामिल। गिफ्टिंग में लगातार बदलते ट्रेंड को समझने में मददगार है ये एक्सपो। एक्सपो में छोटे बड़े शो पीस के साथ कई हैंडमेड चीजें भी शामिल, तो वहीं इस बार गिफ्ट एक्सपो में नए स्टार्टअप्स का बोलबाला है। नैनीताल ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ उठाया ऐतिहासिक कदम, नैनीताल का मॉल रोड बना नो हॉर्न जोन। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक की गई घोषणा, हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ किया जाएगा 1,000 रुपए का चालान। लद्दाख में वन राइड वन नेशन ने करगिल युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, तो वहीं उमलिंग ला पर 390 फीट लंबा तिरंगा लहराकर बनाया अनोखा इतिहास। भारत माता की जय के नारे से गूंजा लद्दाख, करगिल विजय दिवस पर युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिशन तिरंगा की शुरुआत की गई थी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, इस साल प्रदेश के 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का है लक्ष्य। डूरेंट कप 2026 का शिलोंग में शुभारंभ हुआ, ओपनिंग सेरेमनी में फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम सहित कई हस्तियां शामिल हुई। ग्रेटर नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी पहुंचे फिल्म आर्यभट्ट का 0 के सितारे हिमांश कोहली और सोनाली सहगल, अपनी फिल्म का प्रमोशन किया, 7 अगस्त को होगी रिलीज। आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा को परखा गया, पश्चिमी गेट पर मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। मॉक ड्रिल में CISF, यूपी पुलिस, ASI, फायर सर्विस, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक और निस्तारण दस्ता सहित कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया, किसी भी खतरे से निपटने की तैयारियों का किया गया प्रदर्शन। उड़ीसा के जाजपुर में बाढ़ के बावजूद संपन्न हुई शादी, बारात और दूल्हा दुल्हन के आने जाने के लिए मोटर वाली नाव का किया गया इस्तेमाल। उड़ीसा के पुरी में बाढ़ की चेतावनी के बीच कनाज ब्लॉक में दया नदी का जलस्तर बढ़ा, अधिकारी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सांप काटने वाले शख्स को समय पर मिला इलाज, बची जान, बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर जिला अस्पताल लाया गया। दिल्ली के सरकारी स्कूल में अब एआई की मदद से पढ़ेंगे बच्चे, सरोजनी नगर एनडीएमसी स्कूल में खुला विकसित भारत अनुभव शाला। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है अनुभव शाला, किसी स्पेसशिप की तरह है सारा इंटीरियर। तारों के बीच इस अनुभव शाला में पढ़ने को लेकर बच्चों में खासा उत्साह, विकसित भारत 2047 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन पर आधारित है ये पहल। कोटा के युवाओं ने विकसित किया स्मार्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, हजारों मील दूर बैठे होने पर भी उपकरण कर सकता है ऑन या ऑफ, बिना इंटरनेट भी करेगा काम। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के 16 साल पूरे मनाया गया शानदार जश्न, परिसर में खास सजावट की गई। देश में पहली बार ट्रांसप्लांट के लिए ट्रेन से ले जाया गया हार्ट, रचा गया नया इतिहास। वंदे भारत एक्सप्रेस से सूरत से अहमदाबाद पहुंचा इंसान का दिल, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ऐतिहासिक उपलब्धि। अहमदाबाद में बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, हृदय को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के किए गए खास इंतजाम। हार्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचाया गया अस्पताल, प्रत्यारोपण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी ना हो इसका खास ख्याल रखा गया। रेलवे, आरपीएफ, गुजरात राज्य पुलिस और मेडिकल टीम्स के बीच तालमेल से पूरा हुआ काम, सफल बनाया गया अभियान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: सावन में भगवान शिव का कौन सा मंत्र जपना चाहिए, शिव जी की कौन सी स्तुतियां करेंगी आपकी समस्या का समाधान और शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव, भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार, चीन के कागजी शेर पर भारी सेना के दिलेर। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
7: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
2: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
1: Big 12 Radio.
3: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
1: and
3: down.
1: Talk sports.
4: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
1: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
5: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें भगवान शिव की स्तुतियां करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन में भगवान शिव की कौन सी स्तुति करें और उससे किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी की स्तुतियों के बारे में। शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शिव जी की जो स्तुतियां हैं वो बहुत विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, गाई जा सकती हैं। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और अलग अलग विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप जिस तरह की स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं उसके पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है ये भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र की व्याख्या है। ये पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। इसका निरंतर पाठ करने से शिव जी की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करे तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप या तो रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें, शिव जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहेगी। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। भगवान शिव की दूसरी स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। आम तौर पर शिव तांडव स्तोत्र को गाया जाता है। किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। अगर किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बहुत खराब समय चल रहा हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नृत्य के साथ नाच करके गा करके इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड डमड डमड डमड निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। गा गा कर अगर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाए, कितना भी कठिन वक्त चल रहा हो, उस कठिन वक्त के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब एक और बड़ी अद्भुत स्तुति की बात करते हैं, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। इसका पाठ रेगुलर करने से दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। और इसका पाठ दोनों वेला दोनों समय करना चाहिए। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, दरिद्रता बहुत ज्यादा है, पैसे की कठिनाई बहुत है, तो सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और जितने दिन इसका पाठ करें सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। तो आज हमने बात की भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन के महीने में जितने भी दिन संभव हो, शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। देखिए, अगर आयु की बाधा हो, स्वास्थ्य में गहरा संकट चल रहा हो, स्वास्थ्य की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही हो, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। सुबह और शाम शिव जी के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके अगर आप चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें तो ऐसा करने से आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अब जान लेते हैं 1 अगस्त शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
3: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से खुशखबर, जैवलिन थ्रो में भारत ने झटके दो मेडल्स, नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज। तेजस्विन शंकर ने मेंस डेकलाथॉन में ब्रॉन्ज जीत कर रचा इतिहास, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में डेकैथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। भारतीय बॉक्सर शताक्षी चौधरी का ग्लासगो में जलवा देखने को मिला, 51 किलोग्राम में कैनेडाई बॉक्सर को हराकर फाइनल में बनाई एंट्री। आज पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर, विकास परियोजनाओं को देंगे तोहफा, भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला, श्री राम मंदिर की शानदार लाइटिंग, श्रद्धालुओं को रात के समय मंदिर का दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का मिल रहा सौभाग्य। आस्था और भक्ति के महीने सावन का आज तीसरा दिन काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम और महाकाल मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, कांवड़ यात्रा के लिए उत्साह बरकरार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के शो में पंडित जी से जानेंगे कि शिव जी के कौन से वो मंत्र हैं जिनका जाप करने से सावन में आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का गुडलक मंत्र क्या है।
4: अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहे, तो पूरे सावन में जितने दिन भी कर सकें, रोज प्रातः शिवलिंग पर दूर्वा यानी दूब घास और जल अर्पित करें और शिव जी से प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
3: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 1 अगस्त 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:07 तक, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, रात के 8:45 तक, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है पंडित जी से जान लेने का कि शिव जी के मंत्रों का महत्व क्या होता है और क्या इन मंत्रों के जाप करने के नियम क्या हैं।
4: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं शिव जी के विशेष मंत्रों के बारे में। शिव जी के मंत्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन मंत्रों का मुख्यतः महत्व क्या है और क्या इन मंत्रों के जप के कोई नियम भी हैं? देखिए, शिव जी आदि, अनादि और अनंत हैं। शिव जी को संहार का अधिपति कहा जाता है, लेकिन वो सृजन और पालन का कारण भी हैं। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है, यानी जल्दी प्रसन्न होने वाला है। इसीलिए शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं। उनके मंत्र अगर सामान्य रूप से भी जपे जाएं तो कल्याण होता है, और अगर आप शिव जी के मंत्र विधि पूर्वक जपें, विधि पूर्वक जप करें, तो किसी भी तरह की कामना आप पूरी कर सकते हैं। शिव जी के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से करना उत्तम होता है, और शिव जी के मंत्रों का जप या तो प्रदोष काल में किया जाए, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में, या मध्य रात्रि में किया जाए तो सर्वोत्तम होगा। मंत्र जप करने के पहले शिव जी के कल्याण सुंदरम स्वरूप का ध्यान करें। शिव जी आशीर्वाद की मुद्रा में प्रसन्न स्वरूप में बैठे हुए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। शिव जी के बहुत सारे तांत्रिक मंत्र भी हैं, जिसका प्रयोग मारन, मोहन और उच्चाटन में होता है, लेकिन शिव जी के मंत्रों से किसी को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वयं मुश्किल मुसीबत में पढ़ सकते हैं।
3: और चलिए, अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
4: मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में आपको लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या होता है।
4: देखिए, शिव जी के मंत्र भी बड़े प्रभावशाली हैं और उनकी अलग अलग स्तुतियां हैं वो भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। शिव जी की जो स्तुतियां हैं, दारिद्र दहन स्तोत्र, चंद्रशेखराष्टक, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, अलग अलग जो स्तोत्र हैं ये अत्यंत विशेष माने जाते हैं। उनकी स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक हैं, गा गा कर शिव जी की स्तुतियां पढ़ी जाती हैं। अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है। विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। जैसे दरिद्रता है तो दारिद्र दहन स्तोत्र पढ़ा जाता है, भारी से भारी संकट है तो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाता है, आयु की बाधा है तो चंद्रशेखराष्टक स्तोत्र पढ़ा जाता है। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्तुतियां पढ़ी जाती हैं और हर स्तुति के पाठ के पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान कर लेना चाहिए। शिव जी का जो विशेष स्वरूप है, जिसकी स्तुति आप कर रहे हैं, उस स्वरूप का ध्यान कर लेना आपके लिए बेहतर होगा।
3: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
4: कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और अब जान लेते हैं कि आज का आपका सवाल क्या है। पंडित जी, आज आपका सबसे पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
4: जी, आज का पहला प्रश्न वसुंधरा जी ने हमें लिखा है और वसुंधरा जी हमें मेल लिखती हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1990। जन्म का समय शाम के 6:55। जन्म स्थान है इंदौर। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे का अब तक विवाह नहीं हुआ है, तो मेरे बेटे का विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वसुंधरा जी, आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और ज्यादा संभावना ये है कि जनवरी 2027 से जून 2027 के समय में इनका विवाह अवश्य होगा। जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके विवाह का निर्णय लीजिएगा तो इनके लिए बेहतर होगा। एक इनको ओपल बनवा करके पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत शुभ होगा।
3: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज का आपका दूसरा सवाल लेने का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका रहने वाला है?
4: जी, अगला प्रश्न अजय प्रकाश जी ने हमें लिखा है, पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1973। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है सिवान, बिहार। अजय प्रकाश जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अजय प्रकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 में अप्रैल के बाद आप अपना स्थान बदलेंगे, किसी और जगह पे शिफ्ट करेंगे और अप्रैल 2027 के बाद आपके कर्जे धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है उसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़े, ऐसी संभावना दिख रही है। लेकिन अप्रैल 27 के बाद से आपका जीवन कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा बनवा करके धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
3: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता है।
4: देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मंत्र का जप होता है या किया जाता है वो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है। शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। जब इसमें ओम लग जाता है तो ये षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। और ओम नमः शिवाय में और नमः शिवाय में फर्क है। नमः शिवाय जो मंत्र है ये 5 तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। अगर आप नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करें तो इससे आपको शिव जी की कृपा अवश्य मिलती है। और इसी मंत्र का षडाक्षर स्वरूप है ओम नमः शिवाय। जब आप दूसरों का कल्याण चाहते हैं, जब आप जन कल्याण चाहते हैं, तो आप

0: मित्र के लिए, किसी और के कल्याण के लिए पढ़ें, तब ओम नमः शिवाय पढ़िएगा।
1: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जान लेंगे कि शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है।
0: देखिए, आयु रक्षा के लिए और बड़ी कठिन स्थितियों में सबसे ज्यादा शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देता है। इस मंत्र में महामृत्युंजय स्वरूप में भगवान शिव अमृत का कलश लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इस मंत्र का जो लघु स्वरूप है, जो लघु महामृत्युंजय है, वो है ओम हौं जूं सः। ओम हौं जूं सः। इस लघु मृत्युंजय मंत्र का जप निरंतर किया जा सकता है, लेकिन जब मृत्यु का संकट बना हुआ हो या मृत्यु तुल्य कष्ट हो, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता है, और वो मंत्र है ओम हौं जूं सः। ओम भूर भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सः जूं हौं ओम। तो मुख्यतः जब मृत्यु जैसी स्थिति हो, जब जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो जाए, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आप दैनिक जीवन में महामृत्युंजय का प्रयोग करना चाहते हैं, तो बुद्धिमानी ये कहती है कि आप लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम हौं जूं सः।
1: और चलिए, अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशि फल जानने का।
0: तुला राशि, रिश्तों की समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से बचाव करें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा।

0: के लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र की महिमा क्या है और इसको पढ़ने का असली तरीका क्या है।
0: भगवान शिव की तमाम स्तुतियों में शिव तांडव स्तोत्र को बड़ी विशेष स्तुति माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण के द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमट डमट निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। छंदात्मक है। जीवन में कितना भी कठिन समय आए, कठिन समय से निकलने का रास्ता ना मिल पा रहा हो तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपके लिए किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, कोई आपका अशुभ समय चल रहा हो, तो इसका पाठ विशेष लाभकारी होता है। और अगर नृत्य के साथ गा गा कर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। कठिन से कठिन समय में सुबह शाम दोनों समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना शिव जी से करिएगा। आपका मुश्किल से मुश्किल समय शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से समाप्त हो जाएगा।
1: और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब पंडित जी से जान लेंगे दारिद्र दहन स्त्रोत के बारे में और इसे कैसे पढ़ा जाता है।
0: जीवन में कितनी भी दरिद्रता हो, कितना भी पैसे रुपए का कठिन समय हो, उसके लिए भगवान शिव की उपासना की जाती है दारिद्र दहन स्तोत्र के माध्यम से। ये स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा लिखा गया है और अगर आप नियमित रूप से दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें तो दरिद्रता का नाश होगा। अगर पैसे रुपए के हालात बहुत खराब हो, अगर आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ दोनों समय करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। अगर आप पैसे रुपए की मुश्किल से जूझ रहे हैं, कर्ज बहुत है, धन की तकलीफ हो रही है, फाइनेंशियली कठिन समय चल रहा है, तो सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र पढ़ें और जितने दिन दारिद्र दहन स्तोत्र पढ़ेंगे उतने दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है मकर कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई दुविधा है, तो आप टीवी पर दिए गए हमारी मेल आईडी पर मेल करके अपना सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल किसका लेने वाले हैं पंडित जी।
0: जी, अगला प्रश्न दीपक जी ने हमें लिखा है और दीपक जी की जन्म की तारीख है 27 मई 1994। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में फिलहाल नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, उच्चाधिकारियों की तरफ से समस्या आ रही है, तो क्या मेरी नौकरी चल पाएगी या मैं चाहता हूं कि मेरा यहां से ट्रांसफर हो जाए, क्या मेरा ट्रांसफर हो सकता है? दीपक जी, थोड़ी सी अभी शांति रखिए, लगभग दिसंबर तक अभी शांति बनाए रखिए। दिसंबर 2026 तक आपका समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जनवरी 2027 से स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं और जनवरी 2027 के बाद आपके ऑफिशियल मामले हल होंगे, आपका ट्रांसफर भी अगले साल के शुरुआत में हो जाएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका अंतिम सवाल लेने का पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मीनाक्षी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी हमें रांची से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 दिसंबर 1975। जन्म का समय शाम के 4 बजे। जन्म का स्थान है गुवाहाटी, आसाम। में लिखती हैं रांची से। मीनाक्षी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और तमाम दवाइयों के बावजूद मैं स्वस्थ नहीं हो पा रही हूं, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा? मीनाक्षी, आपकी ज्यादातर समस्या मानसिक है, आपकी शारीरिक समस्या इतनी ज्यादा नहीं है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप बीमार हैं। अगर अपने मन को बेहतर कर लें तो समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई इतनी जटिल समस्या आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है। एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, 1 से 1.25 महीने में बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
1: तो पंडित जी, सावन चल रहा है और सभी भक्त जो हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, सभी जानना चाहते हैं कि शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो कौन सा सबसे सरल मंत्र है जिसका जाप करने से शिव जी प्रसन्न होंगे?
0: जी, देखिए दो मंत्र हैं भगवान शिव के, जिनका जप करके आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुबह शाम दोनों समय आप अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें। और अगर अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, किसी और के लिए पढ़ना चाहें तो पूरे सावन में सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान शिव का नाम मुक्ति का महामंत्र है, ऐसी स्थिति में आप शिव नाम का भी जप कर सकते हैं। आप सुबह शाम 108 बार शिव शिव शिव शिव शिव नाम का भी जप कर सकते हैं, या खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भी शिव नाम का जप आप कर सकते हैं। तो आप नमः शिवाय या शिव नाम का जितना ज्यादा जप सावन के महीने में करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 1 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी से अब जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 1 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, करियर और धन का मामला भी उत्तम रहेगा, विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। साल भर काफी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि सावन के महीने में साग खाने को, लीफी वेजिटेबल्स खाने को मना करते हैं, क्यों? देखिए सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है और इस महीने पत्तियों में कीड़ों के बैक्टीरिया होने की संभावना होती है। ये कीड़े पत्तेदार सब्जियों के साथ शरीर में, दिमाग में जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल और साग खाने की मनाही की जाती है।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि 1 अगस्त 2026 का यानी शनिवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 1 अगस्त शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कौन सा मंत्र नियमित रूप से पढ़ें तो उनको लाभ होगा। आज की गुडलक राशि है सिंह। आपको नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर। अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हो तो क्या करेंगे? पूरे सावन हर शाम को शिव जी के मंदिर जाइए और शिव जी को अपनी इच्छानुसार फूल चढ़ाइएगा, केतकी मत चढ़ाइएगा। इसके बाद वही मंदिर में एक घी का दीपक जला के शिव जी से प्रार्थना करिएगा। निरंतर सावन में जितने ज्यादा दिन आप ऐसा करें, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
1: बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में। भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: You hear it once and remember everything.
3: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
2: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपनी नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल और अनोखी परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ देश विदेश से भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी देवी मंदिर लेकर चलते हैं जिसके दर्शन के लिए आस्थावान आते रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मंदिर अपनी अनोखी मैग्नेटिक पावर के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये है कसार देवी मंदिर, देखिए।
2: क्या आपको बताऊं, आप जब यहाँ पर आएंगे स्वयं जो है फील करेंगे, मतलब एक भू चुंबकीय शक्ति है यहाँ पे। मन आपका उथल पुथल हो रहा है, मतलब आपको टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो इससे बढ़िया जगह संसार में मैंने आज तक नहीं देखी।
3: आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहा हूँ जो न केवल आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया जहान में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, बल्कि अपने रहस्यों को लेकर भी खूब फेमस है। अल्मोड़ा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन की वैसे तो बात निराली ही रही है, यहाँ दूर तक फैली हरियाली तो कहीं घना कोहरा, बस मौसम की इसी लुका छिपी के साए में कसार देवी का ये अद्भुत नजारा आपको अंदर से तरोताजा कर देगा। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी पास कसार देवी मंदिर, इलाका लगभग हर प्रजाति के पक्षियों से भरा पड़ा है, और यहीं ये देवी मंदिर अपने अनोखे चुंबकीय चमत्कार से आस्थावानों और वैज्ञानिकों के बीच क्यूरियोसिटी पैदा करता आया है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ देवी माँ साक्षात अवतार में आई थी, और इसी मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि देश में ये इकलौती जगह है जहाँ मैग्नेटिक पावर महसूस की जाती है। दरअसल साइंटिस्ट बताते हैं कि मंदिर के इर्द गिर्द वैन एलन बेल्ट है, यानी इस धरती के चारों तरफ मौजूद वो एरिया जहां स्पेस से आने वाली हाई मैग्नेटिक चेंज्ड पार्टिकल धरती के मैग्नेटिक फील्ड में फंसे रहते हैं। इसीलिए इस मंदिर से जुड़ी कई शक्तियों का पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिक भी आए, लेकिन सारी कोशिशें फेल रही। फिलहाल तो बरसों से कसार देवी मंदिर का रहस्यमय क्षेत्र लोगों के लिए मेंटल पीस देने वाली खास जगह बना हुआ है, क्योंकि कुछ अलग सा ही सुकून मुझे भी यहाँ महसूस हुआ।
2: आज थोड़ा सा हम लोग लेट हुए, करीब शाम के 5 बज गए हैं, और आज आप लोग देखो कितने हाइट पे ये मंदिर है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऐसी ऐसी यहाँ पे गुफाएं हैं, इसके अंदर जाके लोग जाके ध्यान करते हैं।
3: स्पिरिचुअली कसार देवी मंदिर के महत्व को समझते हुए कभी स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ ध्यान किया तो तभी से ये जगह और मंदिर हर तरह के देसी विदेशी पर्यटकों के बीच और फेमस हो गई। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहाड़ मतलब सफर में ढेर सारी परेशानी, तो यकीन मानिए इस प्यारी सी जगह पर पहुंचना बेहद ही आसान है।
2: पे आने के लिए जो है डायरेक्ट कोई बस तो है नहीं, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको अल्मोड़ा आना पड़ेगा। अल्मोड़ा से जो छोटी गाड़ियाँ होती है, प्राइवेट जो कमर्शियल टैक्सियाँ होती है, यानी जैसे मैक्स वगैरह वगैरह बोलेरो चलती हैं, वो सवारी के हिसाब से और बुकिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको पहुँचा देगी।
3: वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपनी बेपनाह खूबसूरती, अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ कई मंदिर हैं जो अपनी आध्यात्मिकता की वजह से मेरे जैसे ही कई और श्रद्धालुओं की भी पसंद रहे हैं। तो अगर आप भी भाग दौड़ और उथल पुथल की जिंदगी से आजीज आए हैं, तो लाइफ में एक बार इस रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर करना तो बनता है।
1: और अब बात करते हैं ऐसे लेदर की जिसको तैयार करने में ना तो किसी जानवर को नुकसान पहुंचा है और ना ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें, रामजस कॉलेज के कुछ छात्रों ने केले के छिलके से बिल्कुल रियल लेदर की तरह दिखने वाला मटेरियल तैयार किया, और वो भी फ्लेक्सिबल, मजबूत और बिल्कुल असली लेदर जैसे टिकाऊ। यानी केले के छिलके, जिन्हें अब तक कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता था, वही अब पर्यावरण संरक्षण के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार खास तरह के इस चमड़े को छात्रों ने सहर नाम दिया है।

0: चमड़े जैसे दिखने वाला ये उत्पाद केले के छिलके से बना है, चौंक गए ना। ये कमाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के छात्रों ने किया है। केला खाने के बाद जो छिलका आप बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, उससे इन होनहार छात्रों ने असली लेदर जैसा टिकाऊ मटेरियल बना दिया है।
1: लेदर से बनी चीजों का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, कभी लेदर से बने बैग का इस्तेमाल करते हैं, कभी बेल्ट, कभी जूते, तो कभी जैकेट। आप जानते हैं कि लेदर कैसे बनता है, उसके लिए हमें किसी पशु की स्किन चाहिए होती है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लेदर जैसा ही कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो किसी पशु के स्किन से नहीं बल्कि फ्रूट के फलों के छिलकों से बनाया गया है, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा। ये वही चीज़ है जो कि बिल्कुल लेदर का ही काम करेगा, लेकिन इसे पूरी तरह से फल के छिलकों से तैयार किया गया है, और ये एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के बच्चों ने।
0: एक साल पहले इन छात्रों ने वीगन यानी पशु उत्पाद खासकर असली लेदर का विकल्प खोजना शुरू किया था, ताकि उससे बुकमार्क्स, वॉलेट यानी बटुआ और कीरिंग जैसे उत्पादों को तैयार किया जा सके।
1: शहर इसका नाम है और शहर का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। रामजस कॉलेज में हूँ मैं और वो तमाम बच्चे मेरे साथ में हैं जिन्होंने मिलकर इसको तैयार किया है।
2: जब हमने हमारा टेन्योर स्टार्ट किया था 2025 के अगस्त में, तब हमने सोचा कि एनिमल क्रुएल्टी एक बहुत बड़ा इशू है जो उठ रहा है, उसके कारण बहुत सारे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, उसका एनवायरनमेंट में बहुत बुरा प्रभाव है। उसको कम करने के लिए हमने रिसर्च करी, और अगस्त से हमने जो रिसर्च स्टार्ट करी उससे आते आते हमें बाद में पता चला कि फ्रूट पील्स के थ्रू हम एक ये वीगन लेदर बनाया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फिर आज हमारे पास ये एक है, और हमने बहुत सारे फ्रूट्स में ट्राई किया, कभी पाइनएप्पल में किया, कभी मैंगोज में किए, और भी बहुत सारे फ्रूट्स में यूज़ किया, तब जाके अभी हमने बनाना पील्स फाइनली से हमारा ये वीगन लेदर बनाया।
0: हालांकि हर इनोवेशन की तरह यह भी इतना आसान नहीं था। केले से पहले इन छात्रों ने बारी बारी से चार अलग अलग फलों के छिलके से लेदर जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
3: जब हमने शुरुआत करी तो लगभग हमने 5 फ्रूट्स का पूरी तरीके से हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करा। शुरुआत हमने मैंगो से करी, मैंगो के बाद फिर हम जो कोकोनट होता है उस पर हम पहुंचे, फिर पाइनएप्पल और ऑरेंज। जितने भी हमने फ्रूट्स इस्तेमाल करे उसमें हर एक में कोई ना कोई खामी थी, और उस खामियों पे आगे बढ़ते हुए फिर हमने बनाना पील्स पे जो है अपना प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज करा। जब हमने शुरुआत करी थी तब हमको ये समझ आया कि मैंगो जो है वो पूरा मैंगो डलता है, तो उसमें वेस्ट का कोई उसमें कनेक्शन नहीं था। उसके बाद फिर कोकोनट पे जब हम गए, कोकोनट जैसे कि हमें पता है कि बहुत रॉ होता है, उसमें फिर हमें ये दिक्कत आई कि जो हमारा जो प्रोडक्ट था वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं था जिससे हम वॉलेट्स हों या बेल्ट्स हों वो हम बना पाएं।
0: नारियल, पाइनएप्पल यानी अनानास और संतरे की तुलना में आम से भी कुछ ऐसा ही मटेरियल बनने की संभावना जागी थी, लेकिन मकसद वेस्ट मटेरियल यानी फलों के छिलके से लेदर जैसा उत्पाद बनाना था। आम के मामले में पूरे फल का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिससे इनोवेशन का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। इसके अलावा दूसरे फलों के छिलके से बना मटेरियल केले के छिलके से बने मटेरियल की तरह मजबूत भी नहीं था।
1: मैंगो पूरा वो डाल रहे थे तो उसको यूज करने लायक बन सकता था, लेकिन इन्हें वेस्ट से उसको तैयार करना था। शुरुआत में जो चीजें बनी, देखिए आप, ये जो अभी बनकर तैयार हुआ है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, और लेदर में भी थिकनेस होती है, इसीलिए हम एनिमल की स्किन को यूज़ करते हैं। इसकी थिकनेस को मैच करना था, इसीलिए प्रोसेस इतना लंबा रहा। शुरुआत में जो प्रोडक्ट्स बने दूसरे छिलकों से, उनकी आप थिकनेस देखिए, वो इतनी अच्छी नहीं थी, कई बार वो फट रहे थे, टूट रहे थे, इसलिए लगातार ये लोग एक्सपेरिमेंट फ्रूट्स के साथ करते गए और फाइनली जाकर फिर वो इस जगह तक पहुँचे हैं।
0: केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक फाइबर यानी रेशे और प्राकृतिक रसायन सेल्यूलोज होता है, जिसकी वजह से खास तरह के ट्रीटमेंट से तैयार हुए उत्पाद में काफी मजबूती और खिंचाव सहने की क्षमता बढ़ जाती है। उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पर्स, बेल्ट या दूसरे प्रोडक्ट को डिजाइन करना आसान हो जाएगा।
4: एक प्रोटोटाइप तैयार करने में हमें लगभग 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि जो ये हमारा पेस्ट बनता था उसको सूखने में बहुत टाइम लगता था, प्लस हमने अलग अलग फ्रूट्स के साथ ट्राई किया था, तो हर फ्रूट को अगेन ड्राई होने में, जैसे हम इसे सन ड्राई करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड जैसे हर प्रोटोटाइप में कुछ ना कुछ इशू आ रहा था, जैसे इसमें ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था, तो अगेन ये एक इशू था, या फिर कभी पहले ही फट जाता था, कभी कभार बहुत ज्यादा ही एकदम टाइट बन जाता था, तो ये वाले इश्यूज हमने फेस किए थे प्रोटोटाइपिंग के टाइम।
1: अगर टाइट बन जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत थिन रहेगा तो फिर उसको जितना लंबा लेदर चलता है उतना लंबा वो चल नहीं पाएगा।
0: हालांकि किसी भी तरह के इनोवेशन की राह में बार बार मिलने वाली असफलता से मनोबल गिरना एक आम बात है, पर इन छात्रों का जुनून कम नहीं हुआ। शिक्षकों की सलाह और सहयोग ने इनको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंत तक प्रेरित किया।
3: जैसे हमने अलग अलग फ्रूट्स ट्राई किए तो हमारा जैसे नहीं बना प्रोडक्ट तो हमें जैसे तब लगता था कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम रुके नहीं। सबसे बड़ी बात, हम फिर ट्राई करते गए, हमने प्रोटोटाइपिंग सेशंस करे और फ्रूट्स एक्सप्लोर करे, रिसर्च करी, हमने बहुत ऑनलाइन ढूंढा, ऑफलाइन ढूंढा। एक लाइक मेरी प्रोफेसर से बात हुई, हमने उनको बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको ऐसे सोल्यूशन ला सकते हो, तो उसके बाद ही जो आज हमारा फाइनल प्रोटोटाइप है जो हमने आपको दिखाया है वो बन गया है।
0: फिलहाल लेदर जैसे दिखने वाले इस मटेरियल से बुकमार्क्स, वॉलेट यानी बटुआ और कीरिंग बनाने पर ही जोर है।
5: पहले तो हम इनिशियली छोटे प्रोडक्ट से शुरू करना चाहते हैं बिकॉज हम अपने मींस के उस पर ऑपरेट करना चाहते हैं, हम एक स्टूडेंट रन सोसाइटी हैं, एंड वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग बुकमार्क्स, वॉलेट्स आउट ऑफ दिस। एंड अभी ये फाइनल प्रोटोटाइप नहीं है, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, मेक इट बेटर, बिकॉज अभी तक हमने जितनी रिसर्च करी है उसके हिसाब से वी हैव फाउंड द मोस्ट फीजिबल प्रोडक्ट, बट हम उस पर और रिसर्च करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक इट और अच्छा। And we are going to focus on bookmarks and wallets mainly.
1: Books, bookmarks, wallet और जो छोटे keyrings होते हैं उन तक आप जा रहे हो, पर अभी जो challenge है, मैंने भी कहीं पढ़ी थी एक report कि जो seats होती हैं हमारी गाड़ियों की उनका कुछ alternative तैयार हो रहा है, क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है?
2: जी, ये बिल्कुल एक वो ऑप्शन हो सकता है। अभी जैसा कि हमने बताया कि अभी हम एक शुरुआती स्टेज पे हैं, अभी हम एक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने तक हमें एक साल लग गए, पर अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस पता है, हमें पता है कि अब हमें आगे क्या करना है। हमने वॉलेट्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, बुकमार्क्स बनाने की स्टार्ट कर दी है। सीट कवर्स में सर बस यही होता है कि एक थिकनेस की और जो ड्यूरेबिलिटी होती है, एक वो जो शीट कवर होता है जो वाटर रेजिस्टेंस, हमें उस पर ध्यान देना है। तो अब बस हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमें बस इसमें वाटर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी ऐड करनी है, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा।
0: इस इको फ्रेंडली उत्पाद को बनाने में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 100% बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे बने उत्पादों को इस्तेमाल के बाद फेंक भी दिया जाए तो वे खुद ब खुद मिट्टी में गल जाएंगे। अब इन छात्रों की कोशिश है कि एनजीओ के जरिए उन कारीगरों तक पहुंचा जाए जो इससे चमड़े से बनने वाले उत्पादों की तरह प्रोडक्ट तैयार कर पाए, ताकि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इनको डिस्प्ले पर रखा जा सके और सैकड़ों हजारों छात्रों की बदौलत कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार समझने में मदद मिल सके। इसके बाद बाजार में केले के छिलके से बने प्रोडक्ट्स की कामयाबी की पटकथा लिखी जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
7: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
9: है। Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: LAC per Dragon ka fifth generation wala daav. भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई। 8371 तीर्थ यात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार किया। पवित्र सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, कांवड़ यात्रा में भी दिख रहा है उत्साह। स्वर्णिम रोशनी में नहाया राम मंदिर, स्थाई आर्किटेक्चरल लाइटिंग का शुभारंभ, सूर्यास्त के बाद भी श्रद्धालु कर सकेंगे दिव्य दर्शन। एलपीजी सिलेंडर को लेकर राहत की खबर, 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का डबल धमाका, जैवलिन थ्रो में भारत ने झटके दो मेडल, नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज। तेजस्वी शंकर ने रचा इतिहास कॉमनवेल्थ गेम्स की, डिकैथलॉन में जीता ब्रॉन्ज मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। चाइना के वुलनगुआन शहर में दिखा अद्भुत नजारा, 1500 ड्रोन्स ने आसमान में बनाई मनमोहक आकृतियां, बड़ी संख्या में लोग इस जादुई नजारे के बने साक्षी।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की एक शानदार खबर। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से जो अमरनाथ यात्रा रोकी गई थी वो आज फिर से शुरू हो चुकी है और आज 8371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार कर लिया है। आपको बता दें इन तीर्थयात्रियों में 5534 पुरुष शामिल हैं और जबकि 2500 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। वहीं 45 बच्चे, 39 साधु और 29 साध्वियां इसमें शामिल है। 5 ट्रांसजेंडर तीर्थयात्री और 208 सुरक्षा कर्मी भी इनमें शामिल हैं। पिछले कई दिनों से बारिश और पवित्र अमरनाथ गुफा के पास नाले में जलस्तर बढ़ने की वजह से यात्रा बालटाल में एहतियात के तौर पर रोक दी गई थी, लेकिन अब यात्रा की बाधाएं दूर हो चुकी हैं। ऐसे में तीर्थयात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और आपको बता दें यहां पर श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है। बालटाल मार्ग को यहां पर बाधित कर दिया गया था, रोक दिया गया था यहां पर यात्रा का आना जाना, क्योंकि नाले का जलस्तर बढ़ गया था बारिश की वजह से और ऐसे में कोई सुरक्षा यहां पर चुनौती पैदा ना हो इसी को देखते हुए एहतियातन यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए शानदार खबर निकलकर सामने आई है। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, तीर्थयात्री अब फिर से रवाना हो चुके हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। अब जहां सावन की शुरुआत हो चुकी है, आज तीसरा दिन है, ऐसे में श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें आज के दिन 8371 यात्रियों ने कंट्रोल गेट को पार कर लिया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक कुल 23 मेडल जीते। जैवलिन थ्रो में भारत की झोली में आए 2 मेडल्स। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, 85.83 मीटर के थ्रो के साथ अपने नाम किया रजत पदक। जैवलिन थ्रो में अश्वीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज मेडल, 85.41 मीटर का थ्रो। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, मेरी वापसी अच्छी चल रही, पदक जीतकर हुई बेहद खुशी, आगे और अच्छा परफॉर्म करने की होगी कोशिश। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने पर बोले अश्वीर सिंह, नीरज के साथ पोडियम शेयर करना बेहद शानदार। भाला फेंक मुकाबले का गोल्ड श्रीलंका ने जीता, रोमेश तरंगा पथिरागे ने 89.75 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ जीता स्वर्ण पदक। तेजस्विनी शंकर ने मेंस डिकैथलॉन में जीता ब्रॉन्ज मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डिकैथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, जूडो में स्मिता दे ने विमेंस 48 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को मात दी, जीता गोल्ड मेडल। भारतीय जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में लहराया तिरंगा, पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी ने महिलाओं के 57 किलो वर्ग में जीता सिल्वर मेडल, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। भारतीय बॉक्सर साक्षी चौधरी का ग्लासगो में जलवा देखने को मिला, 51 किलोग्राम में कैनेडाई बॉक्सर को हराकर फाइनल में बनाई जगह। आज पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के दौरे पर, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस, भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5640 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, पीएम ने कहा इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोभाल। सुरक्षा आतंकवाद विरोधी अभियानों और रणनीतिक कूटनीति में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। आस्था और भक्ति के महीने सावन का आज तीसरा दिन। काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम और महाकाल मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा ने दिलाई सतयुग के श्रवण कुमार की याद। शिव भक्त कांवड़ के एक पलड़े में अपनी बुजुर्ग माँ तो दूसरे पलड़े में बुजुर्ग चाचा को बैठा कर रहे हैं यात्रा। अपनी माँ और चाचा को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे यशवीर हरिद्वार से ला रहे हैं गंगा जल। रास्ते में हर किसी को अपने माता पिता की सेवा करने का दे रहे हैं संदेश। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए चाक चौबंद किए गए इंतजाम। डीएम मयूर दीक्षित ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। देवघर में कांवड़ रूट पर नवो सेवा कैंप का किया शुभारंभ। कांवड़ यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा। 3,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा से होगी निगरानी। पुलिस ने एक कृत्र कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ में खास इंतजाम। 224 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था। पूरे कांवड़ मार्ग पर सफाई, मेडिकल कैंप, मोबाइल टॉयलेट, बिजली आपूर्ति और पेयजल की व्यवस्था। संबंधित अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। शिव भक्तों को बेहतर और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सीएचसी में 100 बेड कांवड़ियों के लिए आरक्षित किए गए। पूरे कांवड़ मार्ग पर हेल्थ कैंप और एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई। धनबाद से चिरकुंडा कांवड़िया संघ का 111 श्रद्धालुओं का जत्था पूरे उत्साह और भक्ति के साथ सुल्तानगंज के लिए रवाना। बोलबम के जयकारों से गूंजा माहौल। भगवान शिव के रूप में एक कांवड़िया बना आकर्षण का केंद्र। 111 श्रद्धालुओं के जत्थे में पुरुषों के साथ कई महिला शिव भक्त भी शामिल। बैद्यनाथ धाम में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचा डाक बम के नाम से मशहूर भागलपुर का शिव भक्त। डाक बम का 24 घंटे के अंदर बैद्यनाथ धाम में जलार्पण करना अनिवार्य है। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का समीक्षा दौरा। यात्रा मार्ग पर दुकानों की जांच की और खाने पीने की दुकानों पर लगाए QR कोड। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पूरे जनपद को 11 जोन 24 सेक्टर्स में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। सावन के पावन महीने में देवघर में रौनक देखने को मिली। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हुआ शानदार ड्रोन शो। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं और प्राचीन परंपरा को किया गया प्रदर्शित। द्वादश ज्योतिर्लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का सुंदर चित्रण किया गया। देवघर के आसमान में दिखा आस्था और तकनीक का अनोखा संगम। लगभग 20 से 25 मिनट तक चले इस शो के माध्यम से जीवंत हुआ अध्यात्म और इतिहास। बाबा बैद्यनाथ धाम के 5 किलोमीटर के दायरे में दिखा ड्रोन शो का अद्भुत नजारा। डिजिटल रोशनी से सराबोर इस अलौकिक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। देवघर के श्रावणी मेले में लगातार उमड़ रही शिव भक्तों की भीड़। मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग और सजावट। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। रात्रि में और निखरी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता। अब सूर्यास्त के बाद भी मंदिर स्वर्णिम आभा में जगमगाता हुआ नजर आएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रात में रोशनी से नहाए मंदिर की तस्वीरें जारी की। मंदिर का शिखर पर कोटा स्तंभ नक्काशी और परिसर रोशनी में हो रहे जगमग श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर की दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का मिल रहा है सौभाग्य। लाइटिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए और उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी अक्षुण बनी रहे। मंदिर में दान प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ट्रस्ट ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू की। आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान करने वाले श्रद्धालुओं को भुगतान पूरा होते ही तुरंत डिजिटल रसीद मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, क्लीन एनर्जी और खेल क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए। कैबिनेट ने 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों तक बढ़ाने का लिया गया फैसला। किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना है उद्देश्य। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल। देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना है मकसद। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मिली मंजूरी। अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया आवंटित। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। इसके तहत देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर जोर। 84,000 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो का आयोजन किया गया। छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यापारी ले रहे हैं हिस्सा। गिफ्ट एक्सपो में 750 से ज्यादा एक्सपोर्टर, 5,000 से ज्यादा ब्रांड्स और 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स शामिल। गिफ्टिंग में लगातार बदलते ट्रेंड को समझने में मददगार है ये एक्सपो। एक्सपो में छोटे बड़े शो पीस के साथ कई हैंडमेड चीजें भी शामिल। इस बार गिफ्ट एक्सपो में नए स्टार्टअप्स का है बोलबाला। नैनीताल ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ उठाया ऐतिहासिक कदम। नैनीताल का मॉल रोड बना नो हॉर्न जोन। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक की गई घोषणा। हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ किया जाएगा 1,000 रुपए का चालान। लद्दाख में वन राइड वन नेशन ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उमलिंग ला पर 390 फीट लंबा तिरंगा लहराकर बनाया अनोखा इतिहास। भारत माता की जय के नारे से गूंजा लद्दाख। कारगिल विजय दिवस पर युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिशन तिरंगा की शुरुआत की थी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस साल प्रदेश के 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। डोरंड कप 2026 का शिलोंग में शुभारंभ। ओपनिंग सेरेमनी में फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम सहित कई हस्तियां शामिल हुई। ग्रेटर नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी पहुंचे फिल्म आर्यभट्ट का जीरो के सितारे हिमांश कोहली और सोनाली सहगल। अपनी फिल्म का किया प्रमोशन। 7 अगस्त को होगी रिलीज। आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा को परखा गया। पश्चिमी गेट पर मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। मॉकड्रिल में सीआईएसएफ, यूपी पुलिस, एएसआई, फायर सर्विस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक और निस्तारण दस्ता सहित कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। किसी भी खतरे से निपटने की तैयारियों का किया गया प्रदर्शन। ओडिशा के

दिल्ली के सरकारी स्कूल में अब एआई की मदद से पढ़ेंगे बच्चे। सरोजनी नगर एनडीएमसी स्कूल में खुली विकसित भारत अनुभव शाला। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है अनुभव शाला, किसी स्पेसशिप की तरह है सारा इंटीरियर। तारों के बीच इस अनुभव शाला में पढ़ने को लेकर बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित भारत 2047 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन पर आधारित है ये पहल। कोटा के युवाओं ने विकसित किया स्मार्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, जो हजारों मील दूर बैठे होने पर भी उपकरण कर सकता है ऑन या ऑफ, बिना इंटरनेट भी करेगा काम। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के 16 साल पूरे, मनाया गया शानदार जश्न, परिसर में खास सजावट की गई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, शिमला में बरसात के बाद मौसम सुहाना हुआ। जम्मू श्रीनगर में कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई, मरम्मत के काम के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद। गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश की वजह से कर्जन डैम में पानी का इनफ्लो छोड़ा गया 80,000 क्यूसेक पानी। देहरादून में भारी बारिश का दौर जारी, उत्तराखंड विधानसभा के पास हरिद्वार रोड पर जलभराव की तस्वीरें आई सामने। कर्नाटक की यादगीर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नारायणपुर बांध से छोड़ा गया 1,00,000 क्यूसेक पानी। हरिद्वार में डूबते दो कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हुए एसडीआरएफ के जवान, गंगा की लहरों से किया गया सफल रेस्क्यू। गढ़चिरौली में लगातार बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कुंभी, गांव में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, उपलब्ध कराई गई मेडिकल सुविधाएं। बांदीपुरा गुरेज रोड पर बादल फटने से भूस्खलन, कैमरे में कैद हुआ पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो। बादल फटने के बाद अचानक बढ़ा पानी का बहाव, कई आए फ्लैश फ्लड, जो तो वहीं इलाके में कई घरों में भरा पानी। पुणे में भारी बारिश के बीच खड़कवासला डैम में मुथा नदी में छोड़ा गया पानी, शहर के कई निचले इलाकों में हुआ जलभराव, प्रशासन अलर्ट। चाइना के वुलिंगगुआन में 1,500 ड्रोन से ने बांधा समा, शानदार ड्रोन शो से जगमग हुआ आसमान। ड्रोन शो में पेश की गई चाइना की आइकॉनिक पहाड़ी चोटियों की झलक, महत्वपूर्ण इमारतों में भी बनाई गई तस्वीर। चाइना में कल तक चलेगा यह अनोखा ड्रोन शो, हजारों लोगों को मिल रहा है इसका आनंद लेने का मौका। चाइना के शेंजन में शानदार रोशनी से जगमग हुई इमारतें, मनाई गई चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ। शेंजन की इमारतों पर दिखा लाइटिंग का अनोखा नजारा, रोशनी से नहाई चाइना रिसोर्सेस टावर और वन शेंजन बे सहित कई बिल्डिंग्स। पश्चिमी तुर्की में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, तटीय प्रांत इजमीर के जंगलों में भड़की है आग। पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जंगली इलाकों में उठी लपटें, तेज हवा के कारण फैली आग, जानमाल के बड़े नुकसान की खबर नहीं। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी आए दिन प्रांत में भी जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी, फायर फाइटर्स ने संभाला है मोर्चा। जंगलों की आग पर नियंत्रण के लिए जमीन से आसमान तक किए गए उपाय, प्रशासन ने आग बुझाने के लिए झोंकी पूरी मशीनरी। ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है जंगलों में आग की वजह, हर साल इन इलाकों में बढ़ रहा है आग का संकट। ग्रीस में एथेंस के पश्चिमी इलाके में भी जंगलों में भड़की आग, हेलीकॉप्टर्स के सहारे काबू पाने की कोशिश। एथेंस प्रशासन ने वाशिंदों को इलाका खाली करने की सलाह दी, आग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उठाए गए कदम। फ्रांस में भी दक्षिणी इलाके कोरिंस के पास जंगलों में आग लगी, सुरक्षित जगहों पर भेजे गए 2,000 से ज्यादा लोग।

0: गूंज रहे ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिम इलाकों में किसानों ने समय से पहले शुरू किया खेती का काम। जोर शोर से चल रही है जुताई। इंग्लैंड के कई इलाकों में इस बार कम हुई वर्षा। खेती के लिए मौसम की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटे हैं किसान। चाइना में एआई सेक्टर के तहत यंग टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए नया टैलेंट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इसमें रोबोट ऑपरेटर और डेटा इकट्ठा करने वालों से लेकर एआई ट्रेनर तक शामिल हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हर उम्र के छात्रों के लिए वोकेशनल और स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें डेटा इकट्ठा करना, रोबोट इंस्टॉल करना, उसे चलाना और उसका रखरखाव करना शामिल है। हाल ही में 200 से ज्यादा लोगों ने नौकरी दिलाने वाली इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इसके बाद करीब 80 छात्रों को नौकरी मिली है। चाइना के जेजियांग प्रांत में रोबोट्स को एक खास तरह की ग्रोथ ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हिलने डुलने और चीजें पकड़ने से लेकर असल दुनिया के काम करना तक शामिल है। एआई डेमोंस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रमोशन सेंटर में 40 से ज्यादा एम्बॉडीड इंटेलिजेंस रोबोट्स मौजूद हैं, जिन्हें कुछ वर्कर बनाने की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। फैंस का इंतजार हुआ खत्म। 11 अगस्त को मिर्जापुर द मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज करने की तैयारी। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे एक्टर विकी कौशल फिल्म में भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए 25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे। हॉलीवुड की फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का बंपर कमाई। फिल्म ने दूसरे दिन पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। वेंकी अटलूरी ने लकी भास्कर 2 का किया ऐलान। दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी स्टारर की लकी भास्कर 2024 में थिएटर में हुई थी रिलीज। हैरी पॉटर फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 25 सालों के बाद अब फिर रिलीज होगी हैरी पॉटर का पहला पार्ट।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
2: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू। 8,371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार किया। पवित्र सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, कांवड़ यात्रा में भी दिख रहा है उत्साह। स्वर्णिम रोशनी में नहाया राम मंदिर, स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग का शुभारंभ, सूर्यास्त के बाद भी श्रद्धालु कर सकेंगे दिव्य दर्शन।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन की और सावन में चल रही कांवड़ यात्रा की, जिसमें नौजवान पीढ़ी या कहें कि जेन जी की बड़ी तादाद है और इसकी वजह से यात्रा में अलग ही रौनक नजर आ रही है। हरिद्वार के रास्ते डीजे पर नाचते गाते भोले के जत्थों को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। आज आपको कई जेन जी भोले से भी मिलवाएंगे, कंधे पर अर्धनारीश्वर की प्रतिमा लिए पहुंचे नौजवान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिसकी मनोकामना है कि भगवान शिव उसकी जोड़ी बनवा दे। हरिद्वार के बाद आपको लिए चलेंगे प्रयागराज, जहां से बड़ी तादाद में शिव भक्त गंगा जल उठाकर काशी विश्वनाथ जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि यात्रा शुरू करने से पहले कांवड़ियों ने कान पकड़कर माफी क्यों मांगी। आज आपको देवघर में आस्था की तस्वीरें और सुल्तानगंज से चलने को तैयार डाक बम के बारे में भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं हरिद्वार से, जहां पर सावन के पावन महीने में आस्था का जमघट है। बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार की राह पर हैं। इसमें डीजे के साथ नाचती झूमती नई पीढ़ी भी मौजूद है, जिसका भक्ति का अंदाज बहुत निराला है। और इनके अलावा भोले की भीड़ में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कोई अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कंधे पर रखकर कांवड़ यात्रा पर निकला है, तो कोई अपनी बुजुर्ग दादी के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला है। तो चलिए आपको हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं।

0: इसे नई पीढ़ी का नया अंदाज समझिए, पहनावे पर मत जाइए, बस भाव समझिए। रंग ढंग निराला है पर मन तो इनका भी बाबा में ही लगा है। कांवड़ यात्रा में ये बेफिक्र बिंदास रंग है नौजवान पीढ़ी का। कोई ये ना समझे कि ये जनरेशन सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में जीती है, बल्कि ये धर्म, संस्कृति और परंपरा से भी गहरी जुड़ी है। हाँ, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। नई पीढ़ी ने बाबा को भी अपने अंदाज में सजाया और सवारा है, काले रंग का चश्मा पहनाया है, यात्रा में रौनक रहे इसीलिए डीजे लगाया है और डीजे पर शिव भक्ति का हरियाणवी सिग्नेचर सॉन्ग बजाया है। कावड़ यात्रा के ऐसे ही रंग इसे मनमोहक बनाते हैं। हालांकि हरिद्वार तक की यात्रा में हजारों भोले रोज आते जाते हैं, लेकिन उसमें कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो ध्यान खींच लेते हैं। कई दोस्तों ने मिलकर एक बड़ी सी गाड़ी बनाई, उस पर भगवान शिव की विशाल भव्य मूर्ति सजाई और हाथ से खींचते गाना बजाते निकल पड़े हरिद्वार। दिल्ली से हरिद्वार तक का रास्ता लंबा है, लेकिन शिव भक्ति के ऐसे माहौल में सफर का पता ही नहीं चलता। भगवान शिव के साथ माता पार्वती को भी रथ पर सजाया, रोशनी से जगमगाता रथ धूमधाम से गंगा घाट की ओर निकल पड़ा। बाबा का जयकारा लगाती ये टोली अपनी मस्ती में है, वैसे भी सारा आलम बाबा की भक्ति में है। ये भोले की कृपा नहीं तो भला और क्या है कि 6-1 साल का एक छोटा सा बच्चा 350 किलोमीटर दूरी तय करके पलवल से हरिद्वार चला गया। छोटे पैर छोटी कावड़, मुश्किल रास्ता, लेकिन अपनी धुन में भोले चले जा रहे हैं।
1: क्या नाम है आपका? प्रियांशु। कहाँ से आया है?
2: पलवल।
1: पलवल से? पलवल कितनी दूर है पता है आपको?
2: 350 किलोमीटर।
1: 350 किलोमीटर पैदल जाओगे?
0: भांति भांति की कावड़ और अलग अलग अंदाज में भोले हरिद्वार की सड़कों पर खड़े होकर इस भक्ति यात्रा को निहारना भी भक्ति से कम नहीं है। फूलों से सजी ये भारी भरकम कावड़ देखकर आप जरूर ठहर जाएंगे। भोले ने इसे आसानी से कंधे पर जरूर उठाया है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है और बहुत दूर यानी कि भिवानी भी जाना है, इसीलिए घूमने फिरने आए छोटे भाई ने भी कंधा लगा दिया।
3: नहीं, घर परिवार सुखी रहे, बस यही।
1: कितनी बड़ी कावड़ लेके जा रहे हो?
3: 9 सर।
1: कोई कष्ट नहीं?
3: बस प्रभु की इच्छा है।
1: कहाँ तक लेके जाओगे?
3: भिवानी हरियाणा।
1: पहली कावड़ है या उस?
3: ये 4th कावड़ में, चौथी कावड़ है।
1: इसी तरह की पहले भी कावड़ लेके?
3: हाँ जी।
4: मेरा नाम केशव है।
1: कहाँ से आए हो?
4: मैं भिवानी हरियाणा से।
1: कावड़ लेके जा रहे हो, क्या मन में है कावड़ लेके जा रहे हो?
4: कावड़ में यहाँ पे जल लेके जा रहे थे।
1: क्या मन में कुछ बनने कामना है भगवान से बोले जा रहे?
4: तो भाई की मदद करने के लिए आया था। ये हैवी हो गई थी कावड़ थोड़ी, ये नहीं जैसे जिस फ्रेम की बनवानी थी हमें उससे हैवी पड़ने लगी थी, तो फिर एक भाई अकेला तो हम दोनों लेके जाएंगे अब, क्योंकि हैवी
1: होगा इतना लेके जाओगे?
4: नहीं, बस कोई नहीं, आराम से जाएंगे, भोड़ा लेके जाएगा। अगर
1: पहली बार आया?
4: मैं पहली बार आया हूँ।
1: कावड़ भी पहली बार लेके जा रहे?
4: हाँ, मैं कावड़ भी पहली बार हूँ, भाई की वजह से रुक गया, मैं घूमने के लिए आया हुआ था, पर भाई की हेल्प के लिए बोले नहीं, भाई चारा अपना थी।
0: महादेव के भक्त बस महादेव के आश्रय होते हैं, जो भी मनोकामना हो सीधे सीधे उनसे अर्ज कर दी जाती है और कावड़ उठाई जाती है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी मन्नत है, लेकिन अर्धनारीश्वर यानी कि शिव के साथ पार्वती की मूर्ति कंधे पर लिए जो भोले आए हैं उनको ख्वाहिश शादी की है, इसीलिए जोड़े में मूर्ति बनाई है और भगवान उनका भी जोड़ा बना दे यानी विवाह हो जाए।
5: अमित भोला।
1: कहाँ से आए?
5: दिल्ली चन्नीपुरी पसनीपुर गांव से।
1: भोले को लेके जा रहे हो?
5: हाँ जी, बोले
1: पार्वती दोनों को लेके जा रहे?
5: हाँ, शिव पार्वती को लेके जा रहे, कंधे में बिठा के अपने जगह पे। नहीं, बस इच्छा थी मन की बाबा के थोड़ा कंधे बिठा के लेके आओ, मम्मी पापा को अपने इस चक्कर में अपने शरण में लेके जा रहे हैं।
1: कोई कामना मांगी थी जो कावड़ पहले लेके गए थे तब पूरी हुई हो?
5: वो पूरी नहीं हुई, इस बार पूरी करने जा रहा हूँ, अपना भगवान दुआ से मानते हैं जोड़ी लग जाए, जैसे भोले की जोड़ी लेके जा रहे हैं अपने शरण में, उसे अपने जोड़ी लग जाए।
1: ज्यादातर लोग तो भोले को लेके जा रहे हैं खाली, आप भोला और पार्वती दोनों को लेके चल रहे हो?
5: बस मन की इच्छा थी जो लेके जा रहे हैं।
0: भोले अपने भक्तों की सुनते हैं और शादी के मामले में उनका आशीर्वाद वैसे भी बहुत जरूरी है, पर कावड़ लेकर दिल्ली से आई लड़की की मांग थोड़ी हटके है। मनोकामना है कि इनके प्रेम विवाह में कोई अड़चन ना आए।
2: हाँ। मन में भाव आया और क्या श्रद्धा आपकी?
6: कि लव मैरिज हो जाए।
2: लव मैरिज है आपकी?
6: हाँ जी।
2: तो भोलेनाथ से क्या मांगने मनोकामना करते, क्या मांगते?
6: बस शादी हो जाए, बस जो है इच्छा वो पूरी हो जाए। सारे घर वाले तो मान चुके हैं, बस हो जाए।
2: फैमिली वाले मान चुके हैं?
6: हाँ।
2: तो आप अपने लवर के साथ ही काउंटर लेने आए?
6: हाँ।
2: तो भोलेनाथ के एक बार ये कारा लगा था, भोलेनाथ से वो
6: हर हर महादेव।
0: मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की आराधना से हर इच्छा पूरी हो जाती है और जो कावड़ यात्रा करता है उसे सौभाग्य का वरदान मिलता है, घर परिवार को खुशी मिलती है। इसीलिए भारी भरकम कावड़ लेकर भोले लगातार हरिद्वार जा रहे हैं। कोई गंगा में स्नान कराने के लिए शिव की प्रतिमा अपने साथ ले आया है, तो कोई दर्जन भर घड़ों में गंगा जल लिए चला जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके भोले अपने शहर, कस्बे या गांव जाएंगे और सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। इस यात्रा में हर तबके, हर उम्र के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, लड़के लड़कियां सब हैं। कोई नाचता गाता झूमता जा रहा है तो कोई चुपचाप शिव को जपते हुए, कोई अपनी दादी को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार ले गया और वहां से दिल्ली लाया। हरिद्वार जाने वाली हर सड़क पर भोले की भीड़ है, लेकिन असुविधा जरा भी नहीं, क्योंकि सभी की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन जो अलर्ट है। उम्मीद है कि इस साल भी करीब 5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने कांवड़ मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर में बांटा है और उस हिसाब से अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। मेला क्षेत्र में 6000 से ज्यादा जवान और 13 पैरामिलिट्री कंपनियां तैनात की गई हैं। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है।
7: अभी जो हमारे श्रद्धालु हैं वो या तो ट्रेनों से, प्राइवेट बसों से, सरकारी वाहनों से, अपने व्यक्तिगत वाहनों से आ रहे हैं, तो सामान्य यातायात योजना के साथ हम कांवड़ पटरी को चला रहे हैं। साथ ही जो हमारे मंदिर है, जैसे माँ मनसा देवी का मंदिर है, माँ चंडी देवी का मंदिर है और दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है और बिल्केश्वर मंदिर है, तो वहां पे भी हमारी ड्यूटियां लगातार फंक्शन कर रही है। अनुमान यही है कि 5 के बाद 6-7 से हमारी डाक कावड़ प्रारंभ होगी। उनके लिए एक व्यापक यातायात योजना है जो कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो हमारे सरहदी जनपद है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, जिनके साथ समन्वय करके और उन यातायात योजना को हम लागू करते हैं।
0: इस साल कावड़ यात्रा में हरिद्वार में पहली बार साइबर कमांडोज भी तैनात किए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह या फिर झूठी खबरों पर लगाम लगाई जा सके। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरिद्वार में कावड़ यात्रा का उत्सव है, अभी तो यात्रा शुरू हुई, लेकिन इस पूरे महीने करोड़ों की तादाद में शिव भक्त गंगा के घाटों पर पहुंचने वाले हैं। ऐसी तस्वीर प्रयागराज के संगम से भी आ रही है, जहां से बड़ी तादाद में शिव भक्त गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ या देवघर जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। रोज यहां से यात्रियों का जत्था निकलता है। शिव भक्त पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और यात्रा शुरू करने से पहले भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हैं। तो चलिए आपको संगम पर पावन शिव भक्ति और कावड़ यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं।

महादेव के प्रिय सावन में मानो पूरा देश ही शिवमय हो उठा है। चारों तरफ आस्था की गूंज है और भक्ति की रसधारा बह रही है।

0: सावन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में कांवड़ लेकर के जो भक्त हैं वो प्रयागराज के दारागंज दशाश्वमेध घाट से जल लेकर के काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। उनकी पूजा हो रही है। अब पूजा के बाद यहाँ पर भगवान से क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे, इसके बाद ये यात्रा निकलेगी। भगवान को जल चढ़ाया जाएगा और अपने जो मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर जो भक्त हैं जल लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, क्या कामना है?
1: कामना यही है कि हिंदू धर्म में जो भी है इसी तरह जागता रहे। हमारी सब दुआ है भोलेनाथ से कि जो भी कांवड़ लेके जा रहे हैं महादेव की कृपा से यहां से लेके बनारस तक उनकी यात्रा मंगलमय हो। नाचते गाते जाते हैं, कोई झूमते हुए जाता है, इसी तरह लोग जाते हैं जल लेके, मिलते बोलते सब लोग जयकारा लगा के निकल जाते हैं बनारस के लिए।
0: अच्छा, क्षमा भी मांगते हैं यहाँ पर पूजा के, क्या होता है?
1: क्षमा इसलिए मांगते हैं, मान लो जल जल भरते समय कोई गलती हुई हो या कोई वैसा हुआ हो, इसके लिए यहाँ पे कान पकड़ के उठना बैठना पड़ता है कि भोलेनाथ हमको क्षमा करना अगर ऐसी गलती हो, और रास्ते में हम कहीं भी जल रखेंगे तो फिर भी हमको वही क्रिया करनी पड़ती है, उठना बैठना पड़ता है।
2: भगवा वस्त्र पहने कांवड़िये बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ पवित्र नदियों की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं वेद मंत्रों की गूंज है।

0: आस्था भक्ति का ये पावन संगम सावन की दिव्यता और सनातन परंपरा की जीवंत आभा को अलौकिक कर रहा है। भोलेनाथ की आराधना को और अधिक भव्य स्वरूप देने के लिए भदोई में द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र में एक बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। वहाँ पूरे महीने 180 रुद्राभिषेक कराने का संकल्प लिया गया है।
1: इस सावन मास में पूरा देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं और देवाधिदेव महादेव की इस विशिष्ट माह पे हम आज सुंदरबन मंदिर में एक माह में 180 रुद्राभिषेक कराने का संकल्प लिए हैं।
0: इसी अटूट आस्था की एक अनोखी तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज से भी सामने आई है। यहाँ शिव भक्त हिमांशु करीब 1.5 क्विंटल वजनी कावड़ कंधों पर उठाए महादेव की भक्ति में लीन होकर अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं।
2: भवन में हर कोई संकल्पों के साथ कावड़ यात्रा पर निकलता है, लेकिन प्रयागराज में पहुंचा ये हिमांशु अपने नए संकल्प के साथ प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट आया है और आप देखेंगे कुल 10 स्टील के घड़े हैं जिसमें गंगा जल है और उसको भर कर ये प्रतापगढ़ जाएंगे। प्रतापगढ़ के शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। इनका संकल्प बहुत कठिन है, लेकिन आप समझिए 1.5 क्विंटल गंगा जल उठाना ये सबसे कठिन है। यहाँ से पैदल जाना उससे भी कठिन है।
0: इस कावड़ में सिर्फ गंगा का पावन जल नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प भी विराजमान है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ही हिमांशु लगभग 80 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और महादेव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे।
3: ये जो अपनी कलश कावड़ है ये 101 लीटर की है और ये जाएगी प्रयागराज से जी प्रतापगढ़ चिलबिला चौक बिलखरनाथ मंदिर।
0: कावड़ यात्रा पारिवारिक एकता और सद्भाव का भी जीवंत संदेश दे रही है। इसकी खूबसूरत तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 10 सदस्य कावड़ लेने तीर्थराज प्रयाग पहुँचे, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं।
2: ये भी एक ग्रुप है जो दशाश्वमेध घाट पर जल भरकर निकला है इस आशय से कि भगवान शिव पर जलाभिषेक करेंगे और अपनी मन की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लेकिन ये ग्रुप कोई अलग गांव के अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही परिवार के हैं। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई मामा है, कोई भांजा है, यानी एक ही परिवार के लोग पिछले 10 सालों से कावर लेकर चल रहे हैं।
0: कौशाम्बी से आए इन शिव भक्तों ने सबसे पहले संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई, फिर बोल बम के जय घोष के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर अपनी पावन यात्रा पर निकल पड़े।
4: ये हमारी बड़ी बहन है, बड़े भैया हैं, बाबा जी हैं और ये परदादा जी हैं और ये हमारे काका जी हैं और सयाने हैं। लेकिन आप इतने संघर्षों के बाद, जब बहुत पहले मुश्किल हुआ करती थी, घर परिवारों बड़ा बिखराव था, लेकिन जब से भोलेनाथ के दरबार में जाने लगे तब से हमारा परिवार खूब खुशहाल है, संपन्न है।
0: सावन में राजस्थान का कोटा शहर आस्था का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ के प्रसिद्ध शिवपुरी धाम में स्थापित 525 शिवलिंग और भगवान पशुपतिनाथ की दिव्य प्रतिमा के दर्शन को श्रद्धालु पहुँच रहे हैं।
5: मतलब यहाँ पर इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं, जो भी पानी चढ़ाता है ना पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है।
6: मैं उनसे बस यही आशीर्वाद मांग रही हूँ कि मैं यहाँ से साथ तुसी हो मेरी सारे मनोकामना को।
0: सावन का ये पावन पर्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा, समर्पण और एकता के साथ शिवमय होने का संदेश भी दे रहा है। प्रयागराज से आनंद राज, भदोई से महेश कुमार और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: Tune in's How To A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
11: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
17: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव, भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार, चीन के कागजी शेर पर भारी सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
9: प्रेजेंटेड बाय
18: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
19: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
20: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू। 8371 तीर्थ यात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार किया। पवित्र सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। कांवड़ यात्रा में भी दिख रहा है उत्साह। स्वर्णिम रोशनी में नहाया राम मंदिर, स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग का शुभारंभ। सूर्यास्त के बाद भी श्रद्धालु कर सकेंगे दिव्य दर्शन। एलपीजी सिलेंडर को लेकर राहत की खबर, 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे। दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती। कॉमनवेल्थ 2026 में भारत का डबल धमाका, जैवलिन थ्रो में भारत ने झटके दो मेडल। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज। तेजस्विन शंकर ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स के डिकैथलॉन में जीता ब्रॉन्ज मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। चाइना के वुलुंगुआन में शहर में दिखा अद्भुत नजारा, 1500 ड्रोन ने आसमान में बनाई मनमोहक आकृतियां। बड़ी संख्या में लोग इस जादुई नजारे के साक्षी बने।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें भगवान शिव की स्तुतियां करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन में भगवान शिव की कौन सी स्तुति करें और उससे किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अगस्त 2026, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:07 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, रात के 8:45 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 अगस्त 2026, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी की स्तुतियों के बारे में। शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शिव जी की जो स्तुतियां हैं वो बहुत विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, गाई जा सकती हैं। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और अलग अलग विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप जिस तरह की स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं उसके पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है ये भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र की व्याख्या है। ये 5 तत्व
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। इसका निरंतर पाठ करने से शिव जी की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करे तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप या तो रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें, शिव जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहेगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। भगवान शिव की दूसरी स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। आम तौर पर शिव तांडव स्तोत्र को गाया जाता है। किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। अगर किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बहुत खराब समय चल रहा हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नृत्य के साथ नाच करके गा करके इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड डमड डमड डमड निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। गा गा कर अगर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाए, कितना भी कठिन वक्त चल रहा हो,
उस कठिन वक्त के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब एक और बड़ी अद्भुत स्तुति की बात करते हैं, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। इसका पाठ रेगुलर करने से दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए, और इसका पाठ दोनों वेला दोनों समय करना चाहिए। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, दरिद्रता बहुत ज्यादा है, पैसे की कठिनाई बहुत है, तो सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और जितने दिन इसका पाठ करें सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं,
करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में, अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन के महीने में जितने भी दिन संभव हो शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। देखिए, अगर आयु की बाधा हो, स्वास्थ्य में गहरा संकट चल रहा हो, स्वास्थ्य की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही हों, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। सुबह और शाम शिव जी के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके अगर आप चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें तो ऐसा करने से आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अब जान लेते हैं 1 अगस्त शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
3: अच्छा व्यक्ति कौन? जो अच्छा बोले, अच्छा सोचे, पर जरूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते भी अच्छा हैं, सोचते भी अच्छे हैं, पर अंदर से बहुत खराब हो। तो किसी के बारे में पता करना है कि वो अच्छा है या बुरा, उसका सरल सा उदाहरण है, क्रोध में आदमी वही होता है जो वास्तविक होता है, क्रोध में और प्रेम में वही होता है जो वास्तविक होता है। तो किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसको क्रोध में देखो, और जब क्रोध में तुम्हें समझ में आ जाए तो समझ जाना किस स्तर का आदमी है। मेरे पागलों, हमें लगता जो भक्त होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता, भक्तों को तो भगवान का बोध आता है, और जिन्हें बोध आए वो भगवान के भक्त हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो संतों की भक्ति से, महापुरुषों की संगति से सदगति होगी। हनुमान जी ने एक व्यक्ति की सदगति कराई। बोलो सीताराम। किसकी? आहा।

राम राम कहते हुए विभीषण उठे, वो जगाया किसने? किसने जगाया विभीषण को? हनुमान जी ने। बोलो बोलो किसने? बोलो बोलो। अच्छा, लंका में हनुमान जी ने विभीषण को ही क्यों जगाया? सो तो सब रहे थे, कुंभकर्ण भी वहीं था, वो भी सोता था, विभीषण भी सो रहे थे और कुंभकर्ण भी सो रहा था, लेकिन जगाया किसको? विभीषण को जगाया, कुंभकर्ण को नहीं जगाया। क्यों? हनुमान जी दुर्जन को नहीं जगाते, हनुमान जी सज्जन को जगाते हैं। जो सज्जन होता उसे ही तो जगाते हैं। अच्छा, सोते तो सब लोग हैं, हम भी सोते, तुम भी सोते हैं, ये बात अलग है कि कोई ज्यादा सोता, कोई कम सोता। विभीषण थोड़ा कम सो रहे थे, कुंभकर्ण थोड़ा ज्यादा सोता था, वो 6 महीना तक सोता। पर आज के लोग भी कौन सा कम है, 6 बजे के बाद तक सोते। आओ, तो कोई ज्यादा सोता है, कोई कम सोता। अब ये मत कहना कि जो 6 बजे के बाद तक सोते हमने उन्हें कुंभकर्ण कहा है, गलत मत समझ लेना। और यदि समझो तो गलती नहीं है, आपकी मर्जी है, वो आपका विचार है खुद का। तो सोते तो सब है, कोई 6 बजे के बाद तक, कोई 6 बजे तक। तो विभीषण जी भी सो रहे थे, कुंभकर्ण भी।

सूरज, पर जगाया किसने? बोलो बोलो, हनुमान जी ने। क्यों? क्योंकि विभीषण सज्जन है। क्या है? सज्जन। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, सज्जन है। अच्छा, सज्जन की पहचान क्या है? दुर्जन में और सज्जन में हमें एक अंतर नजर आता है। पूछो क्या? जो अपने भले के लिए दूसरों का बुरा चाहे वो है दुर्जन, जो अपने भले के लिए खुद का भी बुरा ना चाहे वो है सज्जन। हाँ, सज्जन में और दुर्जन में इतना अंतर। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। विभीषण जी मिले हनुमान जी से, हनुमान जी बोले कहो विभीषण, और सुना लंकेश, और सुना। विभीषण बोले हम लंकेश, हम नहीं है लंकेश, हम नहीं, हमारा भाई है, भाई दशानन, दशानन दशग्रीव, दशग्रीव रावण है, रावण, हम तो उनके भाई हैं। विभीषण, विभीषण। हनुमान जी बोले हम वर्तमान नहीं बता रहे, फ्यूचर बता रहे, भविष्य बता रहे, वर्तमान। विभीषण बोले मतलब? हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के गए, बोले देखो भाई हम तो भविष्य वक्ता हैं, भविष्य जानते हैं, और हमें दिखाई पड़ रहा है कि तुम भविष्य में लंका के राजा बन गए, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो विभीषण बोला बुरा ना मानो तो एक बात बोले, बोले बोलो, बोले आपकी भविष्यवाणी विफल है। हनुमान जी बोले कैसे? बोले हम मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हलवा में बने, कोई पद पे ही नहीं है, प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे? हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बनोगे, बनोगे पक्का है, एक गलती है। बोले क्या? बोले पार्टी गलत है। आओ, आओ, आओ, तुम जिस पार्टी में हो उसमें नहीं बन सकते हो। विभीषण बोला मतलब? हनुमान जी बोले सीधी सी है, उस पार्टी में हो। तो विभीषण बोले करें क्या? हनुमान जी बोले हमारी वाली में आ जाओ, बन जाओगे। तो आपकी कौन सी है? हनुमान जी बोले तुम विचार करो कौन सी हो सकती है। तो विभीषण ने बताया हनुमान जी को देखकर, लोग कुल जरूर निम्न होता पर काम बड़े उच्च होते, जो सबरी ने किया वो भला कौन कर सकता है। तो हनुमान जी बोले जन्म से कुछ नहीं होता कि तुम राक्षस हो तो भगवान कृपा करेंगे कि नहीं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद कहते हैं, भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना, इसलिए तुम टे। अच्छा सुनो ध्यान से, एक बात याद आ गई, भगवान ये नहीं देखते कि तुमने नहाया है या नहीं, यदि नहाए धोए वालों को ही भगवान मिलते होते तो मछली को पहले मिलते, हमेशा पानी में रहते। अच्छा, भगवान बड़े बड़े बाल वालों भर को ही नहीं मिलते, केवल बड़े बड़े जटा रखाने से यदि भगवान मिलते होते तो रीछ को सबसे पहले मिलते, क्योंकि वो कटिंग ही नहीं करवा। अच्छा, हो सकता भगवान सुंदर रूप वालों को मिले, केवल सुंदर रूप वालों को भगवान मिलते होते तो कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी थी उसको ना मिलती। अच्छा, हो सकता भगवान अमीरों भर को मिलते हो, यदि अमीरों को ही भगवान मिलते होते तो वर्तमान में जितने अमीर हैं केवल उन्हीं भर को मिलते, या पूर्व काल में सुदामा को ना मिलते। अच्छा, हो सकता भगवान पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते, यदि केवल पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलते होते, भैया तो एक बात बताओ, हाथी किसी स्कूल में पढ़ने गया क्या पर गज को मिले? तो भगवान किसको मिलते? जिसका भाव शुद्ध होता है भगवान उसी के सामने प्रकट होता है, जिसका भाव प्यारा होता, भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान नाम जाति गुण नहीं देखते। इसलिए आप चिंता ना करो विभीषण जी, आपने कहा, जरा हमारी सुनो। अब हनुमान जी कह रहे क्या?

हम तो बंदर हैं। तो बंदर का स्वभाव क्या है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पर, चंचल भी है। लेकिन भगवान हमें मिल गए और हनुमान जी ने विभीषण से कहा, सुनो एक कमी तुम्हारे अंदर है, एक कमी हमारे अंदर। विभीषण जी बोले क्या, हनुमान जी बोले भैया तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली, तुम हमें जानकी माता से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे, बस दोनों का काम हो जाएगा। बोले ये बात तो सही है। विभीषण जी ने जानकी माता का पता बताया, हनुमान जी ने वचन दे दिया, हम तुम्हें राम जी से मिलाने का पता बताएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो,

भैया मेरे पागलो, जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, बताओ विभीषण राक्षस वंश में जन्म लेता है वो भी राम जी का प्यारा बन जाता है। हम ये कहना चाह रहे, बुरा न मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुरा न मानना, समझदार हो, और मान भी जाओ बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए। सुनो भैया, जब लंका में रहने वाले विभीषण जो राक्षस कुल में जन्म लेता उसको राम जी मिल सकते हैं, तो हम लोग भी यदि भगवान का भजन करें, भारत में रहते हैं तो हम लोगों को तो भारत के राम जल्दी ही मिल जाएंगे, हैं? हम लोगों को तो मिल ही जाएंगे, वो तो भारत में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन हमने कल, शायद कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। आओ, आओ, आओ, आओ, आओ। वो लोग क्योंकि ये समझते यही तो है, अभी चले जाएंगे, तब तक ट्रेन निकल ही जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और इसी पे बोले, कह दो बोलो, अभाव में जितना भजन हो सकता प्रभाव में उतना भजन नहीं होता है। हाँ, अभाव में बहुत भजन होता है, इसलिए तुम देखना गरीब आदमी ज्यादा भक्त होता अमीरों के मुकाबले। अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोग। एक बात और मेरे पागलो, अच्छे लोग कौन है? अब ये भी बड़ा विषय, अच्छे लोग कौन है? कुछ लोग ऐसे शुभ चिंतक होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसे भी शुभ चिंतक होते हैं, उनसे सावधान रहना। कुछ ऐसे शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ देखते ही खुद चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, वो दिखने में अच्छे होते हैं, इसलिए हमने एक विचार दिया था, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है। हाँ, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक है। तो अच्छा कौन है? जो तुम्हारी बुराई, हाँ क्षमा करना, अच्छा कौन? जो तुम्हारे सामने किसी की बुराई ना करे तुमसे, वो अच्छा है। जो तुमसे किसी और की बुराई करे तो समझ जाना ये औरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा, ये स्वभाव है। तो अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोगों की वाणी नहीं, आचरण बोलता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमारी नजर में अच्छे लोग ज्यादातर भगवान के भक्त होते, लेकिन भक्तों में भी सावधान रहना, कुछ काल नेमी भी होते, ये भी सावधान रहना। जैसे अभी हमने परसों एक अपील की कि माताओं बहनों को किसी भी गुरु के पास बाबा के पास जाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहिए, या तो पति के साथ या पिता के साथ या भाई के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमारी ये विशेष आज्ञा है, इस बात को बहुत गम्य। तो अब अच्छे कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त कौन है? जो अपनी पूजा ना करवाकर भगवान की पूजा कराए। मेरा तार प्रभु से जोड़े,

0: कौन सा?
1: मेरे मन के घोड़े मोड़े ऐसा कोई संत मिले,
0: जो हमारा तार भगवान से जोड़े ऐसा संत मिले। लेकिन सुनो, बुरा न मानना, ये उदाहरण हमें देना पड़ रहा, पर बोल देते हैं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। पूछो कौन कौन, पूछो। एक पालतू एक फालतू, दो, एक पालतू एक फालतू। अच्छा, पालतू में और फालतू में अंतर क्या है? पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू बिना पट्टे का होता है। पालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो पालतू को नहीं पीटा जाता, मालिक को समझाया जाता है, और फालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो टांगें तोड़ी जाती। अच्छा एक बात और सुनो, इसी पे, भक्त भी दो प्रकार के होते, एक पालतू एक फालतू। अब आप कहो कि विश्लेषण बताओ, तो बुरा भी लग भी जाए तो क्षमा करना, पर हम रह नहीं पा रहे। दो प्रकार के भक्त होते, एक पालतू एक फालतू। जो पालतू भक्त होते हैं उनके गले में पट्टा होता है राम नाम का, हनुमान नाम का, अथवा कृष्ण नाम का, गुरु के द्वारा दिया हुआ माला का पट्टा होता। और फालतू वो तो अब ठीक है, तो कहने की जरूरत नहीं, विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं। बोलो सीताराम। अच्छा यहां से समझो, इसको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। रोड के किनारे, सड़क के किनारे पेड़ लगे रहते कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लेकिन तुमने कभी देखा हमारे मध्य प्रदेश में तो जो पेड़ सड़क के किनारे लगे रहते उनमें सफेद या लाल रंग पोत देते। तो एक दिन गाड़ी में एक अधिकारी बैठे थे, हमने उनसे पूछा ये सड़क के किनारे पेड़ों में लाल रंग या सफेद रंग क्यों लगाया जाता? अधिकारी ने कहा ये चिन्हित तो हो गए, ये सरकारी है, इन्हें आम जनमानस को काटने का अधिकार नहीं है, इस पर सरकार का हक है। हमें बहुत अच्छी बात लगी, हमने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, इसे सबको ही नहीं काट सकता, सरकार का हक है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता वो भी रजिस्टर्ड होता, जिसके माथे पर गुरु परंपरा का टीका हो तो यमराज समझ जाते हैं ये सरकारी है, ये भगवान का भक्त है। गरीब की भक्ति हृदय वाली होती है। लोग कुल जरूर निम्न होता पर काम बड़े उच्च होते, जो सबरी ने किया वो भला कौन कर सकता है। तो हनुमान जी बोले जन्म से कुछ नहीं होता कि तुम राक्षस हो तो भगवान कृपा करेंगे कि नहीं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद कहते हैं, भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। इसीलिए तुम कह, अच्छा सुनो ध्यान से, एक बात याद आ गई, भगवान ये नहीं देखते कि तुमने नहाया है या नहीं। यदि नहाए धोए वालों को ही भगवान मिलते होते तो मछली को पहले मिलते, हमेशा पानी में रहते। अच्छा भगवान बड़े बड़े बाल वालों भर को ही नहीं मिलते, केवल बड़े बड़े जटा रखाने से यदि भगवान मिलते होते तो रीछ को सबसे पहले मिलते, क्योंकि वो कटिंग ही नहीं करवा। अच्छा हो सकता भगवान सुंदर रूप वालों को मिले, केवल सुंदर रूप वालों को भगवान मिलते होते तो कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी थी उसको ना मिलती। अच्छा हो सकता भगवान अमीरों भर को मिलते हो, यदि अमीरों को ही भगवान मिलते होते तो वर्तमान में जितने अमीर है केवल उन्हीं भर को मिलते, या पूर्व काल में सुदामा को ना मिलते। अच्छा हो सकता भगवान पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते, यदि केवल पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलते होते, भैया तो एक बात बताओ, हाथी किसी स्कूल में पढ़ने गया क्या पर गज को मिले? तो भगवान किसको मिलते? जिसका भाव शुद्ध होता है भगवान उसी के सामने प्रकट होता है, जिसका भाव प्यारा होता, भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान नाम जाति गुण नहीं देखते। इसलिए आप चिंता ना करो विभीषण जी, आपने कहा जरा हमारी सुनो, अब हनुमान जी कह रहे क्या

तो बंदर है, तो बंदर का स्वभाव क्या है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पर, चंचल भी है। लेकिन भगवान हमें मिल गए और हनुमान जी ने विभीषण से कहा, सुनो एक कमी तुम्हारे अंदर है, एक कमी हमारे अंदर। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले भैया तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली, तुम हमें जानकी माता से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे, बस दोनों का काम हो जाएगा। बोले ये बात तो सही है। विभीषण जी ने जानकी माता का पता बताया, हनुमान जी ने वचन दे दिया हम तुम्हें राम जी से मिलाने का पता बताएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: राशि परिवर्तन देश दुनिया में उथल पुथल मचाएगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन कुछ राशि वालों की दुर्घटना का कारण बनेगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन किसी राशि के रुके हुए काम पूरे करवाएगा? मंगल के राशि परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
3: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
7: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
13: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
14: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
15: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
16: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
20: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
21: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
20: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
22: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
25: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
26: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
27: एलएसी पर ड्रैगन का 5th जनरेशन वाला दांव, भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार, चीन के कागजी शेर पर भारी सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
28: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आंसुओं की कहानी। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई। 8,371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार किया। सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। एलपीजी सिलेंडर को लेकर राहत की खबर, 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे। दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती। कॉमनवेल्थ 2026 में भारत का डबल धमाका, जैवलिन थ्रो में भारत ने झटके दो मेडल। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज। तेजस्विन शंकर ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स की डिकैथलॉन में जीता ब्रॉन्ज मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। चाइना के वुलुंगगुआन में शहर में दिखा अद्भुत नजारा, 1500 ड्रोन्स ने आसमान में बनाई मनमोहक आकृतियां। बड़ी संख्या में लोग इस जादुई नजारे के साक्षी बने।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज जीएनटी स्पेशल में कुछ स्पेशल, इसकी शुरुआत करेंगे गौरव पांडे की प्रसिद्ध कविता की एक लाइन के साथ। माँ भोर में उठती है कि माँ के उठने से भोर होती है, ये हम कभी जान नहीं पाए और ना ही हम जान पाए कि माँ के पास कितना काम होता था। घर को संवारना, संभलना, घर का काम, एक होम मेकर की जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन अब बदलते दौर ने घर के काम को निपटाने का अंदाज भी चेंज कर दिया है और ये बदलाव लेकर आए हैं इंस्टा हेल्प एप्स, जो बैकग्राउंड में भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्विक कैब हो जाती है, क्विक फूड डिलीवरी हो जाती है, ग्रोसरी डिलीवरी एक बटन दबाने से हो जाती है। तो अब क्विक हाउस हेल्प डिलीवरी का दौर आ चुका है। ऐप पर टैप कीजिए और 10 मिनट में हाउस हेल्प आपके घर के डोर पर आ जाएगी। 100 रुपए प्रति घंटा जितना किफायती दाम पर आपके घरेलू काम भी वो निपटा देगी। ना छुट्टी की किचकिच है, ना लेट होने की कोई टेंशन है। होम सर्विस की इस क्रांति ने सिर्फ यूजर्स के लिए ही सहूलियत को बढ़ाया नहीं है, बल्कि सालों से घरों में मेड के रूप में काम कर रही जो भी हमारी हेल्प्स हैं, रोजगार की उनके लिए गारंटी और आर्थिक सुरक्षा के रास्ते भी खोल दिए। आखिर कैसे ये इंस्टा हेल्प एप्स हमारी और आपकी घरेलू जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं क्लिक से सहूलियत तक वाली इंस्टा हेल्प क्रांति की ये कहानी।

0: सूरज की पहली किरण जब इन शहरों में कंक्रीट की दीवारों को छूती है तो दो अलग अलग दुनियाएं जागती हैं। एक दुनिया वो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दफ्तर की फाइलों और लैपटॉप की स्क्रीन में खो जाने को तैयार है, और दूसरी दुनिया वो जिसके कंधों पर इस पहली दुनिया को सहेजने, संवारने और चलाने की जिम्मेदारी है। ये वो हाथ हैं जो दूसरों के आशियानों को घर बनाते हैं ताकि देश की तरक्की का पहिया बेधड़क घूम सके। दो दुनिया, दोनों अलहदा, लेकिन एक दूसरे पर निर्भरता ऐसी कि एक साथ न दे तो दूसरे की जिंदगी की गाड़ी हिचकोले खाने लगती है।
1: जैसे मेट की सबसे पहले हम लोग काम किया तो ऐसे होता है, कोई घर खाली भी करके जाते हैं और कोई ऐसे बीमार भी पड़ते तो छूट जाते वो काम, तो हमारा खाली बैठना पड़ता है,
2: नहीं हो पाता, सारा मैनेज नहीं हो पाता कि सफाई करते हैं तो टिफिन छूटता है, टिफिन छूटता है तो सफाई छूटती है, ऐसे ही एक आध काम तो मिस होता है भाई। अब बच्चों का टाइमिंग होता है, सुबह स्पिन को भी ऑफिस जाना होता है, सारा नहीं मैनेज हो पाता, विदाउट मेट के नहीं हो पाता, मतलब हम पूरी तरीके से मेट पे निर्भर हो चुके हैं।
0: सुबह का समय यानी भारतीय घरों का सबसे तनावपूर्ण घंटा, दफ्तर जाने की जल्दी, बच्चों का स्कूल और उस पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज काम वाली बाई आएगी। बरसों से हमारी गृहस्थी की गाड़ी जिन कंधों पर टिकी है उन्हें ढूंढना, उन पर भरोसा करना और रोज रोज की अनिश्चितता से जूझना, ये हर घर की एक अनकही कहानी है। और इसी अनिश्चितता को पीछे छोड़ने के लिए उदय हुआ एक ऐसे बिजनेस मॉडल का जो दबे पांव चुपचाप मेट्रो शहरों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। नाम है इंस्टेंट हेल्प, यानी हाउस मेड ऑन क्लिक। इस बदलाव के बाद अब हाउस मेड का मिलना किस्मत का खेल नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लिक का फैसला है। फोन के ऐप पर एक क्लिक और मिनटों में घर के काम के लिए इंस्टा हेल्प हाजिर। इंस्टेंट इसलिए, न पहले से कोई करार, न बाद में कोई तकरार का झमेला, तुरंत फटाफट इंस्टेंट।
3: प्रियांशी जी मेरे साथ में है, कई बार घर के काम आसान नहीं होते, लोगों ने मेड रखी होती है लेकिन मेड कई बार बिना बताए छुट्टी मार जाती हैं, तो ऐसे में करें तो क्या करें। प्रियांशी जी के साथ भी आज यही हुआ, आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, घर सारा फैला पड़ा है, लेकिन मेड ने अचानक फोन किया कि आज नहीं आ रहे हैं। तो जब नहीं आ रही हैं वो, तो फिर ऐसे में कैसे मैनेज करते हो आप लोग?
2: मैनेज क्या, अब सुबह सुबह इतना काम होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल निकलना होता है, और मेड ने अचानक फोन करके बोल दिया कि आज हम नहीं आएंगे, एक शॉकिंग न्यूज सी लग जाती है कि मेड नहीं आ रही है। फिर अचानक से हमने इनको बुलाया, बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया, सारा क्लीनिंग वगैरह और प्रॉपर सफाई के साथ सारा काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सडनली अगर मेरी छुट्टी कर जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास।
3: किस काम के लिए आप इनको बुलाया था?
2: हमने डस्टिंग के लिए बुलाया था, खाना बनाने के लिए बुलाया, और हमने एक दो काम और बताए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वो काम भी किए। हमने एक्स्ट्रा दो काम बता दिया, पौधों में पानी लगाना था, उन्होंने वो भी कर दिया था।
0: तकनीक सिर्फ ग्राहकों की सहूलियत के लिए नहीं है बल्कि इसने उन लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, मेडिकल बीमा और समाज में गरिमा दिलवाई है जो बरसों से हाउसमेट के रूप में कड़ी मेहनत करते हुए भी उपेक्षित थी।
1: घर में काम करते थे, 10 लाख 10 सवाल पूछते थे रहते थे, भाई क्या किस लिए छुट्टी करो, क्या किस वजह से, क्या हो गया, मतलब हर तरह से सवाल पूछते रहते। ये यहाँ से कभी अगर हम घर से छुट्टी लगा देते फोन कर लेते सर, तो हम कह देते हमारा यही मुश्किल है, तो और कुछ सवाल जवाब नहीं। और कई मेट की तरफ से काम करते तो 10 बातें भी सुना देते, और ऊपर से ऐसे भी हो सकता है कि उनको गुस्सा आए हटा भी दे देते,
4: लेकिन ये टेंशन अब नहीं रही है।
1: आप टेंशन नहीं है, अगर काम अच्छे से करो तो अच्छा,
4: मतलब सुविधा दोनों के लिए हो गई है। हाँ। घर वालों के लिए भी, जो घर के लोग हैं, कामकाजी महिलाएं जो है उनके लिए भी, और आप लोगों के लिए भी हो गई।
1: हम लोगों के लिए भी सुविधा, उन लोग अगर मेट छुट्टी करे तो हम लोग को बुला लेते हैं, अगर मेट काम करते तो फिर उस टाइम हमारा उनकी ड्यूटी, अगर फालतू काम होता तो हमें बुला लेते, तो कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं।
0: गृहस्थी की गाड़ी जिन दो लोगों के रिश्ते की वजह से किसी वेल ऑयल मशीन की तरह चल रही थी, परसों से इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। कभी काम वाली, कभी बाई, तो कभी सिर्फ एक परछाई। एक ऐसा काम जिसके बिना मिडिल क्लास भारतीय परिवार थम जाता है, लेकिन जिसे कभी श्रम का उचित सम्मान नहीं मिला। न कोई तय छुट्टी, न बीमारी में सहारा और न ही आत्म सम्मान की कोई गारंटी। हर सुबह एक डर होता था, कहीं आज काम न छूट जाए, कहीं कोई इल्जाम न लग जाए। भरोसा दोनों तरफ कम था, फासले बहुत ज्यादा थे। फिर वक्त ने करवट ली, जिस तकनीक ने हमें शॉपिंग और सिनेमा के लिए कतारों से बचाया, उसी तकनीक ने समाज के इस सबसे जरूरी हिस्से की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और डिजिटल उंगलियों ने इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नया पुल तैयार कर दिया। एक ऐसा सेतु जिसने अनिश्चितता को खत्म कर दिया, हाउसमेट्स को प्रोफेशनल्स में तब्दील कर दिया। अब वे सिर्फ एक अदृश्य सहारा नहीं है, बल्कि वे डोमेस्टिक एसोसिएट्स हैं, जिनका हुनर अब एक ऐप पर अपनी पूरी पहचान के साथ चमकता है।
4: घर में किसी दिन अगर काम वाली बाई छुट्टी ले ले, या काम पर ना आए, या फिर देरी से आए, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है कामकाजी महिलाओं को और उनके साथ जिनके घर पर सबसे ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन हो जाती है कि अब कैसे काम होगा, किस तरीके से काम किया जाए, या फिर कितनी देर अब जो मेड है उनका वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इन्हीं सब परेशानियों को दूर करते हुए एक ऑनलाइन ट्रेंड सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है, जिसमें ऐप बेस्ड एक ऐप है, जिसके जरिए आप मिनटों में घर पर जो है आप मेड बुला सकते हैं और प्रोफेशनल मेड कुछ ही मिनटों में आपके घर आएगी और हर तरीके का जो घर के काम होते हैं वो करेगी। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ, नोएडा की सोसाइटी मेरे पीछे है और आप ये बाहर का देख सकते हैं कि एक एरिया में आपको बहुत सारी महिलाएं जो है वो बैठी हुई नजर आ जाएगी। और ये जितनी भी महिलाएं आपको यहां पर दिख रही है, और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ घर के काम करने के लिए यहां पर है, इन्हें घर घर जाकर जो है वो भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये यहीं पर ही एक हाथों में इनके फोन आपको दिख जाएंगे और इसी फोन में एक घंटी बजती है जिसके ऊपर ये रेडी हो जाते हैं कि अब हमारा टाइम आ गया, अब हमारे को घर जाना है और हमारी बुकिंग जो है वो करनी है। तो कितना ज्यादा सरल हो गया है घर पर जो महिलाएं बैठी है उनके लिए भी, और जितनी भी ये महिलाएं जिनको काम करना है, जिनको नया रोजगार चाहिए, उनके लिए भी कितना ज्यादा ये आसान जो है वो अब हो चुका है।
0: अर्बन कंपनी प्रोंटो, स्नैबिट और बुक माई बाई जैसी इंस्टा हेल्प कंपनियों ने इस असंगठित क्षेत्र को एक नया और सुरक्षित डिजिटल रूप दे दिया है। न केवल निश्चित और गरिमामय काम, बल्कि इन महिलाओं की कमाई में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। 10 से 12 हजार महीना की कमाई बढ़कर 25 से 30 हजार रुपया महीना तक पहुंच गई।
1: जैसे हमारा काम पसंद आया मैडम लोगों, तो यहाँ पे हमारा रीडिंग दे देते हैं, इसी वजह से रीडिंग देख के हमारा ज्यादा बुकिंग आ जाते हैं।
4: अच्छा, मतलब ये एक्स्ट्रा पर्क्स जो है आपको जो अलग से मिलती है, रेटिंग्स जो मिलती है, इससे भी आपके काम में बहुत फायदा होता है।
1: हाँ, फायदा होता है और रेटिंग भी अच्छा होना चाहिए। और हमारा 28 ड्यूटी जो है ना वो भी पूरा करना चाहिए, 4 संडे है वो भी पूरा करना चाहिए, तभी हमारा रेटिंग अच्छा, मतलब पैसे हमारा बोनस वोनस अच्छा मिल जाते।
4: फुल कमाई मंथली अर्निंग दिखा रहे हैं आप, मतलब हाँ। ये देखिए आपको एक बार ये पूरी ऐप का मैं दिखा रही हूँ कि इन्होंने महीने में 24,255 रुपए की कमाई करी है। और आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया है, जहाँ पर यही सब जो है 3,000-4,000 रुपए में एक एक घर जो है जाकर काम करते थे, ये यहाँ के मंथली आपको दिखा रही हूँ कि लगभग 25,000। और अगर ज्यादा लोग बुकिंग कर ले तो उससे भी ज्यादा जो है कमाई हो सकती है। कोई दिन में किसी भी वक्त बुला सकते हैं, चाहे रात हो, सुबह हो, शाम हो,
5: 12 घंटे की ड्यूटी है तो 12 घंटे में चांदे बुला सकते हैं,
4: 12 घंटे में कभी भी बुला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 घंटे आपके पास होते हैं, आप कभी भी बुला सकते हो, लेकिन कमाई में कितना ज्यादा फर्क पड़ा। और ये चीज इनको और भी मजबूत बनाती है कि जहां पर ये पहले 3-4 हजार रुपए में, 1500 रुपए में, 2000 रुपए में काम करते थे, वहीं अब इतनी ज्यादा अच्छी कीमत देखकर भी इनको और भी हौसला मिलता है, और भी थोड़ी मजबूती इनको मिलती है कि किस तरीके से ये लोग जो है आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको टेंशन नहीं है कि कैश है, अभी ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है।
5: हाँ, सब
4: कि ऑनलाइन पैसे जो है वो मिल जाते हैं।
5: हाँ,
4: ठीक है। इसमें इनको बोनस भी मिलता है कि किस हिसाब से इनको बोनस मिल रहा है, और अलग अलग तरीके की जो छूट है वो भी दी गई है हालांकि, लेकिन जो सुविधा है वो वाकई में हो गई है, क्योंकि ये जो नई तकनीक है, इस नई तकनीक ने इन लोगों को काफी ज्यादा राहत दी है। पहले
0: पहले जिन महिलाओं को काम के लिए सोसाइटीज के चक्कर काटने पड़ते थे, छुट्टी और पैसे भी लोग मर्जी से देते थे, ऐप से जुड़ने के बाद उन्हें तय सैलरी मिलती है, तय छुट्टी मिलती है और सबसे बड़ी बात, लोग उन्हें अब काम वाली नहीं बल्कि डोमेस्टिक प्रोफेशनल कहकर इज्जत देते हैं।
1: हाँ सही है, यही मतलब जैसे मेट की सबसे पहले हम लोग काम किया तो ऐसे होता है कोई घर खाली भी करके जाते हैं और कोई ऐसे बीमार भी पड़ते तो छूट जाते वो काम, तो हमारा खाली बैठना पड़ता है। जो ये हमारा काम है तो हमारा ये फिक्स है काम, अगर हमारी तरफ से हम छुट्टी करें वो हमारे ड्यूटी नहीं उठाते हैं, और अगर हम ड्यूटी आ जाते तो हमारा पैसे अगर काम आए चाहे ना आए 10 घंटे के हिसाब से हमारा 700 रुपए आते
6: आ जाता है।
1: आ जाता है।
4: इससे पहले आपने घर में कभी काम किया है या फिर ये पहली बार ही इस ऐप के थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं?
1: नहीं पहले मैं तो 14 साल हो गया मेट के हिसाब से मैंने काम किया है
4: काम।
1: हाँ
5: इसमें थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है, काम भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत पैसा भी हो जाता है, रेस्ट भी हो जाता है।
0: सुरक्षा की गारंटी और रिप्लेसमेंट की सुविधा ने आज के शहरी परिवारों और इन डोमेस्टिक हेल्प के बीच भरोसे की एक नई मजबूत कड़ी जोड़ दी है, क्योंकि वास्तव में घर सिर्फ दीवारों और फर्नीचर से नहीं बनता बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों, उनकी खुशी और सुकून से बनता है, और इस सुकून को बनाए रखने में तकनीक और इंसानी हुनर का ये नया मेल एक मौन क्रांति ला रहा है, एक ऐसी क्रांति जो घर और समाज दोनों को बेहतर बना रही है।
7: हमारे साथ है हनी दास, आज आपकी मेड नहीं आई इसलिए आपने स्नैपचैट से बुलाया।
8: हाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग उसने फोन किया कि शी इज नॉट वेल, तो फिर मैंने फटाफट स्नैपचैट से बुला लिया।
7: कितनी बड़ी हेल्प लगती है, आपका क्या व्यू है इसको लेकर?
8: नहीं नहीं सही में मतलब इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए और इंस्टेंट हेल्प है, आपको वेट भी नहीं करना पड़ता, विद इन 10 मिनट्स आ जाती है और बहुत अच्छे से काम कर देती है, नो डाउट। तो अब सडनली यदि वो सुबह ही बोल दे कि नहीं आ रही हूँ तो सारे काम छूट जाते हैं, वो आ जाती है तो फिर बहुत कंफर्ट हो जाता है, मतलब आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
3: आज उनकी वाइफ की तबीयत खराब हुई, वैसे वो सब कुछ संभालती हैं, तो इसके लिए उन्होंने ऐप के जरिए मेड मंगवाई, घर की डस्टिंग करवाई और महज हमने देखा भी कि महज 26 रुपए में वो मेड आई, आधे घंटे तक उन्होंने काम किया और सारे घर की वो डस्टिंग करके चली गई। आपने खुद ऐप से उनको बुक किया था, ऐसे मौके पर जब घर में कोई दिक्कत हो आपको लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन मिला है अब?
9: नहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत ही इजी भी है और इंस्टेंट अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी बात है। जब भी आपको कुछ कराना हो इमरजेंसी में या जब आप फ्री हो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं और ठीक है, अच्छा है ये।
3: अगर इसी काम के लिए आप अल्टरनेट ऑप्शन अगर जैसे अभी हमने ढूंढा ऐप पर, अगर आप किसी बाहर जो मेट्स आते हैं और आप उनसे बात करने जाती तो क्या 26 रुपए में काम हो जाता?
10: 26 रुपए में तो वो कुछ भी काम नहीं करती हैं, उनके चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो मतलब अपने अकॉर्डिंग पैसे मांगती हैं।
11: तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मुझे अच्छा लगा, मतलब लाइक क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अच्छी होगी जिसने भी बनाई है, इट्स वेरी हेल्पफुल जिसने भी सोचा है, क्योंकि आप अपना जो टाइम है आप अपना आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। समटाइम्स ऐसे था कि एक बार मतलब आई एम अ होम मेकर ऑल्सो, आई टेक ट्यूशन एट होम, तो मेरा शेड्यूल जो बड़ा पैक्ड रहता है, तो एकदम अचानक मॉर्निंग में जैसे मेड ने कॉल कर दिया कि आई एम नॉट कमिंग, तो मैं अब परेशान हो जाए, स्नैपचैट है या फिर हमारा अर्बन क्लैप है, तो मैंने फटाफट से कॉल किया और आपको किसी भी टाइम कॉल करो इमरजेंसी में, देन यू कैन 5-10 मिनट में वो आ जाती हैं। उसके बाद बड़े मजे से उसने मेरा काम कर दिया।
0: अगर देखा जाए तो ये एक अद्भुत सामाजिक बदलाव है, तकनीक ने यहाँ दो जिंदगियों को एक साथ आजाद किया है, एक

0: बदलते हुए वक्त के साथ तालमेल मिलाते इस नए भारत में इंस्टा हेल्प एप्स अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन चुके हैं। ये कहानी है तकनीक और इंसान के उस मेल की जिसने हमारे जीने के अंदाज को आसान बना दिया। लेकिन शहरों में ये इंस्टा हेल्प क्रांति यूं ही नहीं आई बल्कि इसके प्रचार के लिए इंस्टा हेल्प कंपनियों ने शहरी सोसाइटीज में धुआंधार प्रचार किया। इस बिजनेस मॉडल और इसके फायदों को लेकर मेड्स और यूजर्स के बीच समान रूप से जागरूकता बढ़ाई, बकायदा डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया।
1: नहीं, संपर्क किया था कि इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन्स किए हैं, इन्होंने कैनोपीज लगाई हैं, इन्होंने लगातार इवेंट्स किए हैं, सोसाइटी को अवेयर कराया है। शुरुआत में कई रीजन्स में नहीं अवेलेबल थी, अब सारे रीजन्स में अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पे अच्छी चीज़ है क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जिसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। बेनिफिशियल फैमिलीज के लिए ये है कि उनको इंस्टेंटली हेल्प मिल जाती है जो पहले परेशानी हो रही
2: है। आरडब्ल्यू की सरदर्दी कम हुई है क्योंकि मेज इश्यू बहुत ज्यादा आप लोगों को ही संभालने पड़ते हैं, वो कि हमारे रेट बढ़ा दीजिए, रेट्स कम कर दीजिए, ड्यूटी आज इतने होने चाहिए, ये सही नहीं, ये सही नहीं है।
1: अब ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। अच्छा। क्योंकि अब फैमिलीज जो है उनको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो आप समस्या बता रही हैं हुई हैं, फैमिलीज ने उठाया है कि मेड्स मनमाने रेट चार्ज करने लगी हैं। जब से लेबर कोड इंप्लीमेंट हुआ था उसके बाद मेड्स ने बोला कि व्हाई नॉट वी आर पुट इनटू दिस लेबर कोड थिंग। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट है, इसके अंदर आप रेगुलेशन नहीं कर सकते। तो ये अच्छी चीज़ है कि ये एप्लीकेशन उस रेगुलेशन को लेके आ रहे हैं।
0: कॉमर्स की तर्ज पर शुरू हुआ ये बिजनेस फिलहाल मुख्य रूप से दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे महानगरों में केंद्रित है। भारत में फिलहाल ऑन डिमांड इंस्टेंट हाउस हेल्प पहुंचाने वाले इस नए सेगमेंट में सबसे बड़े तीन प्लेयर्स हैं, अर्बन कंपनी, प्रॉन्टो और स्नैबिट। इन तीनों ही एप्स के बीच में फिलहाल बहुत कड़ी टक्कर है। इन तीनों कंपनियों के एप्स पर इंस्टा हेल्प बुक करने की प्रक्रिया लगभग समान है। स्टेप वन है ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना। स्टेप टू है उसमें एड्रेस और अपने घर की सही लोकेशन सेट करना। स्टेप थ्री है सर्विस और टास्क का चुनाव, यानी जो काम आपको करवाना है उसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगले स्टेप में टाइम स्लॉट चुनना है। बुक नाउ या दिन में उपलब्ध कोई भी समय चूज किया जा सकता है। समय चूज करके पेमेंट करना है। आखिरी स्टेप है लाइव ट्रैकिंग और प्रोफेशनल के पहुँचने पर OTP वेरिफिकेशन।
3: Like we, as I said, culturally in India, we're all used to like, you know, taking help consistently from folks around us. And I've also grown up in a very similar environment. So I think what stayed with me was the fact that, you know, this was my mom's biggest problem. So on a given day, if her mood's not really good, one of the possible reasons is that, you know, the house help hasn't shown up. And I think, again, it, like, you know, growing up in those situations, I just realized that this is a fundamentally broken problem that is existing for decades, shows up twice or thrice every month and messes with the entire, harmony that a household operates with. And I think, like, you know, learning from those experiences, it gave me more conviction to build, operate, and actually find a solution in this category. Because as you said, it was not very intuitive. There were so many examples that it had not worked in the past.
4: Correct.
3: So it needed some irrational conviction to just go after it and say that, you know, this is going to work. And this is a problem worth solving. And I think everything that I've seen at home growing up, whether it's with my mom or even when I was living alone as a bachelor, I think all of those things played an important role.
0: अगर इन कंपनियों की ग्रोथ की बात करें तो मार्च 2026 की मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस सेगमेंट की कुल मंथली एक्टिव यूजर्स फिलहाल 10.4 मिलियन यानी 1 करोड़ को पार कर चुके हैं। इस यूजर बेस में अर्बन कंपनी के पास फिलहाल लगभग 65 लाख, प्रॉन्टो के पास लगभग 27 लाख और स्नैबिट के पास लगभग 12 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। जहां अर्बन कंपनी के कोर बिजनेस को 50,000 डेली बुकिंग्स तक पहुंचने में 6 साल का समय लगा था, वहीं इसके इंस्टा हेल्प वर्टिकल ने लॉन्च के महज 11 महीनों के भीतर ही 50,000 प्लस डेली बुकिंग का आंकड़ा छू लिया है। ये आंकड़े गवाह हैं कि भारत में क्विक हाउस हेल्प सेगमेंट में इंस्टा हेल्प कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही एक सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर ये कंपनियां इतने किफायती दामों पर हाउस हेल्प कैसे दे पा रही हैं और इनका भविष्य क्या है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पूरा मार्केट इस समय 2021 के ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स एप्स के शुरुआती दौर की तरह काम कर रहा है, जहां मुनाफे को छोड़कर केवल कंज्यूमर बिहेवियर

0: ग्राहकों की आदत बदलने पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी ग्राहकों को आराम की आदत लगाने पर फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि ये पूरा सेक्टर इस समय भारी कैश बर्न यानी घाटे के दौर से गुजर रहा है। जून 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने के चक्कर में इस पूरे सेक्टर का कुल मासिक कैश बर्न 16 से 17 मिलियन डॉलर यानी करीब 135 से 142 करोड़ रुपए प्रति महीने तक पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में ये कंपनियां ग्राहकों पर डिलीवरी चार्ज लगाना शुरू कर सकती हैं, जिसके बाद ही ये मुनाफे की तरफ बढ़ पाएंगी। लेकिन ये तो बिजनेस के आंकड़े हैं। जहाँ तक सवाल आम यूजर्स और मेड्स का है, उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि ये दो महिलाओं की आज़ादी की साझी दास्तां है। एक महिला को घर के काम से आज़ादी मिलती है ताकि वो अपने करियर को उड़ान दे सके, और दूसरी महिला को आर्थिक तंगी से आज़ादी मिलती है ताकि वो अपने बच्चों और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि ये दास्तां कामयाबी की राह पर ही आगे बढ़ेगी। नोएडा से मनीष चौरसिया, मनीषा लड्डा और गाजियाबाद से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आंसुओं की कहानी। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: This is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Right field, and it will...
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: आंध्र प्रदेश का नया अलूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण कन्या इकोनॉमिक पावर हाउस, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, विकास योजनाओं की भी देंगे सौगात। योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति माह, रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर हुई शुरू, 8,371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट किया पार। सावन का तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी, हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। एलपीजी सिलेंडर को लेकर राहत की खबर, 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती। कॉमनवेल्थ 2026 में भारत का डबल धमाका, जैवलिन थ्रो में भारत ने झटके 2 मेडल, नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
11: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पूरी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे बिना समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल दावे की, जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि एक्टर ऋतिक रोशन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की है। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस CJP के प्रदर्शन में शामिल छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
11: क्या जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का समर्थन करने के बाद अब एक्टर ऋतिक रोशन ने SP के प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की है। वायरल हो रहे दावे में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है करते हैं फैक्ट चेक।

0: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांगे मान लेने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियोस और दावे सोशल मीडिया पर अब भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक दावा इन दिनों सोशल मीडिया के बाजार की सुर्खियों में है। इस दावे को लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और डांसर ऋतिक रोशन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फोटो में ऋतिक रोशन की तस्वीर के साथ एक बयान छपा है। इस बयान में लिखा है, छात्रों को लैपटॉप दिए, यूपी को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव के दौर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेता और समर्थक इस वायरल दावे को बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं। वायरल दावे को अखिलेश यादव के पुराने विकास कार्यों और लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस दावे का हवाला देकर एक्टर ऋतिक रोशन को निशाने पर ले रहे हैं। लोग इस बयान पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं और ऋतिक रोशन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक यूजर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और सैफई महोत्सव फिर से शुरू होगा तो गरीब की रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई न्यूज पोर्टल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस तरह की खबर शेयर की जा रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स भी इस दावे को बिना किसी पड़ताल के शेयर कर रहे हैं।
1: हालांकि जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनकी तमाम मांगों को मानते हुए केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया है। उनकी जगह प्रहलाद जोशी की ताजपोशी भी हो गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़े हुए वीडियोस और दावों की बाढ़ सी आ गई है। उन्हीं में से एक ये दावा भी है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे, उस दौरान एक्टर ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए इसका समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था कि फिल्म सुपर 30 की शूटिंग के दौरान उन्होंने छात्रों के दर्द को महसूस किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक शिक्षक का किरदार निभाया था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी सीजेपी के प्रदर्शन को सपोर्ट किया था। कई समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में पहली ही नजर में ये मामला सही लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और सीजेपी का छात्र आंदोलन भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में माहौल अगर ऋतिक रोशन जैसे बड़े एक्टर ने सचमुच अखिलेश यादव के बारे में कोई बयान दिया होता तो इसके बारे में सभी जगहों पर खबरें छपी होती, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम तहकीकात करने के लिए पहुंची, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि की जा सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो मुख्य धारा की मीडिया एजेंसी या चैनल्स पर यह जानकारी क्यों नजर नहीं आई? हमारा दूसरा सवाल, क्या ऋतिक रोशन के नाम से गलत और बेबुनियाद जानकारी शेयर की जा रही है? इन सवालों के जवाब जब हमने ढूंढे हैं तो क्या जवाब मिले हैं, देखिए।
0: अपने सवालों के आधार पर हमने वायरल हो रहे दावे की पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले वायरल हो रहे दावे को अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तलाश किया, लेकिन हमें इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमारी टीम ने ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया, लेकिन वहां भी हमें इस तरह का कोई बयान या जानकारी नहीं मिली। हालांकि हमें इस दौरान साल 2015 का एक वीडियो जरूर मिला जब ऋतिक रोशन ने सैफई महोत्सव में शिरकत की थी। वो इस वीडियो में स्टेज पर डांस करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस समारोह में यूपी के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। इसके अलावा 12 नवंबर 2016 को पब्लिश हुई एक न्यूज रिपोर्ट भी हमें मिली जिसमें ऋतिक ने अखिलेश की तारीफ की थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में ऋतिक के शिरकत करने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव उनके अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी चाहेंगे ऋतिक वहां जरूर जाएंगे। अब ये साफ हो चुका था कि ऋतिक रोशन के नाम से किया जा रहा वायरल दावा पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। ऋतिक ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लिहाजा फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में ये दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल की जा रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
2: जनता पार्टी यानी सीजेपी की तीन मांगे मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नई शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को खोज खोज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किसी पुलिस थाने पर अफरा तफरी मची है और खूब हंगामा हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी दो लड़कियों को किसी घर के अंदर धकेलते हुए दिख रही है। वीडियो बनाने वाला शख्स उन लड़कियों को धमका भी रहा है। दरवाजे के बाहर गुस्साए लोगों की भीड़ है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और पुलिसकर्मी उन्हें रोक रही है। इस वीडियो को शेयर करने वाले कुछ यूजर्स का आरोप है कि पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों की पहचान कर उन्हें एक एक कर पकड़ रही है और पार्टी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रोटेस्ट में जो बच्चे थे अब वीडियो से ढूंढ ढूंढ कर पुलिस पकड़ रही है उनको। अगर ये सच है तो सीजेपी फॉर इंडिया कुछ करती क्यों नहीं। इन्हीं के कहने पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था ना, क्या प्रोटेस्ट के बाद उनकी सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी नहीं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लेकर कुछ ऐसी ही बातें कही जा रही है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल बच्चों पर आज के वक्त में कार्रवाई का है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम तहकीकात करने लगी और सबसे पहले वीडियो को गौर से देखा गया। वायरल वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि मामला दो पक्षों में हुई लड़ाई का है, क्योंकि दो लड़कियों और एक लड़के के बीच हो रही बातचीत से ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्षों में हो रही लड़ाई को शांत करने के लिए पुलिस बीच बचाव कर रही है, क्योंकि पुलिस दोनों पक्षों को अलग रखने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल हो रहे वीडियो का प्रमाणिकता क्या है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब हमारी तहकीकात में क्या मिले हैं इस रिपोर्ट में देखिए।
2: जब हमने पड़ताल शुरू की तो वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो में पुलिसकर्मी जैकेट पहने नजर आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि ये वीडियो सर्दियों का हो सकता है। वायरल वीडियो की कीफ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर ये वीडियो हमें एक सोशल मीडिया हैंडल पर मिला जिसे 16 फरवरी 2026 को पोस्ट किया गया था, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये वीडियो हालिया किसी घटना का नहीं है और इसका सीजेपी के प्रदर्शन से भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद अभी तक जाड़े का मौसम आया नहीं है। वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा था कि ये घटना दिल्ली के मॉरिस नगर थाने की है और ये मामला केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए नियमों के विरोध से जुड़ा है। इसके बाद कुछ खास कीवर्ड्स के जरिए सर्च करने पर हमें इससे जुड़ी मीडिया आउटलेट्स पर कई रिपोर्ट्स मिली। इनके मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते में वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने डीयू की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर नए यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन किया था, जबकि दूसरा पक्ष इन नियमों का विरोध कर रहा था। इसी बीच वहां यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर पहुंच गए जिनके साथ भी कहा सुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस को बुलाया गया और दोनों पक्षों के लोगों को मॉरिस नगर थाने जाना पड़ा। दोनों पक्षों की शिकायतों पर एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस FIR दर्ज की गई थी। वायरल वीडियो में इसी विवाद के दौरान थाने के भीतर बाहर मची अफरा तफरी कैद है। हालांकि ये बात सच है कि सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को देश के अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में बिहार और असम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए केस वापस ले लिए। सीजेपी ने 27 जुलाई की रात केंद्र सरकार के साथ मीटिंग की और इन गिरफ्तारियों को लेकर विरोध जताया था। 28 जुलाई को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आदेश दिया कि सभी नाबालिगों और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और बिना ठोस वजह पुलिस बल का इस्तेमाल गलत है। इस तरह से हमारी पड़ताल से ये साबित होता है कि वायरल वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। जिस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि सीजेपी प्रदर्शन में शामिल बच्चों को पुलिस पकड़ रही है वो पुराना है, क्योंकि वायरल वीडियो को फरवरी 2026 में ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's K-pop to start listening now.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
0: इन दिनों एक छोटे बच्चे का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे की स्कूल कॉपी दिखाई गई है। बच्चे को टास्क में महीनों के नाम लिखने का होमवर्क दिया गया है, लेकिन बच्चे ने जो जवाब लिखे उन्हें देखकर टीचर भी हैरान रह गई और कॉपी पर एक खास नोट लिख दिया, जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है। दरअसल बच्चे को स्कूल कॉपी में एक टास्क मिला था जिसमें उसे महीनों के नाम लिखने थे। बच्चे ने शुरुआत में जनवरी और फरवरी जैसे कुछ नाम सही लिखे, लेकिन इसके बाद उसने ऐसी चीजें लिखनी शुरू कर दी जिन्हें देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। बच्चे ने महीनों के लिस्ट में मंडे, संडे, स्कूल और हाउस जैसे शब्द भी जोड़ दिए। इतना ही नहीं, उसने माघ भी लिख दिया, जो भारतीय पंचांग के एक महीने का नाम माना जाता है। कॉपी देख कर लगता है कि बच्चे ने महीनों के नाम लिखते लिखते दिनों और दूसरी चीजों के नाम भी उसे लिस्ट में जोड़ दिए। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
15: हेलो हेलो साथियों,
0: वायरल हो रही इस वीडियो में ना कोई बड़ा स्टंट है ना कोई ड्रामा, बस बारिश में रंग बिरंगे रेनकोट पहनकर चलते छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश का मौसम है और तीन मासूम बच्चे रेनकोट पहनकर जा रहे हैं। एक बच्चे ने पीले रंग का रेनकोट पहना है तो दूसरे ने पिंक और तीसरे ने हरा। लेकिन सबसे प्यारी बात है इनकी चाल। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सड़क पर नन्हे नन्हे बतख के बच्चे कतार बनाकर चले जा रहे हों। वीडियो में पीछे से एक शख्स उन्हें आवाज देकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और इस आवाज को अनसुना करके चलते रहते हैं।

ये दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये खूबसूरत वीडियो मशहूर इंडो पॉलिश कपल मेरू और सिली का है, जो अक्सर अपने इंटर कल्चरल और पारिवारिक जीवन की झलक आज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी और उसके भारतीय दादा दादी के खूबसूरत मिलन का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि मेरू के माता पिता अपनी नन्ही पोती को पहली बार गोद में लिए हुए हैं। उनके चेहरों पर दादा दादी बनने की सुकून भरी खुशी साफ नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादा दादी बारी बारी से बच्ची को इतने प्यार से संभाल रहे हैं मानो उनके हाथों में दुनिया का सबसे अनमोल खजाना आ गया हो। वे बहुत सावधानी से बच्ची को थामे हुए हैं ताकि उसे पूरा आराम मिले और वह सुरक्षित महसूस करे। दादा दादी का बच्ची के छोटे से चेहरे को एकटक देखना और उसे दुलारना लोगों के दिलों को छू गया है।

0: ये वायरल तस्वीर एक पिता की अपने बच्चे को किसी भी परिस्थिति में पढ़ाने की प्रतिबद्धता की तस्दीक करती है। नदी का बहाव भयंकर और स्कूल उस पार, ऐसे में नदी को पार करना भी जरूरी था। तब पिता ने वही किया जो एक जिम्मेदार शख्स करता। तेज बहाव में पिता ने बेटे को कंधे पर बैठाया और उस पार ले गए। पिता के कर्तव्य पालन का ये वीडियो बिहार के पश्चिम चंपारण का बताया जा रहा है और लोग पिता के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो सिर्फ चेकिंग की कहानी नहीं है बल्कि इंसानियत, सम्मान और जिम्मेदारी का ऐसा उदाहरण है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक युवा फौजी ट्रेन के गेट के पास टॉयलेट के करीब फर्श पर बैठा नजर आता है। साफ दिखाई देता है कि उसे सफर के दौरान बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिली। इसी दौरान टिकट चेक करते हुए टीटी जितेंद्र मिश्रा वहां पहुंचते हैं। पहले वे बाकी यात्रियों की तरह उस जवान से भी टिकट दिखाने के लिए कहते हैं। देखने वालों को लगता है कि शायद अब उस पर जुर्माना लगेगा या उसे वहां से हटने के लिए कहा जाएगा। जवान अपना पहचान पत्र दिखाता है और अपनी परेशानी बताता है। वह बताता है कि उसे सीट नहीं मिल सकी, इसलिए मजबूरी में गेट के पास बैठकर सफर कर रहा है। उसके बाद सुनते ही टीटीई जितेंद्र मिश्रा का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। उन्होंने ना तो जवान से बहस की और ना ही उस पर कोई जुर्माना लगाया। इसके बजाय उन्होंने तुरंत अपने टैबलेट में उपलब्ध सीटों की जानकारी देखनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें स्लीपर कोच में खाली लोअर बर्थ मिल जाती है। इसके बाद वह खुद जवान को अपने साथ लेकर उस सीट तक पहुंचते हैं और आराम से बैठने के लिए कहते हैं। कई घंटों से असुविधा में सफर कर रहे उस जवान के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई देती है। उसके चेहरे की मुस्कान ही बता देती है कि एक छोटी सी मदद किसी के लिए कितनी बड़ी खुशी बन सकती है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चल।
2: क्या मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया में उथल पुथल मचाएगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन कुछ राशि वालों की दुर्घटना का कारण बनेगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन किसी राशि के रुके हुए काम पूरे करवाएगा? मंगल के राशि परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
3: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आंसुओं की कहानी। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: आंध्र प्रदेश को अलूरी एयरपोर्ट की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने 17,900 करोड़ की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रतिमाह। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से हुई शुरू। 8,371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट किया पार। सावन का आज तीसरा दिन। देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। एलपीजी सिलेंडर को लेकर राहत की खबर। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे। दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती। कॉमनवेल्थ 2026 में भारत का डबल धमाका। जैवलिन थ्रो में भारत ने झटके 2 मेडल। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज। भारत को अब तक 23 मेडल मिले।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के ऊपर गहरा असर डालेगा। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है और मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। मंगल का तांत्रिक मंत्र है ये। अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए बेहतर नहीं है, तो इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से पढ़िएगा। मंगल के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुंडली में मंगल दोष है या मंगल की बुरी दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से पढ़िए, मंगल की अशुभता आपको प्रभावित नहीं करेगी। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल का राशि परिवर्तन कैसा हो रहा है, इस परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान थे, 2 नंबर की राशि में मंगल मौजूद थे। अब मंगल 2 अगस्त को रात के समय में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि के मंगल को बहुत निगेटिव या बहुत पॉजिटिव नहीं मानते हैं, मंगल की ये स्थिति मध्यम मानी जाती है और मंगल की ये स्थिति थोड़ी बहुत कमजोरी की तरफ ही है और मंगल की ये कमजोर स्थिति 18 सितंबर तक बनी रहेगी। मिथुन का जो मंगल है, बुध की राशि का जो मंगल है, वो धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ता है, इसीलिए इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। मंगल का मिथुन राशि में जाना कुल मिला जुला के बहुत अच्छा या बहुत बेहतर नहीं रहेगा, इसके परिणाम दुनिया भर में उथल पुथल मचा सकते हैं, ये संभावना बन सकती है। देखिए, मंगल निरंकुशता का स्वामी है, लोकतंत्र के अपोजिट जो काम हो, जो काम उपद्रव से हो, जो काम झगड़े लड़ाई और विवादों से हो, उसके पीछे ज्यादातर मंगल होता है। तो अब ये जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन के समय मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं, मीन में वक्री शनि और मिथुन में मंगल, ये स्थिति बेहतर नहीं है। शनि मंगल का परस्पर केंद्र में होना निगेटिव है। ये समय दुनिया भर में अशांति फैला सकता है, अगला 1.5 महीना दुनिया भर में अशांति दे सकता है। भयंकर दुर्घटनाएं, वायुयान की दुर्घटनाएं और विस्फोट, एक्सप्लोजन, इस तरह की स्थिति बन सकती है। स्वतंत्र भारत की अपनी कुंडली में भी मिथुन का ही मंगल है, इसीलिए भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुए हैं, वो प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र और भी ज्यादा निगेटिव हो सकते हैं, राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है और बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जो राजनीति में बड़े पद पर बैठे हैं, उनका पद जा सकता है, पद छूट सकता है। जो तटीय इलाके हैं, कोस्टर एरियाज हैं, जैसे मुंबई है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, कोलकाता है, इन जगहों पर उपद्रव ज्यादा हो सकता है और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इन जगहों पर समस्या हो सकती है। तो मिथुन राशि में मंगल का जाना बेवजह राजनीति गर्मा सकता है, लोगों का प्रदर्शन बढ़ सकता है, झगड़े लड़ाइयां बढ़ने की नौबत आ सकती है और सरकार को इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। लोगों को पद छोड़ना पड़ सकता है, ये नौबत आ सकती है। देखिए, लगभग ये मान करके चलिए कि अगले एक डेढ़ महीने तक मंगल का ये प्रभाव देश दुनिया पर बना रहेगा और मंगल का प्रभाव जरा तेज होता है। 2 अगस्त को मंगल बदलेगा, 2 अगस्त से ही आपको अपने जीवन में और देश दुनिया में परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। अब अलग अलग राशियों का हाल जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा दिखाई दे रहा है। इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बेहतर होगी। पैसे रुपए इनके पास आएंगे। करियर में इनके नई शुरुआत हो सकती है, करियर में नई उन्नति की संभावनाएं दिख रही हैं। बहुत दिनों से जिस काम का आप प्रयास कर रहे थे, काम आपके रुके हुए थे, वो रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके काम की बाधाएं इस समय समाप्त होंगी। काम आपका रास्ते पर आना शुरू हो जाएगा। ये जो 1.25 महीने का समय है, मेष राशि वालों को बता दूं कि अगर वो मेहनत करेंगे, अगर वो प्रयास करेंगे, तो इस समय करियर में और जीवन में उनको बड़ी सफलता मिल सकती है, जीवन में उन्नति कर सकते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। वृषभ राशि। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं दिखा रहा है। धन के लिए आपकी समस्या बढ़ सकती है, पैसों का खर्चा बढ़ सकता है, आकस्मिक खर्चे आ सकते हैं और पैसों का प्रेशर इस समय आपके ऊपर हो सकता है। धन और पैसों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। वृषभ राशि वाले इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आंखों में, शरीर दर्द में, मसल्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके दर्द की तकलीफ, शरीर में पेन की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। जो वृषभ राशि के लोग हैं, इस समय उनको दुर्घटना से बचना चाहिए। घर में आराम से काम करें, सीढ़ी आराम से उतरें, गाड़ी आराम से चलाएं, वरना ऐसी चोट चपेट लग सकती है कि आपकी सर्जरी हो सकती है, आपकी शल्य चिकित्सा हो सकती है। और वृषभ राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको ज्यादा सावधानी रखनी है। इस समय कंप्लीटली आराम करिए, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में काम मत करिए। वृषभ राशि के लोग इस समय अपने बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, क्योंकि इस समय आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, आपके निर्णयों में गड़बड़ी हो सकती है। मिथुन राशि, मंगल का राशि प्रवेश मिथुन राशि में होने जा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ेगा। मिथुन वाले लोग अपनी आंखों का बहुत ध्यान दें, हड्डियों में चोट ना लगे, हड्डियों में बहुत दर्द ना हो, इस बात का ध्यान दें और आंखों और हड्डियों की समस्या से बचें। इस समय धन के खर्चे आपके एकदम से बढ़ सकते हैं और धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। पैसे रुपए के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। इस समय परिवार में शांति बनाए रखना आपके लिए ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ विवादों से बचें। इस समय मुकदमेबाजी की और विवाद की नौबत आ सकती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई मुकदमे और विवाद का मामला है, तो उसमें आप इस समय लापरवाही मत करिएगा। मिथुन वाले शांत रहें, पारिवारिक विवादों से, झगड़े लड़ाइयों से, मुकदमेबाजी से पूरी तरह बचने का प्रयास करें। कर्क राशि, मंगल के राशि परिवर्तन की वजह से आपके जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। आपके जीवन साथी को चोट चपेट लग सकती है और उनको पेट से संबंधित दिक्कत इस समय परेशान कर सकती है। आपको खुद दुर्घटनाओं से बचना है। कोई छोटी मोटी सर्जरी ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, कोई ऑपरेशन ना हो, इससे आपको बचाव करना है। आप अपने ऑफिस में शांति रखिएगा। उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बेवजह का झगड़ा हो सकता है, आप क्रोध में आकर अपने लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। शांति बनाए रखें। इस समय बिना वजह वाद विवाद में मत पड़िएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी के शिकार होंगे। कर्ज के लेन देन में सावधानी रखिएगा और कोई भी मामला अगर क्रोध का आता है, विवाद का आता है, कर्ज का आता है, तो शांति से उसको हल करने का प्रयास करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा मुश्किल समय चल रहा था, लेकिन सिंह वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन थोड़ी राहत लेकर के आया है। करियर का जो प्रेशर, जो तनाव, जो दबाव आपके ऊपर था, करियर का प्रेशर, तनाव और दबाव कम होगा। आपके करियर में कोई बड़ा लाभकारी बदलाव इस समय हो सकता है, करियर की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो इस समय मनचाहा स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन रही है। जो आपकी पुरानी समस्याएं चली आ रही थी, आपके प्रयास करने पर इस समय पुरानी समस्याएं परिवार की, ऑफिस की, पैसे की आपकी हल होंगी और आपको इस समय आकस्मिक धन का लाभ भी मिलेगा, ये संभावना आपके लिए बन रही है। सिंह वाले शनि की ढैया से परेशान हैं और मंगल का ऐसे समय में मिथुन राशि में जाना उनको राहत देगा, उनकी मुश्किलों को कम करेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कुल मिला के बेहतर संकेत दे रहा है। आपको करियर में सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। अगर किसी नौकरी का प्रयास किया है, कोई इंटरव्यू दिया है, तो इस समय आपको परिणाम अपने लिए मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय प्रयास करके देखिए, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो इस समय कन्या वालों को संपत्ति का फायदा हो सकता है। जोश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, समय आपका ठीक है, लेकिन पारिवारिक मामलों में, रिश्तों में क्रोध करके स्थिति मत बिगाड़िएगा, शांति से रहिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा।

जोखिम लेंगे, बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, इस समय मानसिक तनाव आपका बहुत बढ़ सकता है, मानसिक स्थितियां एकदम बिगड़ सकती हैं, परिवार वालों की वजह से, प्रेम संबंध की वजह से, रिश्तों की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहें, गाड़ी आराम से चलाएं और लंबी यात्राओं में सतर्क रहें। करियर में किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा, क्योंकि अगर करियर में कुछ नया शुरू करेंगे या करियर में कोई रिस्क लेंगे तो एकदम से आपका पैसा डूब सकता है या करियर में बड़ा नुकसान हो सकता है। अष्टम में मंगल गोचर करेगा, इसलिए शारीरिक परिश्रम बहुत ज्यादा मत करिएगा। बहुत स्ट्रेस वाले एक्सरसाइज करना, बहुत भारी वजन उठाना, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना, बहुत दौड़ना, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा मत करिएगा, केवल टहलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, करियर में आपके प्रॉब्लम हो सकती है मंगल के राशि बदलने से, दूसरों के चक्कर में आप मुश्किल में आ सकते हैं, इसीलिए ऑफिस में ज्यादा मित्रता मत करिए, बेवजह के झंझटों से बचिए वरना मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। करियर में अपना काम ठीक से करिए, लापरवाही मत करिए। पारिवारिक जीवन में जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ और जो परिवार के युवक बच्चे हैं उनके साथ विवाद हो सकता है। अगर आपके बेटा बेटी थोड़ी बड़ी उम्र के हैं तो उनके साथ विवादों से बचिएगा। पैरों में चोट न लगे इसका थोड़ा ध्यान धनु वालों को बनाए रखना है। और अगर कर्जा लिया है तो कर्ज समय पर चुकाइए, कर्ज को टालिए नहीं, और जब तक बहुत जरूरी ना हो इस समय कर्ज में उतरने से आपको बचना चाहिए। तो परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध का ध्यान रखिए। ऑफिस में दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पर मत लीजिए वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। मकर राशि, आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पैसे अब आपको मिलेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपकी नई शुरुआत हो सकती है, करियर में नए मौके मिल सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू दिया है तो नई नौकरी मिल जाएगी या करियर में कोई परिवर्तन करेंगे जो लाभकारी होगी। ऑफिस में, घर पर, काम में जो रुकावट, जो बाधा चली आ रही थी, काम की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। और इस समय अगर आप अपने करियर के लिए मेहनत करें, प्रयास करें तो आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी। मकर वाले अगले एक महीने में अपने करियर के लिए पूरी कोशिश करें और जो बड़े बड़े काम हैं, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनको निपटाने का प्रयास करें तो इनको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, चोट ना लगे और पेट में आपको दिक्कत ना हो, अपने खान पान और अपने डाइजेशन का ध्यान

0: ध्यान रखिएगा, जो आपके बड़े महत्वपूर्ण काम हैं, जिसके लिए आप बहुत समय से लगे हुए थे, अभी आपके महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अपने वैवाहिक जीवन का, अपने प्रेम संबंधों का, अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। बेवजह के वाद विवाद इस समय हो सकते हैं। अपने क्रोध और अपनी वाणी पर इस समय काबू रखिएगा। झगड़ा करने से बचें। पेट में कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करें और अभी हिम्मत मत हारिए। कुछ समय बाद आपका समय अच्छा हो जाएगा तो आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे। अभी कुछ समय के लिए धैर्य बनाए रखें। मीन राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके पारिवारिक मामलों को बिगाड़ सकता है। पति पत्नी के साथ या उनके परिवार के साथ समस्या हो सकती है। उनके परिवार की तरफ से दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए पारिवारिक मामलों में शांति और सावधानी बनाए रखें। इस समय परिवार के लोगों की वजह से आपका तनाव बढ़ सकता है, मेंटल टेंशन हो सकता है और आपको चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। देखिए, आप चाहें या न चाहें, इस समय आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और करियर में अचानक बदलाव हो सकता है, इसके लिए इस समय तैयार रहिए। जो आकस्मिक परिवर्तन हो रहा है उसको शांति से स्वीकार कर लें। पैसे के मामलों में, धन के मामलों में सतर्कता रखें। पैसे रुपए का लेन देन सावधानी से करें, क्योंकि अगर इस समय कर्ज लेंगे तो चुकाना कठिन होगा और कर्ज अगर देंगे, किसी को पैसा देंगे तो वापस पाना मुश्किल होगा। देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो मुख्यतः वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि के लिए ज्यादा नकारात्मक है। वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि के लिए मंगल का राशि परिवर्तन ज्यादा नकारात्मक दिख रहा है। और अगर हम सकारात्मक की बात करें तो मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। तो कुल मिलाकर 8 राशि के लोगों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है तो आप क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और शाम दोनों समय ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें। या अगर ये मंत्र कठिन लगता है तो सुबह और शाम दोनों समय ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और जितने दिन भी संभव हो इस एक महीने में गाय को गुड़ खिलाएं या मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें। और अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है तो लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग के पर्स, इनसे परहेज करिएगा। मंगल का राशि परिवर्तन अगर आपके लिए बहुत ही नकारात्मक है, जैसे मिथुन के लिए, वृषभ के लिए और वृश्चिक के लिए मंगल का राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है, तो रोज सुबह घर से निकलने के पहले एक बार भगवान कार्तिकेय का, जो शिव जी के पुत्र हैं, उनका स्मरण करके अगर घर से निकलेंगे तो किसी बड़ी समस्या से, किसी बड़ी दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे

0: LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सास बहु और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आंसुओं की कहानी। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।
2: It's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: और अब बात ऐसे लेदर की कर लेते हैं जिसको तैयार करने में ना तो किसी जानवर को नुकसान पहुंचा है और ना ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। रामजस कॉलेज के कुछ छात्रों ने केले के छिलके से बिल्कुल रियल लेदर की तरह दिखने वाला मटेरियल लेदर तैयार किया है, वो भी फ्लेक्सिबल, मजबूत और बिल्कुल असली लेदर जैसा टिकाऊ। यानी केले के छिलके जिन्हें अब तक कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता था, वो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार खास तरह के इस चमड़े को छात्रों ने सहर नाम दिया है।

0: चमड़े जैसे दिखने वाला ये उत्पाद केले के छिलके से बना है, चौंक गए ना। ये कमाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के छात्रों ने किया है। केला खाने के बाद जो छिलका आप बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, उससे इन होनहार छात्रों ने असली लेदर जैसा टिकाऊ मटेरियल बना दिया है।
1: लेदर से बनी चीजों का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, कभी लेदर से बने बैग का इस्तेमाल करते हैं, कभी बेल्ट, कभी जूते, तो कभी जैकेट। आप जानते हैं कि लेदर कैसे बनता है? उसके लिए हमें किसी पशु की स्किन चाहिए होती है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लेदर जैसा ही कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो किसी पशु के स्किन से नहीं बल्कि फ्रूट के फलों के छिलकों से बनाया गया है, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? ये वही चीज़ है जो कि बिल्कुल लेदर का ही काम करेगा, लेकिन इसे पूरी तरह से फल के छिलकों से तैयार किया गया है, और ये एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के बच्चों ने।
0: एक साल पहले इन छात्रों ने वीगन यानी पशु उत्पाद खासकर असली लेदर का विकल्प खोजना शुरू किया था, ताकि उससे बुकमार्क्स, वॉलेट यानी बटुआ और कीरिंग जैसे उत्पादों को तैयार किया जा सके।
1: शहर इसका नाम है और शहर का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। रामजस कॉलेज में हूँ मैं और वो तमाम बच्चे मेरे साथ में हैं जिन्होंने मिलकर इसको तैयार किया है।
2: जब हमने हमारा टेन्योर स्टार्ट किया था 2025 के अगस्त में, तब हमने सोचा कि एनिमल क्रुएल्टी एक बहुत बड़ा इशू है जो उठ रहा है, उसके कारण बहुत सारे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, उसका एनवायरनमेंट में बहुत बुरा प्रभाव है। उसको कम करने के लिए हमने रिसर्च करी, और अगस्त से हमने जो रिसर्च स्टार्ट करी उससे आते आते हमें बाद में पता चला कि फ्रूट पील्स के थ्रू हम एक ये वीगन लेदर बनाया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फिर आज हमारे पास ये एक है, और हमने बहुत सारे फ्रूट्स में ट्राई किया, कभी पाइनएप्पल में किया, कभी मैंगोज में किया, और भी बहुत सारे फ्रूट्स में यूज़ किया, तब जाके अभी हमने बनाना पील्स फाइनली से हमारा ये वीगन लेदर बनाया।
0: हालांकि हर इनोवेशन की तरह यह भी इतना आसान नहीं था। केले से पहले इन छात्रों ने बारी बारी से चार अलग अलग फलों के छिलके से लेदर जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
3: जब हमने शुरुआत करी तो लगभग हमने 5 फ्रूट्स का पूरी तरीके से हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करा। शुरुआत हमने मैंगो से करी, मैंगो के बाद फिर हम जो कोकोनट होता है उस पर हम पहुंचे, फिर पाइनएप्पल और ऑरेंज। जितने भी हमने फ्रूट्स इस्तेमाल करे उसमें हर एक में कोई ना कोई खामी थी, और उस खामियों पे आगे बढ़ते हुए फिर हमने बनाना पील्स पे जो है अपना प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज करा। जब हमने शुरुआत करी थी तब हमको ये समझ आया कि मैंगो जो है वो पूरा मैंगो डलता है, तो उसमें वेस्ट का कोई उसमें कनेक्शन नहीं था। उसके बाद फिर कोकोनट पे जब हम गए, कोकोनट जैसे कि हमें पता है कि बहुत रॉ होता है, उसमें फिर हमें ये दिक्कत आई कि जो हमारा जो प्रोडक्ट था वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं था जिससे हम वॉलेट्स हों या बेल्ट्स हों वो हम बना पाए।
0: नारियल, पाइनएप्पल यानी अनानास और संतरे की तुलना में आम से भी कुछ ऐसा ही मटेरियल बनने की संभावना जागी थी, लेकिन मकसद वेस्ट मटेरियल यानी फलों के छिलके से लेदर जैसा उत्पाद बनाना था। आम के मामले में पूरे फल का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिससे इनोवेशन का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। इसके अलावा दूसरे फलों के छिलके से बना मटेरियल केले के छिलके से बने मटेरियल की तरह मजबूत भी नहीं था।
1: मैंगो पूरा वो डाल रहे थे तो उसको यूज करने लायक बन सकता था, लेकिन इन्हें वेस्ट से उसको तैयार करना था। शुरुआत में जो चीजें बनी, देखिए आप, ये जो अभी बनकर तैयार हुआ है इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, और लेदर में भी थिकनेस होती है, इसीलिए हम एनिमल की स्किन को यूज करते हैं। इसकी थिकनेस को मैच करना था, इसीलिए प्रोसेस इतना लंबा रहा। शुरुआत में जो प्रोडक्ट्स बने दूसरे छिलकों से, उनकी आप थिकनेस देखिए, वो इतनी अच्छी नहीं थी, कई बार वो फट रहे थे, टूट रहे थे, इसलिए लगातार ये लोग एक्सपेरिमेंट फ्रूट्स के साथ करते गए और फाइनली जाकर फिर वो इस जगह तक पहुंचे हैं।
0: केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक फाइबर यानी रेशे और प्राकृतिक रसायन सेल्यूलोज होता है, जिसकी वजह से खास तरह के ट्रीटमेंट से तैयार हुए उत्पाद में काफी मजबूती और खिंचाव सहने की क्षमता बढ़ जाती है। उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पर्स, बेल्ट या दूसरे प्रोडक्ट को डिजाइन करना आसान हो जाएगा।
4: एक प्रोटोटाइप तैयार करने में हमें लगभग 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि जो ये हमारा पेस्ट बनता था उसको सूखने में बहुत टाइम लगता था, प्लस हमने अलग अलग फ्रूट्स के साथ ट्राई किया था, तो हर फ्रूट को अगेन ड्राई होने में, जैसे हम इसे सन ड्राई करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड जैसे हर प्रोटोटाइप में कुछ ना कुछ इशू आ रहा था, जैसे इसमें ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था, तो अगेन ये एक इशू था, या फिर कभी पहले ही फट जाता था, कभी कभार बहुत ज्यादा ही एकदम टाइट बन जाता था, तो ये वाले इश्यूज हमने फेस किए थे प्रोटोटाइपिंग के टाइम।
1: अगर टाइट बन जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत थिन रहेगा तो फिर उसको जितना लंबा लेदर चलता है उतना लंबा वो चल नहीं पाएगा।
0: हालांकि किसी भी तरह के इनोवेशन की राह में बार बार मिलने वाली असफलता से मनोबल गिरना एक आम बात है, पर इन छात्रों का जुनून कम नहीं हुआ। शिक्षकों की सलाह और सहयोग ने इनको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंत तक प्रेरित किया।
3: जैसे हमने अलग अलग फ्रूट्स ट्राई किए तो हमारा जैसे नहीं बना प्रोडक्ट, तो हमें जैसे तब लगता था कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम रुके नहीं। सबसे बड़ी बात, हम फिर ट्राई करते गए, हमने प्रोटोटाइपिंग सेशंस करे और फ्रूट्स एक्सप्लोर करे, रिसर्च करी, हमने बहुत ऑनलाइन ढूंढा, ऑफलाइन ढूंढा। एक लाइक मेरी प्रोफेसर से बात हुई, हमने उनको बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको ऐसे सोल्यूशन ला सकते हो। तो उसके बाद ही जो आज हमारा फाइनल प्रोटोटाइप है जो हमने आपको दिखाया है वो बन गया है।
0: फिलहाल लेदर जैसे दिखने वाले इस मटेरियल से बुकमार्क्स, वॉलेट यानी बटुआ और कीरिंग बनाने पर ही जोर है।
3: पहले तो हम इनिशियली छोटे प्रोडक्ट से ही शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज हम अपने मींस के उस पर ऑपरेट करना चाहते हैं। हम एक स्टूडेंट सोसाइटी हैं एंड वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग बुकमार्क्स, वॉलेट्स आउट ऑफ दिस। एंड अभी ये फाइनल प्रोटोटाइप नहीं है, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, मेक इट बेटर, बिकॉज अभी तक हमने जितनी रिसर्च करी है उसके हिसाब से वी हैव फाउंड द मोस्ट फीजिबल प्रोडक्ट, बट हम उस पर और रिसर्च करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक इट और अच्छा। And we are going to focus on bookmarks and wallets mainly.
1: Bookmarks, wallet और जो छोटे keyrings होते हैं उन तक आप जा रहे हो, पर अभी जो challenge है, मैंने भी कहीं पढ़ी थी एक report कि जो seats होती हैं हमारी गाड़ियों की उनका कुछ alternative तैयार हो रहा है, क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है?
2: जी, ये बिल्कुल एक वो ऑप्शन हो सकता है। अभी जैसा कि हमने बताया कि अभी हम एक शुरुआती स्टेज पे हैं, अभी हम एक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने तक हमें एक साल लग गए, पर अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस पता है, हमें पता है कि अब हमें आगे क्या करना है। हमने वॉलेट्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, बुकमार्क्स बनाने की स्टार्ट कर दी है। सीट कवर्स में सर बस यही होता है कि एक थिकनेस की और जो ड्यूरेबिलिटी होती है, एक वो जो शीट कवर होता है जो वाटर रेजिस्टेंस, हमें उस पर ध्यान देना है। तो अब बस हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमें बस इसमें वाटर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी ऐड करनी है, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा।
0: इस इको फ्रेंडली उत्पाद को बनाने में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 100% बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे बने उत्पादों को इस्तेमाल के बाद फेंक भी दिया जाए तो वे खुद ब खुद मिट्टी में गल जाएंगे। अब इन छात्रों की कोशिश है कि एनजीओ के जरिए उन कारीगरों तक पहुंचा जाए जो इससे चमड़े से बनने वाले उत्पादों की तरह प्रोडक्ट तैयार कर पाए, ताकि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इनको डिस्प्ले पर रखा जा सके और सैकड़ों हजारों छात्रों की बदौलत कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार समझने में मदद मिल सके। इसके बाद बाजार में केले के छिलके से बने प्रोडक्ट्स की कामयाबी की पटकथा लिखी जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: रोबोट अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि भविष्य के वर्कर बनने की तैयारी कर रहे हैं। चीन में रोबोट्स के लिए किंडरगार्टन बनाया गया है जहां उन्हें चलना, समझना और काम करना सिखाया जा रहा है। वहीं इन रोबोट्स को ट्रेन करने वाले एआई एक्सपर्ट्स तैयार करने के लिए खास टैलेंट ट्रेनिंग बेस भी शुरू कर रहे हैं। आखिर कैसे चीन भविष्य की इस नई दुनिया की नींव रख रहा है, देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये किसी स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं बल्कि रोबोट्स का किंडरगार्टन है। चीन के हांगझो में बने इस नेशनल पायलट बेस में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को कदम कदम पर ट्रेन किया जाता है। चलना, चीजों को पकड़ना, सीढ़ियां चढ़ना और फिर खेती, घर का काम, खाना बनाने से लेकर असली दुनिया के काम करना सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ 140 से ज्यादा एम्बॉडीड एआई रोबोट्स के लिए 40 एप्लीकेशन सीन और 20 डेटा कलेक्शन एनवायरनमेंट तैयार किए गए हैं ताकि भविष्य के ये रोबोट्स हर तरह की परिस्थितियों में कुशल वर्कर्स बन सके।
1: 我们的具身智能的公司也好，中世基地也好，数据采集厂也好，对于机器人来说，它都是幼儿园。
0: चीन अब सिर्फ रोबोट विकसित नहीं कर रहा बल्कि उनके लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और इसी दिशा में हुबेई प्रांत में एम्बॉडीड एआई का पहला टैलेंट ट्रेनिंग बेस शुरू किया गया है। इसका मकसद इंडस्ट्री और शिक्षा जगत के बीच की दूरी को कम करना है ताकि बढ़ती एआई इंडस्ट्री के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा सके और यही वजह है कि अब रोबोट्स के साथ साथ उन्हें सिखाने और संभालने वाले विशेषज्ञों पर भी बराबर फोकस किया जा रहा है।
2: 还有应用型的本科，那我们可能会聚焦，比如说数据采集。
0: चीन में रोबोट्स के लिए अब किंडरगार्टन से लेकर ट्रेनिंग स्कूल सब कुछ तैयार किए जा रहे हैं। हांगझो में जहां रोबोट्स को चलना, समझना और असली दुनिया में काम करना सिखाया जा रहा है, वहीं हुबेई में उन्हें ट्रेन करने वाले इंसानों की नई पीढ़ी तैयार की जा रही है। यानी भविष्य की तैयारी सिर्फ ऐसे रोबोट्स बनाने की नहीं है जो काम कर सके, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स तैयार करने की है जो इन मशीनों को और स्मार्ट बना सके। आने वाले वक्त में एआई की दौड़ में वही आगे होगा जो रोबोट्स और इंसानी हुनर दोनों को साथ लेकर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गर्मी का कहर ऐसा कि लोगों को ठंडक के लिए जमीन के नीचे बने शेल्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। चीन के हांगझो में 38 डिग्री से ऊपर पहुंचते तापमान के बीच एयर रेड शेल्टर को कूलिंग सेंटर में बदल दिया गया है। जहां बाहर धूप और उमस से लोग बेहाल हैं, वहीं अंदर ठंडक के साथ आराम, खेल और मनोरंजन की सुविधा मिल रही है। देखिए गर्मी से राहत की ये तस्वीरें।
0: और 38 डिग्री की तपती गर्मी और राहत का ठिकाना बना एयर रेड शेल्टर। चीन के हांगझो में भीषण हीटवेव के बीच इन शेल्टर्स को कूलिंग सेंटर्स में बदल दिया गया है। बाहर जहां पर पारा चढ़ रहा है, वहीं अंदर 29 डिग्री तापमान में लोग खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं और खेल कर गर्मी को मात दे रहे हैं। हांगझो के वेस्ट लेक पर जमीन की सतह 7 डिग्री के पार पहुंच गई है तो लोगों ने ठंडक के लिए शेल्टर्स का रुख किया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए ये सेंटर अब गर्मी से बचने की एक नई उम्मीद बन गए हैं। बढ़ते तापमान के दौर में शहरों की ये नई तैयारी बड़ी जरूरत बन चुकी है। स्थानीय लोगों के लिए ये कूलिंग सेंटर सिर्फ ठंडक की जगह नहीं बल्कि गर्मी से बचने के सुरक्षित ठिकाने भी हैं। कोई यहाँ पर खेलने आता है तो कोई परिवार के साथ वक्त बिताने आता है। वहीं बाहर से आए पर्यटकों के लिए भी गर्मी एक बड़ी चुनौती बन गई है। तेज धूप में कुछ कदम चलते ही पसीना और राहत के लिए पानी, ठंडे पेय और मिनी फैन जैसे इंतजाम जरूरी हो गए हैं। हांगझो की ये तस्वीरें सिर्फ गर्मी की कहानी नहीं कहती बल्कि बदलते मौसम के बढ़ते असर की ओर भी इशारा करती हैं। जब बाहर तापमान रिकॉर्ड छू रहा है तो इंसान अब राहत के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं। एयर रेड शेल्टर से कूलिंग सेंटर तक का ये सफर बताता है कि आने वाले वक्त में भीषण गर्मी से बचाव भी शहरों की बड़ी चुनौती बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चीन का झांगी जियाजी, वही जगह जिसे लोग फिल्म एवेटार की काल्पनिक दुनिया से जोड़ते हैं। अब इसी खूबसूरत वादी में रात का आसमान ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। 1500 ड्रोन ने हवा में ऐसी तस्वीरें बनाई कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। पहाड़ों, नदियों और रोशनी का ये शानदार संगम इस रिपोर्ट में देखिए।
1: ये नजारा किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं। चीन के झांग जियाजी में 1500 ड्रोन ने रात के आसमान को रोशनी की कैनवास में बदल दिया। हवा में उड़ते ड्रोन ने सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरी, बल्कि 3000 खड़ी चोटियों, तियांजी पर्वत, बुलिंग युआन गेट और इलाके की पहचान से जुड़ी शानदार कलाकृतियां आसमान में उकेर दी। कभी आसमान में पहाड़ों का आकार नजर आया तो कभी नदी, प्राकृतिक नजारे और झांग जियाजी की खास पहचान वाली आकृतियां रोशनी से जीवंत हो उठी। ड्रोन की सटीक उड़ान और रंगों के तालमेल ने रात के अंधेरे में एक चलता फिरता डिजिटल शो तैयार कर दिया। इस अनोखी आसमानी कला को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। लोगों ने इन रोशन कलाकृतियों को अपने कैमरों में कैद किया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट झांग जियाजी में ड्रोन और प्रकृति का ये संगम गर्मियों की रात को यादगार बना रहा है। 1500 ड्रोन, हजारों रोशनियां और आसमान पर बनी खूबसूरत तस्वीरें। झांग जियाजी में तकनीक ने जब प्रकृति की खूबसूरती से हाथ मिलाया तो आसमान खुद एक विशाल स्क्रीन बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: एलएसी पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से हुई शुरू। 8,371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट किया पार। सावन काज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगाजल। आंध्र प्रदेश का अलूरी एयरपोर्ट की सौगात, पीएम मोदी ने 17,900 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत, पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीना। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का है लक्ष्य। कॉमनवेल्थ गेम्स का 10वां दिन आज भारत के 10 बॉक्सर्स गोल्ड मेडल जीतने के लिए दिखाएंगे दमखम. अब तक 5 गोल्ड, 12 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज के साथ 23 पदक जीते. फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे दिन पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा. पहले दिन तोड़ा धुरंधर और पठान का रिकॉर्ड. वर्ल्ड वाइड खूब पसंद की जा रही है फिल्म.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
10: हरिद्वार में धूमधाम से चल रहे कांवड़ मेले का आज तीसरा दिन गंगा जल लेने लगातार धर्मनगरी पहुंच रहे हैं कांवड़िए. हर की पैड़ी सहित पूरे हरिद्वार में शिवमय हुआ माहौल. सजी धजी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं कांवड़िए. अब तक 10 लाख से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए. पंचक लगने के कारण कांवड़ियों की संख्या में कुछ कमी आई. अखाड़ा परिषद ने कांवड़ियों को दिया नियम कानून और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश. डीजे की आवाज कम रखने और आवश्यकता के हिसाब से जल उठाने की सलाह. घाटों पर और हाईवे पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी. कांवड़ियों से लिया जा रहा है इंतजामों और आवश्यकताओं पर फीडबैक. गोमुख से पवित्र गंगा जल लेकर चला मध्य प्रदेश के 150 से ज्यादा शिव भक्तों का विशाल जत्था. पदयात्रा करते हुए लौट रहे हैं कांवड़िए. मुरैना जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं सभी कांवड़िए. 22 जुलाई को गोमुख से गंगा जल लेकर पैदल पूरा कर रहे हैं 800 किलोमीटर का सफर. सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुआ बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार. भस्म आरती में शामिल हुए बड़ी तादाद में श्रद्धालु. सावन में श्रद्धालुओं के बीच बढ़ी चांदी के बेलपत्र और पूजा सामग्री की डिमांड. ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं सामग्री. सावन में चांदी सोने के नए नए डिजाइन की पेश की जा रही है पूजा सामग्री. सावन का सोमवार आने से पहले बाजारों में रौनक लगी. आस्था और भक्ति के महीने सावन के तीसरे दिन दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं भक्त. काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम और तमाम मंदिरों में भीड़. मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा ने दिलाई सतयुग के श्रवण कुमार की याद. शिव भक्त कांवड़ के एक पलड़े में अपने बुजुर्ग मां तो दूसरे पलड़े में बुजुर्ग चाचा को बैठाकर कर रहे हैं यात्रा. अपनी मां और चाचा को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे यशवीर हरिद्वार से ला रहे हैं गंगा जल. रास्ते में हर किसी को अपने माता पिता की सेवा करने का दे रहे हैं संदेश. हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए चाक चौबंद इंतजाम. डीएम मयूर दीक्षित ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा. देवघर में कांवड़ रूट पर नमो सेवा कैंप का शुभारंभ किया. कांवड़ यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं. अमरनाथ धाम के तीर्थयात्रियों के लिए आई खुशखबरी. बालटाल से फिर से शुरू हो गई पवित्र गुफा की यात्रा. आज 8371 तीर्थयात्रियों ने पार किया डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट. 5534 पुरुष और 2511 महिलाएं शामिल. भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से पिछले 4 दिन रोकी गई थी अमरनाथ यात्रा. अब दूर हुई मौसम की बाधाएं. उत्तराखंड में द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जाने वाले भक्त ट्रॉली के जरिए पार कर रहे हैं मोरखंडा नदी. नदी के तेज बहाव में बही पैदल लड़की अस्थाई पुलिया. भक्तों की कठिन परीक्षा ले रहे हैं महादेव. धाम जाने के लिए 16 किलोमीटर की होती है पैदल चढ़ाई. भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आस्था संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला. रात्रि में और निखरी श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता. आज सूर्यास्त के बाद भी मंदिर स्वर्णिम आभा में जगमगाता हुआ नजर आएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रात में रोशनी से नहाए हुए मंदिर की तस्वीरें जारी की। मंदिर का शिखर पर कोटा स्तंभ नक्काशी और परिसर रोशनी में हो रहे हैं जगमग। श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर की दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का मिल रहा है सौभाग्य। मंदिर की भव्यता शिल्प कला और वास्तु सौंदर्य दिखाने के लिए लाइटिंग को किया गया डिजाइन। पूरी गरिमा और आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने की कोशिश। मंदिर में दान प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ट्रस्ट ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू की। ऑनलाइन दान करने पर तुरंत मिलेगी डिजिटल रसीद। आंध्र प्रदेश को मिला नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयनगरम के भोगापुरम में पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस। 5,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार। अल्लूरी एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान हुआ शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। पीपीपी मॉडल पर बनाया गया हवाई अड्डा। यहां से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आज कर्नाटक का भी दौरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बेंगलुरु में फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन लॉन्च किया गया। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की ओर से खास पहल की गई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
12: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको।

0: summer hits. Blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आंसुओं की कहानी। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से हुई शुरू। 8,371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार किया। सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगाजल। आंध्र प्रदेश का अलूरी एयरपोर्ट की सौगात, पीएम मोदी ने 17,900 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीना। रक्षाबंधन पर पहली किश्त जारी करने का लक्ष्य। कॉमनवेल्थ गेम्स का 10वां दिन आज, भारत के 10 बॉक्सर गोल्ड जीतने के लिए दिखाएंगे दमखम। अब 5 गोल्ड, 12 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज के साथ 23 पदक। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे दिन पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। पहले दिन तोड़ा धुरंधर और पठान कर

0: रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड खूब पसंद की जा रही है फिल्म।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: वीकेंड आ गया है और सैटरडे का नाम सुनते ही मूड फुल ऑन पार्टी मूड में चला जाता है। कहीं फैमिली के साथ आउटिंग की प्लानिंग, कहीं दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, तो कहीं घर पर ही एंटरटेनमेंट का फुल ऑन सेलिब्रेशन। और आज तो टीवी की दुनिया में भी मूड बिल्कुल वीकेंड वाले सेलिब्रेशन की तरह है। तो चलिए आप भी हो जाइए हमारी इस एंटरटेनमेंट से भरपूर पार्टी में शामिल। शुरू करते हैं ये पार्टी, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।
3: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए प्रॉपर्टी पेपर्स को तलाशने के लिए शुरू होगी प्रथम के घर वालों की तलाश। कलावंती को होगा शक। युग और तन्वी के खिलाफ अक्का साहेब बनाएंगी मास्टर प्लान, कौन होगा हादसे का शिकार। रूठी जगधात्री को मनाने के लिए शिवाय करेंगे कोशिशें।

0: और साथ ही करेंगे मल्टी टैलेंट सचिन शर्मा से मुलाकात, जो एक कोरियोग्राफर के साथ साथ अब बनने जा रहे हैं एक रैपर, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। वीकेंड का सबसे खूबसूरत एहसास होता है दिल से मुस्कुराना, और बिल्कुल ऐसी है मन अति सुंदर की ये कहानी, क्योंकि जब मन होगा सुंदर तो पूरी दुनिया ही लगेगी सुंदर। तो क्या कुछ होना है राध्या और प्रथम की इस कहानी में, क्या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट, या फिर कोई नया मोड, या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ड्रामा? लेट्स चेक इट आउट।
1: हट्टा कट्टा संग चली घर वालों ने चाल,

0: घर वालों को प्रॉपर्टी पेपर्स की तलाश।
1: हम रात का फायदा उठा सकते हैं, समय कैसे भी करके आज रात ही वो पेपर्स ढूंढने होंगे।
0: क्या राध्या हो पाएगी कामयाब?
1: हमें पूरा यकीन है कि पेपर्स उन्होंने कहीं ना कहीं घर पे ही छुपाए हैं।
0: टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में कलावंती ने सभी घरवालों को अपना कैदी बना लिया है। ऐसे में राध्या पहुंच गई है अपने घरवालों से मिलने के लिए और अपनी परेशानी जाहिर करने, क्योंकि अब सभी घरवालों को सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स की तलाश है। वो हाथ में आएंगे तभी ये लोग कलावंती और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल पाएंगे।
1: देखिए, आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया तो क्या हुआ, हमारे पास अभी भी रात है, हम रात का फायदा उठा सकते हैं, तो समय कैसे भी करके आज रात ही वो पेपर्स ढूंढने होंगे।
2: ढूंढेंगे कैसे, हम सब तो यहाँ फंसे हैं।
1: हाँ पापा, आप परेशान मत होइए, हम कैसे ना कैसे करके सबको इस कमरे से बाहर निकाल लेंगे।
3: राध्या, पेपर्स है कहाँ, कहाँ ढूंढेंगे वो सब?
1: अहम भैया, मुझे तो लगता है कि पेपर, क्योंकि वो लोग घर से बाहर नहीं गए और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने हट्टा कट्टा को घर पे ही बुलाया है। हमें पूरा यकीन है कि पेपर्स उन्होंने कहीं ना कहीं घर पे ही छुपाए हैं।
4: राध्या बिल्कुल सही कह रही है, उन लोगों ने दो तीन कमरों में ताला भी लगाया, होना हो वो पेपर्स उन्हीं कमरों में से किसी एक में होंगे।
1: वो लोग हैं हम नहीं, हमें घर का चप्पा चप्पा पता है, अगर कोई भी वो पेपर्स ढूंढ सकता है ना तो वो हम है, हमें बस सतर्क होकर सारा काम करना होगा।
5: फैमिली अपने हक के लिए तो पूरी कोशिश कर रही है कि गलती से माने जो उर्मी की शादी के लिए एक्साइटमेंट में उसने जो कुछ भी किया, न उसे पता था न हमें भी पता था, और गलती से माने सारे पेपर्स पे साइन कर लिए। अब बाद में पता चला कि ये लोग तो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, ये हमारे घर में हमारी प्रॉपर्टी को लूटने के लिए आए हैं। अब किसी तरह से हम लोग घर में तरह तरह की, माँ को हार्ट, कम से कम माँ को हार्ट अटैक आ जाए, एक बहाना कर लें, एक हफ्ता घर में और रुक जाएं, ताकि हम उस पेपर्स जो इन लोगों ने गलती से साइन करवा के ले लिया है वो किसी तरह से हासिल कर लें। लेकिन ये जो लोग हमारे घर को लूटने आए हैं, ये भी लोग छोटे मोटे चोर नहीं हैं, दे आर वेरी शार्प, बहुत शातिर लोग हैं। तो अभी ये ड्रामा चल रहा है कि वो अपना खेल खेल रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि जल्दी से हो जाए कामयाब।
0: फिलहाल तो सभी घरवाले एक हो गए हैं और तो और दादी भी एक हो गई हैं। तभी तो जब राध्या कलावंती से सारी चाबियां चुरा कर ले आई तो दादी ने भी प्रथम के हाथों साबुन पकड़ा दिया ताकि उन चाबियों की डुप्लीकेट चाबी बनवाई जा सके।
6: मोंटो की चिंता तुम लोग मत करो, उस मोंटो को कैसे सुलाना ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम लोग बाकी सबको संभालो।
7: हमने उन लोगों को 7 दिन की मोहलत दी है, 7 दिन में उनको यहाँ से दादी की तबीयत ठीक होते ही बोला है कि भेज देना है वापस, सबको यहाँ से निकल जाना है। बट कहीं ना कहीं वो माइंड में तो है ही कि वो कुछ ना कुछ खुराफाती तो करेंगे ही, क्योंकि इस घर के पेपर्स हमारे पास हैं, तो सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे वो लोग भी, ऐसी छोड़ के, सब छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे। तो बस यही है कि उन लोगों ने आइडिया निकाली है, कुछ तो सोचा है, ऐसा राध्या ने सोचा है और सब उसके पीछे कर रहे हैं ये सब चीजें।
0: अब उर्मी का गुस्सा होना तो लाजमी है क्योंकि उसे धोखा जो मिला है। खैर, घर वालों ने मिलकर चाल चली और ये चाल तब रंग लाई जब हट्टा की नजर पड़ गई नशे की बोतल पर, और देखिए कैसे वो बोतल देखकर खुश हो गया और दौर उसे गटगट पीने लगा। इतना ही नहीं, वहाँ तो पहुँच गया कट्टा भी जो इस खुशी में शामिल होना चाहता है। भाई हट्टा तो बेहोश हो गया, कट्टा भी पीकर धुत हो रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। उसकी नजर पड़ जाती है दरवाजे पर जहाँ पर प्रथम और अहम नजर रखे हुए हैं। ऐसे में वो जैसे ही जाता है और पर्दा उठाता है तो सामने प्रथम और अहम को पाता है। इससे पहले कि वो अपनी बंदूक से कुछ कर पाता, प्रथम ने अपना हाथ उठा दिया, लेकिन वो हाथ कट्टा को लग नहीं पाया क्योंकि कट्टा तो बेहोश हो गया।
8: निकला।

0: इन लोगों को हमने राध्या ने प्लान किया है कि इनको खाने में या तेल मालिश करने जा रही है उसमें कुछ बेहोशी की दवा मिला दे और जो कट्टा बट्टा हैं जो भी है उनका नाम उनको शराब पिला दिया है ताकि मतलब किसी तरह से इनको बेहोश कर दिया जाए और हम अपने अपने रूम में बिकॉज हमारा घर है तो हमें अपने घर के बारे में एक एक चीज़ पता है कि हमारे सामान कहाँ होते हैं क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ रखी हुई है तो हम कोशिश बस उनको बेहोश करके हम लोग अपने अपने कमरे में सारे लोग स्प्रेड हो रहे हैं कि जा करके हम पेपर किसी तरह से हासिल कर लें।
1: भाई प्रथम अहम और घर वाले अलग अलग होकर अलग अलग कमरों में छानबीन कर रहे हैं और पेपर को तलाश रहे हैं। इस बात से अनजान कि कलावंती इनके गेम प्लान को चौपट करने आ रही है तभी तो देखिए जैसे ही कलावंती बाहर आई और उसने हट्टा कट्टा को बेहोश देखा वो परेशान हो गई और ऐसे में बबलू हट्टा को जगाने लगा।
2: ऐसा कुछ होगा नहीं वो तो पता ही है क्योंकि कलावंती इतनी भी बेवकूफ तो है नहीं जितने वो लोग समझते हैं तो कुछ ना कुछ तो करेगी ही वो और सबको उठा के वो आ तो रही है। अब देखते हैं क्या होता है और क्या उनकी हालत करती है वो।
1: हाँ जी कलावंती इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मानेगी। खैर कलावंती गुस्से में आकर अब ऐसी चाल चलेगी जिससे रजनी परेशान हो रही है क्योंकि कमरे में धुआं भर गया है। अब देखना होगा कि कैसे घरवाले रजनी की देखरेख करेंगे और कैसे प्रॉपर्टी पेपर्स को ढूंढेंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: वीकेंड की तरह प्यार को भी हर उम्र में सेलिब्रेट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है ये कहानी जिसका नाम है 30 के पार जब मिला प्यार। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको तन्वी और युग के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस वीकेंड इस कहानी में। क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई एंटरटेनिंग ट्विस्ट जो बदलेगा इस कहानी का मोड। लेते हैं अपने सवालों के जवाब लेकर चलते हैं आप सबको सीधा यहाँ।
1: अक्का साहिब का मास्टर प्लान।

0: माल है,
1: युग और तन्वी संग लुका छिपी।
0: अरे झोल माल है भाई, सब झोल माल है, हर सीधे रास्ते की
1: अक्का साहब का युग पर बात। दंगल टीवी के सीरियल 30 का पार जब मिला प्यार में आज युग के घरवाले बेहद खुश हैं, क्योंकि युग को पहली कामयाबी मिल गई है और वो जमींदार बन गया है। ऐसे में युग अपने पापा का आशीर्वाद ले रहा है और युग के पापा उसे सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही युग अक्का साहिब का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ा तो देखिए कैसे अक्का साहिब ने अपना गुस्सा दिखा दिया।
2: हमारे व्योम की जगह ना किसी ने ली है और ना कभी कोई लेगा।
1: अक्का साहिब की इस हरकत से घरवाले हैरान हैं और ये अक्का साहिब का सपना है। असल में तो युग अपने पापा का आशीर्वाद लेने के बाद अक्का साहिब का आशीर्वाद लेने पहुंचा और अक्का साहिब ने कैसे दिल पे पत्थर रख गुस्से को शांत कर उसे आशीर्वाद दिया है।
2: कि तुमने हमें कितना खुश किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाओ। अम्मा ने हमेशा तुम पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाया और तुम सर्वोदयों का नाम रोशन करते।
1: फिलहाल तो अक्का साहिब ने अपनी खुशी जाहिर की है, लेकिन उनके मन में चल रहा है मास्टर प्लान और इसी के लिए वो सभी से नजर छिपाकर पहुंच गई है उस फाइल रूम में जहां से युग फाइल लेने आएगा। ऐसे में अक्का साहिब ने बड़ी ही सावधानी से उस फाइल के कपबोर्ड के पैरों को काटना शुरू कर दिया ताकि जब युग यहां आए तो युग के ऊपर वो पूरी की पूरी अलमारी गिर जाए।

0: वहीं दूसरी ओर तन्वी परेशान हो रही है क्योंकि वो बार बार यू को कॉल लगा रही है और यू का कॉल लग ही नहीं रहा। खैर वो तो यू को ढूंढ रही है लेकिन यू वो तो कमरे में है और ये बात तो अक्का साहेब भी नहीं जानती। तभी तो वो जैसे ही छिपते छिपाते जाती हैं तो उन्हें युग के आने की आवाज़ सुनाई देती है और देखिए कैसे तीनों के बीच शुरू हो जाता है लुका छिपी का खेल।
1: तन्वी, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तन्वी,

0: भी ना एक जगह टिकना कभी सीखा ही नहीं है। इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाए मुझे जल्दी से उसके लिए सारे खाते वाले रजिस्टर्स ले लेने चाहिए।
1: फिलहाल तो वो फाइल लेने के लिए युग नहीं बल्कि तन्वी गई है। अब देखना होगा कि अक्का साहब की प्लानिंग के मुताबिक क्या हादसे का शिकार तन्वी हो जाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: देखिए वीकेंड का मजा तो तभी आता है जब हर चीज का परफेक्ट मिक्स हो, यानी यहाँ हो रिलैक्सेशन, यहाँ पार्टी भी हो, यहाँ फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, दोस्तों से भी मिले, शॉपिंग भी करें। और उसी तरह है हमारे पास आपके लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सांस बहु अर्पिता की एयरलाइन। तो आप भी हो जाइए इस पर सवार, लेकर चलते हैं हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
1: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री शिवाय से नाराज है, तभी तो देखिए कैसे उसके आने से पहले ही वो अपने सारे काम निपटाकर चली गई है सोने के लिए। लेकिन शिवाय ने भी हार नहीं मानी, उसे पता है कि जगधात्री को कैसे मनाना है, इसीलिए देखिए कैसे वो लेकर आ गया है जगधात्री के लिए एक गिलास दूध और तो और आते के साथ ही वो दूध के गुण भी बता रहा है। और तब भी जब जगधात्री की आंख नहीं खुलती तो देखिए कैसे करने लगता है ड्रामे बेहोश होने के, लेकिन जगधात्री उसकी बातें सुनकर उठ जाती है। बस फिर क्या, शिवाय ये देख खुश होता है और वो एक ग्लास दूध जगधात्री को पकड़ा देता है।
3: क्या है ये?
4: कैंडी विद मिल्क।
3: क्या?
4: हाँ।
3: शिवाय मैंने सोचा कि हल्दी वाला दूध है।
4: हल्दी वाला दूध? अरे हल्दी वाला दूध जो है ना वो एकदम छोटे वाले बच्चे पीते हैं, एकदम छोटे वाले बच्चे। लेकिन हम तो अडल्ट है ना, तो ये है कॉम्बो। ये हल्दी वाला दूध से ना 2x ज्यादा स्पीड में काम करता है और पेन युवा है। चलो चलो
3: इसका टेस्ट ना, तुम्हारा वो रिएक्शन जितना ही करता कम तुम।
4: हाँ मैं तो पीऊंगा ही, मुझे पीना चाहिए, है ना, पी लेता हूँ।
1: इतनी आसानी से जगधात्री का गुस्सा शांत नहीं होगा, ऐसे में शिवाय ने जगधात्री की बात मानते हुए गट गट करके पूरा दूध पी लिया और फिर शुरू की अपने दिल की बात। लेकिन जगधात्री उसकी बात सुने बिना ही चुपचाप चली गई है सोने के लिए और तो और उसने अपने कानों में रोई भी ठूस ली है ताकि शिवाय की आवाज तक ना सुनाई दे। खैर शिवाय को इससे पता चल ही गया है कि जगधात्री कितनी नाराज है। इतना ही नहीं, अगले दिन भी जगधात्री पूरी तरह से तैयार होकर शिवाय के आने से पहले ही अपना बैग उठाकर चलने लगती है। हालांकि शिवाय उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एज यूजुअल जगधात्री तो नाराज है।
4: बॉस, बॉस, बॉस, बॉस, बॉस, बॉस, बॉस, बॉस,

0: कलर्स के सीरियल मन्नत में विक्रांत को लेकर चल रहा है लुका छिपी का खेल। वही पहले तो रोनी और मल्ला बेहोश विक्रांत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे छिपा रहे हैं। ऐसे में मल्ला को एहसास होता है कि जिस कमरे में वो विक्रांत को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ कोई है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती ये जानने के लिए कि कौन है, तभी बाहर से उन्हें आवाज सुनाई दे जाती है, जिसके चलते मल्ला और रोनी दोनों को ही बाहर जाना पड़ता है। बस फिर क्या, मौके का फायदा उठाता है धैर और देखिए कैसे वो बाहर आकर बन जाता है बहरूपिया और बेहोश विक्रांत को फिर से व्हील चेयर पर उठाकर ले जाता है। और वही कहानी में लाता है ट्विस्ट, क्योंकि विक्रांत को न सिर्फ मन्नत ढूंढ रही है बल्कि सम्रागी और अंकित भी ढूंढ रहे हैं, जो पहुंच गए हैं सीसीटीवी से ये जानने के लिए कि आखिर विक्रांत गया तो गया कहाँ, पर उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। इतना ही नहीं, मन्नत भी सीसीटीवी फुटेज चेक करने पहुंची है और देखिए कैसे पूरे फुटेज की छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन है जो विक्रांत को लेकर गया है। इसी बीच धैर्य भी परेशान हो रहा है इस बात को लेकर कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। खैर वहाँ पुलिस आ जाती है और मन्नत उन्हें रो रो कर गुहार लगाती है। बस फिर क्या, पुलिस भी शुरू कर देती है छानबीन उस सीसीटीवी फुटेज में।
1: चिंता मत करिए, मैं हॉस्पिटल का एक एक कोना छान मारता हूँ, कुछ नहीं होगा आपके पति को। अवड़े एक एक कोना चेक करो, चलो चलो
2: बाकी
1: चलिए एक एक कोना चेक करिए।
0: भाई पुलिस तो विक्रांत को ढूंढने चली गई है, लेकिन मन्नत अब भी उस सीसीटीवी फुटेज में सुराग ढूंढने की कोशिश में लगी है। इसी बीच उसकी तबीयत भी बिगड़ती है, जिसको लेकर रोनी मल्ला दोनों ही परेशान हो जाते हैं।
3: देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। हम सब यहाँ है और पुलिस भी ढूंढ रही है ना विक्रांत को, उसे कुछ नहीं होगा बेटा, उसे कुछ नहीं होगा। चलो तुम थोड़ा सा आराम करो।
4: कुछ नहीं होगा, तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे रेस्ट की सब जरूरत है, तो चल।
0: भाई इतना ढूंढने पर भी मन्नत को विक्रांत तो नहीं मिला, पर मन्नत को ये पता चल गया है कि कैसे धैर्य से सच निकलवाया जा सकता है। तभी तो जब बेहोश मन्नत को होश आता है तो देखिए कैसे वो धैर्य का हाथ पकड़कर उससे मदद की गुहार लगाती है। बस फिर क्या, धैर्य फिर से पिघल जाता है और उसे तो लगता है कि मन्नत की मदद कर वो मन्नत का दिल जीत लेगा। ऐसे में देखिए कैसे उसने पूरे कॉन्फिडेंस से विक्रांत को ढूंढना तय कर लिया। अब उसे क्या पता कि ये तो मन्नत की चाल है धैर्य को अपने से दूर भगाने की।
3: अगर आपने इस बेड से नीचे कदम रखा, रेस्क्यू रेस्क्यू।

0: वीकेंड तो अभी जवान है और एंटरटेनमेंट की ये पार्टी भी, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारे इस एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ, जहां एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज कर रही है आप सबका इंतजार। वेल, यहां तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। मैं जानती हूं अब नहीं बुझाऊंगी मैं ये पहेलियां, लेकर चलते हैं आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर।
1: एक बार फिर से नजर आई डायन मोहना, एक बार फिर से नजर आया अंश, एक बार फिर से नजर आई पिया। जी नहीं, ये नजर का कोई नया सीजन नहीं, बल्कि है एक नया शो। ये नजर है एक नए शो लव टू हेट यू के, जहां पर एक बार रियूनियन हो रहा है मोनालिसा, हर्ष राजपूत और नियति फतनानी का। जी हां, सीरियल नजर के ये तीनों किरदार एक बार फिर से हैं, लेकिन इस बार यहां कोई डायन नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि है एक सिंपल आज के जमाने की लव स्टोरी। मुंबई में हुआ इस शो का लॉन्च, जहां पर हर्ष राजपूत, नियति फतनानी और मोनालिसा एक साथ जमा हुए। भाई, इस शो में इनके अलावा और भी कलाकार हैं, सबने मिलकर इस शो को लॉन्च किया।

0: तो भाई मिलते हैं टीम नजर से और जानते हैं कि ये रियूनियन क्या है।
1: ऑलराइट टीवी में ये मेरा पहला है, आप लोग तो पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, हिट शो कुछ सीजन दे चुके हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस
2: राउंड। एंड आई एम श्योर ये वाला और ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप अब आ गई हैं।
1: ओह माय गॉड,
2: सो लव टू हेट यू इज गोना बी मोर यू नो ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड अमेजिंग।
3: एंड ऑडियंस ने हमें पहले बहुत प्यार दिया है एंड वी आर वेरी श्योर कि अभी भी हमें कंटिन्यूअस प्यार देंगे और इनफैक्ट बहुत एंटरटेन होंगे बिकॉज हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं, हमारी टीम भी बहुत मेहनत से शो बना रही है एंड ऑल जस्ट टू एंटरटेन यू गाइस।
2: सो स्टे ट्यून्ड, लव टू हेट यू।
0: तो उम्मीद है जिस तरह नजर को प्यार मिला उसी तरह लव टू हेट यू को भी प्यार मिले क्योंकि सीरियल नजर के सारे कलाकार कुछ नए अंदाज में लेकर आए हैं नई लाइफ स्टोरी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: अब वीकेंड की पार्टी हमारे लिए तब और भी एक्साइटिंग हो जाती है जब उसमें आते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस. और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जहां कुछ खबरें करती हैं रॉक तो कुछ करती हैं हमें शॉक. जी हाँ, सही पहचाना आपने. लेकर चलते हैं हम आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
1: मीनाक्षी जी, आज आप आए हैं और हमारे बच्चों ने आपके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स के लिए.
2: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में खास मेहमान बनकर आने वाली है मीनाक्षी शेषाद्री, जिसका हाल ही में प्रोमो आया है. और इस प्रोमो में देख लीजिए कि कैसे सभी कोरियोग्राफर मीनाक्षी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं.

देख लीजिए कलर्स पर आने वाले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 का ये नया प्रोमो, जहां पर हो गया है आगाज आने वाले खतरों का। और सभी प्रतियोगी तैयार हैं उन खतरों को खेलने के लिए।

0: खबरों की माने तो एकता कपूर की आने वाली फिल्म रागिनी MMS 3 में आरजे महविश एक नए किरदार में नजर आ सकती है।
1: थोड़ी सी बातचीत हो जाए तो विकेट पर लग जाते हैं चार चांद, और बिल्कुल ऐसा ही करेंगी आपके लिए हमारी टीम सास बहू और बेटियां, क्योंकि आपके फेवरेट सितारे से ही तो की है हमारी टीम ने ये खास मुलाकात। यहाँ तो जाना है हमने इनके जिंदगी के सफर के बारे में और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी, लेकर चलते हैं आपको इनके पास।
2: नाम मेरा स्लेज।
3: Hi, my name is Sachin Sharma.
2: What's up, Bombay? Sharmaji in the house.
0: ये है डांस के दीवाने

0: कुकिंग भी करते हैं।
1: तेरी बात न पूछना सोता भाई, मचेगी तबाही अरे सोड़ भाई, शर्मा से तबाही सरपंच बोले कून तेरे बाप चाचा ताई बोले मन ने जो माई।
0: स्प्लिट्सविला, डांस इंडिया डांस, रोडीज जैसे रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। भाई हम बात कर रहे हैं सचिन शर्मा यानी कि शर्मा जी की। भाई सचिन तो एक है लेकिन इनके टैलेंट अनेक है।
1: सपनों के साथ दिल्ली का रोड लाया, दोस्त बने सांप सबको जंगल में छोड़ आया, हाईवे के बगल में।
0: वैसे आपको बता दे कि जल्द ही शर्मा जी का नया म्यूजिक वीडियो आया है जिसका नाम है दिल्ली से बॉम्बे, जिसके बारे में सचिन आज हमें कई बातें बताने वाले हैं।

0: हम सचिन के बारे में कई और बातें जानेंगे, देखेंगे उनका दिनचर्या, मिलेंगे उनके मम्मी पापा से, देखेंगे उनका सिंगिंग, कुकिंग और डांसिंग टैलेंट, साथ ही उनके घर की करेंगे सैर। तो चलिए सीधा चलते हैं सचिन के घर पर और करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की शुरुआत।
1: मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं चल गया
2: सास बहू और बेटिया के। आज के खास मेहमान है सचिन शर्मा, AKA शर्मा जी। तो शर्मा जी इन द हाउस होते हैं हमेशा, लेकिन आज हम शर्मा जी के घर पे हैं।
3: ये अच्छा बोला हमने कि शर्मा जी इन द हाउस होते हैं हमेशा, आज हम शर्मा जी के हाउस में। अमेजिंग, नाइस।
2: तो सचिन आज मतलब सब लोग जानेंगे सचिन को कि कितना सचिन बदल गया है, राइट? बदला हुआ सचिन को आज हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पे।
3: मुझे लगता है कि 12-13 साल में काफी कुछ बदल गया है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो ये बदल गया है वो ये बदल गया है कि पहले रिश्तेदार ताने मारा करते थे, अब वही रिश्तेदार बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। एंड सबसे बड़ा जो चेंज है वो मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे बोलूंगा तो बड़ा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत जता रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
0: तो भाई घर में एंटर करते ही सबसे पहले सचिन ने मिलवाया अपने मम्मी पापा से, जो इन दिनों मुंबई आए हुए हैं।
3: मम्मी पापा हैं बॉम्बे में, एंड देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मस्त, समझ रहे हो ये चेहरे देख रहे हो आप।
0: और सचिन अपने मम्मी पापा से बेहद प्यार करते हैं, और आज तो है मम्मी पापा के लिए प्राउड मोमेंट। देखिए कैसे देखने को मिली मम्मी पापा और बेटे की ये प्यारी सी बॉन्डिंग।
3: हमेशा कोई भी चीज करने जाता हूँ, इट्स अ रिचुअल। जब से मैं छोटा था, जब मैं 12-13 साल का था, 11-12 साल का था, तब से पापा ने थप्पड़ मार मार के सिखाया है कि पैर छुआ करो बड़ों के। और पता है एक टाइम के बाद ना हमारे मन में इतना खौफ बैठ गया, जैसे हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे ना, हम लोगों ने पैर छू लिए हैं, पर हम लोग ये वेट करते थे कि पापा ने वो देखा है कि नहीं देखा है, अगर गलती से मिस कर दिया तो वो चाटा पड़ेगा। तो ये वहाँ से आता है डेफिनेटली। एंड आज जेन्युइनली मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल ही हम लोग बिलबोर्ड देख कर आए थे, हमारा जो लगा है अभी रिसेंटली। पापा बिलबोर्ड देख के कैसा लगा, मैं आपसे जानना चाहता
4: हूँ। देखो मैंने तो इसको ये आठ साल का था, स्कूल से आता था, बस्ते को रखता था, लंच वंच करके घर पे खाना वाना खा के ये 4 बजे घर से निकल जाता था। मैं इसको बोलता था भाई कहाँ जा रहा, बोला पापा सिटी पार्क में जा रहा हूँ, तो वहाँ ये डांस वगैरह करता था। तो इसको जब से लोग इतना पसंद करते थे, पार्क में ये छलांग मारता, वहाँ डांस करता, कूदता, खेलता, तो कुछ इसने और प्रैक्टिस करी तो लोग इसको अपने आप ही पैसे देने लगे। ये 8 साल का था उस टाइम। मैं बोला ये पैसे कहाँ से ला रहा, बोला पापा मैं वहाँ डांस
3: करता था कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे ना लोकल शादियाँ होती हैं, तो लोकल शादियों में क्या होता था ना, हमारा क्रू था गुड लक बॉयज, और हम लोग शादियों में जाते थे, डांस वांस करते थे फुल, एकदम यू नो स्टंट मारते थे, ब्रेकिंग के कुछ मूव्स होते हैं, और वहाँ से वो लोग कोई 500 के रुपये उड़ा रहा है, कोई 100 रुपये उड़ा रहा है, तो ऐसा बहुत बहुत चंदा इकट्ठा किया हम लोगों ने।
5: हाँ जिंदगी में एक देर भैंस देखने चला गया था, रेलगाड़ी में भैंस आई थी होटल में, तो बस्ता रख गया टाइम थे स्कूल में, और टाइम से खाना खा गया, टाइम से बस्ता ले आया। मैंने कि कहाँ से आया, कि स्कूल से आया, मुझे पता लग गई। मैंने इसमें ऐसा चिमटे बजाए थे 2, उस दिन से घंटी लगती तो खाना थाली में जाता पर मुँह में नहीं जाता, 2 ही बार मारा जी मैंने। एक बार इसने 20 रुपये चुराए थे, उसके ऊपर मारा था मैंने कही
3: मुझे नेशनल। हाँ मम्मी लोग तो मम्मी के पैसे चुराता है,
5: मार की मारते हैं, जिंदगी का नहीं है, ये सुधर गया कहीं आज तक भी हमने इसकी कोई शिकायत, क्योंकि निया कोई सीमा नहीं लग रही थी अच्छे लगने की। माँ बाप ये नहीं कह सकता कितनी अच्छा लगता है, कि माँ बाप के निया तो जो कुछ है बेटे ही बेटा रहता है।
3: गाइज मैं तुमको एक जेन्युइनली एक बात बताता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था डी आई डिजिटल मास्टर के लिए आया था, तो मुझे पता है कि मुझे उस टाइम पे उतनी समझ भी नहीं थी क्योंकि इतना छोटा था, बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ये बात बहुत बार भूल चुका हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मम्मी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था मुझे पहली बार बॉम्बे भेजने के लिए। और शायद मुझे लगता है कि वो इतने बड़े जो सेक्रीफाइसेज है ना, जो ये कुछ भी हुआ है पिछले 12-13 सालों में, जो कुछ भी मेहनत हुई है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, हार्ट ब्रेक हुए हैं, इतना एग्जॉशन जो डे एंड नाइट का होता है ना इस शहर में, एंड आई रियली फील कि आज वो मुझे वर्थ इट होता हुआ दिखता है जब मैं अपनी फोटो बिलबोर्ड पे दिखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि किसी को मेरा गाना पसंद आ रहा है, कोई दिल्ली से बॉम्बे गाने पे वाइब कर रहा है. क्योंकि एक जो लड़का सिटी पार्क में सिर्फ फ्लिप करता था, आज वो इंडिविजुअली अपने गाने रिलीज कर रहा है. एंड उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यार देखो, माँ बाप जिंदगी पर देखते ही हैं, हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं, वो कभी जताएंगे नहीं. एंड इन्होंने भी जितना झेला है, जितना देखा है, वो मैं तुमको बयान नहीं कर सकता, वो मुझे पता है, मेरे दिल को पता है. मुझे बस ऐसा लगता है कि दुनिया में गाने हिट हों, काम हो या ना हो बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है कि बस ये दोनों खुश रहने चाहिए लाइफ में, बस वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
4: इसका गाना मुझे शहर मेरा फरीदाबाद जेब में करोड़ लाया, ऐसा ही ये गाना.
2: दोस्त बने साहब
4: जंगल में छोड़ आया.
0: भाई इनका बॉन्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये साथ साथ डांस भी कर रहे हैं और देखने को मिली ये हैप्पी फैमिली.

0: भाई सचिन ने अपना ये आशियाना बड़े ही प्यार से बनाया है और इसे सजाया है, और आज हम देखेंगे कैसा है सचिन का होम स्वीट होम।
1: देखो डांस मस्ती तो चलती रहेगी, पर इस फ्लैट को हमने घर कैसे बनाया वो तुमको दिखाते हैं। जो मम्मी पापा को तो मजा आ गया था, पहली बार घुसी मम्मी तो एलईडी देख के बोली इतना बड़ा टीवी ये कितना पैसा देते हैं लोग, मेरे को पता है आज सारी बातें बताऊंगा मम्मी आपकी। आओ ये गाइस हमारा स्टूडियो जहाँ पे हम लोग यूजुअली काम वाम करते हैं, जितना भी कंटेंट आप इंटरनेट पे देखते हो जो फटता है, जो लोग बोलते हैं कि वाओ क्या वीडियो बनाया है, क्या मेहनत हुई है, ये सारी मेहनत हम लोग 10-10 घंटे यहाँ मम्मी पकौड़े बना के देती रहती है, और मज़ा आता है एडिट करने में, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं होता, बहुत मज़े करते हैं हम लोग, पर मज़ा आता है गाइस यहाँ पे कंटेंट कुक करने में। डेफिनेटली 10-10 घंटे लगते हैं यार कंटेंट की, इसमें मजाक की बात नहीं है। और ये है मेरा रूम, लाइफ में सांसें थोड़ी कम चल रही हैं इसलिए हमने प्लांट लगा रखे हैं थोड़े बहुत, ठीक है ये प्लांट है। और ये है मेरे अवार्ड, दोनों अवार्ड, लायंस गोल्ड अवार्ड, ये है लायंस गोल्ड अवार्ड, तो मैंने एक इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो किया था वार्नर के लिए, रिक एंड करेनियम का, उसके लिए मुझे मिला था ये बेस्ट डायरेक्शन के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने ना डायरेक्ट भी किया है, कोरियोग्राफी भी करी है, नॉन फिक्शन शोज भी करे हैं। एंड मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, आई थिंक आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है, थोड़ा सा हो गया है। ये है एसके टीवी वाणिज्य एशिया, अगर आप लोगों ने नचमलिया शो देखा हो, सब लोगों ने देखा ही होगा टेलीविजन पे, तो ये मेरे लिए इतना बड़ा शिफ्ट था। मम्मी और पापा शायद ये जानते हैं कि मैं पुनीत सर एंड जितने भी ये जो मेन स्ट्रीम में कोरियोग्राफर्स काम करते थे, धर्मेश भाई, इन लोगों को देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और ये मैं ये शो था, एक इकलौता ऐसा शो था जहाँ पे मैंने ऐसा कोरियोग्राफर अपने आप को ऐसा प्रूव किया कि कोई नया लड़का मार्केट में आ गया है। ये है स्प्लिट्सविला 15, मुझे देखो ये स्प्लिट्सविला वालों और एमटीवी वालों को मुझसे क्या तकलीफ है भाई, मुझसे इतना प्यार करते हो, उसके बाद भी पता है मुझे क्या भेजा है, ये किसके लिए था, हाँ उल्टा रखा हुआ, बताओ बताओ, मिसमैच अवार्ड, बताओ ये कोई अवार्ड है, किंग ऑफ द विला, डायमंड ऑफ द विला, परी ऑफ द विला, हम मिसमैच्ड ऑफ द विला, दिस इज व्हाट यू वांट, ठीक है एमटीवी आप शायरी बोलेंगे आपके लिए एक और। ये है मेरे एक बहुत ही डियर वन ने, किसी ने मुझे दिया है शर्मा जी, क्योंकि मेरा नाम अभी जस्ट चेंज हुआ है, सचिन शर्मा एके शर्मा जी। सचिन के डांस के अंदाज को सब लोगों ने देखा है, पर शर्मा जी की राइटिंग को हर लोगों ने देखा नहीं है, सो तैयार हो जाओ क्योंकि शर्मा जी बहुत हैवी होने वाले हैं। एंड वहाँ पे कुछ शील्ड्स हैं जो मुझे मिली हैं, और ये मेरे एक फ़ैन ने बनाया था, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मैं पिलाई कॉलेज गया था तो वहाँ पे किसी एक फ़ैन ने मुझे दिया था। एंड यार मैं सोचता हूँ कि आज मैं ये सब सारी चीज़ें लोगों के लिए होते हुए देखता था कि किसी का फ़ैन कोई बना रहा है, कोई क्लब बना रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई किसी को आपको इतना प्यार दे रहा है, आज ये सब सारी चीज़ें खुद के लिए होती तो बड़ा उस मोमेंट के लिए बहुत स्पेशल फील होता है कि यार हाँ चलो किसी ने मेरे लिए इतने एफर्ट्स दिए, बाकी ये दो पता नहीं कौन है। ये सेक्शन मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे मेरे को बुद्धा जी बहुत एक मेरे, जब मैं लिखता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ करता हूँ तो मुझे बहुत काम फील होता है, क्योंकि पूरे मुंबई में इतनी नॉइज़ है, शांति बहुत कम है, तो ये चीज़ मुझे बहुत एक्चुअली बहुत पीस फील कराती है। और ये बुक्स हैं जो मैं साल में 2 दिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ गाइस, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, मैं ना किताबें पढ़ना चाहता हूँ, और मैं बिकॉज आई एम राइटिंग, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, समय ऐसा चल रहा है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता उन चीज़ों के लिए, पर मैं डेफिनेटली जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं एंड कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं इसमें से, यस, और बाकी मैं चाहता हूँ कि ये सारी बुक्स पढ़ लूँ मैं, ताकि मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए, ये लिख लिख के खाली हो गया सब।
0: अब बारी है सचिन का कुकिंग टैलेंट देखने की। वैसे तो सचिन को कुकिंग नहीं आती है, लेकिन आज मम्मी उनके साथ है, तो माँ बेटे पहुँचे हैं किचन में बनाने सैंडविच और चाय।
1: मम्मी क्या बनाना सिखाओगी?
2: अब क्या बनाना, चाय का टाइम है, चाय बनाएंगे, चाय पिलाएंगे।
1: चाय देखो मम्मी इजी में टाल रहे, तुम रोटी बनाना तो सिखाओ कम से कम, रोटी वोटी बनाना सिखाओ मम्मी, कल को शादी वादी होगी फिर
2: बनाने को, तो फिर शाम को सिखाएंगे।
1: अभी चाय सिखाओगी बस? चलो चाय तो सिखाओ, चीनी वैसे भी आप भी ज्यादा डालती हो। तो गाइज हमने सोचा है कि सिर्फ चाय नहीं पियेंगे, बिकॉज लोग भूखे भी मर रहे हैं बाहर, दो चार उनको सैंडविच भी खिला देते हैं। तो मम्मी आज आप मेरे को सिर्फ चाय बनाना नहीं सिखाओगे, आप मेरे को सिखाओगे सैंडविच बनाना। तैयार हो?
2: हाँ, ओके।

0: भाई जो भी मजा तो आ रहा है इसमें।
1: आसान नहीं है।
0: हाँ वही मुझे लग रहा है अभी अभी। खाना आसान है बस, बनाना आसान है, खाना आसान है। एक इंसान एक घंटा लगाता है वो खाना बनाने में, एक डेढ़ घंटा, और 10 मिनट में रखता है खा जाते हैं, 10 मिनट में डाल। मम्मी जैसा से गाजर कटवा रही है मेरे को, गाजर हलवा बनाओगी क्या उसके बाद?

पहले पनीर के दो भाग करें, सैंडविच बनाने से पहले, और फिर उसको लास्ट स्ट्रगल से काटें।

0: काट दे रहे, हाथ कट जाएगा तो दिखा कैसे ऐसे कर देना बारीक बारीक ऐसे ऐसे
1: छोटा एकदम छोटा करना क्या पनीर काट रहे थे वहाँ बैठे आराम से बढ़िया मजे में अपना पनीर काटो चलो थोड़ा काम करो सैंडविच कैसे बनेगा चाय तो आप पी लोगे चाय इज रेडी चाय में मसाला भी डल गया है आपको पता है चाय मसाला पिलाना आपको बहुत दिन से
0: पहले चाय पी लो चाय

0: बना अपने आप, मुझे क्या पता क्या करना, तैयार हो गया।
1: अभी लेयरिंग करेंगे गाइस, देखो लेयरिंग बहुत जरूरी है, अब कर लूंगा मैं, देखना।
0: इसमें खीरा लगा, पनीर लगा, मसाला तो भरक ले,
1: भरक देंगे, मसाला ही भरक देंगे। ये कौन खाना चाहेगा सैंडविच, मैं ये सोच रहा हूँ।
0: तेरे को खिला देंगे,
1: जिस हिसाब से रायता फैलाया है हम लोग, एक एक करना पड़ेगा।

0: देखो सैंडविच का पता नहीं है जो आवाज आ रही है उसका बड़ा मजा है।
1: तो भाई सैंडविच और चाय तो बन गई, अब बारी फैमिली टाइम की, जहां मम्मी पापा और सचिन साथ मिलकर इस मोमेंट को कर रहे हैं एंजॉय।

0: आज सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो स्विच है ना, सडन स्विच जो है कि पहले सुभाष कॉलोनी की छत पे बैठ के चाय पिया करते थे मस्त, एंड वहाँ पे पापा पता है मेरे को सुबह मैं पापा से क्वेश्चन करता रहता था कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या कहाँ जाते हैं, ये जहाज कहाँ जाते हैं, जहाज कहाँ जाते हैं। मुझे पता लगा बाद में मुंबई की नगरी जाते हैं जहाज।
1: तो भाई चाय की चुस्कियों के साथ सचिन ने बताया अपने म्यूजिक वीडियो के बारे में और साथ ही कैसे उन्होंने डांसिंग के साथ साथ गाने की भी शुरुआत की। भाई ये कोरियोग्राफर तो है ही, लेकिन रैपर भी है, सिंगर भी है।
2: तेरे में ठरक मैं जन्नत तू न रख, कड़क मेरी ट्रिप ना हो तफलत, बॉडी मेरी मार्बल तेरी बंदी स्लिप।
0: तो हम लोगों ने गाइस मल्टीपल जगह पे शूट किया है, बॉम्बे भी शूट किया है, दिल्ली भी शूट किया है, और मैं सच बता रहा हूँ कि कुछ बातें ना सिर्फ ऐसे जताने के लिए और बोलने के लिए नहीं कही जाती, पर इतनी मेहनत हुई है ना। क्योंकि पहला गाना था ना, हम चाह रहे थे कि ऑल आउट जाए, आज पिन टू प्लेन तक हमने एक कसर नहीं छोड़ी। रात रात भर जाग के, मतलब लिटरली खाने का होश नहीं है, 3 kg मेरा वेट उतर गया इस गाने के चक्कर में। बट जब ये गाना डिलीवर हुआ और जिस दिन वो मिला मुझे वापस रिस्पॉन्स लोगों से, इट फील्स अनरियल। ऐसे लगता है कि किसी चीज़ को आपने सजाया और दुनिया ने उसको चीज़ों को और अच्छे तरीके से सजा दिया आगे जाके, कि बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है। तो कुडोज टू दैट, एंड बहुत सारे गाने आएंगे, तो भी शुरुआत है। एंड दिल्ली से बॉम्बे का सफ़र इतना छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा, एंड मम्मी पापा मुंबई में, और क्या चाहिए यार। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत दिल लगता है, बहुत बहुत मन लगता है। जैसे डांस करने में बहुत मज़ा आता है, वैसे ही म्यूज़िक करने में उससे ज़्यादा मज़ा आने लगा, क्योंकि मेरे लिए नया है ना अभी ये सब कुछ। और कर मैं ये 2 साल से रहा हूँ, लोगों को लग रहा होगा नया नया है, पर लोगों के लिए नया है, हो गए पूरे 2 साल इसको करते करते, एंड अब जो चीज़ें होने वाली हैं वो बहुत अमेजिंग होने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि हम लोग बैक हैंड पे कैसे गाने बनाते हैं, कैसे स्क्रैच से चीज़ों को बिल्ड करते हैं, एंड कैसे उसका पहला शब्द निकलता है जो गाना फिर इतना बड़ा हिट होता है। मैं आपको वो प्रोसेस रू कराने वाला हूँ, एंड हम लोग चलेंगे अभी स्टूडियो, और कैसे एक होता है ना एक लाइफ की दिन की जैसे शुरुआत होती है, वो जोन मैं आपको दिखाता हूँ।

0: गया।
1: वैसे सचिन के घर में है एक स्पेशल कॉर्नर जो कि है इनका ये स्टूडियो। इस कमरे को उन्होंने स्टूडियो बना कर रखा है जहां वो अपने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं। और देखिए कैसे सचिन यहां पर भी रैप करते नजर आए इन बीट्स पर।
2: अरे गाइस, कूल पीपल लिव हियर और कूल पीपल जहां रहते हैं वहां पे कूल म्यूजिक बनता है। और आओ आपको दिखाते हैं कैसे कूल म्यूजिक बनता है। पिनोक्यो भाईजान, आपके पास टपक पड़े आज। देखो कैमरा हमारा लेकर आ गए हम, अब कुछ तो बनाना पड़ेगा। बेसिकली एज एवरीबडी नोज, मैंने मेरा म्यूजिकल जर्नी चालू की है, लाइक यू नो इट्स बीन 2 ईयर्स। मैंने 2 साल, आपको भी पता है कि कितना टाइम दिया है इस चीज़ को, कैसे कैसे हम लोग भी रात में जैमिंग करते हैं। मैंने ये सोचा है जो अपना सपने के साथ लगाना है दिल्ली से बॉम्बे, उसका ना मैंने एक एक्सटेंडेड वर्स लिखा है अगेन इन हरियाणवी एंड डिफरेंट बार्स, डिफरेंट वाइब, मतलब डिफरेंट। उसमें कहना था उसमें उस वाले में बहुत मस्ती थी कि BMW कोई ना मेरे लो है, बुग्गी चोटा खेतों में जाऊँ वो मैं साथ में लूटा। इसमें थोड़ा दिया हैवी, उठा 4 बजे ब्रह्मचारी प्रणधारी, थोड़ा थोड़ा सा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से वो चीज़ लिखी है। वो मैं सुनाता हूँ आपको वर्स, मुझे बताओ कि उसको कैसे स्टिच कर सकते हैं।

0: हिप हॉप इट्स अ कल्चर, इट्स अ वे ऑफ लिविंग एंड वी आर लर्निंग थ्रू इट. बहुत कुछ मजा भी आ रहा है एंड मुझे से लगता है कि जब दिल में भड़ास हो, जब इंसान को रोना हो, दर्द में हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो, अगर आप लिखने बैठोगे ना, आपके दर्द को एक शेप मिल जाएगा.
1: तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सचिन शर्मा ने कई सारे रियलिटी शोज किए हैं. डीआईडी लिटिल मास्टर में भी बतौर कोरियोग्राफर उन्होंने काम किया है और कई और शोज में वो काम कर चुके हैं. ऐसे में वो शेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी.
0: तो गाइस, दिल्ली से बॉम्बे का सफर इतना इजी नहीं था. इन रास्तों में ठोकरें भी खाई हैं, बहुत सारे बिट्रेल भी हुए हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बुरा भी किया है. ये बात बोल के सिंपथाइज नहीं करूँगा खुद को, पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस शहर में आते हैं अपने सपने लेकर. एंड मैं 2012 से घर से निकला हुआ हूँ एंड आज 12-13 साल हो गए हैं भागते भागते सारी चीज़ों के पीछे, और अभी भी ऐसे लगता है कि बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो पूरे करने हैं. एंड हर एक दिन, हर एक रात उन सपनों के पीछे जुटानी है. अभी भी इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, इतना कुछ देखते हैं दिन रात, पर जब मैं वापस जाता हूँ ना, वो सुभाष लोनी में जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे टायर चलाता था, यहाँ पे मैं कंचे खेलता था और आज मैं इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ लाइफ में, तो वहाँ पे मुझे एक किक मिलती है कि मैं जो करने आया था वो सब अब हो रहा है और ये सारे सपने अब पूरे हो रहे हैं. तो मुझे अपनी मेहनत को और जो लोग ऑडियंस मेरे से प्यार करती है उनको डिसअपॉइंट नहीं करना किसी भी तरीके से, क्योंकि उनका प्यार बोनस की तरह होता है और बोनस पे घमंड नहीं करना चाहिए. कभी वो मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसका पैसा हमको ज़रूर मिलता है एंड लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, पर उस प्यार को जिस दिन आप ये समझ लेते हो ना कि अब तो मेरे पास है, अब तो मैं इनफ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ घरने लग जाती है. वो बोलते हैं ना कि रिस्क नहीं लोगे तो ऊपर नहीं जाओगे, तो वापस नीचे आओगे और फिर वो रिस्क के लिए लड़ोगे. इतने सारे शोज हो गए, आई थिंक 12-13 शोज हो गए. डीआईडी लिटिल मास्टर्स, इंडियाज डांसिंग सुपर स्टार रितेश सर थे उस पर, फिर इंडियाज गॉट टैलेंट के 2 सीजन किए, डांस प्लस किया, डांस इंडिया डांस सीजन 6 किया जिसमें मैं सेकंड आया था, नच बलिए हुआ, झलक दिखला जा हुआ, बिग बॉस पे गए प्रमोशन के लिए, साउथ का भी एक शो किया, एमटीवी रोडीज हुआ, स्प्लिट्स मिला हुआ, डांस दीवाने हुआ, और अभी ना जाने क्या क्या हो रहा है. मैं अगर एक तरीके से एक लाइन में अगर ये सब सारी चीज़ें देख लूँ ना, मेरी आंखें एकदम बंद हो जाएं वूफ करके, क्योंकि इतना कुछ हो गया है सडनली. एंड आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, हिप हॉप से प्यार इतना है. 2016 में हरियाणा से एक क्रू आया था, गुड लक बॉयज, इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप जीत के गया था, वो हमारा क्रू था. एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम पहली बार ऐसे एक बड़े हिप हॉप फेस्टिवल में आए और पहली बारी में ही हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल लेके गए थे वापस. और हमारे यहाँ पे ना सेलिब्रेशन नहीं होता, बारात निकालते हैं लोगों की प्रॉपरली, तो वो फीलिंग भी हमने महसूस किया कहीं ना कहीं पे. सो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे हिप हॉप के लिए, एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन, इस इंडस्ट्री के लिए, एंड बैक हैंड पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जहाँ पे आप बहुत प्राइमरी काम देखते होंगे कि यार ये काम तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं पे हम लोग उस चीज़ का पार्ट होते हैं समवेयर और दी अदर. सो इट इज़ अगेन एक कंप्लीट सर्कल है, एक रोलर कोस्टर राइड है जो रही है मेरी ज़िंदगी में 12-13 साल में. मुझे ऐसे लगता है कि जो सपने मैंने देखे थे आज वो सारे सपने पूरे हो गए हैं, एंड जो अब मैं सपने देख रहा हूँ आगे 5-10 साल में वो सपने भी पूरे होंगे. मेरा एक सबसे बड़ा सपना ये है कि मुझे एक दिन स्टेडियम में 1,00,000 लोग भरने हैं जो सिर्फ सचिन सचिन बोले. बस एक जर्नी चालू करी थी 10-12 साल पहले, वो थी डांस की जर्नी, जिसमें आप लोगों ने मेरे जितने एडिट्स काटे हैं अगर मैं गिनने बैठूं तो शायद दिन कम पड़ जाएंगे मेरे पास, पर मैं दिल से चाहता हूं, क्योंकि डांस की जर्नी को मैंने मेरी मेहनत से, आपके सपोर्ट से, प्यार से एंड मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से खींच के लेकर आ गया यहाँ तक. 12-13 साल तक सर्वाइव कर गया बॉम्बे में, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है. बहुत हवाएं आती हैं यहाँ पे, बहुत लोग अपना एटीट्यूड लेकर आते हैं, सब घर भाग जाते हैं क्योंकि ये शहर इतना तगड़ा है. ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने दिल और जान और जो कुछ भी मेरे अंदर है सब लगा दूंगा म्यूज़िक के पीछे. बस आप लोगों का अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है. जब वो एक कमेंट आ जाता है ना, गलती से पॉप हो जाता है कि यार आपने बहुत अच्छा गाया, तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत कुछ शिफ्ट करती है, अंदर से बहुत मोटिवेट करती है. सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग सचिन शर्मा, AKA शर्मा जी.
1: तो भाई उम्मीद है कि सचिन शर्मा उर्फ शर्मा जी यूं ही अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहे अलग अलग अंदाज में. मुंबई से नुपुर मावजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
0: सपनों के साथ दिल्ली का रोड लाया, दोस्त बने साहब तुम्हें जंगल में छोड़ा है, लेट्स गो.
2: वीकेंड और रोमांस का कॉम्बिनेशन भी फुल ऑन हिट होता है, तो कैसा मूड है आज इस जुनूनी की कहानी में? वेल, किस तरफ जा रहा है आज ये रोमांस? क्या आज देखने को मिलेगी यहाँ पर हमें कोई लव स्टोरी, या फिर से चल रहा है कहानी में कोई बड़ा ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास.

पुष्पी के सामने खुल गया राज। रूहानी संग छूट मूट का हादसा। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु को पता चल गया है कि रूहानी ये सब गुरु के लिए ही कर रही है। ऐसे में गुरु पहुंच गया है उससे मिलने, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे मिल गया है रूहानी से सरप्राइज, जिसे देखकर गुरु के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

0: पहले दिन बाहुबली गुरु चौधरी का साथ मान लेती तो जीत अभी तुम्हारे कदमों में होती, और तुम हमारी बाहों में। कारण देख
1: सच समझ, अगर मैं तुम्हें पहले ही पता चलती कि मैं गौतम सिंह के पास जा रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, उसकी सारी शर्तें मान ली ताकि तुम आजाद हो जाओ, तो क्या तुम मुझे ये सब करने देते मिस्टर अल्फा?
0: अल्फा छोड़ो, तुम्हारे लिए तो हम बीटा काम है, कुछ भी बनने को तैयार। अल्फा छोड़ो, एक बार बोल के तो देखती, तुम्हारे लिए हम बीटा गामा कुछ भी बनने के लिए तैयार थे। तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम दुनिया से लड़ जाए, तुम्हारा हर दुख हम खुद से बिना किसी शर्त के, बिना कोई सवाल के तुम पर भरोसा करके तो देखती।
2: पर रूहानी के डर को गुरु बखूबी समझ रहा है, इसीलिए तो वो उसे दिलासा दे रहा है कि जीत अंत में उन्हीं की होगी। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि पुष्पी ने इन दोनों की बातें सुन ली है और ऐसे में उसने अपनी अगली चाल चली है। रूहानी के कमरे के बाहर खड़े होकर जानबूझकर वो ललिता को फोन लगा रही है और जानबूझकर जोर जोर से गुरु को मारने का प्लान बना रही है ताकि रूहानी सुन ले और फिर वो ऐसा कदम उठाए जिसे सभी के सामने सच आ जाए।
3: शाबाश ललिता, तुमने वो तार काट के बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमें फटके देने चला था ना वो, अब खुद बिजली के झटके खाता रहेगा। पर ध्यान रखना, चोरी छुपे करना, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो नहाने के लिए बाथरूम घुसेगा और उस गीली कटीली तार को छुएगा, तुरंत बिजली का झटका लगेगा उसे।

0: भाई पुष्पी तो अपनी चाल चल कर चली गई, लेकिन रूहानी उसकी तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। कैसे भी करके वो बस अपने गुरु को बचाना चाहती है। ऐसे में देखिए, जैसे ही उसने गौतम को मोबाइल पर बिजी देखा, उसके दिमाग में आ गया नया प्लान। और फिर वो अपने प्लान के मुताबिक अपने मोबाइल पर वीडियो देख मुस्कुराती हुई गौतम के नजदीक चली गई। और गौतम बार बार रूहानी का नाम पुकार रहा है, पर वो उसे अनसुना कर रही है। ऐसे में जैसे ही गौतम ने अचानक रूहानी को टच किया, रूहानी ने अपने प्लान को मुकम्मल कर दिया। अपना दांव तो चल दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पुष्पी उस पर नजर गड़ाए हुए है, और उसे अब यकीन हो गया है। ऐसे में पुष्पी ने चाहा कि वो फोन कर ललिता को सारी खबर दे, लेकिन तभी गुरु आ गया और पुष्पी के सामने ड्रामा करने लगा, ये जानने के लिए कि पुष्पी उन पर विश्वास करती है या फिर शक।
1: आप जानती हैं, आपको जब वो पहली छड़ी पड़ी तो हमें सच में ऐसा लगा कि जैसे जैसे हमारी माँ का अपमान हुआ। हम तो कह रहे हैं कि गौतम सिंह और कंपाउंडर को अलग करने में ना आप ही हमारी मदद करो। नासी माँ जैसी उसी और माँ में फर्क तो ही ना होता।
2: आप सुबह से ही सोच रहे कि क्यों नशे की हालत में भी हमें तुम दोनों का चेहरा अपनी आंखों के सामने गोल गोल गोल गोल दिखाई दे रहा। अब समझ आया कि तुम दोनों मिले हुए हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, शाम का कुछ समझे।
0: भाई पुष्पी ने तो तय कर लिया है कि वो सारी बातें गौतम को बताएगी, इसीलिए वो चली भी गई है। लेकिन अब गौतम और रूहानी बार बार उसी पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें तो पुष्पी की सारी बातें भी सुनाई दे रही है, और साथ ही उन्हें ये भी पता चल रहा है कि गौतम रूहानी पर विश्वास करने लगा है। बस फिर क्या, दोनों ने मिला लिया हाथ और चली अगली चाल। और उस चाल के मुताबिक रूहानी ने जानबूझकर अपने आप को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। ऐसे में घायल रूहानी को देखकर गौतम से रहा ना गया और वो रूहानी के लिए परेशान हो गया। इतना ही नहीं, जैसे ही गौतम रूहानी को उसके कमरे में ऊपर ले जाने लगा तो उसकी नजर सीढ़ियों में पड़े सफेद गुलाब पर पड़ गई, जो उसने गुरु के हाथों में देखा था। ऐसे में गौतम को शक हो गया है कि गुरु रूहानी को जानबूझकर गिराना चाहता था, यानी यहां पर गुरु और रूहानी का प्लान सक्सेस हो गया है। अब देखना होगा कि पुष्पी अपनी अगली चाल क्या चलेगी ताकि गौतम रूहानी के खिलाफ हो जाए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो हम कर रहे हैं वीकेंड वाली पार्टी, लेकिन डॉक्टर आरंभी की जिंदगी में कुछ भी नहीं है पार्टी जैसा। अरे इन्हें कहाँ है फुर्सत, देखिए कभी हॉस्पिटल तो कभी घर पर अनलिमिटेड ड्रामा। इनफैक्ट ये ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन तभी तो आता है हम सबको इस कहानी को देखने में इतना मजा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरंभी के सेट पर और देखते हैं क्या है कहानी में नया ड्रामा।
0: बेबस और लाचार हुई आरंभी, मायके में शुरू हुई आरंभी की परेशानी, आरंभी को लेकर माँ की नाराजगी।
4: इसे भी तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे ना, जिससे ससुराल से इसे बाहर निकाला जाए, जिसकी वजह से इसकी बेइज्जती हो या इसकी वजह से हमारी बदनामी हो।
0: के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी अपने मायके वापस लौट तो आई है, लेकिन वो बेहद परेशान है और उसकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब उसके घर में मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं, जो आरंभी को देखकर हैरान हैं। ऐसे में आरंभी बिना शिकन किए उन सबका स्वागत करती है, लेकिन तभी मोहल्ले की और औरतें आ जाती हैं, जो आरंभी को देखकर हैरानी जता रही हैं और उनके सवालों को संभालती हुई नजर आ रही है आरंभी की माँ।
5: मुझे लगा कि आप लोग मेरे हाथ में मेरी चाय सुनते हो यहाँ पर, आप लोग को आ गया हो।
6: आरंभी तो फिर कैसे आना हुआ?
5: वो तो क्या कहे भाभी जी,
4: आज देवशयनी एकादशी है ना, इसकी पूजा रखिए, आशीर्वाद लेने के लिए मैंने बुला लिया बस।
6: ओ, मिल जाए आशीर्वाद, भला टले, बेचारी को कितना सहना पड़ा दहेज वहेज के चक्कर में, देखा हमने टीवी पे।
0: भाई मोहल्ले वालों का तो काम है पंचायत करना, और उस पंचायत को संभालने की कोशिश कर रही है आरंभी की माँ। इतना ही नहीं, वो तो बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही है। ऐसे में आरंभी के पापा ने भी अपना सर पकड़ लिया है। खैर, जैसे तैसे ये पंचायत खत्म हुई और मोहल्ले की सारी औरतें वहाँ से चली गईं, और दरवाजा बंद करते के साथ ही आरंभी के पापा ने अपनी बीवी से सवाल करने शुरू कर दिए। ऐसे में आरंभी की माँ भी आरंभी पर ही अपनी नाराजगी जता रही है, लेकिन यहाँ आरंभी के पापा आरंभी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं।
5: वो तो अपने घर आई है, इसे जरा चैन से जीने दो, तुम सांस लेने दो।
4: मुझे अच्छा लगता है क्या सच झूठ करने में? इसे भी तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे ना, जिससे ससुराल से इसे बाहर निकाला जाए, जिसकी वजह से इसकी बेइज्जती हो या इसकी वजह से हमारी बदनामी हो।
7: माँ आपको चाहिए, मैं शादी आती गई, लेकिन प्लीज एक बात आपको
4: सुनाने रही हूँ, जो हुआ है वो बता रही हूँ, सच बोल रही हूँ।
5: बस हुआ तुम्हारा सच, और तुम शांत रहो प्लीज।
0: अब आरंभी की माँ तो गुस्सा कर चली गई। ऐसे में आरंभी के पापा आरंभी को सहारा देते हुए कमरे में चले गए हैं अपनी बीवी का गुस्सा शांत करने के लिए, लेकिन आरंभी वो बेहद परेशान है। एक तो उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा है, और दूसरा उसका बेटा उससे दूर है। ऐसे में आरंभी बस यही सोच रही है कि आखिर कैसे वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे और कैसे अपने विहान को अपने पास ले आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: कभी कभी वीकेंड पर हुई एक मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाती है। तो क्या कुछ हो रहा है जाने अनजाने हम मिले की इस कहानी में? क्या फिर से आ रहा है कहानी में कोई इंटरेस्टिंग मोड़? क्या आएगी यहाँ से कोई गुड न्यूज, या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको रीत और राघव के पास।
8: लुका छुपे बहुत हुए, सामने आ जाना।
0: छोटा रियांश और रीत का साथ,
8: ढूंढा तुझे
0: फूट फूट कर रोई रीत की ममता। सलाखों के पीछे कैद हुई रीत,
8: मुझे तेरी फिकर।
0: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में दिन ब दिन रीत की हरकतों की वजह से राघव ने फैसला ले लिया है, और अब ऐसे में बिंदिया अपने बच्चे के साथ ये घर छोड़कर जा रही है, और उसको जाता देख रीत की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि उसका और उसके बेटे रियांश का साथ छूट जो रहा है। ऐसे में वो अपने बेटे के पास तो जाती है, उसे रोकने की कोशिश भी करती है, और वो नन्हा सा बच्चा रीत की उंगली भी थाम लेता है, लेकिन शालिनी से ये देखा नहीं जाता, और देखिए कैसे वो माँ बेटे को फिर से अलग कर देती है।

भैशालिनी जो चाहती थी वो हो गया है। रीत का बेटा रियांश उससे अलग हो गया है और रीत पूरी तरह से टूट गई है। जरा देखिए कैसे आज उसके आंसू थम नहीं रहे और वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी खाली जो हो गई है।

0: भाई रीत को इस हालत में देख राघव उसे वहाँ से ले तो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि रीत अब भी ये जानने की कोशिश में लगी रहेगी कि आखिर रियांश बिंदिया का बच्चा है या नहीं। ऐसे में उसी के चलते आज रीत सलाखों के पीछे पहुंच गई है, जहां पर वो पुलिस वाले को बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो रिपोर्टर है और वो एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन पुलिस वाला ये मानने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, रीत के दोस्त विराज ने पुलिस वाले को अपना आईडी कार्ड भी दिखाया।
1: हाँ तो विराज जी,
2: जी
1: लगाइए अपने ऑडिटर को फोन और बात करवाइए मुझसे। उनकी इतनी तो पहुंच होगी कि वो हॉस्पिटल के एडमिन से बात कर ले और उन्हें समझा दे कि वो अपना कंप्लेंट वापस ले।
3: साहब, आप ऐसे बात कर रहे थे, आपने कभी अपने बॉस को बिना बताए कोई कदम नहीं उठाया या कभी आपने कोई कदम उठा लिया और उससे केस फॉल हो गया तो आपको शाबाशी दी थी? होता है
1: क्या?
0: अब रीत सलाखों के पीछे है ये जानकर तो आज राघव भी हैरान है, और तो और वो पुलिस से जानने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर रीत जेल में क्यों है। ऐसे में इंस्पेक्टर रीत के कारनामे बताता है, जिसे सुनकर राघव खुद हैरान हो जाता है।
1: बिना परमिशन के हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड रूम में पकड़े गया और मेडिकल डाटा चुराना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन आपकी वाइफ कह रही है कि ये वहां न्यूज स्टोरी कवर करने आई थी।
0: फिलहाल तो राघव ने रीत के कहने पर वो बता दिया है जो रीत सुनना चाहती है, लेकिन राघव अब रीत से नाराज हो गया है क्योंकि बिना बताए रीत ने ये काम किया है। अब देखना होगा कि कैसे रीत राघव को समझा पाएगी और कैसे सच सभी के सामने ला पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सैटरडे का मूड है फुल ऑन एंटरटेनमेंट वाला, लेकिन कहीं कहीं ना एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ अनएक्सपेक्टेड शॉक्स और सरप्राइजेस भी आ रहे हैं। तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। कुछ खबरें हैं सबसे रॉकिंग तो कुछ है सबसे शॉकिंग। गेट सेट गो।
0: सोनी टीवी पर जल्द ही आने वाला है एक नया रियलिटी शो जिसका नाम है इंडियन गेम शो, और इस शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे हर्ष और भारती। वैसे बता दें कि इस शो की शूटिंग के दौरान हर्ष और भारती के अलावा सेट पर टोनी कक्कर, अनिता हसनंदानी, अभिषेक कुमार और जन्नत जुबैर स्पॉट किए गए हैं।

0: सरज आर बड़जातिया की आने वाली फिल्म ये प्रेम मोलिया की शूटिंग का रैप अप हो गया है। हाल ही में कुछ तस्वीरें बाहर आई हैं। बाणगंगा घाट पर आयुष्मान खुराना और शार्वरी बाघ एक साथ नजर आ रहे हैं लास्ट डे शूट पर। वैसे बता दें कि ये तस्वीर छठ पूजा की है। इसी के साथ कई और तस्वीरें भी आई हैं। डाल लीजिए उन तस्वीरों पर एक नज़र। वैसे बता दें कि ये फिल्म रिलीज होगी 27 नवंबर 2026 को। नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप का ये प्रोमो देख लीजिए, जहां पर शिल्पा और श्रेया की दोस्ती में दरार होती हुई नजर आ रही है और सवालों की झड़ियां लगी हैं।
1: द श्रेया कार्ला शो है, हवा में उड़ना वो उसका हो गया। एक बार इन्होंने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, पर ये सिंपति लेना चाहती है। अरे तो मैं क्या करूँ, पागल हो जाऊँ क्या?
2: हर वोट पिछी हुई एक लैंडमाइन है।
3: एक गलत कदम और गेम खत्म। हो सकता है चारों के चारों टर्मिनेट हो जाए।
0: इसी के साथ देख लीजिए ये वीडियो भी, जहां पर एक्स कंटेस्टेंट्स का रीयूनियन हो गया है और देखिए कैसे सभी मिलकर डांस कर रहे हैं।

0: साउथ एक्टर सलमान डेलकेओर की फिल्म आई एम गेम्स जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। 20 अगस्त को दर्शक ये फिल्म देख पाएंगे, वो भी सिनेमा घरों में।
1: I'm chaos in a tailored suit.
2: Get up! Focus on first batting, first inning score and final inning.
0: नसरुद्दीन शाह, मोहित मलिक, इरशाद कामिल, वेदांग रायना, शर्वरी वाघ, इम्तियाज अली, रजत कपूर, मुकेश छाबरा और भी कई कलाकार एक साथ जमा हुए हैं अपनी फिल्म मैं वापस आऊंगा के 50 दिन के कंप्लीट होने पर, और देख लीजिए कैसे वो खुशियां मना रहे हैं।

0: टीवी का सीरियल जाने अनजाने जल्द ही अपने दर्शकों से विदाई लेने जा रहा है। देख लीजिए उनके आखिरी दिन का ये शूट, जहां पर राघव और रीत को मिल गया है उनका बच्चा और हो गई है उनकी हैप्पी फैमिली। सिंगर अदनान सामी ने हाल ही में डायरेक्टर अनीस बाजमी और कंपोजर आनंद राज आनंद के साथ एक तस्वीर शेयर की है, वो भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, और जाहिर किया है कि वो जल्द ही अनीस बाजमी और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म में गाने गाते हुए नजर आएंगे। वैसे बता दे कि ये फिल्म रिलीज होगी दिसंबर 4, 2026 में। हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है, तो दर्शकों को इनकी फिल्म का इंतजार रहेगा।
1: लोग मुझे पागल बुलाते थे क्योंकि मैं ऑटिस्टिक हूँ, पर पापा कहते थे।
0: कलर्स टीवी के सीरियल जूही मुई का ये प्रोमो देख लीजिए, जहाँ पर जूही तैयार है वकालत करने के लिए, और उस वकालत में आएंगी कई सारी अड़चने।
2: कोर्ट में सिर्फ दिमागी नहीं, जबान भी चलानी पड़ती है।
3: देखिए एक ऑटिस्टिक लड़की की कोर्ट रूम जर्नी।
0: सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में अपनी बीवी कियारा आडवाणी को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट जाहिर किया है, और उसमें उन्होंने अपनी बीवी को 35th बर्थडे की बधाइयां दी हैं।
4: वीकेंड पार्टीज पर भी कभी कभी सरप्राइज गेस्ट आ जाते हैं, उसी तरह हमारी टीवी की कहानियों में भी कभी कभी आते हैं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। तो चलिए फिर देखकर आते हैं आज कौन सी कहानी में आया है कौन सा जबरदस्त ट्विस्ट जो बदल रहा है उस कहानी का वोट। दिखाते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ।
5: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज तो पोदार हाउस में आंसुओं का सैलाब आ गया है। असल में मुक्ति ने फैसला ले लिया है ये घर छोड़कर जाने का, ऐसे में वो लेटर लग गया है मायरा के हाथों, और देखिए कैसे मायरा सभी के सामने वो लेटर पढ़कर सुना रही है। वो लेटर तो अरमान और अभीरा भी पढ़ रहे हैं, और अभीरा उसे तो मुक्ति पर गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन तभी मुक्ति ने बताया कि खुद अभीरा ने उसके सारे कपड़े पैक किए हैं। बस फिर क्या, ये सुनकर अभीरा और सभी घर वाले हैरान रह गए, और मुक्ति को उन्होंने सच बताया।
6: आप और बंदर मेरे सारे कपड़े बैग में बांध रहे थे।
7: बेटा, मायरा ने तेरे कपड़ों पर जूस गिरा दिया था। हम तेरे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवा रहे थे, बुद्धू बच्चे।
8: हाँ मुक्ति, मैं ही कपड़े ड्राई क्लीन में देने गया था, भाभी सच कह रही हैं।
6: मुझे लगा आप लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं,

0: भाई मुक्ति को तो उसका पूरा परिवार मिल गया है और उसने अपनी मासी संग जाने से मना कर दिया है। ऐसे में मुक्ति की मासी ने भी हामी भर दी है, लेकिन वो चाहती है कि मुक्ति को मंदिर लेकर जाए। ऐसे में माधव और विद्या भी साथ चलने को कहते हैं। मुक्ति वहाँ मंदिर गई है। यहाँ पर अभीरा मुक्ति के लिए सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही है और इंतजार कर रही है कि कब आएगी। और तभी अभीरा को लगता है झटका, क्योंकि विद्या और माधव आकर अभीरा को बताते हैं कि मुक्ति की मासी ने मुक्ति का किडनैप कर लिया है। ये सुनकर अभीरा हैरान है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, तभी आ गया मुक्ति की मासी का कॉल, वो भी अभीरा को। और देखिए कैसे वो अभीरा के सामने रखने लगी है अपनी डिमांड।
1: मुक्ति, बेबी गर्ल, बेटा, बेटा तू कहाँ है? तू ठीक है ना?
2: ये सब जब घर आएगी ना, तब आराम से पूछ लेना। पर उसके लिए तुम्हें पोद्दार हाउस मेरे नाम करना होगा। पांच मिनट देती हूँ, तय करो बेटी चाहिए या घर।

0: अब देखना होगा क्या अभीरा और अरमान अपनी मुक्ति को बचाने के लिए ये पोदार हाउस पूरा मुक्ति की मौसी के नाम कर देंगे।
1: हमारी वीकेंड की ये सैटरडे वाली पार्टी यहीं होती है खत्म। उम्मीद करते हैं आपके वीकेंड में भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट आ गया होगा। तो आप बस इस वीकेंड को एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ। हंसिए, मुस्कुराइए और इसी तरह देखते रहिए सास बहू और बेटियां। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर हुई शुरू। 8,371 तीर्थयात्रियों ने जो मेल एक्सेस कंट्रोल गेट किया पार। सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। आंध्र प्रदेश को अलूरी एयरपोर्ट की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,900 करोड़ की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रतिमाह। रक्षाबंधन पर पहली किश्त जारी करने का लक्ष्य।

0: बॉक्सर्स फाइनल में अब तक 5 गोल्ड 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 23 पदक। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल, सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड्स का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिखा शानदार नजारा, पहाड़ियों और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी, सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर सार्वजनिक होगा चालान का पूरा रिकॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने वालों और चालान नहीं भरने वालों को बेनकाब करने के लिए की अनूठी पहल, लोगों से नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी को दिया जाएगा बढ़ावा। मॉनसून की बारिश में दिखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा, बारिश के बीच शानदार दिखी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। लगातार हो रही बारिश के बीच हरियाली से ढका पूरा इलाका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बेहद खूबसूरत दृश्य बना आकर्षण का केंद्र। गुजरात में बारिश के बीच तेंदुआ और उसके दो शावकों का मनमोहक वीडियो हुआ वायरल, डांग जिले के आहवा के पास सोनगीर फाटक पर सड़क पार करते दिखे प्राणी। हरिद्वार में धूमधाम से चल रहे कांवड़ मेले का आज तीसरा दिन, गंगाजल लेने लगातार धर्मनगरी पहुंच रहे हैं कांवड़िए। हर की पैड़ी सहित पूरे हरिद्वार में शिवमय हुआ माहौल, सजी धजी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं कांवड़िए। अब तक 10 लाख से अधिक कांवड़िए हरिद्वार से अपने गंतव्य को हुए रवाना, अपंचक लगने के कारण कांवड़ियों की संख्या में कुछ कमी। अखाड़ा परिषद ने कांवड़ियों को दिया नियम कानून और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश, डीजे की आवाज कम रखने और आवश्यकता के हिसाब से जल उठाने की सलाह। घाटों पर और हाईवे पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी, कांवड़ियों से लिया जा रहा है इंतजामों और आवश्यकताओं पर फीडबैक। मेरठ में कांवड़ मार्ग पर सेवा में तत्पर रहेंगे वॉलंटियर्स की सुपर 30 की टीम, प्रशासन ने यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए की स्वयं सेवकों की भी विशेष तैनाती। स्केटिंग करते हुए 10 से ज्यादा युवा बिहार से जा रहे हैं बाबा नगरी देवघर, 30 तारीख को समस्तीपुर से शुरू हुई स्केटिंग यात्रा, 420 किलोमीटर का होगा सफर। 4 अगस्त को देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने का लक्ष्य, सोशल मीडिया से ग्रुप बनाकर निकली युवाओं की टीम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दिख रहा है आस्था और भक्ति का रंग, ओम नमः शिवाय बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तिमय हुआ रेलवे स्टेशन। बाबा वैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक करने के लिए झारखंड के देवघर जा रहे हैं कांवड़िए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं लोग। गौमुख से पवित्र गंगा जल लेकर चला मध्य प्रदेश के 150 से ज्यादा शिव भक्तों का विशाल जत्था, पदयात्रा करते हुए लौट रहे हैं कांवड़िए। मुरैना जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं सभी कांवड़िए, 22 जुलाई को गौमुख से गंगा जल लेकर पैदल पूरा कर रहे हैं 800 किलोमीटर का सफर। सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुआ बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार, भस्म आरती में शामिल हुए बड़ी तादाद में श्रद्धालु। सावन में श्रद्धालुओं के बीच बड़ी चांदी के बेलपत्र और पूजा सामग्री की डिमांड, ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं सामग्री। सावन में सोने चांदी के नए नए डिजाइन की पेश की जा रही है पूजा सामग्री, सावन का सोमवार आने से पहले बाजारों में रौनक। अमरनाथ धाम के तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी, बालटाल से फिर से शुरू हो गई है पवित्र गुफा की यात्रा, आज 8371 तीर्थयात्रियों ने पार किया डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट, 5534 पुरुष और 2511 महिलाएं इसमें शामिल। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से पिछले 4 दिन रोकी गई थी अमरनाथ की यात्रा, अब दूर हुई मौसम की बाधाएं। उत्तराखंड में द्वितीय केदार मदमहेश्वर जाने वाले भक्त ट्रॉली के जरिए पार कर रहे हैं मोरखंडा नदी। नदी के तेज बहाव में बही पैदल लकड़ी अस्थाई पुलिया। भक्तों की कठिन परीक्षा ले रहे हैं महादेव। धाम जाने के लिए 16 किलोमीटर की होती है पैदल चढ़ाई। आंध्र प्रदेश को मिला नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयनगरम के भोगापुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस। 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हुआ है तैयार। अल्लूरी एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान हुआ शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है हवाई अड्डा। यहां से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश को आज मिली 17,900 करोड़ से ज्यादा की नई विकास परियोजनाओं की सौगात। राज्य की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सहित कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ। आज कर्नाटक का भी दौरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले ही दिन 1,000 से ज्यादा महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत। लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का फंड। 17 लाख महिलाओं को मिलेगा इससे फायदा। बेंगलुरु में फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन लॉन्च। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की ओर से खास पहल। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम कंट्रोल हेडक्वार्टर बनने पर सहमति। डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए साइबर कमांडो होंगे तैनात।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध

इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर, ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर, ये गंधपुरा पत्थर में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक

0: आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से हुई शुरू। 8,371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट किया पार। सावन का तीसरा दिन, देशभर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगाजल। आंध्र प्रदेश को अलूरी एयरपोर्ट की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,900 करोड़ की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रतिमाह। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का जलवा, लवलीना समेत 10 बॉक्सर्स फाइनल में, अब तक 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 23 पदक। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल, सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड्स का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिखा शानदार नजारा, पहाड़ियों और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं गीतिका पंत। आपने शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा देखी होगी, भोलेनाथ के कई चमत्कारिक मंदिर की गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो ऋतुओं के संग अपनी लीला दिखाते हैं, जो शिव का अर्ध नारीश्वर स्वरूप लिए हुए है। इस मंदिर में पास पास दो शिवलिंग है। एक शिवलिंग शिव का स्वरूप माना जाता है, जबकि दूसरा शिवलिंग माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। जन्माष्टमी से महाशिवरात्रि तक जो शिवलिंग दो भागों में बटा रहता है, वो आखिर शिवरात्रि के दिन एक कैसे हो जाता है? आखिर ये अजूबा होता कहां है? चलिए आपको लेकर चलते हैं महादेव के दिव्य धाम की यात्रा पर।

0: एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां महादेव का है अलौकिक दरबार। जहां दो शिवलिंग करते हैं लीला। दो शिवलिंग, दो त्योहार। जन्माष्टमी से शिवरात्रि तक होता है चमत्कार। परमेश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव संघ शक्ति का जागृत दरबार। भोले बाबा का चमत्कारिक धाम जहां विधाता ने रची है अलौकिक लीला। जिस धाम से भगवान ब्रह्मा और विष्णु की कथा छिपी है। तो साथ ही मंदिर से जुड़ती है रघुकुल नंदन राजा भरत की कथा, जो महादेव के इस मंदिर में उपासना करने जाते थे। कहते हैं जब सिकंदर महान भी शिव की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया था। दावा किया जाता है इस मंदिर की महिमा महाराजा रंजीत सिंह ने भी मानी थी और भगवान शंकर के मंदिर का कायाकल्प करवाया था। और तो और, महाराजा रंजीत सिंह को कुएं का पानी इतना पसंद आया कि वो हर शुभ काम के लिए इसी मंदिर के कुएं का पानी मंगवाते थे। कहते हैं ये विश्व का एकमात्र शिव मंदिर है जहां शिवलिंग दो भागों में बटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दो भागों में बटा हुआ शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन आपस में कुछ समय के लिए जुड़ जाते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी मुद्रा में लौट आते हैं। अर्धनारीश्वर महादेव का ये अलौकिक मंदिर बना है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के काठगढ़ में, जहां शिव के ये दो स्वरूप स्वतः ही अलग होते हैं और फिर मिल जाते हैं। काठगढ़ महादेव का ये शिव मंदिर हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है। जहां अघरदानी अद्भुत स्वरूप में विराजमान है। स्थानीय लोग और पुजारी मानते हैं हर साल ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसी चाल चलते हैं कि दोनों शिवलिंग एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, वो भी महाशिवरात्रि के पर्व पर। इस घटना का दीदार करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। शिवरात्रि के दिन इस चमत्कारी घटना का साक्षी बनना चाहते हैं।
1: मंदिर के बारे में सुना है, यहाँ दो मूर्तियां हैं, मतलब वो शिवरात्रि के दिन इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ बहुत बड़ा अच्छा है, हम सभी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं।
2: यहाँ दूर दूर से संगते आती है, हम हर साल यहाँ पे आते हैं, बल्कि हर महीने यहाँ पे चक्कर आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आके मन को बहुत सुकून मिलता है।
3: हाँ जी, सुना है इसके बारे में कि ये बोलते हैं कि पहले अलग होते हैं, जैसे दिखते हैं शिवरात्रि के कुछ खास जैसे दिन होते हैं उनमें दोनों आपस में मिल जाते हैं, सुना है।
0: कहते हैं भोलेनाथ वाला शिवलिंग 7 फीट लंबा है, जबकि माता पार्वती वाला शिवलिंग 6 फीट लंबा। कहते हैं मौसम में बदलाव से शिवलिंग की चाल भी बदलती है और जन्माष्टमी से लेकर महाशिवरात्रि तक शिवलिंग स्वरूप माँ पार्वती और कैलाशपति आपस में मिल जाते हैं।
4: इस मंदिर की ज्यादा प्राचीनता है कि नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ती है और सर्दियों में जो नजदीक आते हैं शिवरात्रि की रात्रि को जो ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी पल के लिए, को बड़ा भाग्यशाली हो तो उन्हीं को ही दर्शन होते हैं।
0: कहते हैं काठगढ़ के इस शिवलिंग की थाह नहीं मिलती, इससे जुड़ी हैं कई पौराणिक मान्यताएं। और आखिर क्यों महाराजा रंजीत सिंह को शिव की शक्ति का मूल्यांकन करना भारी पड़ गया, सारी कथा आपको विस्तार से बताएंगे।
5: कांगड़ा जिले किले में बना काठगढ़ महादेव मंदिर से कई कथाएं प्रचलित हैं, पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। कहते हैं कि दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो कि दो भागों में विभाजित है। शिवलिंग के एक भाग में माता पार्वती तो दूसरे में शिव का स्वरूप है। कहते हैं ग्रह नक्षत्र की चाल से शिवलिंग स्वयं ही घटना बढ़ना शुरू कर देता है। इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर मानकर इसकी पूजा की जाती है।

0: शिव और शक्ति की लीला स्थली, जहां विधाता के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन होते हैं। श्रावण में तो ये मंदिर बोलबम के जयकारों से गूंजता है, तो वहीं महाशिवरात्रि पर एक चमत्कारिक घटना का गवाह भी बनता है, जिसे निहारने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां दो शिवलिंग इतने पास एक साथ स्थापित हैं। कहते हैं कि कांगड़ा के काठघर के शिवलिंग की महिमा रामायण में भी मिलती है, जिस पर मुहर स्थानीय पुजारी लगाते हैं। मान्यता है कि महादेव का ये मंदिर त्रेता युग से भी पहले का है, जहां रघुकुल नंदन राजा भरत शिव की आराधना करने आते थे।
1: बोलते कि जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे, तो कुछ दिन भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना जहाँ करते थे और जहाँ व्यास नदी बगती है वहाँ से जल वगैरह लेके भगवान की पूजा अर्चना करते थे, और इस रास्ते में होके वो कश्मीर जाते।
0: कहते हैं कि इस मंदिर में शिवलिंग कहाँ से आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन स्थानीय पुजारी एक पौराणिक कथा का जिक्र करते हैं, जो कहती है कि एक मंदिर का जुड़ाव त्रिदेव से है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच के द्वंद को त्रिपुरारी ने यहाँ स्वयंभू स्थापित होकर सुलझाया था। आप भी सुनिए ये रोचक पौराणिक कथा, जब ब्रह्मा और विष्णु भी शिव के शिवलिंग की था नहीं पा सके थे।
2: ये जो शिवलिंग है अपने आप स्वयंभू प्रकट है सतयुग के बारे का। जब बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी का बचपन के तौर पर आपस में वाद विवाद हुआ था, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, तो जहाँ पर एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए और इस स्तंभ में ऐसे आवाज़ आया कि जो इसके मूल भाग का और ऊपर के भाग का जो पता लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आकाशमंडल पर चले गए, विष्णु जी पाताल में चले गए, हजारों वर्षों तक घूमते रहे मगर इसका कोई अंत नहीं मिला।
0: शिव गौरा के इस दरबार से कई चमत्कार जुड़े हैं, जिसका लोहा महाराज रणजीत सिंह ने भी माना था और यहाँ पर भव्य मंदिर बनवाया था। काठगढ़ शिव मंदिर के शिवलिंग को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि जैसे माता पार्वती शिव संग कैलाश पर विराजती हैं, वैसे ही यहाँ पर शिवलिंग के साथ विराजती हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा अजूबा तो यही है कि यहाँ दो शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन एक हो जाते हैं। मुख्य द्वार काफी आकर्षक है, जो करीब 8 खम्भों पर टिका है। मुख्य द्वार की शोभा देखते ही बनती है, जिसके ऊपर उड़न तस्तरी सरी की आकृति इसके वैभव में 4 चांद लगाती है। मंदिर की दरो दीवार पर सनातन धर्म के चिन्ह ओम और स्वस्तिक बने हैं। मुख्य द्वार पर ही भगवान गणेश की प्रतिमा भक्तों को आशीर्वाद देती है। गर्भगृह में दाखिल होते ही भोलेनाथ के चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन हमें होते हैं, जिसके पास जाने पर हमारी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। हमारे सामने ही एक ही शिवलिंग के दो स्वरूप दिखते हैं, एक माता पार्वती का और दूसरा शंभुनाथ का। मान्यता है कि दोनों शिवलिंग अष्टकोणीय है, जो कि काले भूरे पाषाण पत्थर के बने हैं। माता पार्वती वाले शिवलिंग पर चुनर चढ़ाई गई है, जबकि भूत भावन भगवान शंकर वाले शिवलिंग को पीताम्बरी और लाल वस्त्र अर्पण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में हमें शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं, जो तस्वीरों की शक्ल में भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तों की यहाँ अगाढ़ आस्था है, श्रद्धालु भक्ति भाव से भोले बाबा के दर्शन करते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। मंदिर प्रांगण में ही बरगद का विशाल पेड़ लगा है। कहते हैं कि इस पेड़ पर मन्नत की चुनरी और धागा बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काठघर के इस मंदिर में देश और दुनिया के कई भक्त आते हैं। इस मंदिर की बहुत ख्याति है, यहाँ आकर लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर का ट्रस्ट लोगों के यहाँ रुकने का भी प्रबंध करता है। कहते हैं कि आस्था किसी तर्क को नहीं मानती, ये सदियों से चली आ रही सनातन परंपराएं हैं, जो साक्ष्य के साथ नहीं विश्वास के साथ चलती हैं।
3: अब आपको शिव और पार्वती के एक चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करवाते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर विधाता के विवाह का गवाह है, जहां महादेव संग माता पार्वती विवाह के बाद विदाई की मुद्रा में दिखाई दे रही हैं, जहां आज भी शिव के साथ साथ माता पार्वती के दूल्हा दुल्हन स्वरूप को गर्भगृह में पूजा जाता है।

भगवान सूर्य जब माँ नर्मदा की गोद में अस्ताचल हो जाते हैं, तब उदित होती है उस देवस्थान में देव ज्योति। पौराणिक मान्यताओं में उसे महर्षि भृगु की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है, तो वही मानवीय आंख ही उसे शिव और माँ पार्वती के वैवाहिक संयोग के रूप में देखती हैं। कहते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित ये प्रतिमा उस पौराणिक कथा का परिचायक है, जो बताती है कि हिमालय की पुत्री पार्वती को विवाहित कर भगवान शिव अपने गणनंदी पर विराजमान होकर कैलाश की ओर चले थे। अगर आपको भी करना है माँ गौरी संग भगवान शिव के इस अनोखे स्वरूप का दर्शन, तो आपको आना होगा हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में, जहाँ भगवान शिव के इस मंदिर को पूरी दुनिया 64 योगिनी मंदिर और गोलकी मठ नाम से जानती है। 81 कोणीय त्रिभुजाकारी 84 खंभों वाला ये देवस्थान आज पूरी दुनिया में बाबा विश्वनाथ की बारात वाले मंदिर के रूप में विख्यात है। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, उनके साथ में भगवान के गण नंदी भी है। आस्था और विश्वास के कदम गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इसी गर्भगृह में काले पत्थरों में दिखता है वो चमत्कार जो इस धाम को पूरी दुनिया में अद्वितीय और अनोखा बनाता है। गर्भगृह में भगवान शंकर और मां पार्वती की काले पत्थरों पर नक्काशी की गई प्रतिमा दिखती है। जहाँ दुनिया में सभी शिवालयों में गर्भगृह में शिवलिंग मिलते हैं, वहीं इस मंदिर में माँ गौरा और भगवान शिव का साकार स्वरूप दिखता है। इस धाम में माँ गौरा और भगवान शिव नंदी पर सवार दिखते हैं। इस साकार स्वरूप को यहाँ आने वाले भक्त भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक चित्रण मानते हैं। नंदी पर विराजमान भगवान शिव को दूल्हा और माँ पार्वती को यहाँ दुल्हन माना गया है। नंदी पर विराजमान होने पर भी दोनों एक दूसरे को निहारते प्रतीत होते हैं। जब गर्भगृह में जगत के नियंता स्वयं ही वैवाहिक परिवेश में स्थापित है, तो यहाँ सबसे ज्यादा तांता नवविवाहितों का ही लगता है, जो माँ गौरा के साथ भगवान शिव से अखंड सौभाग्य का वर मांगने आते हैं। इस देवस्थान से जुड़ी एक मान्यता और भी है, वो ये कि माना जाता है कि शिव और शक्ति के चारों ओर स्थापित 64 योगिनियां नृत्य करते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती को पहरा देती हैं। इस मंदिर का इतिहास जो भी कहता हो, पुराण जो भी साक्ष्य देते हो, लेकिन आस्था यही मानती है कि दूल्हे के भेष में शिव यहाँ दुल्हन के भेष में माँ गौरा के साथ नंदी पर विराजित है, जो सुख शांति और समृद्धि का वरदान सदियों से बरसाते आ रहे हैं। Good news today.

0: देवी सती माता पार्वती ने जब अपना पूर्व जन्म में शरीर त्याग किया था, तब उन्होंने भगवान शिव को प्रत्येक जन्म में प्राप्त करने की प्रण लिया था कि प्रत्येक जन्म में भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए मां पार्वती कठोर तपस्या करती हैं। माता पार्वती ने श्रावण मास में अन्न जल का भी पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, फल फूल अन्न जल सब का त्याग कर दिया, कठोर तपस्या करने लगी, जिससे भगवान शिव प्रकट होकर अर्धांगिनी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार करते हैं। तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के मिलन के रूप में भी श्रावण मास बड़ा पवित्र माना जाता है।
1: प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

0: No.
1: Oh, no.
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
4: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo bloody hoo.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और चलिए अब बात उत्तराखंड की। वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपने नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल और अनोखी परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ देश विदेश से भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी देवी मंदिर लेकर चलते हैं जिसके दर्शन के लिए आस्थावान आते रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मंदिर अपनी अनोखी मैग्नेटिक पावर के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये है कसार देवी मंदिर।
2: क्या आपको बताऊं, आप जब यहाँ पर आएंगे स्वयं जो है फील करेंगे, मतलब एक भू चुंबकीय शक्ति है यहाँ पे। मन आपका उथल पुथल हो रहा है, मतलब आपको टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो इससे बढ़िया जगह संसार में मैंने आज तक नहीं देखी।
3: आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहा हूँ जो न केवल आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया जहान में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, बल्कि अपने रहस्यों को लेकर भी खूब फेमस है। अल्मोड़ा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन की वैसे तो बात निराली ही रही है। यहाँ दूर तक फैली हरियाली तो कहीं घना कोहरा, बस मौसम की इसी लुका छिपी के साए में कसार देवी का ये अद्भुत नजारा आपको अंदर से तरोताजा कर देगा। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी पास कसार देवी मंदिर, इलाका लगभग हर प्रजाति के पक्षियों से भरा पड़ा है, और यहीं ये देवी मंदिर अपने अनोखे चुंबकीय चमत्कार से आस्थावानों और वैज्ञानिकों के बीच क्यूरियोसिटी पैदा करता आया है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ देवी माँ साक्षात अवतार में आई थी, और इसी मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि देश में ये इकलौती जगह है जहाँ मैग्नेटिक पावर महसूस की जाती है। दरअसल साइंटिस्ट बताते हैं कि मंदिर के इर्द गिर्द वैन एलन बेल्ट है, यानी इस धरती के चारों तरफ मौजूद वो एरिया जहां स्पेस से आने वाली हाई मैग्नेटिक चेंज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड में फंसे रहते हैं। इसीलिए इस मंदिर से जुड़ी कई शक्तियों का पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिक भी आए, लेकिन सारी कोशिशें फेल रही। फिलहाल तो बरसों से कसार देवी मंदिर का रहस्यमय क्षेत्र लोगों के लिए मेंटल पीस देने वाली खास जगह बना हुआ है, क्योंकि कुछ अलग सा ही सुकून मुझे भी यहाँ महसूस हुआ।
2: आज थोड़ा सा हम लोग लेट हुए, करीब शाम के 5 बज गए हैं, और आज आप लोग देखो कितने हाइट पे ये मंदिर है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऐसी ऐसी यहाँ पे गुफाएं हैं, इसके अंदर जाके लोग जाके ध्यान करते हैं।
3: स्पिरिचुअली कसार देवी मंदिर के महत्व को समझते हुए कभी स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ ध्यान किया तो तभी से ये जगह और मंदिर हर तरह के देसी विदेशी पर्यटकों के बीच और फेमस हो गई। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहाड़ मतलब सफर में ढेर सारी परेशानी, तो यकीन मानिए इस प्यारी सी जगह पर पहुंचना बेहद ही आसान है।
2: पे आने के लिए जो है डायरेक्ट कोई बस तो है नहीं, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको अल्मोड़ा आना पड़ेगा। अल्मोड़ा से जो छोटी गाड़ियाँ होती है, प्राइवेट जो कमर्शियल टैक्सियाँ होती है, यानी जैसे मैक्स वगैरह वगैरह बोलेरो चलती हैं, वो सवारी के हिसाब से और बुकिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको पहुँचा देगी।
3: वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपनी बेपनाह खूबसूरती, अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ कई मंदिर हैं जो अपनी आध्यात्मिकता की वजह से मेरे जैसे ही कई और श्रद्धालुओं की भी पसंद रहे हैं। तो अगर आप भी भाग दौड़ और उथल पुथल की जिंदगी से आजीज आए हैं, तो लाइफ में एक बार इस रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर करना तो बनता है।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
4: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से हुई शुरू। 8,371 तीर्थयात्रियों ने डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट किया पार। सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। आंध्र प्रदेश का अलूरी एयरपोर्ट की सौगात, पीएम मोदी ने 17,900 करोड़ की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जी हां, आज हमारे स्पेशल शो में बात आदि से अनंत तक की, सत्यम शिवम सुंदरम की, शिव शक्ति की। सनातन परंपरा में भगवान शिव केवल देवों के देव महादेव ही नहीं बल्कि करुणा, त्याग, तप, न्याय और कल्याण के भी प्रतीक हैं। वही मां आदिशक्ति सृष्टि की ऊर्जा, शक्ति ममता और सृजन का स्वरूप है। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव, दोनों का ये दिव्य मिलन ही सृष्टि के संतुलन और जीवन के मूल सिद्धांत का आधार माना गया है। और जब जब संसार पर संकट आया तब तब शिव और शक्ति ने अपने अलग अलग स्वरूपों में अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना की। कभी महाकाल बनकर समय को दिशा दी तो कभी माँ दुर्गा बनकर असुरों का संहार किया। यही कारण है कि शिव और शक्ति की आराधना केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, संयमित और सकारात्मक बनाने की प्रेरणा भी मानी जाती है। ऐसे में आज हम आपको अपनी खास पेशकश में भगवान शिव के गुण और विराट स्वरूप के बारे में बताएंगे। शिव का अलौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और तात्विक विश्लेषण करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए शिवोम शिवोम का गुण विज्ञान आखिर क्या है।
1: मन में शिव शब्द का संघात होते ही मानस पटल पर एक आकृति उभरती है। भाल पर चंद्रमा, जटा में गंगा, माथे पर त्रिपुंड के साथ तीसरा नेत्र, नीला कंठ, गले में सर्प की माला, एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल, मृगछाल की आसनी, पूरा शरीर चिता भस्म से लिपटा हुआ, वाम भाग में मां पार्वती और सामने विराजमान नंदी। यही है शिव का लौकिक स्वरूप या कहें स्थूल स्वरूप। लेकिन अपने पारलौकिक या सूक्ष्म स्वरूप में शिव अपने लौकिक या स्थूल स्वरूप से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने व्यापक और विराट स्वरूप में शिव इंद्रियों के विषय नहीं हैं। शिव को संपूर्णता में समझने के लिए हमें रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद और श्रवण की सत्ता के पार जाना होगा। राग द्वेष के साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे मनोविकारों के बंधन में फंसा मनुष्य शिव के पारलौकिक या सूक्ष्म स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकता। शिव को संपूर्णता में समझने के लिए शिवत्व को प्राप्त करना होगा। 8वीं सदी के आखिर में 32 वर्ष के लिए धरती को धन्य करने आए शिव के अंशावतार आदिगुरु शंकराचार्य ने अपनी युगातीत रचना निर्वाण षटकम में प्राणी मात्र को शिवांश निरूपित करते हुए लिखा है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम् शिवोहम्। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त हूँ। मैं न तो श्रवण हूँ, न जीभ, न नासिका, न ही नेत्र हूँ। मैं न तो आकाश हूँ, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। शंकराचार्य के इस तात्विक दर्शन की लौकिक व्याख्या की जाए तो यही अर्थ निकलता है कि समस्त चराचर जगत में जो विशुद्ध चेतना है वही शिव है। ये विशुद्ध चेतना अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है और यही चेतना हमारे भीतर भी है, हर जीव में है। जब तक हमारा मन, बुद्धि और चित्त सांसारिक मोह माया यानी विकारों से भरा है तब तक हम अपने भीतर शिव तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते। शिवत्व की चेतना की अनुभूति के लिए इन्हें खाली करना होगा, बिल्कुल खाली, शून्य। शून्य होते ही शिव चेतना का अलौकिक प्रकाश फैलने लगेगा। साफ है कि पूर्ण रूप से रिक्त हो जाना ही शिवत्व है। यह अखिल ब्रह्मांड त्रिगुण प्रधान है। दृश्यमान जगत में ये तीनों गुण हैं, सत, रज और तम। व्यवहारिक भाषा में कहें तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों गुण संसार में साफ तौर पर दिखाई देते हैं, पर शिव को त्रिगुणातीत माना गया है, यानी तीनों गुणों से रहित। क्योंकि जब तक गुण धर्म का बंधन रहेगा चेतना प्रकाशित नहीं होगी। जो त्रिगुणातीत है उसके अंदर सृष्टि के तीन मूलभूत तत्व अपने आप प्रतिष्ठापित हो जाते हैं और ये तीन मूलभूत तत्व हैं सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है शाश्वत यानी अपरिवर्तनीय। जो अपरिवर्तनीय है वही तो सत्य है। चित का अर्थ है चेतना। आनंद मतलब रोग शोक क्लेश से सर्वथा मुक्त अवस्था। सद चित और आनंद को मिलाकर शब्द बनता है सच्चिदानंद। शिव को सच्चिदानंद माना गया है। चूंकि शिव हर जीव में विद्यमान है इसीलिए जीव भी सच्चिदानंद ही है, लेकिन विषयाशक्ति की वजह से वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है।
2: हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम सत्य है, देह सत्य नहीं है। ये मिटती है, इसमें परिवर्तन है, विकार है, इसकी अनेक अवस्थाएं हैं। ये सत्य जब अभिव्यक्त होता है, ये सत्य जब मुखरित होता है, प्रखर होता है, यद्यपि सत्य जीवंत है लेकिन जब सत्य व्यवहारित होता है, व्यवहार में आता है, सत्य चित आनंद, इसकी जो मूल सत्ता है कथा की वो सच्चिदानंद है। आनंदो वे ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को आनंद कहा गया।
1: सनातन के कालजयी वांग्मय में शिव को अनादि माना गया है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जन्म की कथाएं मिलती हैं, बाल लीलाओं की कथाएं मिलती हैं, लेकिन शिव के जन्म का कोई वर्णन किसी भी पुराण में या ग्रंथ में नहीं मिलता। शिव सृष्टि के साक्षी के रूप में अनादिकाल से विद्यमान हैं। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू का मतलब जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो, इसीलिए तो शिव को अनादि माना गया है। और विज्ञान का निष्कर्ष है कि जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं हो सकता, इसीलिए शिव अनंत भी हैं। शिव इस चराचर जगत के शाश्वत साक्षी हैं। वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान शिव की महिमा से संबंधित कोई प्रसंग ना हो। सनातन का आधार स्तंभ माने जाने वाले वेदों में राम कृष्ण का संदर्भ नहीं मिलता, लेकिन शिव की महिमा का संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद के 3 सूत्र में रुद्र के रूप में शिव का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में तो एक पूरे अध्याय में ही रुद्र की स्तुति पाई जाती है, जिसे रुद्राध्यायी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के 11वें कांड के 2 सूक्त में भी रुद्रदेव की स्तुति की गई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब हर तत्व में शिव की चेतना विद्यमान है तो शिव की साधना और आराधना की परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई। दरअसल मनुष्य जब विषय विकारों में फंसकर अपने शिव स्वरूप से विमुख हो जाता है तो उसे 3 शूल सालने लगते हैं। ये 3 शूल हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। इन्हीं 3 शूलों को त्रिशूल भी कहते हैं। 3 शूलों से मर्माहत मनुष्य इससे मुक्ति की कामना करने लगता है। ऐसे में उसे शिवत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा होती है। इस स्थिति में शिव साधकों की मनोदशा और मनोभूमि के अनुसार हर रूप में सहज साध्य बन जाते हैं। सनातन परंपरा में शिव ऐसे देव हैं जो सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और साथ ही निर्गुण निराकार भी हैं।
3: शिव एक निर्गुण निराकार है, एक सगुण निराकार है, एक सगुण साकार है। सगुण साकार शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। सगुण निराकार भी शिव हैं। अंत में शिव जी का मौलिक स्वरूप शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञयः सच्चिदानंद रूप निर्गुण निराकार है। तीनों के साक्षात्कार अनुभव का ढंग अलग अलग है। पहले सगुण साकार शिव की उपासना करनी चाहिए।
1: अद्भुत है भगवान शिव का ज्ञान और विज्ञान। शिव सृष्टि का आधार हैं, शिव सत्य हैं, आशुतोष हैं, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु हैं और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी। शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न आदि ब्रह्म हैं। शिव अनादि हैं, इसलिए अप्रमेय भी हैं। शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति, उनकी चेतना का साक्षात्कार तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। आपके लिए हैरानी का विषय हो सकता है कि सनातन के सदग्रंथों में शिव पार्वती विवाह में गणेश जी की पूजा का प्रसंग मिलता है। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जो गणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, उनकी पूजा शिव पार्वती विवाह में कैसे संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड में शिव विवाह प्रसंग में इस संशय का अद्भुत समाधान दिया गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उ शंभु भवानी, को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनियों की आज्ञा से अपने विवाह में शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया, लेकिन चूंकि शिव अनादि हैं और जो अनादि है उससे जुड़ी घटनाओं को कालक्रम में समायोजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस बात को सुनकर कोई संशय न करे।
3: रामचरितमानस में शिव पुराण के अनुसार एक गाथा प्रकट की गई कि शिव पार्वती के विवाह के समय गणेश जी की पूजा की गई। बड़ा आश्चर्य, गणेश जी का तो जन्म बाद में होगा, आविर्भाव बाद में होगा, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है, बेटे की पूजा कैसे। तुलसीदास जी ने समाधान किया, सुर अनादि जिय जानी, गणेश जी अभिव्यक्ति की दृष्टि से शिव के पुत्र हैं, पार्वती के पुत्र हैं, गौरी नंदन हैं, लेकिन पांचों देव अनादि हैं।
1: शिव अनादि हैं, लेकिन सार्वकालिक सार्वभौमिक भी हैं, चेतना के रूप में आपके भीतर अनाहत रूप से विद्यमान हैं। जहां वासना का लेश नहीं है वहां कामांतक शिव हैं, जहां विकार का नाश हो चुका है वहां अविनाशी शिव हैं, जहां लालसाओं की सत्ता समाप्त हो चुकी है वहां आशुतोष शिव हैं, जहाँ प्रेम और करुणा का साम्राज्य है वहाँ कृपालु शिव हैं, जहाँ अनाचार अत्याचार दुराचार का जाल है वहाँ महाकाल शिव हैं, शिव सर्वत्र हैं। दरअसल शिव तत्व से विमुक्ता ही हमारी अज्ञानता का हेतु है। शिव तत्व की ओर प्रस्थान, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। शिव तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, वही हमारा असली स्वरूप है।
0: शिव के आध्यात्मिक और अलौकिक स्वरूप को जानने के बाद अब हम उनके लौकिक स्वरूप को डीकोड करने जा रहे हैं। दरअसल शिव दरबार में जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं उन सब के पीछे गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है।

0: सनातन के सदग्रंथों में तो शिव को अनादि माना ही गया है। आश्चर्यजनक रूप से ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों में भी शिव प्राचीनतम देव के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाने वाली सिंधु घाटी में शिव के आराध्य होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अपने जमाने के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली पशुपति मुद्रा को शिव का प्राचीनतम प्रमाण माना था। खुदाई में मिली मूर्ति योगासन की मुद्रा में है। इस त्रिमुखी मूर्ति में सिर पर सिंह है, जबकि चारों ओर पशु हैं। करीब 5000 साल पुरानी मानी गई ये कलाकृति शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप से काफी मिलती जुलती है। इतिहासकार डीडी कोसाम्बी मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले इस विग्रह को शिव का आदि शक्ति स्वरूप मानते हैं। तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध से छठी शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच रहे गुप्तकाल में कपालिका संप्रदाय काफी प्रभावशाली माना जाता था। कपालिका संप्रदाय शिव को तांत्रिक, रुद्र और मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजता था। दक्षिण भारत में तमिल नयन मार संतों ने छठी से आठवीं शताब्दी के बीच शिव भक्ति को जन जन तक पहुंचाया था। कहने की जरूरत नहीं कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता से लेकर उत्तर आधुनिक काल तक में शिव की भक्ति की परंपरा कभी खंडित नहीं हुई है। सनातन सभ्यता में तो शिव को देवाधिदेव माना गया है, महादेव माना गया है। अपने आध्यात्मिक और तात्विक स्वरूप में शिव अखिल ब्रह्मांड की विशुद्ध चेतना है, तो उनका लौकिक और सांसारिक स्वरूप भी अत्यंत विलक्षण है। शिव के लौकिक स्वरूप में भी या तो किसी दार्शनिक तत्व की गूढ़ विवेचना समाहित है, या फिर उसमें लोक व्यवहार के आचरण की शिक्षा सन्निहित है। मस्तक पर चंद्रमा। आपने गौर किया होगा कि शिव के मस्तक पर शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा विराजमान हैं। द्वितीया के चंद्रमा के जरिए भगवान शिव माया मोह के पाश में फंसे इंसान को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। दरअसल ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के एक मंत्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणश्य मुखाद अग्निर जायत। इस मंत्र का अर्थ है, विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कानों से वायु और प्राण, और मुख से अग्नि का प्राकट्य हुआ है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा मनुष्य के मन का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर पूर्णिमा का चांद नहीं बल्कि द्वितीया का चांद धारण करते हैं। इस तरह दुनिया को संदेश देते हैं कि मन काबू में रखो, उसे वाचाल मत होने दो, उस पर नियंत्रण रखो। मन को बंधन और मोक्ष दोनों का हेतु माना गया है। मन पर अगर नियंत्रण है तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, मन बेकाबू है तो सांसारिक बंधन का कारण बन जाता है। भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि मन अगर द्वितीया के चंद्रमा जितना ही प्रकट होगा तो वैसे मन वाला इंसान पूरे समाज में पूजनीय हो जाएगा।
1: के टेढ़े दूज के चांद को कितना प्रणाम है, उतना तो पूनम को नहीं है। भारत के गांव गांव में निकल कर देखें, जैसे दूज का चांद निकलेगा परस्पर एक दूसरे को लोग प्रणाम करते हुए कहते हैं भाई राम राम। दूज का चांद क्या निकला, भगवान याद आया। द्वितीया का चंद्र लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु माने वो छोटा तिरसा, यमाश्रितो ही वक्रोपि, चंद्र सर्वत्र।
0: जटा में गंगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा जी का अवतरण स्वर्ग से धरती पर हुआ है। विश्वपति परमात्मा के चरण से गंगा जी की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन गंगा जी का प्रवाह इतना प्रबल था कि उसकी प्रचंड धारा की वजह से धरती पर जल प्रलय का खतरा उत्पन्न हो गया। इसीलिए इसके प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए शिव जी ने इसे अपनी जटा में धारण कर लिया। इसका आध्यात्मिक संकेत ये है कि परम तत्व की ज्योति इतनी प्रबल और विराट है कि धरती पर रहने वाला मनुष्य उसके तेज को सीधे तौर पर सहन नहीं कर सकता। उसकी अनुभूति के लिए शिव तत्व का अवलंब लेना पड़ता है। यानी अगर कोई साधक सत्य की साधना करना चाहता है तो उसे शिव के शरणागत होना पड़ेगा। विश्वपति परमात्मा के चरण से निकली गंगा को जटाओं में धारण करने के माध्यम से शिव जी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि सर्वशक्तिमान सत्ता के प्रति समर्पण का भाव रखने वाला ही शिवत्व को प्राप्त हो सकता है।
2: एक पुत्री को मस्तक पर क्यों बिठाया? इसलिए बिठाया क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुई है, भगवत चरणामृत स्वरूपा है, विष्णु पादोद्भवा है, और वैष्णव तो विष्णु पादोदक को मस्तक पर धारण करता ही है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम पीत्वा सिरसा धारयाम्यहम्। मस्तक पर धारण करता है। इस भाव से उन्होंने भगवती गंगा को अपनी जटाओं में विराजमान किया।
0: ललाट पर तीसरा नेत्र। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। काम यानी वासना को मनुष्य का सबसे प्रबल विकार माना जाता है और जगत के दोनों नेत्र इस विकार का शमन करने में सक्षम नहीं हैं। अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से शिव जी दुनिया को ये संकेत देते हैं कि वासना पर विजय पाने के लिए तीसरे नेत्र को खोलना पड़ता है। तीसरा नेत्र मतलब अंतर्दृष्टि। जब तक हमारी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं होगी, कामादिक विकारों पर विजय नहीं हो सकती। गले में गरल। पौराणिक कथाओं में प्रसंग आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ विष भी निकला। अमृत पाने के लिए तो देवासुर संग्राम हुआ, लेकिन हलाहल पीने को कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। व्यापक लोक कल्याण के लिए काम शिव ने किया। हलाहल पीकर भगवान शिव ने दुनिया को इस

0: हृदय में नहीं उतरने दिया बल्कि अपने गले में ही रोक लिया। इसके जरिए शिवजी संदेश देते हैं कि अगर आप व्यापक जन कल्याण का कोई काम करते हैं तो दिल में मत उतारिए, यानी उसका अभिमान मत करिए। अब सवाल ये है कि विष क्या है? हमारे मनुष्यों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को ही सबसे घातक विष माना है।
1: ये कामक क्रोधादि भयंकर विष हैं। इन विषों को अपने गले के नीचे मत उतरने दो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में युगल सरकार विराजमान है। शंकर जी ने विष को क्यों नहीं उतरने दिया कि मेरे हृदय में युगल सरकार विराजमान है, ये तीक्ष्ण विष उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा। हम वैष्णव विचार करें कि कामक क्रोधादि के विकार विष हैं और ये विषय विष हमारे हृदय विहारी को पीड़ा पहुंचाएगा, तो इतने विचार मात्र से हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा।
0: गले में सर्पों की माला। शिवजी के गले में हमेशा विकराल सर्पों की माला रहती है। सर्प काल के प्रतीक माने जाते हैं। अपने इस स्वरूप के जरिए भगवान शिव अहंकार में फंसे दुनिया के लोगों को सावधान करते हैं कि इंसान अपनी सुरक्षा का चाहे कितना ही अभेद्य किला क्यों ना बना ले, काल उससे दूर नहीं है। काल उसे कहीं भी और कभी भी क्रस सकता है। यानी शिव जी के गले में सर्पों की माला माया मोह की मूर्छा में फंसे मनुष्य को तात्विक बोध को लेकर चैतन्य और जागरूक होने की प्रेरणा देती है। आसनी के रूप में बाघंबर। शिव जी की आसनी बाघंबर है। बाघ ताकत और हिंसा का प्रतीक है। बाघंबर को आसनी बनाकर शिव जी ताकत के मद में रहने वाले लोगों को संकेत करते हैं कि हमेशा एक ही स्थिति नहीं रहती। शक्तिशाली से शक्तिशाली इंसान को अगर ये भान हो जाए कि उसकी ताकत हमेशा बनी नहीं रहेगी, तो वो ना सिर्फ उस ताकत के दुरुपयोग से बच जाएगा बल्कि उसे लोकहित में लगाना शुरू कर देगा। एक हाथ में त्रिशूल। शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल है। शिव का त्रिशूल संसार के तीन शूलों के प्रति हमें आगाह करता है। ये तीन शूल हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने इन तीनों शूलों को किसी न किसी रूप में महसूस न किया हो। रोग व्याधि के साथ आकस्मिक मिलने वाले जख्मों को दैहिक शूल माना जाता है। मन में होने वाली असह्य पीड़ा दैविक शूल है। किसी अज्ञात भय से मन का घिर जाना भी दैविक शूल का ही हिस्सा है। इसी तरह सुख सुविधाओं का अभाव भौतिक शूल है। हाथ में त्रिशूल लेकर शिवजी जगत में मौजूद इन तीनों तापों को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं और साथ ही स्वयं त्रिगुणातीत होकर इससे मुक्त होने का उपाय भी इसी त्रिशूल के जरिए ही बताते हैं। एक हाथ में डमरू। शिव जी के एक हाथ में डमरू है। डमरू की शेप सर्जन, पालन और संघार के क्रम का निरूपण करती है। डमरू के जरिए भगवान शिव दुनिया को संकेत करते हैं कि सृजन, पोषण और सर्वनाश प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस नियम को आत्मसात करने वाले माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। डमरू से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांड का अनाहत नाद है, जो बताता है कि पिंड यानी शरीर नश्वर है लेकिन चेतना अविनाशी है। इतना ही नहीं, शिव का डमरू व्याकरण का मूलभूत आधार है। माना जाता है कि करीब 700 ईसा पूर्व व्याकरण का प्रतिपादन महान मनीषी पाणिनी ने किया था। पाणिनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र आज दुनिया की सभी भाषाओं के व्याकरण के बुनियादी स्रोत माने जाते हैं। माना जाता है कि पाणिनी ने ये 14 सूत्र शिव के डमरू के नाद से प्रकट किया, इसीलिए इसे माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। संगीत की सारी राग रागिनियां भी शिव के डमरू से ही निकली मानी जाती हैं। इसी तरह शिव का तांडव दुनिया के सभी नृत्यों का आधार माना जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि संगीत, साहित्य और कला का आधार शिव ही हैं। इसीलिए शिव को कलातीत भी कहा जाता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।
2: खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है.
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.

LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स का जलवा, 54 किलो कैटेगरी में प्रीति पवार, 57 किलो में जैस्मिन ने जीता गोल्ड मेडल। मेंस ट्रिपल जंप में आज भारत को एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी, हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रतिमाह, रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल, सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा, पहाड़ियों और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी। और इस वक्त की शानदार खबर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन आज भारत ने 10 मिनट के अंदर बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल जीते, 54 किलो वर्ग में प्रीति पवार और 57 किलो कैटेगरी में जैस्मिन लांबोरिया ने गोल्ड पंच लगाकर भारत के स्वर्ण पदक की संख्या 7 कर दी है। भारत ने मेन ट्रिपल जंप में 2 और मेडल जीत लिए हैं, प्रवीण चित्रावन ने 16.58 मीटर के जंप अटेम्प्ट के साथ सिल्वर अपने नाम किया, वहीं सिल्वर प्रभु ने 16.52 के बेस्ट अटेम्प्ट के साथ ब्रॉन्ज जीता। 7 गोल्ड मेडल के साथ भारत पदक तालिका में 6वां स्थान पर आ गया है, 7 गोल्ड, 13 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने अब तक कुल 27 मेडल जीते हैं। और शानदार खबर के बाद आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों का, यानी कि जेएनटी एक्सप्रेस का।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: ग्लासगो CWG ने भारत के लिए एक शानदार खबर, प्रीति पवार ने बॉक्सिंग में भारत को दिलाया गोल्ड। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति को गोल्ड, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 6ठा गोल्ड। पुरुषों की ट्रिपल जंप से भारत को मिली दोहरी खुशी, प्रवीण चित्रवेल ने जीता सिल्वर, सिल्वा प्रभु ने 16.52 मीटर की छलांग लगाकर जीता ब्रॉन्ज। अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक पुरस्कार, अमित शाह ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में किया सम्मानित। अजीत डोभाल को राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अद्वितीय और साहसिक जीवन भर के योगदान के लिए सर्वसम्मति से चुना गया, शाह बोले देश की सुरक्षा मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका। हरिद्वार में धूमधाम से चल रहे कांवड़ मेले का आज तीसरा दिन, गंगा जल लेने लगातार धर्मनगरी पहुंच रहे हैं कांवड़िए। हर की पैड़ी से पूरे हरिद्वार में शिवमय हुआ माहौल, सजी धजी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं कांवड़िए। अब तक 10 लाख से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से अपने गंतव्य को हुए रवाना, अब पंचक लगने के कारण कांवड़ियों की संख्या में कुछ कमी। अखाड़ा परिषद ने कांवड़ियों को दिया नियम कानून और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश, डीजे की आवाज कम रखने और आवश्यकता के हिसाब से जल उठाने की सलाह। घाटों पर और हाईवे पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी, कांवड़ियों से लिया जा रहा है इंतजाम और आवश्यकताओं पर फीडबैक। मेरठ में कावड़ मार्ग पर सेवा में तत्पर रहेंगे वॉलंटियर्स की सुपर 30 की टीम, प्रशासन ने यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए की स्वयं सेवकों की भी विशेष तैनाती। स्केटिंग करते हुए 10 से ज्यादा युवा बिहार से जा रहे हैं बाबा नगरी देवघर, 30 तारीख को समस्तीपुर से शुरू हुई स्केटिंग यात्रा। 4 अगस्त को देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने का लक्ष्य, सोशल मीडिया से ग्रुप बनाकर निकली युवाओं की टोली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दिख रहा है आस्था और भक्ति का रंग, ओम नमः शिवाय बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तिमय हुआ रेलवे स्टेशन। बाबा वैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक करने के लिए झारखंड के देवघर जा रहे हैं कांवड़िए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं लोग। गौमुख से पवित्र गंगा जल लेकर चला मध्य प्रदेश के 150 से ज्यादा शिव भक्तों का विशाल जत्था, पदयात्रा करते हुए लौट रहे हैं कांवड़िए। मुरैना जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं सभी कांवड़िए, 22 जुलाई को गौमुख से गंगा जल लेकर पैदल पूरा कर रहे हैं 800 किलोमीटर का सफर। सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुआ बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार, भस्म आरती में शामिल हुए बड़ी तादाद में श्रद्धालु। सावन में श्रद्धालुओं के बीच बड़ी चांदी के बेलपत्र और पूजा सामग्री की डिमांड, ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं सामग्री। सावन में सोने चांदी के नए नए डिजाइन की पेश की जा रही है पूजा सामग्री, सावन का सोमवार आने से पहले बाजारों में रौनक। अमरनाथ धाम के तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी, बालटाल से फिर शुरू हो गई है पवित्र गुफा की यात्रा, आज 8371 तीर्थयात्रियों ने पार किया डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट, 5534 पुरुष और 2511 महिलाएं इसमें शामिल। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से पिछले 4 दिनों से रोकी गई थी अमरनाथ यात्रा, अब दूर हुई मौसम की बाधाएं। उत्तराखंड में द्वितीय केदार मदमहेश्वर जाने वाले भक्त ट्रॉली के जरिए पार कर रहे हैं मोरखंडा नदी, नदी के तेज बहाव में वही पैदल लकड़ी अस्थायी पुलिया। भक्तों की कठिन परीक्षा ले रहे हैं महादेव, धाम जाने के लिए 16 किलोमीटर की होती है पैदल चढ़ाई। आंध्र प्रदेश को मिला नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयनगरम के भोगापुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस, 5640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हुआ है तैयार। अल्लूरी एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान हुआ शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है हवाई अड्डा, यहां से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश को आज मिली 17,900 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात, राज्य की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सहित कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ। आज कर्नाटक का भी दौरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए आज रजिस्ट्रेशन शुरू, पहले ही दिन 1000 से ज्यादा महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत, लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का फंड, 17 लाख महिलाओं को मिलेगा इससे फायदा। बेंगलुरु में फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन लॉन्च, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की ओर से खास पहल। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम कंट्रोल हेडक्वार्टर बनने पर सहमति, डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए साइबर कमांडो होंगे तैनात। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी राहत की बरसात, बौछारें पड़ने से खिल उठी हरियाली। जम्मू कश्मीर के भालेसा में जोरदार बारिश, मूसलाधार बरसात से उफान पर नदी नाले। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, एसडीआरएफ बचाव दल एक्शन में आए नजर। कश्मीर में किश्तवाड़ के चतरू में बादल फटने के बाद बचाव और राहत के इंतजाम, जनहानि की खबर नहीं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। गुजरात के आणंद में भारी बारिश, मौसम विभाग के 2 दिन के रेड अलर्ट के चलते प्रशासन मुस्तैद। आणंद में प्रशासन ने तमाम नागरिकों की संयम बरतने और एहतियात बरतने की अपील उनसे की, जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग घर से बाहर ना निकलें और यात्रा करने से बचें। गुजरात के महीसागर जिले में मूसलाधार बारिश का दौर, 6 तहसीलों में भारी बारिश होने से निचले इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के अमरावती में मूसलाधार बारिश, एक ही दिन में औसतन 75.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज, कई गांवों का संपर्क टूटा। केरलम के रनी इलाके में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्य, भारी बारिश के बाद आया सैलाब। केरलम के इडुक्की में खोले गए कलारकुटी डैम के गेट, मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। इडुक्की के कई इलाकों में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, बचाव राहत और रास्ते दुरुस्त करने का काम जारी। केरलम के 8 जिलों में मौसम विभाग ने 3 घंटों के लिए जारी किया रेड अलर्ट, 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। केरलम के कोटायम में भी देर रात से जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। अगस्त के पहले दिन आम लोगों के लिए खुशखबरी, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 202 रुपए घटी, तो कोलकाता में 209 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित, 32,679 पदों के लिए 76,184 अभ्यर्थी हुए पास। कर्नाटक के हुबली में 3 दिन का जैक फ्रूट फेस्टिवल, कटहल से बने व्यंजनों का मजा लेने पहुंच रहे हैं लोग। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में प्रवासी पक्षी फ्लैमेंगो का दीदार, परिंदों के लिए माकूल हुआ मौसम। आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा को परखा गया, पश्चिमी गेट पर मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। मॉक ड्रिल में CISF, यूपी पुलिस, ASI, फायर सर्विस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक एवं निस्तारण दस्ता सहित कई एजेंसीज ने हिस्सा लिया। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ के बावजूद संपन्न हुई शादी, बारात और दूल्हा दुल्हन के आने जाने के लिए मोटर वाली नाव का किया गया इस्तेमाल। ओडिशा के पुरी में बाढ़ की चेतावनी के बीच कनास ब्लॉक में दया नदी का जलस्तर बढ़ा, अधिकारी हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सांप काटने पर शख्स को समय पर मिला इलाज, बची जान, बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर जिला अस्पताल ले जाया गया। लद्दाख में वन राइट वन नेशन ने कारगिल युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, उमलिंग लाप पर 390 फीट लंबा तिरंगा लहराकर बनाया अनोखा इतिहास। भारत माता की जय के नारे से गूंजा लद्दाख, कारगिल विजय दिवस पर युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिशन तिरंगा की शुरुआत की थी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, इस साल प्रदेश के 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। डूरंड कप 2024 का शिलोंग से शुभारंभ, ओपनिंग सेरेमनी में फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम सहित कई हस्तियां हुई शामिल। ग्रेटर नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी पहुंचे फिल्म आर्यभट्ट का 0 के सितारे हिमांश कोहली और सोनाली सहगल, अपनी फिल्म का किया प्रमोशन, 7 अगस्त को होगी रिलीज। सोशल मीडिया पर चर्चा में है सलमान खान और संजय दत्त का इमोशनल रीयूनियन, सलमान खान ने संजय दत्त के साथ शेयर की खास तस्वीरें और लिखा प्यारा सा नोट। एक बार फिर फैमिली एंटरटेनर फिल्म लेकर आ रहे हैं सूरज बड़जात्या, ये प्रेम मोल लिया, फिल्म की शूटिंग हुई पूरी, अनुपम खेर ने साझा की तस्वीरें। फिल्म में लीड रोल में है आयुष्मान खुराना और शर्वरी, अनुपम खेर का भी है अहम रोल। 27 नवंबर 2026 को रिलीज होगी ये फिल्म। हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्म रागिनी MMS 3 को लेकर बड़ा अपडेट, आयुष शर्मा, जुनैद खान और तमन्ना भाटिया स्टार है इस फिल्म में, अब एक्ट्रेस RJ महवश की एंट्री। महवश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म रागिनी 3 का ऐलान करते हुए कुछ फोटोज शेयर की, फिल्म को शशांक घोष कर रहे हैं डायरेक्ट। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे दिन पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। पहले दिन तोड़ा धुरंधर और पठान का रिकॉर्ड। स्पाइडरमैन ने दुनिया भर में कर लिया 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई। वर्ल्ड वाइड खूब पसंद की जा रही है फिल्म। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने कसरत करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के लिए शेयर किया। वीडियो में मृणाल एक ओवरहेड पुल पार कर पकड़ते हुए कर रही है कसरत। मृणाल ठाकुर के वीडियो में आया मजेदार मोड़। जूम करने पर पता चलता है कि मृणाल एक गद्देदार बॉक्स पर खड़ी हैं और झूलते हुए मुस्कुराते हुए उसका सहारा ले रही हैं। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म के सेट पर चोट लगने की खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान लगी चोट। डॉक्टर्स ने दी रेस्ट और रिहैबिलिटेशन की सलाह। चीन के विलिंगुआन में 1500 ड्रोन ने बांधा समा। शानदार ड्रोन शो से जगमग हुआ आसमान। ड्रोन शो में पेश की गई चीन के आइकॉनिक पहाड़ी चोटियों की झलक। महत्वपूर्ण इमारतों की भी बनाई गई तस्वीर। चीन में कल तक चलेगा यह अनोखा ड्रोन शो। हजारों लोगों को मिल रहा है इसका आनंद लेने का मौका। चीन के शेंजन में शानदार रोशनी से जगमग हुई इमारतें। मनाई गई चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ। शेंजन की इमारतों पर दिखा लाइटिंग का अनोखा नजारा। रोशनी से नहाई चाइना रिसोर्स टावर और वन शेंजन बे सहित कई बिल्डिंग्स। पश्चिमी तुर्की में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। तटीय प्रांत इजमीर के जंगलों में भड़की है आग। पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जंगली इलाकों में उठी लपटे। तेज हवा के कारण फैली आग। जान माल के बड़े नुकसान की खबर नहीं। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी आयदिन प्रांत में भी जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश। फायर फाइटर्स ने संभाला है मोर्चा। जंगलों की आग पर नियंत्रण के लिए जमीन से आसमान तक किए गए हैं उपाय। प्रशासन ने आग बुझाने के लिए झोंकी मशीनरी। ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है जंगलों में आग की वजह। हर साल इस इलाके में बढ़ रहा है आग का संकट। ग्रीस के एथेंस के पश्चिमी इलाके में भी जंगलों में भड़की आग। हेलीकॉप्टर्स के सहारे काबू पाने की कोशिश। एथेंस प्रशासन ने वाशिंदों को इलाका खाली करने की दी सलाह। आग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उठाए गए कदम। फ्रांस में भी दक्षिणी इलाके कॉरेंस के पास जंगलों में आग। सुरक्षित जगहों पर भेजे गए 2000 से ज्यादा लोग। सूखे से जूझ रहे ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में किसानों से समय से पहले शुरू किया खेती का काम। जोरों शोरों से चल रही है जुताई। इंग्लैंड के कई इलाकों में इस बार कम हुई वर्षा। खेती के लिए मौसम की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटे किसान। चीन में एआई सेक्टर के तहत यंग टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए नया टैलेंट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। इसमें रोबोट ऑपरेटर और डेटा इकट्ठा करने वालों से लेकर एआई ट्रेनर तक शामिल हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हर उम्र के छात्रों के लिए वोकेशनल और स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें डेटा इकट्ठा करना, रोबोट्स इंस्टॉल करना, उसे चलाना, उसका रखरखाव करना शामिल। हाल ही में 200 से ज्यादा लोगों ने नौकरी दिलाने वाली इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इसके बाद करीब 80 छात्रों को नौकरी मिली। चीन के जेजियांग प्रांत में रोबोट्स को एक खास तरह की ग्रोथ ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हिलने डुलने और चीजें पकड़ने से लेकर असल दुनिया के काम करने तक शामिल है। एआई डेमोंस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रमोशन सेंटर में 140 से ज्यादा एम्बॉडेड इंटेलिजेंस रोबोट्स मौजूद हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो का आयोजन। छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यापारी ले रहे हैं हिस्सा। गिफ्ट एक्सपो में 750 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स, 5000 से ज्यादा ब्रांड और 25000 से ज्यादा प्रोडक्ट शामिल। एक्सपो में छोटे बड़े शोपीस के साथ कई हैंडमेड चीजें भी शामिल। इस बार गिफ्ट एक्सपो में नए स्टार्टअप्स का बोलबाला। नैनीताल में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ उठाया गया ऐतिहासिक कदम। नैनीताल का मॉल रोड बनी नो हॉर्न जोन। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक की गई घोषणा, हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ किया जाएगा ₹1,000 का चालान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: LAC पर ड्रैगन का फिफ्थ जनरेशन वाला दांव। भारतीय सेना के पास चीन के स्टेल्थ का काट तैयार। चीन के कागजी शेर पर भारी, सेना के दिलेर। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीलेकणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है? क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स का जलवा। जैस्मी लंबोरिया और प्रीति पवार ने जीते गोल्ड मेडल। जादूमणि सिंह को मिला सिल्वर। मेंस ट्रिपल जंप में भी एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। सावन का तीसरा दिन, देशभर में शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रतिमाह। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा, पहाड़ियों और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। नौ जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल्थ टेक्निक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती कर दी है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं? वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रडार काम करते हैं। एक रडार एल बैंड पर काम करता है, एक रडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता, जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है, जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है, J20 Mach 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल Mach 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं, तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है।

0: हमला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: 3, 2, 1, now।
3: 23 जुलाई को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर अटैक करने वाली स्वदेशी मिसाइल कुशा का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ये परीक्षण भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिजाइन और विकसित करने में सक्षम है। स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा, जिसमें इतनी ताकत है कि दुश्मन की क्रूज मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल, उसके ड्रोन और फाइटर जेट्स को पकड़कर उन्हें नाकाम कर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि एक लंबे दायरे में काम करती है, और ऐसे में चीन और पाकिस्तान से सटी सरहद पर यह काफी कारगर साबित हो सकती है। डीआरडीओ के इस परीक्षण से भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर प्रोग्राम है। अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे देश पहले से ही इस क्षमता को हासिल कर चुके हैं। अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। कुशा मिसाइल सिस्टम कैसे भारत के एयर डिफेंस को मजबूत बनाएगा, आइए आपको वो भी बताते हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेज में काम करती है।

0: यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। LRSAM सिस्टम में लगी M1 इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी तक मध्यम खतरों को रोकेगी। M2 इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 250 किलोमीटर की रेंज में आने वाले लड़ाकू विमानों को निशाना बनाएगी। M3 इंटरसेप्टर मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह कर देगी। कुशा मिसाइल की रफ्तार मैक 5.5 यानी करीब 6700 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जो हाइपरसोनिक और स्टेल्थ खतरों को भी नाकाम करने में सक्षम है।
1: भारत एक बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सुरक्षा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, जिसके तहत दुश्मन का कोई भी विमान भारत के आसमान में घुस नहीं पाएगा। इस एयर डिफेंस एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा भारत में ही डेवलप की जा रही मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम दिया गया है कुशा। कुशा जो है वो एक ऐसा एडवांस सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें चार चार तरह की मिसाइलें होंगी। एक मिसाइल ऐसी होगी जो दुश्मन के हवाई जहाज को 350-400 किलोमीटर की दूरी पर शूट कर सकेगी। उसके बाद भी अगर दुश्मन का विमान और पास आ जाता है तो कुशा का जो सेकेंड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो दुश्मन के जहाज को 250 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर पाएगी। और इसी तरह से कुशा में इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर और फिर 80 किलोमीटर वाला भी डेवलप किया जा रहा है। यानी कुशा एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली होगी।
0: LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वॉर करने वाली मिसाइलों को 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगे और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर सकेगी। कुशा मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी टारगेट और नेटवर्क सेंट्रिक आर्किटेक्चर को पूरी तरह से फॉलो करता है। इसमें स्वदेशी रडार लगाए गए हैं जो कि मल्टीपल टारगेट्स को फॉलो करते हैं और उन्हें डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ सीधे तौर पर जोड़ा गया है ताकि ये दुश्मन को पहचानने के साथ ही उस पर तुरंत हमला कर सके और इसमें किसी भी तरह की कोई देरी न हो। रूस के S-400 की तरह कुशा भी पूरी तरह से मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य है। इसे ट्रकों पर लोड करके चीन या फिर पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर जरूरत के हिसाब से तुरंत तैनात किया जा सकता है। दरअसल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचे संकड़े पहाड़ी रास्तों पर भारी भरकम मिलिट्री ट्रक नहीं चल सकते। इसके लिए कुशा मिसाइल के रडार, कमांड पोस्ट और लॉन्चर्स को विशेष मल्टी एक्सल ऑल टेरेन ट्रकों पर माउंट किया गया है। ये भारी भरकम और घुमावदार पहाड़ी रास्तों और बेहद कम तापमान में भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। पहाड़ों के पीछे छिपकर आ रहे विमान या ड्रोन को पकड़ने के लिए कुशा में 3D ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पारंपरिक पुराने रडार सिर्फ ये बता सकते थे कि दुश्मन किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, लेकिन कुशा का 3D रडार एक साथ तीन चीजें बताता है। पहला दूरी यानी लक्ष्य कितनी दूर है, दूसरा दिशा यानी लक्ष्य किस तरफ से आ रहा है, और तीसरा ऊंचाई यानी टारगेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। इससे मिसाइल को दुश्मन की सटीक लोकेशन मिलती है और वो सीधे निशाने पर जाकर लगती है। पुराने रडार की डिश एंटीना चारों तरफ घूमकर सिग्नल भेजती थी। अगर एंटीना घूमकर दूसरी तरफ चला गया तो पहली तरफ का दुश्मन रडार की नजर से कुछ सेकंड में ही ओझल हो जाता था। वहीं ऐसा रडार में एक बड़ा एंटीना नहीं होता, बल्कि इसमें हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स लगे होते हैं। 3D ऐसा रडार 360 डिग्री घूमते हुए चारों दिशाओं में आने वाले खतरों पर नजर रखते हैं। ये रडार 600 से 800 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जेट्स और मिसाइलों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुशा मिसाइल को रिएक्ट करने का भरपूर समय मिलता है। ये रडार आसमान में एक साथ 100 से अधिक संदिग्ध लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। 3D ISR रडार एंटी जैमिंग तकनीक से लैस है, यानी ISR रडार हर सेकंड अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है। इस वजह से दुश्मन के लिए इस रडार को जैम या फिर ब्लॉक करना नामुमकिन है। स्टेल्थ विमानों की पहचान करने में भी सक्षम है 3DISR रडार, जो चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ विमान को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है।
1: कुशा एयर डिफेंस सिस्टम का जो सर्विलेंस रडार है और जो फायर कंट्रोल रडार है, उसमें एजिया रडार लगा हुआ है, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार सिस्टम लगा हुआ है। इसमें होता क्या है कि एक मूवेबल एंटेना नहीं होता है। आमतौर पे जितने रडार होते हैं उसका एंटेना दाएं बाएं हिलता है या ऊपर नीचे हिलता है दुश्मन को ढूंढने के लिए, लेकिन आईसीआर रडार में कुशा का जो रडार होगा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार जो होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एलईडी टाइप डिवाइस लगे होते हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। तो जो रडार का एंटीना है वो स्थिर रहता है एक फ्लैट प्लेट जैसा, लेकिन उसमें जो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं सैकड़ों हजारों, वो एलईडी बल्ब की तरह से ट्रांसमिट करते हैं बुझ जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं बुझ जाते हैं। तो इससे दुश्मन की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो कुशा के रिसीवर सिस्टम में आसानी से घुस नहीं सकती है।
0: मौजूदा समय में भारत लंबी दूरी की सुरक्षा के लिए रूस के S-400 और मध्यम दूरी के लिए इसराइल के बराक-8 सिस्टम पर निर्भर है। कुशा के आने से भारत विदेश पर निर्भरता से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और खुद तकनीक का मालिक बनेगा। भारत ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए एक अभेद मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया है। हवाई सुरक्षा का पहला लेयर और सबसे बाहरी परत की सुरक्षा का जिम्मा S-400 के पास है। इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर है। भारत ने चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन तैनात किए हैं। इसके रडार और मिसाइलें 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय S-400 ने 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पाकिस्तानी एवॉक्स विमान को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर अपनी ताकत साबित की। सुरक्षा के लिए दूसरी लेयर पर तैनात है बराक-8 LRSAM। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के पास है। ये चीनी क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मध्यम दूरी पर ही रोक देती है। पर है आकाश और आकाश प्राइम मिसाइल, जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। आकाश सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी और मोबाइल सिस्टम है, जिसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी दुर्गम ऊंचाइयों पर चीनी सीमा पर भारी मात्रा में तैनात किया गया है। ये कम ऊंचाई पर पहाड़ों के पीछे छिप कर आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों को सटीकता से मार गिराता है। मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड के चौथे लेयर पर है समर और कम दूरी का सिस्टम, जिसकी रेंज है 10 से 12 किलोमीटर। भारतीय वायुसेना ने पुराने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे कि R-73 को मॉडिफाई करके SAMAR यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन सिस्टम बनाया है। ये सीमावर्ती एयरबेस और संवेदनशील ठिकानों को अचानक होने वाले हमलों से बचाता है। पांचवी परत पर है VS हॉर्ड्स और एंटी ड्रोन तकनीक की तैनाती, जो 6 किलोमीटर तक के खतरे को तबाह कर सकती है। VS हॉर्ड्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मान पोर्टेबल मिसाइल है, जिन्हें सैनिक चीन पाकिस्तान सीमा की ऊंची चोटियों पर तैनात रखते हैं ताकि अचानक आने वाले हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को तुरंत मार गिराया जा सके। वहीं स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले छोटे क्वाडकॉप्टर और ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए सीमा पर लेजर आधारित जैमिंग और सॉफ्ट और हार्ड किल सिस्टम सक्रिय है। भारत ने तीनों सेनाओं को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा रणक्षेत्र में होने वाला है। दरअसल ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसका फायदा ये भी होगा कि अगर दुश्मन की तरफ से मल्टीपल अटैक्स होते हैं तो पलक झपकते ही ये तय हो पाएगा कि किस टारगेट को S-400 से ध्वस्त करना है, किस पर कुशा मिसाइल और किस पर आकाश को दागना। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम्स में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की घोषणा की गई। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने का सीधा मतलब ये है कि ये सिस्टम अब युद्ध या पर किसी भी सैन्य संकट के दौरान पूर्ण पैमाने पर मोर्चे पर तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रमाणित हो चुका है। DRDO द्वारा विकसित नेत्र सिस्टम को एयरब्रेन विमान पर फिट किया गया है। युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहाँ तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है, जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भाप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है, जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है, इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू, जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है, जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं। एवॉक्स प्लेटफॉर्म शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाकर काम करता है। दरअसल एवॉक्स में इतनी ताकत है कि ये दुश्मन की हर जानकारी जुटा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, यहां तक कि जमीन पर भी ये तमाम जानकारियां इकट्ठा कर सकता है। एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कंबाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आपकी डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है। वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है, और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय सेना की तलवार है, तो नेत्र उसकी दिमाग और ताकत है। बिना नेत्र के लड़ाकू विमान सही तरीके से काम ही नहीं कर सकते, और खास तौर पर जब भारत जैसे मुल्क जो कि पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सरहद साझा करते हैं, जहां से हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, ऐसे में नेत्र सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। चीन का इंटीग्रेट एयर डिफेंस सिस्टम काफी बड़ा है, हालांकि एक बड़ी दिक्कत चीन के लिए तिब्बत की ऊंची पहाड़ियां हैं। इस ऊंचाई पर G20 के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना संभव नहीं है। इसके अलावा तिब्बत के एयरबेस को भारतीय ब्रह्मोस आसानी से तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस को रोकने की क्षमता चीन में नहीं है, तो कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं है कि कागजों पर चीन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन भारत के पास पर्वतीय युद्ध और उच्च ऊंचाई वाले अभियानों को लेकर काफी ज्यादा अनुभव है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि चीनी G20 भारी पड़ेगा। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है? क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: गर्मी का कहर ऐसा कि लोगों को ठंडक के लिए जमीन के नीचे बने शेल्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। चीन के हांगझो में 38 डिग्री से ऊपर पहुंचते तापमान के बीच एयर रेड शेल्टर को कूलिंग सेंटर में बदल दिया गया है। जहां बाहर धूप और उमस से लोग बेहाल हैं, वहीं अंदर ठंडक के साथ आराम, खेल और मनोरंजन की सुविधा मिल रही है। देखिए गर्मी से राहत की ये तस्वीरें।
0: और 38 डिग्री की तपती गर्मी और राहत का ठिकाना बना एयर रेड शेल्टर। चीन के हांगझो में भीषण हीट वेव के बीच इन शेल्टर्स को कूलिंग सेंटर्स में बदल दिया गया है। बाहर जहां पर पारा चढ़ रहा है, वहीं अंदर 29 डिग्री तापमान में लोग खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं और खेल कर गर्मी को मात दे रहे हैं। हांगझो के वेस्ट लेक पर जमीन की सतह 60 डिग्री के पार पहुंच गई है, तो लोगों ने ठंडक के लिए शेल्टर्स का रुख किया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए ये सेंटर अब गर्मी से बचने की एक नई उम्मीद बन गए हैं। बढ़ते तापमान के दौर में शहरों की ये नई तैयारी बड़ी जरूरत बन चुकी है। स्थानीय लोगों के लिए ये कूलिंग सेंटर सिर्फ ठंडक की जगह नहीं, बल्कि गर्मी से बचने के सुरक्षित ठिकाने भी हैं। कोई यहाँ पर खेलने आता है, तो कोई परिवार के साथ वक्त बिताने आता है। वहीं बाहर से आए पर्यटकों के लिए भी गर्मी एक बड़ी चुनौती बन गई है। तेज धूप में कुछ कदम चलते ही पसीना और राहत के लिए पानी, ठंडे पेय और मिनी फैन जैसे इंतजाम जरूरी हो गए हैं।
6: में
0: हांगजू की ये तस्वीरें सिर्फ गर्मी की कहानी नहीं कहती बल्कि बदलते मौसम के बढ़ते असर की ओर भी इशारा करती हैं। जब बाहर तापमान रिकॉर्ड छू रहा है तो इंसान अब राहत के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं। एयर रेड शेल्टर से कूलिंग सेंटर तक का ये सफर बताता है कि आने वाले वक्त में भीषण गर्मी से बचाव भी शहरों की बड़ी चुनौती बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चीन का झांगी जियाजी, वही जगह जिसे लोग फिल्म एवेटार की काल्पनिक दुनिया से जोड़ते हैं, अब इसी खूबसूरत वादी में रात का आसमान ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। 1500 ड्रोन ने हवा में ऐसी तस्वीरें बनाई कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। पहाड़ों, नदियों और रोशनी का ये शानदार संगम इस रिपोर्ट में देखिए।
6: ये नजारा किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं। चीन के झांग जियाजी में 1500 ड्रोन ने रात के आसमान को रोशनी की कैनवास में बदल दिया। हवा में उड़ते ड्रोन ने सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरी बल्कि 3000 खड़ी चोटियों, तियांजी पर्वत, बुलिंग युआन गेट और इलाके की पहचान से जुड़ी शानदार कलाकृतियां आसमान में उकेड़ दी। कभी आसमान में पहाड़ों का आकार नजर आया तो कभी नदी, प्राकृतिक नजारे और झांग जियाजी की खास पहचान वाली आकृतियां रोशनी से जीवंत हो उठी। ड्रोन की सटीक उड़ान और रंगों के तालमेल ने रात के अंधेरे में एक चलता फिरता डिजिटल शो तैयार कर दिया। इस अनोखी आसमानी कला को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। लोगों ने इन रोशन कलाकृतियों को अपने कैमरों में कैद किया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट झांग जियाजी में ड्रोन और प्रकृति का ये संगम गर्मियों की रात को यादगार बना रहा है। 1500 ड्रोन, हजारों रोशनियां और आसमान पर बनी खूबसूरत तस्वीरें। झांग जियाजी में तकनीक ने जब प्रकृति की खूबसूरती से हाथ मिलाया तो आसमान खुद एक विशाल स्क्रीन बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
10: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
11: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है? क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड सहित आज भारत ने जीते 7 पदक। बॉक्सिंग में जैस्मीन और प्रीति ने जीता गोल्ड। पैरा एथलेटिक शॉटपुट में सोमन राणा को गोल्ड, शुभमन ज्वेल ने जीता सिल्वर।

का आज तीसरा दिन देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

0: जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन निलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन निलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address, and it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion, because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिल-ए-गौर है कि नंदन निलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी, वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
3: आधार KYC was sufficient to open a bank account or to get a mobile connection. And in 2014, soon after Prime Minister Modi came to power, on August 28, 2014, he launched the Jan Dhan Yojana program, which is the world's largest financial inclusion program. And more than 400 million bank accounts were opened for people. And they were able to do that very quickly because with Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस डीपीआई की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीलेकणी हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। यूपीआई कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ।
3: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 2016 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
0: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन नीलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन नीलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन नीलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन नीलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
2: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
0: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन नीलेकणी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन नीलेकणी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
4: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में नीलेकणी ने आईआईटी में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर आईआईटी में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर नीलेकणी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में आईआईटी क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे आईआईटी क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
0: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन नीलेकणी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव नीलेकणी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन नीलेकणी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। आईआईटी क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन नीलेकणी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
2: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइंड एनी आईआईटी एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन आईआईटी चेन्नई इलेक्ट्रिक केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आईआईटी बॉम्बे। सो दैट्स हाउ, एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर आईआईटी बॉम्बे।
0: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन नीलेकणी ने किस मना स्थिति में की, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन नीलेकणी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन नीलेकणी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन नीलेकणी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
2: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education, he put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC.
3: And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
0: धारवाड में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलेकणी ने आईआईटी में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड जैसे छोटे शहर में ना तो आईआईटी की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
3: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
0: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलेकणी आईआईटी में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह बांह फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब आईआईटी बॉम्बे से नंदन नीलेकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन की आईआईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
3: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
0: IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन नीलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहाँ उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन नीलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन नीलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन नीलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन नीलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन नीलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्रेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस IIT बॉम्बे के नंदन नीलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन नीलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन नीलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
4: तो बंदे में है दम में आज आपने नंदन नीलेकणी के जीवन से जुड़े कुछ

0: No.
1: Oh, no?
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
1: Why do these girls forgive him?
3: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo bloody.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: और चलिए अब बात उत्तराखंड की। वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपने नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल और अनोखी परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जहां देश विदेश से भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी देवी मंदिर लेकर चलते हैं जिसके दर्शन के लिए आस्थावान आते रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मंदिर अपनी अनोखी मैग्नेटिक पावर के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये है कसार देवी मंदिर।
6: क्या आपको बताऊं, आप जब यहाँ पर आएंगे स्वयं जो है फील करेंगे, मतलब एक भू चुंबकीय शक्ति है। यहाँ पे मन आपका उथल पुथल हो रहा है, मतलब आपको टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो इससे बढ़िया जगह संसार में मैंने आज तक नहीं देखी।
7: आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहा हूँ जो न केवल आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया जहान में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, बल्कि अपने रहस्यों को लेकर भी खूब फेमस है। अल्मोड़ा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन की वैसे तो बात निराली ही रही है। यहाँ दूर तक फैली हरियाली तो कहीं घना कोहरा, बस मौसम की इसी लुका छिपी के साए में कसार देवी का ये अद्भुत नजारा आपको अंदर से तरोताजा कर देगा। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी पास कसार देवी मंदिर, इलाका लगभग हर प्रजाति के पक्षियों से भरा पड़ा है, और यहीं ये देवी मंदिर अपने अनोखे चुंबकीय चमत्कार से आस्थावानों और वैज्ञानिकों के बीच क्यूरियोसिटी पैदा करता आया है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ देवी माँ साक्षात अवतार में आई थी, और इसी मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि देश में ये इकलौती जगह है जहाँ मैग्नेटिक पावर महसूस की जाती है। दरअसल साइंटिस्ट बताते हैं कि मंदिर के इर्द गिर्द वैन एलन बेल्ट है, यानी इस धरती के चारों तरफ मौजूद वो एरिया जहां स्पेस से आने वाली हाई मैग्नेटिक चेंज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड में फंसे रहते हैं। इसीलिए इस मंदिर से जुड़ी कई शक्तियों का पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिक भी आए, लेकिन सारी कोशिशें फेल रही। फिलहाल तो बरसों से कसार देवी मंदिर का रहस्यमय क्षेत्र लोगों के लिए मेंटल पीस देने वाली खास जगह बना हुआ है, क्योंकि कुछ अलग सा ही सुकून मुझे भी यहाँ महसूस हुआ।
6: आज थोड़ा सा हम लोग लेट हुए, करीब शाम के 5 बज गए हैं, और आज आप लोग देखो कितने हाइट पे ये मंदिर है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऐसी ऐसी यहाँ पे गुफाएं हैं, इसके अंदर जाके लोग जाके ध्यान करते हैं।
7: स्पिरिचुअली कसार देवी मंदिर के महत्व को समझते हुए कभी स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ ध्यान किया तो तभी से ये जगह और मंदिर हर तरह के देसी विदेशी पर्यटकों के बीच और फेमस हो गई। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहाड़ मतलब सफर में ढेर सारी परेशानी, तो यकीन मानिए इस प्यारी सी जगह पर पहुंचना बेहद ही आसान है।
6: पे आने के लिए जो है डायरेक्ट कोई बस तो है नहीं, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको अल्मोड़ा आना पड़ेगा। अल्मोड़ा से जो छोटी गाड़ियाँ होती है, प्राइवेट जो कमर्शियल टैक्सियाँ होती है, यानी जैसे मैक्स वगैरह वगैरह बोलेरो चलती हैं, वो सवारी के हिसाब से और बुकिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको पहुँचा देगी।
7: वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपनी बेपनाह खूबसूरती, अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ कई मंदिर हैं जो अपनी आध्यात्मिकता की वजह से मेरे जैसे ही कई और श्रद्धालुओं की भी पसंद रहे हैं। तो अगर आप भी भाग दौड़ और उथल पुथल की जिंदगी से आजीज आए हैं, तो लाइफ में एक बार इस रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर करना तो बनता है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
8: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे

0: से बेहतर किया जा सकता है और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है। क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
13: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड सहित आज भारत ने जीते 7 पदक। बॉक्सिंग में जैस्मीन और प्रीति ने जीता गोल्ड। पैरा एथलेटिक्स शॉर्ट पुट में सोमन राणा को गोल्ड, शुभन जुयाल ने जीता सिल्वर। सावन का आज तीसरा दिन, देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर लगातार जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कावड़ियों ने भरा गंगा जल। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति माह। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड्स का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
13: कॉमनवेल्थ 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत की झोली में 7 गोल्ड समेत कुल 30 मेडल, मेडल टैली में छठे स्थान पर पहुंचा भारत। प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग बॉक्सिंग में भारत को दिलाया गोल्ड। कनाडा की सवाना डोल मागो को दिमाग। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड। नॉर्दर्न आयरलैंड की मिकाएला वॉल्स को हराया। भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता रजत पदक। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि ने जीता सिल्वर। पुरुषों के ट्रिपल जंप से भारत को दो मेडल। प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर के जंप अटेम्प्ट के साथ सिल्वर अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु ने 16.52 के बेस्ट अटेम्प्ट के साथ ब्रॉन्ज जीता। पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए आई दोहरी खुशी। शॉटपुट F57 इवेंट में सोमन राणा ने गोल्ड जीता। सुमन जोयल ने शॉटपुट F57 इवेंट में सिल्वर जीता। भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी ने महिलाओं के 57 किलो वर्ग में जीता सिल्वर। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दी बधाई। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ जीता सिल्वर मेडल। यशवीर सिंह को 85.41 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज किया अपने नाम। तेजस्विन शंकर ने मेंस डीकैथलॉन में जीता ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डीकैथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ताइपे ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची भारतीय शटलर तान्वी शर्मा। चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में मात दी। सावन का आज तीसरा दिन। देश भर के शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर लगातार जारी। हरिद्वार में दूसरे दिन तक करीब 10 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। सावन के महीने में आकर्षण का केंद्र रहते हैं अलग अलग कांवड़। इसी कड़ी में फिटनेस और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती बागपत पहुंची अनोखी जिम वाली कांवड़। कावड़ में आगे विराजमान है भोलेनाथ और पीछे बना है पूरा जिम। इस कावड़ को अपने कंधों से खींच के करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं पुलिस जवान। 22 जुलाई को हरिद्वार से गंगा जल लेकर यात्रा पर निकले हैं अमित। दिल्ली से सटे नजफगढ़ तक जाएगी ये जिम कावड़। अलवर से देश की सबसे लंबी 2300 किलोमीटर की डाक कावड़ हुई रवाना। गोमुख से जल लेकर सोमनाथ में किया जाएगा भगवान शंकर का जलाभिषेक। मेरठ में कावड़ मार्ग पर सेवा में तत्पर रहेगी वॉलंटियर्स की सुपर 30 टीम। प्रशासन ने यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए की स्वयं सेवकों की विशेष तैनाती। स्केटिंग करते हुए 10 से ज्यादा युवा बिहार से जा रहे हैं बाबा नगरी देवघर। 30 तारीख को समस्तीपुर से शुरू हुई स्केटिंग यात्रा 420 किलोमीटर का होगा यह सफर। 4 अगस्त को देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने का लक्ष्य। सोशल मीडिया से ग्रुप बनाकर निकली युवाओं की टोली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दिख रहा है आस्था और भक्ति का रंग। ओम नमः शिवाय बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से भक्ति में हुआ रेलवे स्टेशन। बाबा वैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक करने के लिए झारखंड के देवघर जा रहे हैं कांवड़िए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। गोमुख से पवित्र गंगा जल लेकर चला मध्य प्रदेश के 150 से अधिक शिव भक्तों का विशाल जत्था। पदयात्रा करते हुए लौट रहे हैं कांवड़िए। मुरैना जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं सभी कांवड़िए। 22 जुलाई को गोमुख से गंगा जल लेकर पैदल पूरा कर रहे हैं 800 किलोमीटर का सफर। सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुआ बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार। भस्म आरती में शामिल हुए बड़े तादाद में श्रद्धालु। सावन में श्रद्धालुओं के बीच बड़ी चांदी के बेलपत्र पूजा सामग्री की डिमांड। ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं सामग्री। सावन में चांदी सोने के नए नए डिजाइन की पेश की जा रही है पूजा सामग्री। सावन का सोमवार आने से पहले बाजारों में दिख रही है रौनक। अमरनाथ धाम के तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी आई सामने। बालटाल से फिर से शुरू हो गई पवित्र गुफा की यात्रा। आज 8371 तीर्थयात्रियों ने पार किया डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट। 5534 पुरुष और 2511 महिलाएं इसमें शामिल। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से पिछले 4 दिन रोकी गई थी अमरनाथ यात्रा। अब दूर हुई मौसम की बाधाएं। उत्तराखंड में द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जाने वाले भक्त ट्रॉली के जरिए पार कर रहे हैं मेरखंडा नदी। नदी के तेज बहाव में बही पैदल लकड़ी अस्थायी पुलिया। भक्तों के कठिन परीक्षा ले रहे हैं महादेव। धाम जाने के लिए 16 किलोमीटर की होती है पैदल चढ़ाई। गुरु पूर्णिमा उत्सव के मौके पे देश विदेश से आए लाखों साई भक्तों ने शिरडी साई बाबा के दरबार में चढ़ाया रिकॉर्ड चढ़ावा। महज 3 दिनों में भक्तों ने मंदिर को किया मालामाल। 28 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित उत्सव में 3 लाख से अधिक साई भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। कुल 7,81,00,000 रुपए की गुरु दक्षिणा अर्पण की। दान पात्र से मिले 3,29,00,000 रुपए। 2,07,00,000 रुपए रहा ऑनलाइन दान। 1,50,00,000 के सोना चांदी के आभूषण चढ़ाए गए भगवान को। दर्शन और आरती के पास से लगभग 87,00,000 रुपए 5,65,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई। शिरडी साईं बाबा मंदिर को सोने के दो बेशकीमती मुकुट के साथ नक्काशीदार हार भी जड़ाया गया। इसमें सोने के बने दो मक्षर भी शामिल। तकरीबन 1.5 करोड़ का 1100 ग्राम सोना और 2 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई। इस साल साई दरबार में गुरु पूर्णिमा पर पिछले साल से 1.5 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव से चढ़ाया गया था 6.31 करोड़ रुपए का चढ़ावा। अंबाजी पहुंची संत रविदास यात्रा। 650वीं जयंती के मौके पर हुआ भव्य कलश पूजन। संतों की मौजूदगी में कलश यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। भक्ति में नजर आया पूरा वातावरण। कर्णावती अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर पर खत्म होगी काशी से शुरू हुई ये भव्य कलश यात्रा। दूर दूर से आए श्रद्धालु यात्रा में हो रहे शामिल। पाली में रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल। सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध। वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं विशेष राखी लिफाफे जिससे बहनें अपनी राखी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से भेज सकेंगी। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैसूरू स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रामकृष्ण परमहंस मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही विवेकानंद पर आधारित एक विशेष फिल्म भी देखी। लगभग 81,000 वर्ग फुट से अधिक के निर्मित क्षेत्र में फैला है विवेक स्मारक जिसमें एक एम्फीथिएटर क्लासरूम कॉन्फ्रेंस रूम लाइब्रेरी ध्यान और योग हॉल और एक बुक स्टॉल है। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। साथ ही श्री रामकृष्ण विद्याशाला स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक परिसर में पहुंचने पर सबसे पहले वहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की टेका माथा। कर्नाटक से पहले आंध्र प्रदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल साथ ही कई विकास परियोजनाओं का किया उन्होंने उद्घाटन। आंध्र प्रदेश को मिला नया ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयनगरम के भोगापुरम में पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस। 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर है तैयार। अल्लूरी एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान हुआ शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है यह हवाई अड्डा। यहां से कनेक्टिविटी व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश को आज मिलेगी 17,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राज्य की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सहित कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ। अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक पुरस्कार। अमित शाह ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में किया सम्मान। अजीत डोभाल को राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अद्वितीय और साहसिक जीवन भर के योगदान के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। शाह बोले देश की सुरक्षा मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका। केरल कैडर के 1668 बैच के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अजीत डोभाल। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए हैं। चेन्नई के राजरथनम स्टेडियम में आयोजित पुलिस मेडल समारोह सीएम जोसेफ विजय का स्वागत करने वाला स्निफर डॉग रॉकी ने जीता सभी कमल। समारोह के दौरान मुंह में फूलों की टोकरी लेकर मंच पे सीएम का स्वागत करने पहुंचा स्निफर डॉगी रॉकी। मुख्यमंत्री ने भी मुस्कुराते हुए रॉकी को किया सल्यूट। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। पहले ही दिन 1,000 से ज्यादा महिलाओं ने कराया अपना रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत। लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का फंड। 17 लाख महिलाओं को मिलेगा इसका फायदा। बेंगलुरु में फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन किया गया लॉन्च। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की ओर से खास पहल। यूपी में साइबर क्राइम कंट्रोल हेडक्वार्टर बनाने पर सहमति। डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए साइबर कमांड होंगे तैनात। ऑनलाइन ठगी करने वालों पर करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब पड़ेगी बारी। सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर सार्वजनिक होगा चालान का पूरा रिकॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने वालों और चालान नहीं भरने वालों को बेनकाब करने के लिए की अनूठी पहल। लोगों में नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी को दिया जाएगा बढ़ावा। अगस्त के पहले दिन आम लोगों के लिए खुशखबरी आई सामने। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 202 रुपए घटी तो कोलकाता में 209 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। कर्नाटक के हुबली में 3 दिन का जैक फ्रूट फेस्टिवल, कटहल से बने व्यंजनों का मजा लेने पहुंच रहे लोग। लद्दाख में वन राइड वन मिशन ने करगिल युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उमलिंगला पर 390 फीट लंबा तिरंगा लहराकर बनाया अनोखा इतिहास। भारत माता की जय के नारों से गूंजा लद्दाख। करगिल विजय दिवस पर युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिशन तिरंगा की शुरुआत की थी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इस साल प्रदेश के 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। डूरंड कप 2026 का शिलोंग में हुआ शुभारंभ। ओपनिंग सेरेमनी में फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम सहित कई हस्तियों में शामिल। ग्रेटर नोएडा के अमित यूनिवर्सिटी पहुंचे फिल्म आर्यभट्ट का 0 के सितारे हिमांश कोहली और सोनाली सहगल। अपनी फिल्म का किया प्रमोशन, 7 अगस्त को होगी रिलीज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी राहत की बरसात, बौछारे पड़ने से खिल उठी हरियाली। जम्मू कश्मीर के भालेसा में जोरदार बारिश, मूसलाधार बरसात से उफान पर नदी नाले। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। एसडीआरएफ और बचाव दल एक्शन मोड में नजर आए। कश्मीर में किश्तवाड़ के चतरू में बादल फटने के बाद बचाव और राहत का इंतजाम, जनहानि की खबर नहीं। सोशल मीडिया पर चर्चा में सलमान खान और संजय दत्त का इमोशनल रियूनियन। सलमान खान ने संजय दत्त के साथ शेयर की खास तस्वीरें और लिखा प्यारा सा नोट। एक बार फिर फैमिली एंटरटेनर फिल्म लेकर आ रहे हैं सूरज बड़जात्या। ये प्रेम मोल लिया, फिल्म की शूटिंग हुई पूरी, अनुपम खेर ने साझा की तस्वीरें। रोल में है आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ। अनुपम खेर का भी है इसमें अहम रोल। 27 नवंबर साल 2026 को रिलीज होगी फिल्म। हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्म रागिनी एमएमएस 3 को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। आयुष शर्मा, जुनैद खान और तमन्ना भाटिया स्टारर इस फिल्म में। अब एक्ट्रेस आरजे महविश की हुई एंट्री। आरजे महविश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म रागिनी 3 का ऐलान करते हुए कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। फिल्म को शशांक घोष कर रहे हैं डायरेक्ट। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे दिन पार किया 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा। पहले दिन तोड़ा धुरंधर और पठान का रिकॉर्ड। स्पाइडरमैन ने दुनिया भर में कर ली है 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। वर्ल्ड वाइड खूब पसंद की जा रही है ये फिल्म। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने कसरत करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के लिए किया शेयर। वीडियो में मृणाल एक ओवरहेड पुलअप बार को पकड़कर कर रही है कसरत। मृणाल ठाकुर के वीडियो में आया मजेदार मोड़। जूम करने पर पता चलता है कि मृणाल एक गद्देदार बॉक्स पर खड़ी है और झूलते हुए मुस्कुराते हुए उसका सहारा ले रही है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म के सेट पर चोट लगने की खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान लगी चोट, डॉक्टरों ने दी रेस्ट और रिहैबिलिटेशन की सलाह। चीन के वुलिंगुआन में 1500 ड्रोन ने बांधा समा, शानदार ड्रोन शो से जगमग हुआ आसमान। ड्रोन शो में पेश की गई चीन के आइकॉनिक पहाड़ी चोटियों की झलक, महत्वपूर्ण इमारतों की भी बनाई गई खास तस्वीर। साल तक चलेगा अनोखा ड्रोन शो, हजारों लोगों को मिल रहा है इसका आनंद लेने का मौका। चीन के शेंजन में शानदार रोशनी से जगमग हुई इमारतें मनाई गई चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ। इमारतों पर देखा लाइटिंग का अनोखा नजारा, नौशरी से नहाई चाइना रिसोर्सेस टावर और वन शेंजन बे सहित कई बिल्डिंग्स। पश्चिमी तुर्की में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों का किया जा रहा है इस्तेमाल, तटीय प्रांत अजमीर के जंगलों में भड़की है आग। पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जंगली इलाकों में उठी लपटें, तेज हवा के कारण फैली आग, जान माल के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आयदिन प्रांत में भी जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, फायर फाइटर्स ने संभाला मोर्चा। जंगलों की आग पर नियंत्रण के लिए जमीन से आसमान तक किए गए उपाय, प्रशासन ने आग बुझाने के लिए झोंकी मशीनरी। ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है जंगलों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह, हर साल इन इलाकों में बढ़ रहा है आग का संकट। ग्रीस में एथेंस के पश्चिमी इलाके में भी जंगलों में भड़की आग, हेलीकॉप्टरों के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश। एथेंस प्रशासन ने वाशिंदों को इलाका खाली करने की सलाह दी, आग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उठाए गए कदम। फ्रांस में भी दक्षिणी इलाके कोरेंस के पास जंगलों में लगी आग, सुरक्षित जगह पर भेजे गए 2,000 से ज्यादा लोग। सूखे से जूझ रहे ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में किसानों से समय से पहले शुरू किया खेती का काम, जोर शोर से चल रही है जुताई। इंग्लैंड के कई इलाकों में इस बार कम हुई वर्षा, खेती के लिए मौसम की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटे किसान।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो।
14: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
16: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
10: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है? क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
17: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads, classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
10: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन गोल्ड सहित आज भारत ने जीते 7 पदक। बॉक्सिंग में जैस्मीन और प्रीति ने जीता गोल्ड। पैरा एथलेटिक शॉटपुट में सोमन राणा को गोल्ड। शुभन जोयल ने जीता सिल्वर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान। पुराने रिकॉर्ड्स का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास। पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। देखिए, पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में हम आपको भारत की आध्यात्मिक धरोहर जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे, जो केवल देखिए मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयंभू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर, यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी, यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यही महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभू महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी हैं। भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देखिए मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है, जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति।

की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहां त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहां साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमाशंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों को पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ, कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य हैं शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में तब्दील कर देता है।
2: वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं, पर ऐसा हो नहीं सका। कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्रयंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्रयंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्रयंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है। लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई

0: आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इफ यू लव पॉडकास्ट्स, यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर फेवरेट शोज। दैट्स वेयर ट्यून इन कम्स इन। Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में

0: तीन गोल्ड सहित आज भारत ने जीते 7 पदक। बॉक्सिंग में जैस्मीन और प्रीति ने जीता गोल्ड। पैरा एथलेटिक शॉटपुट में सोमन राणा को गोल्ड। शुभन जोयाल ने जीता सिल्वर। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। जीएनटी अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, बुलेटिन में सबसे पहले बात एक ऐसे लेदर की जिसको तैयार करने में ना तो किसी जानवर को नुकसान पहुंचा है और ना ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले किसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, रामजस कॉलेज के कुछ छात्रों ने केले के छिलके से बिल्कुल रियल लेदर की तरह दिखने वाला मटेरियल तैयार किया है, वो भी एकदम मजबूत और बिल्कुल असली लेदर जैसा टिकाऊ। यानी केले के छिलके जिन्हें अब तक कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता था, वो ही अब पर्यावरण संरक्षण के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार खास तरह के इस चमड़े को छात्रों ने सहर नाम दिया है।

0: चमड़े जैसे दिखने वाला ये उत्पाद केले के छिलके से बना है, चौंक गए ना। ये कमाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के छात्रों ने किया है। केला खाने के बाद जो छिलका आप बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, उससे इन होनहार छात्रों ने असली लेदर जैसा टिकाऊ मटेरियल बना दिया है।
1: लेदर से बनी चीजों का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, कभी लेदर से बने बैग का इस्तेमाल करते हैं, कभी बेल्ट, कभी जूते, तो कभी जैकेट। आप जानते हैं कि लेदर कैसे बनता है, उसके लिए हमें किसी पशु की स्किन चाहिए होती है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लेदर जैसा ही कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो किसी पशु के स्किन से नहीं बल्कि फ्रूट के फलों के छिलकों से बनाया गया है, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा। ये वही चीज़ है जो कि बिल्कुल लेदर का ही काम करेगा, लेकिन इसे पूरी तरह से फल के छिलकों से तैयार किया गया है, और ये एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के बच्चों ने।
0: एक साल पहले इन छात्रों ने वीगन यानी पशु उत्पाद खासकर असली लेदर का विकल्प खोजना शुरू किया था, ताकि उससे बुकमार्क्स, वॉलेट यानी बटुआ और कीरिंग जैसे उत्पादों को तैयार किया जा सके।
1: शहर इसका नाम है और शहर का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। रामजस कॉलेज में हूँ मैं और वो तमाम बच्चे मेरे साथ में हैं जिन्होंने मिलकर इसको तैयार किया है।
2: जब हमने हमारा टेन्योर स्टार्ट किया था 2025 के अगस्त में, तब हमने सोचा कि एनिमल क्रुएल्टी एक बहुत बड़ा इशू है जो उठ रहा है, उसके कारण बहुत सारे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, उसका एनवायरनमेंट में बहुत बुरा प्रभाव है। उसको कम करने के लिए हमने रिसर्च करी, और अगस्त से हमने जो रिसर्च स्टार्ट करी उससे आते आते हमें बाद में पता चला कि फ्रूट पील्स के थ्रू हम एक ये वीगन लेदर बनाया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फिर आज हमारे पास ये एक है, और हमने बहुत सारे फ्रूट्स में ट्राई किया, कभी पाइनएप्पल में किया, कभी मैंगोज़ में किया, और भी बहुत सारे फ्रूट्स में यूज़ किया, तब जाके अभी हमने बनाना पील्स फाइनली से हमारा ये वीगन लेदर बनाया।
0: हालांकि हर इनोवेशन की तरह यह भी इतना आसान नहीं था। केले से पहले इन छात्रों ने बारी बारी से चार अलग अलग फलों के छिलके से लेदर जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
3: जब हमने शुरुआत करी तो लगभग हमने 5 फ्रूट्स का पूरी तरीके से हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करा। शुरुआत हमने मैंगो से करी, मैंगो के बाद फिर हम जो कोकोनट होता है उस पर हम पहुंचे, फिर पाइनएप्पल और ऑरेंज। जितने भी हमने फ्रूट्स इस्तेमाल करे उसमें हर एक में कोई ना कोई खामी थी, और उस खामियों पे आगे बढ़ते हुए फिर हमने बनाना पील्स पे जो है अपना प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज करा। जब हमने शुरुआत करी थी तब हमको ये समझ आया कि मैंगो जो है वो पूरा मैंगो डलता है, तो उसमें वेस्ट का कोई उसमें कनेक्शन नहीं था। उसके बाद फिर कोकोनट पे जब हम गए, कोकोनट जैसे कि हमें पता है कि बहुत रॉ होता है, उसमें फिर हमें ये दिक्कत आई कि जो हमारा जो प्रोडक्ट था वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं था जिससे हम वॉलेट्स हों या बेल्ट्स हों वो हम बना पाएं।
0: नारियल, पाइनएप्पल यानी अनानास और संतरे की तुलना में आम से भी कुछ ऐसा ही मटेरियल बनने की संभावना जागी थी, लेकिन मकसद वेस्ट मटेरियल यानी फलों के छिलके से लेदर जैसा उत्पाद बनाना था। आम के मामले में पूरे फल का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिससे इनोवेशन का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। इसके अलावा दूसरे फलों के छिलके से बना मटेरियल केले के छिलके से बने मटेरियल की तरह मजबूत भी नहीं था।
1: मैंगो पूरा वो डाल रहे थे तो उसको यूज करने लायक बन सकता था, लेकिन इन्हें वेस्ट से उसको तैयार करना था। शुरुआत में जो चीजें बनी, देखिए आप, ये जो अभी बनकर तैयार हुआ है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, और लेदर में भी थिकनेस होती है, इसीलिए हम एनिमल की स्किन को यूज़ करते हैं। इसकी थिकनेस को मैच करना था, इसीलिए प्रोसेस इतना लंबा रहा। शुरुआत में जो प्रोडक्ट्स बने दूसरे छिलकों से, उनकी आप थिकनेस देखिए, वो इतनी अच्छी नहीं थी, कई बार वो फट रहे थे, टूट रहे थे, इसलिए लगातार ये लोग एक्सपेरिमेंट फ्रूट्स के साथ करते गए, और फाइनली जाकर फिर वो इस जगह तक पहुँचे हैं।
0: केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक फाइबर यानी रेशे और प्राकृतिक रसायन सेल्यूलोज होता है, जिसकी वजह से खास तरह के ट्रीटमेंट से तैयार हुए उत्पाद में काफी मजबूती और खिंचाव सहने की क्षमता बढ़ जाती है। उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पर्स, बेल्ट या दूसरे प्रोडक्ट को डिजाइन करना आसान हो जाएगा।
4: एक प्रोटोटाइप तैयार करने में हमें लगभग 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि जो ये हमारा पेस्ट बनता था उसको सूखने में बहुत टाइम लगता था, प्लस हमने अलग अलग फ्रूट्स के साथ ट्राई किया था, तो हर फ्रूट को अगेन ड्राई होने में, जैसे हम इसे सन ड्राई करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड जैसे हर प्रोटोटाइप में कुछ ना कुछ इशू आ रहा था, जैसे इसमें ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था, तो अगेन ये एक इशू था, या फिर कभी पहले ही फट जाता था, कभी कभार बहुत ज्यादा ही एकदम टाइट बन जाता था, तो ये वाले इश्यूज हमने फेस किए थे प्रोटोटाइपिंग के टाइम।
1: अगर टाइट बन जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत थिन रहेगा तो फिर उसको जितना लंबा लेदर चलता है उतना लंबा वो चल नहीं पाएगा।
0: हालांकि किसी भी तरह के इनोवेशन की राह में बार बार मिलने वाली असफलता से मनोबल गिरना एक आम बात है, पर इन छात्रों का जुनून कम नहीं हुआ। शिक्षकों की सलाह और सहयोग ने इनको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंत तक प्रेरित किया।
5: जैसे हमने अलग अलग फ्रूट्स ट्राई किए तो हमारा जैसे नहीं बना प्रोडक्ट, तो हमें जैसे तब लगता था कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम रुके नहीं। सबसे बड़ी बात, हम फिर ट्राई करते गए, हमने प्रोटोटाइपिंग सेशंस करे और फ्रूट्स एक्सप्लोर करे, रिसर्च करी, हमने बहुत ऑनलाइन ढूंढा, ऑफलाइन ढूंढा। एक लाइक मेरी प्रोफेसर से बात हुई, हमने उनको बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको ऐसे सोल्यूशन ला सकते हो। तो उसके बाद ही जो आज हमारा फाइनल प्रोटोटाइप है जो हमने आपको दिखाया है वो बन गया है।
0: फिलहाल लेदर जैसे दिखने वाले इस मटेरियल से बुकमार्क्स, वॉलेट यानी बटुआ और कीरिंग बनाने पर ही जोर है।
3: पहले तो हम इनिशियली छोटे प्रोडक्ट से शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज हम अपने मींस के उस पर ऑपरेट करना चाहते हैं। हम एक स्टूडेंट रन सोसाइटी हैं एंड वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग बुकमार्क्स, वॉलेट्स आउट ऑफ दिस। एंड अभी ये फाइनल प्रोटोटाइप नहीं है, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, मेक इट बेटर, बिकॉज अभी तक हमने जितनी रिसर्च करी है उसके हिसाब से वी हैव फाउंड द मोस्ट फीजिबल प्रोडक्ट, बट हम उस पर और रिसर्च करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक इट और अच्छा। And we are going to focus on bookmarks and wallets mainly.
1: Bookmarks, wallet और जो छोटे keyrings होते हैं उन तक आप जा रहे हो, पर अभी जो challenge है, मैंने भी कहीं पढ़ी थी एक report कि जो seats होती हैं हमारी गाड़ियों की उनका कुछ alternative तैयार हो रहा है, क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है?
2: जी, ये बिल्कुल एक वो ऑप्शन हो सकता है। अभी जैसा कि हमने बताया कि अभी हम एक शुरुआती स्टेज पे हैं, अभी हम एक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने तक हमें एक साल लग गए, पर अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस पता है, हमें पता है कि अब हमें आगे क्या करना है। हमने वॉलेट्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, बुकमार्क्स बनाने की स्टार्ट कर दी है। सीट कवर्स में सर बस यही होता है कि एक थिकनेस की और जो ड्यूरेबिलिटी होती है, एक वो जो शीट कवर होता है जो वाटर रेजिस्टेंस, हमें उस पर ध्यान देना है। तो अब बस हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमें बस इसमें वाटर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी ऐड करनी है, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा।
0: इस इको फ्रेंडली उत्पाद को बनाने में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 100% बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे बने उत्पादों को इस्तेमाल के बाद फेंक भी दिया जाए तो वे खुद ब खुद मिट्टी में गल जाएंगे। अब इन छात्रों की कोशिश है कि एनजीओ के जरिए उन कारीगरों तक पहुंचा जाए जो इससे चमड़े से बनने वाले उत्पादों की तरह प्रोडक्ट तैयार कर पाए, ताकि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इनको डिस्प्ले पर रखा जा सके और सैकड़ों हजारों छात्रों की बदौलत कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार समझने में मदद मिल सके। इसके बाद बाजार में केले के छिलके से बने प्रोडक्ट्स की कामयाबी की पटकथा लिखी जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अब बात एक ऐसी स्वदेशी वॉच कंपनी की जो अपनी घड़ियों पर भारत की समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को उकेरती है। देखिए, जयपुर का ये ब्रांड खास तौर पर प्राचीन भारतीय सिक्कों, डाक टिकटों और पारंपरिक कलाकृतियों को घड़ियों में डायल में शामिल करता है, ताकि घड़ियों के जरिए भारतीय इतिहास, भारतीय कला और विरासत को एक साथ पिरोया जा सके। जयपुर वॉच कंपनी की नायाब घड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि स्वदेशी घड़ियों के अच्छे दिन आ गए हैं।

0: ये नायाब घड़ियां बेशकीमती हैं और जाहिर है पहनने वालों का अच्छा वक्त बताती हैं। आमतौर पर बाजारों में मिलने वाली घड़ियों से थोड़ी अलग दिखने वाली ऐसी मास्टरपीस घड़ियों को जयपुर की एक कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम जयपुर वॉच कंपनी है।
1: कहा जाता है आपका कोई भी लुक कंप्लीट करना हो तो उसके साथ एक्सेसरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में अगर आपके हाथ में एक रिस्ट वॉच हो तो वो लुक कंप्लीट माना जाता है और बहुत ही खूबसूरत वो एक लुक जो है वो निखर के आता है। ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि वो वॉच ही आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए तो आप सोचेंगे कि उस वॉच का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जयपुर वॉच कंपनी में मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ पर एक से एक बहुत ही यूनिक वॉच यहाँ पर है, जहाँ हर एक वॉच अपनी एक कहानी बयां करती है, अलग कंसेप्ट के साथ बनाई गई है और ऐसी सोच इन वॉचेस में डाली गई है जो आपको भी सोच में डाल देगी कि ये बनाना कैसे पॉसिबल है।
0: भारतीय इतिहास, कला और विरासत को एक साथ संजोने वाली इन घड़ियों की कीमत लाखों रुपए तक है। 2013 में अस्तित्व में आई कंपनी का मकसद अपनी हर घड़ी की डायल पर परंपरा को उकेरना है। हालांकि भारत की प्राचीन सभ्यता और वास्तुकला से जुड़ी समृद्ध विरासत को डायल पर ढालना इतना आसान काम नहीं है। अनूठी कारीगरी की बदौलत ही ये संभव हो पाता है। पुराने भारतीय सिक्कों, डाक टिकटों, मोर पंख, राजस्थानी मिनिएचर आर्ट, मीनाकारी और कुंदन पोलकी जैसी पारंपरिक कलाओं को भी घड़ियों का हिस्सा बनाया जाता है।
2: बहुत चैलेंजिंग होता है। अब जैसे गेट्स जैसा कंसेप्ट है, क्योंकि गेट्स बहुत लार्ज होते हैं, मैमथ होते हैं, उनको मिनिएचराइज करना और उसी डिटेलिंग को एक वॉच जैसी छोटी ऑब्जेक्ट के डायल पे लेके आना, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है। और सेम विद एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, चाहे कॉइन्स हो, चाहे स्टैम्प्स हो, 70 साल पुराने 60 साल पुराने कॉइन्स है, स्टैम्प्स है, उनको इंटैक्ट रखना, उनकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखते हुए उनको वॉचेस के अंदर डालना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बट अब 13 साल हो गए तो अब हमारी थोड़ी मास्टरी है इस चीज में।
0: हाल ही में जयपुर वॉच कंपनी ने गेट्स ऑफ इंडिया नाम का नया कलेक्शन लॉन्च किया है। गेट्स ऑफ इंडिया भारत की ऐतिहासिक वास्तुकला को समर्पित है। इस कलेक्शन की विशेषता 360 डिग्री फ्लिप मैकेनिज्म है। घड़ी को पलटते ही दोनों तरफ अलग अलग डायल दिखाई देते हैं। एक तरफ जयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत तो दूसरी तरफ देश की ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटन स्थल है।
2: ये सबसे लेटेस्ट वॉच है जो हमने लॉन्च करी है, इसको कहते हैं गेट्स ऑफ इंडिया कलेक्शन। इसके अंदर हमने दो गेट्स का उपयोग किया है। वॉच इज अ ड्यूअल साइडेड वॉच, आप देखेंगे तो इसमें दो साइड है। तो एक साइड पे तो हमने जयपुर के जो प्रीतम चौक है सिटी पैलेस में, वहां से दो गेट्स लिए, लोटस गेट और लहरिया गेट, और एक साइड पे हमने मोनोक्रोम के अंदर आइकॉनिक गेट्स ऑफ इंडिया बनाए हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, चार मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, एक साइड पे वो है और एक साइड पे जयपुर के दो आइकॉनिक गेट्स है।
0: कंपनी ने 1947 से जुड़े एक दुर्लभ और ऐतिहासिक 1 रुपए के सिक्के को घड़ी के डायल के तौर ढाल दिया। इस तरह की घड़ी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं।
2: ये वो घड़ी है जिसके अंदर हमने 1 रुपया 1947 का ओरिजिनल कॉइन का इस्तेमाल किया है, और इस कॉइन पे आप देखेंगे एक चलता हुआ शेर है, इसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है और इसके ऊपर 3 लैंग्वेजेस के अंदर 1 रुपी लिखा हुआ है। बहुत ही स्पेशल वॉच है, 2022 से ही हमारी बेस्ट सेलर वॉच है, और इस वॉच को नई पहचान भी तब मिली थी जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस घड़ी का उपयोग किया था और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया था।
0: यहाँ डाक टिकट थीम वाली घड़ियां भी मौजूद हैं। दुनिया के इतिहास का पहले डाक टिकट पेनी ब्लैक को भी घड़ी की शक्ल में ढाला गया है, जिसे यूनाइटेड किंगडम ने 1 मई 1840 को जारी किया था और इसका आधिकारिक इस्तेमाल 6 मई 1840 से शुरू हुआ था। तब इस काले रंग के टिकट पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का चित्र बना था और इसका मूल्य 1 पैनी था।
2: हम लोग ना 2013 से लेके करीब करीब 2020 तक कॉइन्स और हैंड पेंटेड वॉचेस और इनका इस्तेमाल करके वॉचेस बना रहे थे। फिर मैंने रियलाइज किया कि क्यों ना डाक टिकट का इस्तेमाल किया जाए। डाक टिकट एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है और एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपना चार्म लूज कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आज की जनरेशन न पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज करती है, न पोस्ट ऑफिस में जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको सिग्निफाई करने के लिए कुछ वॉचेस बनाए जाए पुराने डाक टिकट्स को लेके, और हमने कुछ ऐतिहासिक डाक टिकट्स को लेके वॉचेस बनाई है। इनफैक्ट हमने जो दुनिया के इतिहास का पहला डाक टिकट है पेनी ब्लैक, उसको लेके भी वॉच बनाई गई है।
0: कुछ दिन पहले ही कंपनी ने प्रीमियम बाघ कलेक्शन लॉन्च किया है। घड़ी के डायल पर सुनहरे बाघ की आकृति है, इसमें खादी का फैब्रिक का भी इस्तेमाल किया गया है।
2: एक वॉच आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमने अभी 3 दिन पहले लॉन्च करी है, इसका नाम है प्रीमियम बाघ। ये बाघ कलेक्शन से इंस्पायर्ड है। इस पे आप देखेंगे वही चलता हुआ शेर है जो हमने मनाया है, पर इस बार ये एक टर्कोइज की स्टोन की वॉल है उसके अगेंस्ट में वॉक कर रहा है। जो सेंटर पीस है जिसके ऊपर समय देखते हैं वो खादी फैब्रिक का बना हुआ है, और साथ के साथ में इसकी साइड में हमने एक सफायर का स्टोन लगाया है और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी भी करी हुई है इसकी साइड में। ये बहुत ही स्पेशल वॉच है, बहुत प्रीमियम मटेरियल से बनी हुई है। इसके अंदर स्टील भी जो इस्तेमाल किया है हमने वो 904L ग्रेड स्टील है, जो इंडिया में आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है वॉचेस के अंदर। सो बहुत ही यूनिक वॉच है ये।
0: मेक इन इंडिया की सोच के साथ तैयार की जा रही इन घड़ियों में हाई क्वालिटी मटेरियल यानी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल होता है, ताकि मजबूत और टिकाऊ घड़ियां लंबे समय तक अपने मालिकों का साथ दें, अच्छा वक्त की पहचान बने।
2: हमारी जो मिनिमम वॉच है ना वो 316L स्टेनलेस स्टील ग्रेड में बनती है, जिसको सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जिससे सर्जिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स बनते हैं। तो इनसे स्किन एलर्जी होने का तो सवाल ही नहीं है, और 904L जो है वो उससे भी हायर ग्रेड ऑफ स्टेनलेस स्टील है। सो हम बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। वॉचेस के ऊपर क्रिस्टल भी जो होता है वो सफायर क्रिस्टल होता है, जिससे वॉचेस के ऊपर स्क्रैचेस तक नहीं आते हैं।
0: 2013 से लेकर अब तक कंपनी के 15 स्टोर खुल चुके हैं और अब विदेश में भी फुटप्रिंट्स जमाने की तैयारी है। जल्द ही भारत के बाहर 2 नए स्टोर देखने को मिलेंगे।
1: यहाँ पे बहुत अलग तरीके की वॉचेस देखने को मिल रही है, चाहे वो स्टैंप हो, कॉइन हो, गेट्स हो या फिर बाग कलेक्शन हो। उसके अलावा भी इनके जो 150 कलेक्शन है वो बिल्कुल देखने लायक है। पीछे मैं इस कलेक्शन की कुछ घड़ियाँ देख रही हूँ, यहाँ पे हैंड पेंटेड वॉचेस भी मुझे नजर आ रही हैं, यहाँ पे ज्वेलरी जैसे डायमंड है, पोलकी है, मीनाकारी के काम वाली जो वॉचेस हैं वो नजर आ रही हैं, साथ ही साथ में मोर पंख से बनी घड़ी, और उसके अलावा भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत यूनिक घड़ियां जो बनी हुई हैं वो नजर आ रही है, जिसके पीछे की जो डिजाइनिंग है, जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। दिख रहा है कि बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाया गया है और बहुत ज्यादा काम किया गया है एक एक घड़ी के पीछे। तो सोच जो है वो बहुत यूनिक है और वो नजर आएगी इस समय पे जयपुर में, और खास करके इनका जो नया कलेक्शन है जो अभी लॉन्च हुआ है वो सिर्फ जयपुर नहीं, वो दिखाएगा पूरी दुनिया की झलक। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: भारत की शान, देश की आन और भारतीय वेटलिफ्टिंग की पहचान मीराबाई चानू ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। देखिए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्डन हैट्रिक पूरी कर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद मीराबाई चानू ने अपनी खुशी, संघर्ष और आगे के अपने लक्ष्य पर हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं इस यादगार जीत और गोल्डन हैट्रिक पर मीराबाई चानू ने क्या कुछ कहा है।
4: अगर दिल में मकसद हो और दिमाग में सपना तो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, और इसका प्राइम एग्जांपल आई थिंक मीराबाई चानू हैं। ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, लेकिन जहां भी जाती हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो पोडियम फिनिश ही करें, और इस बार वो थी ग्लासगो में, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और मीरा ने वो करके दिखाया है जो शायद हर एक एथलीट का सपना है, लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल। मीरा ये कितनी बड़ी चीज है, और जो आप इसको कैसे समराइज करेंगी एक एथलीट के नाते और एक इंडियन के नाते, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे महिलाएं, लड़कियां वो अपना वेट लिफ्टिंग करना चाहती हैं।
5: थैंक यू। इसी के लिए तो इनकी हम हर प्लेयर्स इसी को ही चाहते हैं कि मुझे देख के युवा लोगों को आगे बढ़ने का, ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगा। बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हाँ जो मैंने सोचा और मेरा सर का जो सपना था कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे गोल्ड मेडल जीतना है और लगातार ये मेडल देना एक प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होते हैं ये अचीव। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा इतना मतलब फैंस है कि पूरा भारतवर्ष ने इतना प्यार दिया है आज तक की जर्नी में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उनकी सपोर्ट से ही मैं आज तक हर जगह पे जब भी जाऊँ तो सब इंडियन लोग के आते हैं इधर देखने के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इसी मेडल से और मैंने इंडिया के लिए भी पहला ही गोल्ड मेडल दिया है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
4: बिल्कुल, और होना भी चाहिए, खुश हम सब भी खुश हैं। लेकिन मीरा एक चीज और देखिए, क्या होता है ना कि वेट मैनेज करना पड़ता है। आप यू नो एथलीट्स वेट चेंज करते हैं, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। हम सुनते हैं कि वो 3 दिन से नहीं खा रहे, 4 दिन से नहीं खा रहे, लेकिन क्या होता है ना, बॉडी डिमांड करती है। दिल कहता है कि मुझे कुछ खाने की जरूरत है, लेकिन दिमाग कहता है मुझे वो मेडल चाहिए। तो दिल और दिमाग को फिर आप कैसे मैनेज, वेट तो मैनेज हो जाता है, लेकिन दिल और दिमाग को कैसे मैनेज करते हो आप?
5: बहुत ही हमने सेक्रीफाइस मतलब रुका है इसको कि चाहते तो बहुत सारे कुछ होते हैं कि सबको चाहते होते हैं कुछ कुछ खाना है ना लाइफ में बहुत चीजों में आते हैं मन करते हैं सब कहीं पर भी जाके कुछ टेस्ट करने का।
4: ओके, लास्टली, चूंकि क्या है ना मीरा, आप अब पूरे भारत में या विश्व में एक आइकन बन चुकी हैं, आपको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं एज एन एथलीट। चूंकि ये जो स्पोर्ट है, ये यू नो अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि ये मेंस स्पोर्ट है, लेकिन आप देखिए, आप यहाँ पर फीमेल होकर यू नो बहुत अच्छा कर रही हैं। आपने ओलंपिक में हमें मेडल दिलाया, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, हर जगह पर आपने हमें मेडल्स दिलाए। सो एज एन फीमेल एथलीट, बाहर जो सारी बच्चियां हैं, जो यंग टैलेंट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और क्या आपको ये बताना जरूरी है कि सोसाइटी थोड़ा सा अपना नजरिया भी चेंज करे?
5: बिल्कुल बिल्कुल कि कोई स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं कि फीमेल जा सकते हैं सिर्फ मेल का ही स्पोर्ट्स है ऐसा कोई नहीं है। जो अंदर से लाना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ मैं क्या करना चाहते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसा कोई वो नहीं कि अलग अलग स्पोर्ट्स ऐसा डिवाइड करना बिल्कुल भी गलत बात है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनका बच्चों क्या करना चाहते हैं कौन से स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं जो उसको पसंद है तो उसी के साथ उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। बुरा हो अच्छा हो उसी टाइम है तो ऐसे ही करेंगे तो जरूर आने वाली यंग जनरेशन को बिल्कुल आगे ही जाएगा। और मैं खुद फीमेल होने के नाते बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मानती हूँ कि हम फीमेल हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते होते हैं हमारे जब सर्कल आते हैं कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि होना भी जरूरी नहीं है कि ये हमारे ऊपर है। हम वो तो हर टाइम आते हैं हमारे साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमारे साथ होते रहते हैं तो उसको फाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसी से ही फाइट करके हम आगे जा सकते हैं। तो यंग जनरेशन को और खास लड़की लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले हमारे कोच जो सामने रहते हैं उसी से हम बातचीत बहुत अच्छे से करना है उसके बाद क्या सोल्यूशन है वो सब निकालना जरूरी है। पर हर स्पोर्ट्स में ये लड़के का है लड़की का है कभी ऐसे डिवाइड नहीं करना है जो मन करते हैं वो करना है जरूर। तो ऐसे ही करेंगे तो जरूर मेडल मिलेगा।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया, देश का नाम रोशन किया, वैसे ही आगे आने वाले हर टूर्नामेंट में आप इसी तरह से परफॉर्म करें और देश को इसी तरीके से मेडल दिलाएं। थैंक यू
5: थैंक यू
4: सो
5: सो
4: मच।
5: मच थैंक यू सो मच।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
7: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
8: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
3: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड सहित आज भारत ने जीते 7 पदक। बॉक्सिंग में जैस्मीन और प्रीति ने जीता स्वर्ण। पैरा एथलेटिक शॉटपुट में सोमन राणा को गोल्ड, शुभन रॉयल ने जीता सिल्वर। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रूपए प्रति माह। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड्स का भी होगा डिस्प्ले। मानसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अच्छी और सच्ची खबर की शुरुआत कावड़ यात्रा से करते हैं। देखिए, सावन के पावन महीने में आस्था की लहर देखने को मिल रही है। जिधर देखो उधर कंधों पर कावड़ लिए शिव भक्त नजर आ जाएंगे। बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पर निकल रहे हैं, तो बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंचने की राह पे हैं। तो ऐसे में चलिए आपको हरिद्वार में कावड़ यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखा देते हैं।

0: रंग बिरंगे कावड़, कोई छोटा तो कोई बड़ा, लड़ियों और फूलों से अनमोल सजावट। भोले के रंग में रंग जाने की बेफिक्री है, बिंदासपन है और भक्ति की अपार श्रद्धा। तभी तो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पर निकल रहे हैं कावड़िये। सावन का आज तीसरा दिन है। प्रशासन के मुताबिक अभी तक 10 लाख से ज्यादा कावड़िये गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। अलग अलग रंग और अलग अलग ढंग से हाथों से बनाई कावड़ लेकर निकले लोगों का जोश देखते ही बन रहा है।
1: हमें भिवानी के लोगों की खास आदत होती है जो कि हम हाथों से कावड़ बनाते हैं और बहुत सुंदर सजाते हैं। हम ये कावड़ हरिद्वार से चलकर पैदल जाएगी, एक कंधे की कावड़ है, और भिवानी जाके प्रस्थान करें, अपने मंदिर के शिवालय में चढ़ा दें। मन में कामना लेके जा रहे हैं, बोले की इच्छा है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, सब कुछ
2: कावड़ लेके जा रहे हैं भाई। कावड़ बनाएंगे, क्या है किसी के मन में, क्या है आपके कावड़ लेके जा रहे हैं?
1: मन में तो बोले बोले की मर्जी है, बोले बोले खुला हुआ तो कावड़ लिया वहाँ।
3: ये हरिद्वार से रेवाड़ी
2: इतना लंबा सफर है, कोई परेशानी की?
3: ये 300 किलोमीटर का सफर है।
2: कोई परेशानी?
3: कोई परेशानी नहीं है।
2: कैसे जाएंगे? पैदल भगवान से?
3: पैदल पैदल।
2: कावड़ लेके जा रहे हो?
1: हाँ बोले।
2: कोई इच्छा करी है भगवान संगम से?
1: इच्छा बोले मांग रखी, पूरी होगी जरूर, होगी पूरी।
2: कितनी दूर लेके जाओगे?
1: 350 किलोमीटर बोले।
2: कोई परेशानी नहीं?
1: कोई परेशानी नहीं।
0: का जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने इस कावड़ उत्सव के लिए खास तैयारी कर रखी है। कावड़ मेला और घाटों और हाईवे पर ड्रोन के जरिए और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है। कावड़ियों के लिए इंतजामों और सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। यही नहीं, प्रशासन कावड़ियों से सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है।
4: हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से, जिलों से कांवड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं। जो हमारी कांवड़ पटरी है वो या हाईवे हो, वहाँ पर लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन हैं कि कांवड़ श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं दी जाएं, भले वो स्वास्थ्य की हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, और कोई भी समस्या अगर उनकी है तो उसको हम लोग उसको निस्तारण करें। 141 सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और उस क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमण करके समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। अभी तक करीबन 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु ऑलरेडी हमारे यहाँ से कांवड़ श्रद्धालु जल लेकर जा चुके हैं।
0: हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके मुताबिक आवश्यकता के अनुसार गंगा जल ले जाना, डीजे की आवाज कम रखना, नशा न करना जैसे एहतियात शामिल है।
5: और सावन के महीने में भगवान शंकर का वास हरिद्वार में माना गया है। आप देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह से हमारे भगवान शंकर के गण हरिद्वार में आ रहे हैं। यहाँ से जल लेके अपने अपने मंदिरों में जाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। और मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, कृपया 10-10, 12-12 मटके ना लेके जाए। जान है तो जान है, और मैं चाहूंगा आपकी यात्रा नशा मुक्त हो। और ये जो डीजे बड़े बड़े आ रहे हैं, जब ये डीजे बजता है हमारे पूरे मकान हिल जाते हैं। कृपया थोड़ा सा साउंड कम करें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, और भगवान शंकर का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे।
0: पंचांग के मुताबिक फिलहाल पंचक लग गया है, जिसके चलते कांवड़ियों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन फिर भी कांवड़ियों का आना और जाना जारी है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, और शिव जैसा चाहते हैं भक्त अपनी श्रद्धा उसी अनुसार प्रकट भी करते हैं, और शायद इसीलिए अलग अलग तरह से अपनी आस्था के लिए लोग अलग अलग संकल्प लेते हैं और उसी के अनुसार कांवड़ यात्रा पूरा करते हैं, और भोलेनाथ भी उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कांवड़ यात्रा के रंग।
7: सावन महीने के आरंभ होते ही हर तरफ भगवा रंग की लहर हर ओर दिखाई देने लगी है। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर तरफ भगवाधारी कावड़ियों का झुंड दिखाई देने लगा है। हर कोई कावड़ रूपी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महादेव का जलाभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की है। यहाँ पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। यहाँ से कावड़ियों का हुजूम निकल रहा है देवघर के लिए, जहाँ वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचकर उनका जलाभिषेक करेंगे।
8: सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होते ही हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। चाहे शिवालय हो, सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, हर तरफ भगवाधारी शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर है। यहाँ से तमाम कांवरिये बाबा देवघर की तरफ रवाना हो रहे हैं, बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा माहौल भक्तिमय है स्टेशन पर।
7: बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़ा है। कामना यही है भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से ही भोले भंडारी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं।
9: बनारस में जल डालने हैं बाबा जी को, और उसके बाद जो है यहाँ से जाएंगे बाबा धाम और सुल्तानगंज, वहाँ से जल भर के पैदल यात्रा करेंगे, उसके बाद जाएंगे देवघर बाबा धाम, वहाँ जल डालेंगे बाबा जी को।
7: इन लोगों की यात्रा की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक से हुई, जो बाबा बैद्यनाथ के अभिषेक के साथ समाप्त होगी। लेकिन बिहार के समस्तीपुर से भी युवाओं की एक टोली निकली है, वो भी स्केटिंग करते हुए। इन युवाओं का लक्ष्य देवघर में बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने का है। 30 अगस्त से शुरू हुई इनकी यात्रा उम्मीद के मुताबिक 6 अगस्त को समाप्त होगी। गेरुआ रंग के कपड़े, पीठ पर तिरंगा और भोले भंडारी का झंडा। स्केटिंग करते हुए ये टोला बाबा बैद्यनाथ के नगर की ओर बढ़ चला है। हाईवे पर स्केटिंग और जुबान पर भोले का जयकारा। जिस रास्ते से ये टोली निकल रही है, सबकी निगाह उत्सुकतावश उधर चली जा रही है। इस टोली के साथ कुछ युवा बाइक पर सामान और खाने पीने की वस्तुएं लेकर भी चल रहे हैं।
10: समस्तीपुर ताजपुर से यात्रा प्रारंभ हुआ 30 तारीख से हुआ। आज हम लोग यहाँ बेगूसराय मात्र हम 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है। तीसरा दिन जल उठाएंगे और दूसरे 3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे।
7: करीब 420 किलोमीटर की यह यात्रा देवघर में महादेव की पूजा अर्चना के साथ संपन्न होगी। अब इस कावड़ दल से मिलिए। इस दल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 150 से ज्यादा कावड़िये हैं और सभी एक ही गांव के निवासी हैं और पूरे रास्ते एक परिवार की तरह यात्रा कर रहे हैं। यह लोग 22 जुलाई को उत्तराखंड के गौमुख से गंगा जल लेकर चले हैं और इनकी यात्रा गाँव जाकर पूरी होगी। उनकी ये यात्रा 800 किलोमीटर से अधिक की होने वाली है, जिसे पूरा करने में अभी और 10 दिन लगने हैं। ये जत्था हर रोज करीब 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।
11: गंगोत्री से कामल लाए जिला मुरैना कुंवरपुर गांव है मेरा, सिद्धवा के मंदिर पर ले जा रहे हैं जल। बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए बढ़िया मस्ती में जा रहे हैं।
7: जैसी शक्ति वैसी भक्ति। इस दल में शामिल शिव भक्तों का कहना है कि ये पूरी तरह से बाबा की कृपा और बुलावे का परिणाम है। गांव के इतने लोगों ने संकल्प लिया और कारवां निकल पड़ा। जुबा पर भोले का नाम और श्रद्धा अपार, यही है इस पावन महीने में भक्ति का अनूठा परिणाम। चंदौली से उदय गुप्ता, बेगूसराय से सौरभ कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: शिव भक्ति में लीन कावड़िये अलग अलग तरह से अपनी आस्था जता रहे हैं। ऐसे ही एक कावड़िये विराट ने झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया गांव से राजदा धाम मंदिर से 51 लीटर गंगा जल लेकर 6 जुलाई से अपनी यात्रा की शुरुआत की। विराट अपने जिले के नदी से जल लेकर सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर से सुल्तानगंज के उत्तरी वाहनी गंगा से 51 लीटर जल लेकर बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा की बात करें तो ये यात्रा कुल 351 किलोमीटर की है। इससे पहले भी विराट सनातन एकता के संदेश के लिए 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं और 201 दिन की यात्रा में उन्होंने काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, अयोध्या, वैष्णो देवी, केदारनाथ, कामाख्या मंदिर समेत कई तीर्थ स्थलों के दर्शन वो कर चुके हैं। और देखिए ऐसा ही अनोखा दृश्य मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला। यहाँ पर एक ऐसी कार देखी जिसमें भगवान शिव सवार थे। देखिए ये कार करीब 5 करोड़ की बताई जा रही है, जो मैकलॉरिन स्पोर्ट्स कार के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये असल बात है कि ये डमी कार है, ये असली बात सामने आ रही है कि रियल कार नहीं है, ये डमी कार है। दरअसल दिल्ली के नवादा गांव के 6 शिव भक्तों की टोली 28 जुलाई को हरिद्वार के हर की पौड़ी से 40 लीटर गंगाजल लेकर स्पोर्ट्स कार में भगवान शिव शंकर को विराजमान कर अपनी कावड़ यात्रा पर निकली है। और इस टोली ने 8 लाख रुपए खर्च कर अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है। तो चलिए अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

0: की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रि कालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर की दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात फिल्मों की कर लेते हैं तो देखिए फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अगर हम बात करें तो इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। देखिए ये ऐसी पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने दो दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। जबकि बात अगर शनिवार के आंकड़ों की करें तो शनिवार के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
2: स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। सिर्फ दो दिनों में ही सुपर हीरो फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की थी और शुक्रवार को भी इसका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत में 30 जुलाई को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड रिलीज बन गई है, जबकि शनिवार के आंकड़े अभी आने बाकी है। उम्मीद के मुताबिक रविवार को भी फिल्म जबरदस्त कारोबार करेगी। अमेरिका सहित दूसरे देशों में स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की यह चौथी फिल्म 31 जुलाई को रिलीज हुई और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में भी रिकॉर्ड तोड़ 1650 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 131 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। भारत में स्पाइडरमैन की इस नई फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज अलग लेवल पर देखा जा रहा है। गुरुवार को पहले दिन जहां हिंदी वर्जन के लिए 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, वहीं शुक्रवार को दूसरे दिन भी औसतन 90% रही, यानी सुबह से रात तक हर शो में 100 में से 90 सीटों पर दर्शक नजर आए, जबकि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ मिलाकर सभी 16,902 शोज में औसतन ऑक्यूपेंसी 64.8% दर्ज की गई। सैकनिक के मुताबिक गुरुवार को ओपनिंग डे पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने भारत में सभी 6 भाषाओं को मिलाकर 60.60 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया था, यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है, जबकि शुक्रवार को भी इसने शानदार 49.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। बिना किसी हॉलीडे रिलीज के इस फिल्म ने दो दिनों में भारत में कुल 131.46 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन और 109.95 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। दो दिनों में हुई 109.95 करोड़ की नेट कमाई में से 60.25 करोड़ रुपए अंग्रेजी वर्जन से और 39 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन से आए हैं, जबकि तमिल से 5.25 करोड़ रुपए, तेलुगु से 5.25 करोड़ रुपए, मलयालम से 14 लाख और कन्नड़ से 6 लाख रुपए की कमाई हुई है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में बॉक्स ऑफिस पर मौजूद ट्रेंड्स के आधार पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने 4 दिन के पहले ओपनिंग वीकेंड में 275 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई आसानी से कर लेगी। यदि ऐसा होता है तो ये देश में किसी नॉन इंडियन फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड होगी और ये एक नया रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसी खबर की जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए, यहां पर नर्मदा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गिरने वाली रिमझिम फुहारें प्रकृति की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। इन खूबसूरत नजारों के दीदार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं और बारिश के मौसम में तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और भी ज्यादा भव्य और मनमोहक नजर आता है। तो देखिए, बात बारिश की हो रही है, मॉनसून सीजन की हो रही है, तो मॉनसून सीजन में गुजरात से दो और तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नवसारी की है। यहाँ डांग जिले में बारिश के बीच मां तेंदुआ अपने दो शावकों को सड़क पार कराते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी सावधान और सुरक्षित तरीके से मां तेंदुआ अपने दोनों शावकों को अपने साथ सड़क पार करा रही है। इसी बीच वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जब कोई वन्य जीव सड़क पार कर रहा हो, सड़क क्रॉस कर रहा हो, तो उसके पास ना जाएं और गाड़ी सावधानी से चलाएं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जूनागढ़ से सामने आई है और यहाँ पर मॉनसून के इस मौसम में जंगल का राजा यानी कि शेर घास खाता हुआ नजर आ रहा है। शेर को घास खाता देखना आपको अचंभित भी कर सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए ये आम बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेर, ले लीजिए बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के पेट में शिकार के बाल, चमड़ी और हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, तब वो पाचन तंत्र में सुधार के लिए फाइबर से भरपूर खास घास का सेवन करते हैं। चेन्नई में हुई पुलिस मेडल सेरेमनी में स्निफर डॉग रॉकी ने सबका दिल जीत लिया। देखिए, जब उसने फूलों के गुलदस्ते से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का स्वागत किया, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित करने आए थे दरअसल, और इस कार्यक्रम में स्निफर डॉग रॉकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच की ओर जाते हुए अपने मुंह में फूलों की टोकरी लिए हुए नजर आ रहा है। मंच पर पहुंचने पर डॉग ने मुख्यमंत्री के सामने सिर झुकाकर उन्हें सलामी दी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें सल्यूट किया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है? क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
6: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop. Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music.

0: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: Jaiki, Rat Nobody.
2: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
3: Aur durbhagya kehta hai
2: ki bhagya kahin dur nahi.
1: Avishwas mein vishwas basta hai.
2: Jo hum mein achhai jagata hai, hame good news today banata hai.
0: Good news today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
1: अविश्वास में विश्वास बसता है.
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
0: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करें तो सूर्य देव से विशेष वरदान आपको मिल सकते हैं। क्या तरीका है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों के दैनिक राशि फल के बारे में और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, वैसे तो सूर्य भगवान की उपासना रोज की जाती है, नियमित की जाती है, लेकिन रविवार को सूर्य देव की उपासना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है? देखिए, रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है और रविवार के दिन जब आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो वो उपासना विशेष फलदायी होती है। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। रविवार को सूर्य देव के विशेष उपाय करना लाभकारी होता है, विशेष फायदा होता है अगर रविवार को सूर्य देव की उपासना की जाए। देखिए, सूर्य का सबसे ज्यादा और सबसे गहरा संबंध होता है आपके आरोग्य से, आपके स्वास्थ्य से। रविवार को स्वास्थ्य का, आरोग्य का वरदान कैसे मिलेगा? रविवार को प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी रोली मिलाइए और इसके बाद सूर्य देव का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा और लोटे के किनारे जो जरा सी रोली लगी रह गई है इस रोली का स्वयं को तिलक लगाइएगा। अगर हर रविवार को प्रातः काल आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, आप आरोग्यवान होंगे। रविवार के अन्य उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि,
करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, काफी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ हो, खराब हो, तो हृदय रोग की संभावना जीवन में बनती है। तो हृदय रोग से राहत कैसे मिले? रविवार को प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें, जल में लाल पुष्प डालिए, लाल फूल डालिए। अगर जवा पुष्प हो, गुड़हल का फूल हो तो ज्यादा उत्तम होगा। और इसके बाद सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाइए, लाल चंदन की माला अर्पित करिए। इसके बाद उसी माला से ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। पूजा के बाद उस माला को गले में धारण करिए और उस माला को हमेशा गले में पहने रखिए। हर रविवार को माला गले से निकाल कर उस पर मंत्र का जप करके दोबारा उस माला को गले में पहन लीजिएगा। हृदय से संबंधित समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपके जीवन में शत्रु ज्यादा हैं, विरोधी ज्यादा हैं, जीवन में बाधाएं ज्यादा पैदा करते हैं, तो शत्रुओं और विरोधियों पर विजय कैसे मिलेगी? रविवार के दिन का उपवास रखिएगा और नमक मत खाइएगा। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और विजय प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे, जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। रविवार के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, कारोबार में सुधार होगा, नए काम का अवसर मिलेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें,
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर सूर्य देव की कृपा आपको चाहिए तो रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन कौन कौन से काम करना कल्याणकारी होगा, संभव हो तो रविवार को भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल या आक के फूल अर्पित करें। वैसे भी अर्पित कर सकते हैं और जल में डाल कर भी अर्पित कर सकते हैं। रविवार को जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से गुड़ का, गेहूं का, गेहूं के आटे का और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार को उपवास रखें, नमक का सेवन ना करें या रविवार के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको माणिक्य धारण करने की सलाह दी गई है जो कि सूर्य का रत्न है तो तांबे या सोने की अंगूठी में रविवार को दोपहर के समय में माणिक्य धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रिश्तों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बाधा आ सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, संयम और शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, फिर आपको बता दूं कि अगर आप सूर्य देव की नियमित उपासना नहीं कर पाते तो रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का या सूर्याष्टकम का पाठ करें। अगर भोजन ग्रहण करते हैं रविवार को तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें
और अगर उपवास रखते हैं तो नमक नहीं खाएंगे, सूर्यास्त के पहले कोई मीठी चीज खा सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं सूर्य देव को रोज जल चढ़ाना चाहता हूं, चाहती हूं, लेकिन मेरे घर से सूर्य के दर्शन नहीं होते, सामने बिल्डिंग है नहीं दिखाई देते। तो अगर आपको सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते और आप सूर्य देव की प्रातः काल पूजा करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सूर्य देव के 21 नाम शास्त्रों में दिए गए हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको सूर्य देव के 21 नाम मिलेंगे। तो रोज सुबह स्नान करके पूर्व की तरफ चेहरा करके अगर आप सूर्य देव के 21 नाम पढ़ेंगे तो आपके सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन के किसी क्षेत्र में विजय चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, बड़ी से बड़ी परीक्षा, मुकदमों, झंझट में आपको विजय मिलेगी। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: और चलिए अब बात उत्तराखंड की। वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपने नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल और अनोखी परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जहां देश विदेश से भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी देवी मंदिर लेकर चलते हैं जिसके दर्शन के लिए आस्थावान आते रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मंदिर अपनी अनोखी मैग्नेटिक पावर के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये है कसार देवी मंदिर।
8: क्या आपको बताऊं, आप जब यहाँ पर आएंगे स्वयं जो है फील करेंगे, मतलब एक भू चुंबकीय शक्ति है यहाँ पे। मन आपका उतल पुतल हो रहा है, मतलब आपको टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो इससे बढ़िया जगह संसार में मैंने आज तक नहीं देखी।
9: आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहा हूँ जो न केवल आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया जहान में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, बल्कि अपने रहस्यों को लेकर भी खूब फेमस है। अल्मोड़ा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन की वैसे तो बात निराली ही रही है। यहाँ दूर तक फैली हरियाली तो कहीं घना कोहरा, बस मौसम की इसी लुका छिपी के साए में कसार देवी का ये अद्भुत नजारा आपको अंदर से तरोताजा कर देगा। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी पास कसार देवी मंदिर, इलाका लगभग हर प्रजाति के पक्षियों से भरा पड़ा है और यहीं ये देवी मंदिर अपने अनोखे चुंबकीय चमत्कार से आस्थावानों और वैज्ञानिकों के बीच क्यूरियोसिटी पैदा करता आया है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ देवी माँ साक्षात अवतार में आई थी और इसी मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि देश में ये इकलौती जगह है जहाँ मैग्नेटिक पावर महसूस की जाती है। दरअसल साइंटिस्ट बताते हैं कि मंदिर के इर्द गिर्द वैन एलन बेल्ट है, यानी इस धरती के चारों तरफ मौजूद वो एरिया जहां स्पेस से आने वाली हाई मैग्नेटिक चेंज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड में फंसे रहते हैं। इसीलिए इस मंदिर से जुड़ी कई शक्तियों का पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिक भी आए, लेकिन सारी कोशिशें फेल रहीं। फिलहाल तो बरसों से कसार देवी मंदिर का रहस्यमय क्षेत्र लोगों के लिए मेंटल पीस देने वाली खास जगह बना हुआ है, क्योंकि कुछ अलग सा ही सुकून मुझे भी यहाँ महसूस हुआ।
8: आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, करीब शाम के 5 बज गए हैं और आज आप लोग देखो कितने हाइट पे ये मंदिर है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऐसी ऐसी यहाँ पे गुफाएं हैं, इसके अंदर जाके लोग जाके ध्यान करते हैं।
9: स्पिरिचुअली कसार देवी मंदिर के महत्व को समझते हुए कभी स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ ध्यान किया तो तभी से ये जगह और मंदिर हर तरह के देसी विदेशी पर्यटकों के बीच और फेमस हो गई। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहाड़ मतलब सफर में ढेर सारी परेशानी, तो यकीन मानिए इस प्यारी सी जगह पर पहुंचना बेहद ही आसान है।
8: पे आने के लिए जो है डायरेक्ट कोई बस तो है नहीं, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको अल्मोड़ा आना पड़ेगा। अल्मोड़ा से जो छोटी गाड़ियाँ होती है, प्राइवेट जो कमर्शियल टैक्सियाँ होती है, यानी जैसे मैक्स वगैरह वगैरह बोलेरो चलती हैं, वो सवारी के हिसाब से और बुकिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको पहुँचा देगी।
9: वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपनी बेपनाह खूबसूरती, अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ कई मंदिर हैं जो अपनी आध्यात्मिकता की वजह से मेरे जैसे ही कई और श्रद्धालुओं की भी पसंद रहे हैं। तो अगर आप भी भाग दौड़ और उथल पुथल की जिंदगी से आजीज आए हैं तो लाइफ में एक बार इस रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर करना तो बनता है।
7: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
10: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड सहित आज भारत ने जीते 7 पदक। बॉक्सिंग में जैस्मीन और प्रीति ने जीता स्वर्ण। पैरा एथलेटिक शॉटपुट में सोमन राणा को गोल्ड, शुभन जुआल ने जीता सिल्वर। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रूपए प्रति माह। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड्स का भी होगा डिस्प्ले। मानसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलतबेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं। वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशून इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है। हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना, और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा शत प्रतिशत तो कभी भी छुप नहीं सकता, दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रडार काम करते हैं। एक रडार एल बैंड पर काम करता है, एक रडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या केयू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर है, पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही फिफ्थ जेनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर फिफ्थ जेनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं। तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: 2-1 नाउ
2: 23 जुलाई को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर अटैक करने वाली स्वदेशी मिसाइल कुशा का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ये परीक्षण भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिजाइन और विकसित करने में सक्षम है। स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा, जिसमें इतनी ताकत है कि दुश्मन की क्रूज मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल, उसके ड्रोन और फाइटर जेट्स को पकड़कर उन्हें नाकाम कर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि एक लंबे दायरे में काम करती है, और ऐसे में चीन और पाकिस्तान से सटी सरहद पर ये काफी कारगर साबित हो सकती है। डीआरडीओ के इस परीक्षण से भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर प्रोग्राम है। अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे देश पहले से ही इस क्षमता को हासिल कर चुके हैं, अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। कुशा मिसाइल सिस्टम कैसे भारत के एयर डिफेंस को मजबूत बनाएगा, आइए आपको वो भी बताते हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर्स में काम करती है, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। LRSAM सिस्टम में लगी M1 इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी तक मध्यम खतरों को रोकेगी। M2 इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 250 किलोमीटर की रेंज में आने वाले लड़ाकू विमानों को निशाना बनाएगी। M3 इंटरसेप्टर मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह कर देगी। कुशा मिसाइल की रफ्तार Mach 5.5 यानी करीब 6,700 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जो हाइपरसोनिक और स्टेल्थ खतरों को भी नाकाम करने में सक्षम है।
1: भारत एक बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सुरक्षा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, जिसके तहत दुश्मन का कोई भी विमान भारत के आसमान में घुस नहीं पाएगा। इस एयर डिफेंस एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा भारत में ही डेवलप की जा रही मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम दिया गया है कुशा। कुशा जो है वो एक ऐसा एडवांस सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें चार चार तरह की मिसाइलें होंगी। एक मिसाइल ऐसी होगी जो दुश्मन के हवाई जहाज को 350-400 किलोमीटर की दूरी पर शूट कर सकेगी। उसके बाद भी अगर दुश्मन का विमान और पास आ जाता है तो कुशा का जो सेकेंड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो दुश्मन के जहाज को 250 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर पाएगी। और इसी तरह से कुशा में इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर और फिर 80 किलोमीटर वाला भी डेवलप किया जा रहा है। यानी कुशा एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली होगी।
2: LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वॉर करने वाली मिसाइलों को 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगे और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर सकेगी। कुशा मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी टारगेट और नेटवर्क सेंट्रिक आर्किटेक्चर को पूरी तरह से फॉलो करता है। इसमें स्वदेशी रडार लगाए गए हैं जो कि मल्टीपल टारगेट्स को फॉलो करते हैं और उन्हें डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ सीधे तौर पर जोड़ा गया है ताकि ये दुश्मन को पहचानने के साथ ही उस पर तुरंत हमला कर सके और इसमें किसी भी तरह की कोई देरी न हो। रूस के S-400 की तरह कुशा भी पूरी तरह से मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य है। इसे ट्रकों पर लोड करके चीन या फिर पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर जरूरत के हिसाब से तुरंत तैनात किया जा सकता है। दरअसल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचे संकड़े पहाड़ी रास्तों पर भारी भरकम मिलिट्री ट्रक नहीं चल सकते। इसके लिए कुशा मिसाइल के रडार, कमांड पोस्ट और लॉन्चर्स को विशेष मल्टी एक्सल ऑल टेरेन ट्रकों पर माउंट किया गया है। ये भारी भरकम और घुमावदार पहाड़ी रास्तों और बेहद कम

0: तापमान में भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। पहाड़ों के पीछे छिपकर आ रहे विमान या ड्रोन को पकड़ने के लिए कुशा में 3D ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पारंपरिक पुराने रडार सिर्फ ये बता सकते थे कि दुश्मन किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, लेकिन कुशा का 3D रडार एक साथ 3 चीजें बताता है। पहला दूरी यानी लक्ष्य कितनी दूर है, दूसरा दिशा यानी लक्ष्य किस तरफ से आ रहा है, और तीसरा ऊंचाई यानी टारगेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। इससे मिसाइल को दुश्मन की सटीक लोकेशन मिलती है और वो सीधे निशाने पर जाकर लगती है। पुराने रडार की डिश एंटीना चारों तरफ घूमकर सिग्नल भेजती थी। अगर एंटीना घूमकर दूसरी तरफ चला गया तो पहली तरफ का दुश्मन रडार की नजर से कुछ सेकंड में ही ओझल हो जाता था। वहीं ऐसा रडार में एक बड़ा एंटीना नहीं होता, बल्कि इसमें हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स लगे होते हैं। 3D ISR रडार 360 डिग्री घूमते हुए चारों दिशाओं में आने वाले खतरों पर नजर रखते हैं। ये रडार 600 से 800 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जेट्स और मिसाइलों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुशा मिसाइल को रिएक्ट करने का भरपूर समय मिलता है। ये रडार आसमान में एक साथ 100 से अधिक संदिग्ध लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। 3D ISR रडार एंटी जैमिंग तकनीक से लैस है, यानी ISR रडार हर सेकंड अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है। इस वजह से दुश्मन के लिए इस रडार को जैम या फिर ब्लॉक करना नामुमकिन है। स्टेल्थ विमानों की पहचान करने में भी सक्षम है 3D ISR रडार, जो चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ विमान को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है।
1: कुशा एयर डिफेंस सिस्टम का जो सर्विलेंस रडार है और जो फायर कंट्रोल रडार है, उसमें एजिया रडार लगा हुआ है, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार सिस्टम लगा हुआ है। इसमें होता क्या है कि एक मूवेबल एंटेना नहीं होता है। आमतौर पे जितने रडार होते हैं उसका एंटेना दाएं बाएं हिलता है या ऊपर नीचे हिलता है दुश्मन को ढूंढने के लिए, लेकिन ISR रडार में कुशा का जो रडार होगा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार जो होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक LED टाइप डिवाइस लगे होते हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। तो जो रडार का एंटीना है वो स्थिर रहता है एक फ्लैट प्लेट जैसा, लेकिन उसमें जो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं सैकड़ों हजारों, वो LED बल्ब की तरह से ट्रांसमिट करते हैं बुझ जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं बुझ जाते हैं। तो इससे दुश्मन की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो कुशा के रिसीवर सिस्टम में आसानी से घुस नहीं सकती है।
0: मौजूदा समय में भारत लंबी दूरी की सुरक्षा के लिए रूस के S-400 और मध्यम दूरी के लिए इसराइल के बराक-8 सिस्टम पर निर्भर है। कुशा के आने से भारत विदेश पर निर्भरता से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और खुद तकनीक का मालिक बनेगा। भारत ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए एक अभेद मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया है। हवाई सुरक्षा का पहला लेयर और सबसे बाहरी परत की सुरक्षा का जिम्मा S-400 के पास है। इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर है। भारत ने चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन तैनात किए हैं। इसके रडार और मिसाइलें 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय S-400 ने 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पाकिस्तानी एवॉक्स विमान को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर अपनी ताकत साबित की। सीमा की सुरक्षा के लिए दूसरी लेयर पर तैनात है बराक-8 LRSAM। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के पास है। ये चीनी क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मध्यम दूरी पर ही रोक देती है। पर है आकाश और आकाश प्राइम मिसाइल, जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। आकाश सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी और मोबाइल सिस्टम है, जिसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी दुर्गम ऊंचाइयों पर चीनी सीमा पर भारी मात्रा में तैनात किया गया है। ये कम ऊंचाई पर पहाड़ों के पीछे छिपकर आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों को सटीकता से मार गिराता है। मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड के चौथे लेयर पर है समर और कम दूरी का सिस्टम, जिसकी रेंज है 10 से 12 किलोमीटर। भारतीय वायुसेना ने पुराने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे कि R-73 को मॉडिफाई करके SAMAR यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन सिस्टम बनाया है। ये सीमावर्ती एयरबेस और संवेदनशील ठिकानों को अचानक होने वाले हमलों से बचाता है। पांचवी परत पर है VS हॉर्ड्स और एंटी ड्रोन तकनीक की तैनाती, जो 6 किलोमीटर तक के खतरे को तबाह कर सकती है। VS हॉर्ड्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मान पोर्टेबल मिसाइल है, जिन्हें सैनिक चीन पाकिस्तान सीमा की ऊंची चोटियों पर तैनात रखते हैं, ताकि अचानक आने वाले हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को तुरंत मार गिराया जा सके। वहीं स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले छोटे क्वाडकॉप्टर और ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए सीमा पर लेजर आधारित जैमिंग और सॉफ्ट और हार्ड किल सिस्टम सक्रिय है। भारत ने तीनों सेनाओं को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा रणक्षेत्र में होने वाला है। दरअसल ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसका फायदा ये भी होगा कि अगर दुश्मन की तरफ से मल्टीपल अटैक्स होते हैं तो पलक झपकते ही ये तय हो पाएगा कि किस टारगेट को S-400 से ध्वस्त करना है, किस पर कुशा मिसाइल और किस पर आकाश गुदा। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम्स में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की घोषणा की गई। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने का सीधा मतलब ये है कि सिस्टम अब युद्ध या पर किसी भी सैन्य संकट के दौरान पूर्ण पैमाने पर मोर्चे पर तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रमाणित हो चुका है। DRDO द्वारा विकसित नेत्र सिस्टम को एयरब्रेन विमान पर फिट किया गया है। युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहाँ तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है, जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भाप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है, जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है, इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू, जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है, जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं। एवॉक्स प्लेटफॉर्म शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाकर काम करता है। दरअसल एवॉक्स में इतनी ताकत है कि ये दुश्मन की हर जानकारी जुटा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, यहां तक कि जमीन पर भी ये तमाम जानकारियां इकट्ठा कर सकता है। एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कंबाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आपकी डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है। वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसका जो क्लटर है उसको डीक्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय सेना की तलवार है तो नेत्र उसकी दिमाग और ताकत है। बिना नेत्र के लड़ाकू विमान सही तरीके से काम ही नहीं कर सकते, और खास तौर पर जब भारत जैसे मुल्क जो कि पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सरहद साझा करते हैं, जहां से हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, ऐसे में नेत्र सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। चीन का इंटीग्रेट एयर डिफेंस सिस्टम काफी बड़ा है। हालांकि एक बड़ी दिक्कत चीन के लिए तिब्बत की ऊंची पहाड़ियां हैं। इस ऊंचाई पर G20 के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना संभव नहीं है। इसके अलावा तिब्बत के एयरबेस को भारतीय ब्रह्मोस आसानी से तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस को रोकने की क्षमता चीन में नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं है कि कागजों पर चीन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन भारत के पास पर्वतीय युद्ध और उच्च ऊंचाई वाले अभियानों को लेकर काफी ज्यादा अनुभव है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि चीनी G20 भारी पड़ेगा। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाए। MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुंडी
1: तो चलिए इस वक्त की शानदार खबर जो सामने आ रही है उसके बारे में आपको बता दें। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी ये खबर है। भारतीय बॉक्सिंग प्लेयर्स ने आज अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। 60 किलो कैटेगरी में प्रिया घांगस और 51 किलो कैटेगरी में साक्षी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के अब तक 10 गोल्ड मेडल हो चुके हैं और इसी के साथ मेडल टैली में भारत 5वें पायदान पर पहुंच गया है। बहुत ही गर्व की बात है, लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है भारत ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में। और आज बॉक्सिंग के 5 मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। तो शानदार खबर इस वक्त की आपको बता दें कि इसके अलावा जूडो में 63 किलो महिला वर्ग में उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। तो यानी कि 10 गोल्ड 15 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने अब तक कुल 33 मेडल जीत लिए हैं। तो चलिए अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रिकालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नक्काशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात फिल्मों की कर लेते हैं तो देखिए फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अगर हम बात करें तो इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। देखिए ये ऐसी पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने दो दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। जबकि बात अगर शनिवार के आंकड़ों की करें तो शनिवार के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
2: स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। सिर्फ दो दिनों में ही सुपर हीरो फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की थी और शुक्रवार को भी इसका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत में 30 जुलाई को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड रिलीज बन गई है, जबकि शनिवार के आंकड़े अभी आने बाकी है। उम्मीद के मुताबिक रविवार को भी फिल्म जबरदस्त कारोबार करेगी। अमेरिका सहित दूसरे देशों में स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की यह चौथी फिल्म 31 जुलाई को रिलीज हुई और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में भी रिकॉर्ड तोड़ 1650 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 131 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। भारत में स्पाइडरमैन की इस नई फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज अलग लेवल पर देखा जा रहा है। गुरुवार को पहले दिन जहां हिंदी वर्जन के लिए 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, वहीं शुक्रवार को दूसरे दिन भी औसतन 90% रही, यानी सुबह से रात तक हर शो में 100 में से 90 सीटों पर दर्शक नजर आए, जबकि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ मिलाकर सभी 16,902 शोज में औसतन ऑक्यूपेंसी 64.8% दर्ज की गई। सैकनिक के मुताबिक गुरुवार को ओपनिंग डे पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने भारत में सभी 6 भाषाओं को मिलाकर 60.60 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया था। यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है, जबकि शुक्रवार को भी इसने शानदार 49.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। बिना किसी हॉलीडे रिलीज के इस फिल्म ने दो दिनों में भारत में कुल 131.46 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन और 109.95 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। दो दिनों में हुई 109.95 करोड़ की नेट कमाई में से 60.25 करोड़ रुपए अंग्रेजी वर्जन से और 39 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन से आए हैं, जबकि तमिल से 5.25 करोड़ रुपए, तेलुगु से 5.25 करोड़ रुपए, मलयालम से 14 लाख और कन्नड़ से 6 लाख रुपए की कमाई हुई है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में बॉक्स ऑफिस पर मौजूद ट्रेंड्स के आधार पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने 4 दिन के पहले ओपनिंग वीकेंड में 275 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई आसानी से कर लेगी। यदि ऐसा होता है तो ये देश में किसी नॉन इंडियन फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड होगी और ये एक नया रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसी खबर की जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए, यहां पर नर्मदा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गिरने वाली रिमझिम फुहारें प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। इन खूबसूरत नजारों के दीदार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं और बारिश के मौसम में तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और भी ज्यादा भव्य और मनमोहक नजर आता है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
3: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, 11 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में चौथे पायदान पर पहुंचा भारत। बॉक्सिंग के 6 मुकाबलों में जीते 5 स्वर्ण और 1 सिल्वर मेडल। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2,117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी, राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल, सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मानसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा, पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरह लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

0: जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन निलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन निलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address, and it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion, because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिल-ए-गौर है कि नंदन निलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
3: आधार KYC was sufficient to open a bank account or to get a mobile connection. And in 2014, soon after Prime Minister Modi came to power, on August 28, 2014, he launched the Jan Dhan Yojana program, which is the world's largest financial inclusion program. And more than 400 million bank accounts were opened for people. And they were able to do that very quickly because with Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस डीपीआई की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीलेकणी हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। यूपीआई कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ।
3: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
0: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन नीलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन नीलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन नीलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन नीलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
2: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
0: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकड़ी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन निलेकड़ी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुलप्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन निलेकड़ी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
4: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में निलेकनी ने आईआईटी में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर आईआईटी में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर निलेकनी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में आईआईटी क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे आईआईटी क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
0: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन निलेकड़ी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव निलेकड़ी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन निलेकड़ी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। आईआईटी क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन निलेकड़ी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
2: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइन्ड एनी आईआईटी एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन आईआईटी चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आईआईटी बॉम्बे। सो दैट्स हाउ, एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज़ आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर आईआईटी बॉम्बे।
0: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने किस मना स्थिति में की, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन निलेकड़ी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन निलेकड़ी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन निलेकड़ी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन निलेकड़ी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
2: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education, he put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC.
3: And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
0: धारवाड़ में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलेकणी ने आईआईटी में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड़ जैसे छोटे शहर में ना तो आईआईटी की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
3: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
0: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलेकणी आईआईटी में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह बांह फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब आईआईटी बॉम्बे से नंदन नीलेकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन की आईआईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
3: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
0: आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन नीलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहां उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन नीलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन नीलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन नीलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन नीलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन नीलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्लेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस आईआईटी बॉम्बे के नंदन नीलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन नीलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन नीलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
4: तो बंदे में है दम में आज आज आपने नंदन निलेकनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: तो देखिए, बात बारिश की हो रही है, मॉनसून सीजन की हो रही है, तो मॉनसून सीजन में गुजरात से दो और तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नवसारी की है। यहाँ डांग जिले में बारिश के बीच मां तेंदुआ अपने दो शावकों को सड़क पार कराते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी सावधान और सुरक्षित तरीके से मां तेंदुआ अपने दोनों शावकों को अपने साथ सड़क पार करा रही है। इसी बीच वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जब कोई वन्य जीव सड़क पार कर रहा हो, सड़क क्रॉस कर रहा हो, तो उसके पास ना जाएं और गाड़ी सावधानी से चलाएं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जूनागढ़ से सामने आई है और यहाँ पर मॉनसून के इस मौसम में जंगल का राजा यानी कि शेर घास खाता हुआ नजर आ रहा है। शेर को घास खाता देखना आपको अचंभित भी कर सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए यह आम बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेर ले लीजिए, बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के पेट में शिकार के बाल, चमड़ी और

0: एक शानदार खबर सामने आ रही है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में भारतीय बॉक्सिंग प्लेयर्स ने मेडल्स की झड़ी लगा दी है। भारत के लिए गर्व का पल, आपको बता दें 70 किलो भार वर्ग में अरुंधति चौधरी ने भारत के नाम एक और स्वर्ण पदक कर दिया है, एक और गोल्ड भारत के नाम। 75 किलो वर्ग में लवलीना ने सिल्वर मेडल जीता है। आज बॉक्सिंग के हुए 7 मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीत लिया है। पदक तालिका की अगर हम बात करें तो 11 गोल्ड मेडल जीतकर भारत चौथे पायदान पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही भारत के लिए गर्व का पल।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़
2: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी। 11 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में चौथे पायदान पर पहुंचा भारत। बॉक्सिंग के साथ मुकाबलों में जीते 5 स्वर्ण और 2 सिल्वर मेडल। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले प्रधानमंत्री, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड्स का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: कॉमनवेल्थ में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अरुंधति चौधरी ने 70 किलो वर्ग में इंग्लैंड की चेंटेले रीड को हरा के गोल्ड अपने नाम किया। आज बॉक्सिंग में भारत का 5वां गोल्ड। मुक्केबाज प्रिया घांगस ने महिला के 60 किलो वर्ग में भारत को दिलाया गोल्ड। कनाडा की मैरी बाथॉल अल अहमदिया को हरा के गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने भी लगाया गोल्डन पंच। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग बॉक्सिंग में भारत को दिलाया गोल्ड। कनाडा की समाना डोलमागो को दी मात। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड। नॉर्दर्न आयरलैंड की मिकेला वॉल्स को हराया। भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता रजत पदक। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि ने जीता सिल्वर। जूडो में उन्नति शर्मा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। महिला जूडो के 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति को ब्रॉन्ज। पुरुषों के ट्रिपल जंप से भारत को 2 मेडल। प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर के जंप अटेम्प्ट के साथ सिल्वर अपने नाम कर दिया। सेल्वा प्रभु ने 16.52 के बेस्ट अटेम्प्ट के साथ ब्रॉन्ज जीता। पैरा एथलेटिक्स भारत के लिए आई दोहरी खुशी। शॉटपुट F57 इवेंट में सोमन राणा ने गोल्ड जीता। शुभन जुयाल ने शॉटपुट F57 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ जीता सिल्वर मेडल। यशवीर सिंह को 85.41 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज किया अपने नाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कांवड़ की चर्चा। मैकलॉरेन स्पोर्ट्स कार में सवार नजर आए भगवान शिवशंकर। लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को कावड़ के रूप में किया गया इस्तेमाल। शिव भक्तों ने महज 8 लाख में स्पोर्ट्स कार को बना दिया कावड़ का रूप। सावन के महीने में दिख रहे कावड़ के अलग अलग रंग। सनातन एकता के लिए 51 लीटर जल लेकर 350 किलोमीटर की यात्रा पर निकले शिव भक्त। अर्धनारीश्वर कावड़ भी बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। 100 किलो वजन के 9 फीट ऊंचे है ये विशाल कावड़। सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा धाम जा रहे भक्त। श्रावण मेला साल 2026 के चलते बाराबंकी में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कई मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद। प्रशासन की भीड़ नियंत्रण पर लगातार नजर। हरिद्वार में धूमधाम से चल रहे कावड़ मेले का आज तीसरा दिन। हर की पैड़ी सहित पूरे हरिद्वार में शिवमय हुआ माहौल। सजी धजी कावड़ लेकर पहुंच रहे कावड़िए। सावन के महीने में आकर्षण का केंद्र रहती है अलग अलग कावड़। इसी कड़ी में फिटनेस और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती बागपत पहुंची अनोखी जिम वाली कावड़। कावड़ में आगे विराजमान है भोलेनाथ और पीछे बना है पूरा जिम। इस कावड़ को अपने कंधे से खींच के करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं पुलिस जवान अमित। 22 जुलाई को हरिद्वार से गंगा जल लेकर यात्रा पर निकले हैं अमित। दिल्ली से सटे नजफगढ़ तक जाएगी जिमकाबर। अलवर से देश की सबसे लंबी 2300 किलोमीटर की डाक कावड़ हुई रवाना। गोमुख से जल लेकर सोमनाथ में किया जाएगा भगवान शंकर का जलाभिषेक। मेरठ में कावड़ मार्ग पर सेवा में तत्पर रहेगी वॉलंटियर्स की सुपर 30 टीम। प्रशासन ने यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए की स्वयं सेवकों की भी विशेष तैनाती। स्केटिंग करते हुए 10 से ज्यादा युवा बिहार से जा रहे हैं बाबा नगरी देवघर। 30 तारीख को समस्तीपुर से शुरू हुई स्केटिंग यात्रा 420 किलोमीटर का होगा सफर। 4 अगस्त को देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने का लक्ष्य। सोशल मीडिया से ग्रुप बनाकर निकली युवाओं की टोली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दिख रहा है आस्था और भक्ति का रंग। ओम नमः शिवाय बोलभम और हर हर महादेव के उद्घोष से भक्ति में हुआ रेलवे स्टेशन। बाबा वैद्यनाथ के धाम पे जलाभिषेक करने के लिए झारखंड के देवघर जा रहे हैं कांवड़िए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे लोग। गोमुख से पवित्र गंगा जल लेकर चला मध्य प्रदेश के 150 से ज्यादा शिव भक्तों का विशाल जत्था। पदयात्रा करते हुए लौट रहे कांवड़िए। मुरैना जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं सभी कांवड़िए। 22 जुलाई को गोमुख से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा पूरे कर रहे हैं 800 किलोमीटर का सफर। सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुआ बाबा महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार। भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। सावन में श्रद्धालुओं के बीच बड़ी चांदी के बेलपत्र पूजा सामग्री की डिमांड। ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं सामग्री। सावन में चांदी सोने के नए नए डिजाइन की पेश की जा रही है पूजा सामग्री। सावन का सोमवार आने से पहले बाजारों में रौनक। गुरु पूर्णिमा उत्सव के मौके पर देश विदेश से आए लाखों साई भक्तों ने शिरडी साई बाबा के दरबार में चढ़ाया रिकॉर्ड का तोड़ चढ़ावा। महज 3 दिनों में भक्तों ने मंदिर को किया मालामाल। 28 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित उत्सव में 3 लाख से अधिक साई भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। कुल 7,81,00,000 रूपये की गुरु दक्षिणा अर्पण की। दान पात्र से मिले 3,29,00,000 रूपये। 2,07,00,000 रूपये रहा ऑनलाइन दान। 1,50,00,000 के सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए गए। दर्शन और आरती पास के लगभग 87,00,000 रूपये। 5,65,000 रूपये की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई। शिरडी साई बाबा मंदिर को सोने के 2 बेशकीमती मुकुट के साथ नक्काशीदार हार भी चढ़ाया गया। इसमें सोने के बने 2 ओम अक्षर भी शामिल। तकरीबन 1,50,000 का 1,100 ग्राम सोना और 2 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई। इस साल साई दरबार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर पिछले साल से 1,50,000 से ज्यादा चढ़ावा प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव में चढ़ाया गया था 6,31,00,000 रुपए का चढ़ावा। अंबाजी पहुंची संत रविदास यात्रा। 650वीं जयंती के मौके पर हुआ भव्य कलश पूजन आयोजित। संतों की मौजूदगी में कलश यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। भक्ति में नजर आया पूरा वातावरण। कर्णावती अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर पर खत्म होगी काशी से शुरू हुई ये भव्य कलश यात्रा। दूर दूर से आए श्रद्धालु यात्रा में हो रहे शामिल। पाली में रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल। सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध। वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं विशेष राखी लिफाफे जिससे बहने अपनी राखी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से भेज सकेंगी। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैसूरू स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकृष्ण परमहंस मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही विवेकानंद पर आधारित एक विशेष फिल्म भी देखी। लगभग 81,000 वर्ग फुट से अधिक के निर्मित क्षेत्र में फैला है विवेक स्मारक जिसमें एक एम्फी थिएटर, क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी, ध्यान और योग हॉल और एक बुक स्टॉल भी है। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। साथ ही श्री रामकृष्ण विद्याशाला स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक परिसर में पहुंचने पर सबसे पहले वहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की टेका माथा। कर्नाटक से पहले आंध्र प्रदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल साथ ही कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश को मिला नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयनगरम के भोगापुरम में पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस, 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर है ये तैयार। अल्लूरी एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान हुआ शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीपीपी मॉडल पे बनाया गया हवाई अड्डा, यहां से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश को आज मिली 17,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात, राज्य की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सहित कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ। पाली में एक पुलिसकर्मी का फेयरवेल बना चर्चा का विषय, जनता ने अपने प्यार और सम्मान दर्शाते हुए गाजे बाजे के साथ उन्हें बधाई। रिटायर हो रहे पुलिसकर्मी को सज धज घोड़े पर बिठा के स्टेशन से बाहर लाया गया, घोड़ी के बाद ऊंट पर और फिर शानदार रथ पे निकाला गया दूध। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित, 32,000 से ज्यादा पदों के लिए 76,184 अभ्यर्थी हुए पास, 17 अगस्त से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा को परखा गया, पश्चिमी गेट पे मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। मॉक ड्रिल में CISF, यूपी पुलिस, ASI, फायर सर्विस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते समेत कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा, किसी भी खतरे से निपटने की तैयारियों का किया गया प्रदर्शन। अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक पुरस्कार, अमित शाह ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में किया उन्हें सम्मानित। अजीत डोभाल को राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अद्वितीय और साहसिक जीवन भर के योगदान के लिए सर्वसम्मति से चुना गया, शाह बोले देश की सुरक्षा मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका। केरल कैडर के 1968 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं अजीत डोभाल, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। चेन्नई के राजार्थनम स्टेडियम में आयोजित पुलिस मेडल समारोह, CM जोसेफ विजय का स्वागत करने वाला स्निफर डॉग रॉकी ने जीता सभी का मान। समारोह के दौरान मुंह में फूलों की टोकरी लेकर मंच पे CM का स्वागत करने पहुंचा स्निफर डॉग रॉकी, मुख्यमंत्री ने भी मुस्कुराते हुए रॉकी को किया सैल्यूट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब पड़ेगी भारी, सोना चौक पे लगी LED स्क्रीन पर सार्वजनिक होगा चालान का पूरा रिकॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने वालों और चालान नहीं भरने वालों को बेनकाब करने के लिए की अनूठी पहल, लोगों में नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी को दिया जाएगा बढ़ावा। अगस्त के पहले दिन आम लोगों के लिए खुशखबरी, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 202 रुपए घटी, तो कोलकाता में 209 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। कर्नाटक के हुबली में 3 दिन का जैक फ्रूट फेस्टिवल, कटहल से बने व्यंजनों का मजा लेने पहुंच रहे हैं लोग। बाढ़ बारिश से प्रभावित राज्यों को गृह मंत्रालय से राहत, SDRF के तहत बाढ़ प्रभावित राज्यों को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी। असम में भारी बाढ़ के बीच एक दूसरे का सहारा बने लोग, जोरहाट के क्वारी गांव के लोगों ने बचाई लगभग 2,000 जिंदगियां। बागेश्वर में पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश, रखोली के पास सड़क में भरभराकर गिरते पहाड़ का मलबा कैमरे में कैद। बारिश के कारण 8 प्रमुख सड़कें बंद, ग्रामीण इलाकों से टूटा संपर्क, आना जाना भी हुआ प्रभावित। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश, कई सड़क मार्ग प्रभावित, शिमला के रास्ते पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से स्थिति गंभीर, जोजिला के मीना मार्ग में श्रीनगर लेह हाईवे पर फटा बादल, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित। प्रोजेक्ट विजेक के बचाव और सड़क साफ करने वाली टीमें तैनात, मलबा हटाने और हाईवे को जल्द से जल्द बहाल करने के काम में जुटी JCB की मशीनें। केरल के कुन्नूर में भारी बारिश से हालात गंभीर, रिहायशी इलाकों में कमर तक भरा पानी, निचले इलाके भी पानी में डूबे। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो का दीदार, परिंदों के लिए माकूल हुआ मौसम। लगातार हो रही बारिश के बीच हरियाली से ढका पूरा इलाका, स्टैचू ऑफ यूनिटी का बेहद खूबसूरत दृश्य बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। सोशल मीडिया पर चर्चा में सलमान खान और संजय दत्त का इमोशनल रियूनियन, सलमान खान ने संजय दत्त के साथ शेयर की खास तस्वीरें और लिखा प्यारा सन्नोट। एक बार फिर फैमिली एंटरटेनर फिल्म लेकर आ रहे हैं सूरज बढ़ जाती है, ये प्रेम मोल लिया फिल्म की शूटिंग हुई पूरी, अनुपम खेर ने साझा की खास तस्वीरें। फिल्मी लीड रोल में है आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ, अनुपम खेर का भी है इसमें अहम रोल। 27 नवम्बर 2026 को रिलीज होगी ये फिल्म। हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्म रागिनी MMS 3 को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने. आयुष शर्मा, जुनैद खान और तमन्ना भाटिया स्टारर इस फिल्म में. अब एक्ट्रेस आरजे महवेश की हुई एंट्री. आरजे महवेश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे फिल्म रागिनी 3 का ऐलान करते हुए कुछ फोटोज शेयर की हैं. फिल्म को शशांक घोष कर रहे हैं डायरेक्ट. फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे दिन पार किया 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा. पहले दिन तोड़ा धुरंधर और पठान का रिकॉर्ड. स्पाइडरमैन ने दुनिया भर में कर ली है 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई. वर्ल्ड वाइड खूब पसंद की जा रही है ये फिल्म. एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने कसरत करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के लिए किया शेयर. वीडियो में मृणाल एक ओवरहेड पुलअप बार को पकड़े हुए कसरत करते हुए नजर आ रही हैं. मृणाल ठाकुर के वीडियो में आया मजेदार मोड़. जूम करने पे पता चलता है कि मृणाल एक गद्देदार बॉक्स पे खड़ी है और झूलते हुए मुस्कुराते हुए उसका सहारा ले रही है. एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म के सेट पर चोट लगने की खबर आई सामने. रिपोर्ट्स के मुताबिक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान लगी उन्हें चोट. डॉक्टरों ने रेस्ट और रिहैबिलिटेशन की सलाह. चीन के वुलिंगुआन में 1500 ड्रोन ने बांधा समा. शानदार ड्रोन शो से जगमग हुआ आसमान. ड्रोन शो में पेश की गई चीन की आइकॉनिक पहाड़ी चोटियों की झलक महत्वपूर्ण इमारतों की भी बनाई गई तस्वीर. चीन में कल तक चलेगा यह अनोखा ड्रोन शो. हजारों लोगों को मिल रहा है इसका आनंद लेने का मौका. चीन के शेंजन में शानदार रोशनी से जगमग हुई इमारतें. मनाए गए चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ. शेंजन की इमारतों पर दिखा लाइटिंग का अनोखा नजारा. रोशनी से नहाए चाइना रिसोर्सेस टावर और वन शेंजन बे सहित कई बिल्डिंग्स. पश्चिमी तुर्की में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल. तटीय प्रांत इजमीर के जंगलों में भड़की है आग. पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जंगली इलाकों में उठी लपटे तेज हवा के कारण फैली आग. जान माल के बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं. तुर्की के दक्षिण पश्चिमी आयदिन प्रांत में भी जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश फायर फाइटर्स ने संभाला मोर्चा. जंगलों की आग पर नियंत्रण के लिए जमीन से आसमान तक किए गए उपाय. प्रशासन ने आग बुझाने के लिए झोंके मशीनरी. ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है जंगलों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह. हर साल इन इलाकों में बढ़ रहा है आग का संकट. ग्रीस में एथेंस के पश्चिमी इलाके में भी जंगलों में भड़की आग. हेलीकॉप्टरों के सहारे आग पर काबू पाने की जा रही है कोशिश. एथेंस प्रशासन ने वाशिंदों को इलाका खाली करने की दी सलाह. आग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उठाए गए ठोस कदम. फ्रांस में भी दक्षिणी इलाके कॉरेंस के पास जंगलों में लगी आग. सुरक्षित जगहों पर भेजे गए 2000 से ज्यादा लोग. सूखे से जूझ रहे ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में किसानों से समय से पहले शुरू की खेती का काम जोर शोर से चल रही है जुताई. इंग्लैंड के कई इलाकों में इस बार कम हुई है वर्षा. खेती के लिए मौसम की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटे किसान.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
1: ट्यून इन रेडियो ब्रिंग्स द वर्ल्ड ऑफ रेडियो स्ट्रेट टू यू. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
2: और अब बात फिल्मों की कर लेते हैं. तो देखिए फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अगर हम बात करें तो इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. देखिए ये ऐसी पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने 2 दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. जबकि बात अगर शनिवार के आंकड़ों की करें तो शनिवार के आंकड़े अभी आने बाकी हैं. ये रिपोर्ट देखिए.
3: स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. सिर्फ 2 दिनों में ही सुपर हीरो फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की थी और शुक्रवार को भी इसका शानदार प्रदर्शन जारी रहा. भारत में 30 जुलाई को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड रिलीज बन गई है. जबकि शनिवार के आंकड़े अभी आने बाकी है. उम्मीद के मुताबिक रविवार को भी फिल्म जबरदस्त कारोबार करेगी। अमेरिका सहित दूसरे देशों में स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की यह चौथी फिल्म 31 जुलाई को रिलीज हुई।

0: और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में भी रिकॉर्ड तोड़ 1650 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 131 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। भारत में स्पाइडरमैन की इस नई फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज अलग लेवल पर देखा जा रहा है। गुरुवार को पहले दिन जहां हिंदी वर्जन के लिए 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, वहीं शुक्रवार को दूसरे दिन भी औसतन 90% रही, यानी सुबह से रात तक हर शो में 100 में से 90 सीटों पर दर्शक नजर आए, जबकि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ मिलाकर सभी 16,902 शोज में औसतन ऑक्यूपेंसी 64.8% दर्ज की गई। सैकनिक के मुताबिक गुरुवार को ओपनिंग डे पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने भारत में सभी 6 भाषाओं को मिलाकर 60.60 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया था। यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है, जबकि शुक्रवार को भी इसने शानदार 49.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। बिना किसी हॉलीडे रिलीज के इस फिल्म ने 2 दिनों में भारत में कुल 131.46 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन और 109.95 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। 2 दिनों में हुई 109.95 करोड़ की नेट कमाई में से 60.25 करोड़ रुपए अंग्रेजी वर्जन से और 39 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन से आए हैं, जबकि तमिल से 5.25 करोड़ रुपए, तेलुगु से 5.25 करोड़ रुपए, मलयालम से 14 लाख और कन्नड़ से 6 लाख रुपए की कमाई हुई है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में बॉक्स ऑफिस पर मौजूद ट्रेंड्स के आधार पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने 4 दिन के पहले ओपनिंग वीकेंड में 275 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई आसानी से कर लेगी। यदि ऐसा होता है तो ये देश में किसी नॉन इंडियन फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड होगी और ये एक नया रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिले

करेंगे 2500 रुपए प्रति महीने रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल, सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा, पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

0: हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, शंख जो है हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शंख का उपयोग आमतौर पर हम पूजन पाठ के दौरान करते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शंख का सही तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और शंख के चमत्कार क्या हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, शंख का प्रयोग सामान्यतः शिव जी की पूजा में नहीं किया जाता। शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित है। अगर आप शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि शंख का उपयोग अमूमन हम पूजन पाठ के दौरान करते ही हैं, लेकिन शंख जिसको पवित्रता शुभता का हम प्रतीक मानते हैं, ओम का प्रतीक मानते हैं, उसका धार्मिक महत्व आखिर क्या है?
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शंख के बारे में और शंख के प्रयोग के बारे में। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है या समुद्री जीव का खोल है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है और चूंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ था, इसीलिए कहीं कहीं पर शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। मान्यता ऐसा कहती है कि जहां शंख होता है, जहां शंख का प्रयोग होता है, वहां लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ मानते हैं। इसकी ध्वनि को, इसके साउंड को पवित्र माना जाता है। घर में पूजा की वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है और शंख को दीपावली पर, होली पर, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, इस शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। जैसे आपके पूजा स्थान पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां होते हैं, तमाम पवित्र चीजें रखी होती हैं, उसी तरह से अपने पूजा स्थान पर आपको शंख भी रखना चाहिए और इसका नियमित प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से आ सकेगी।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो देखिए, सनातन धर्म में तो शंख को काफी महत्वपूर्ण माना ही जाता है, लेकिन अब पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक नजरिए से अगर हम इसे देखें, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, शंख क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: देखिए, शंख के पीछे धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, ये आपने समझा। वैज्ञानिक रूप से समझिए, विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। जो ध्वनि है, साउंड है, वो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और शंख की विशेष ध्वनि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण का परिष्कार होता है, और जहां तक इसकी ध्वनि जाती है वहां तक जो हवा में, वायु में कीटाणु हैं, उनका नाश हो जाता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भरकर रखा जाता है और बाद में इसको पिया जाता है। ऐसा करने से शरीर में कैल्शियम बेहतर होता है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाते हैं तो इसकी ध्वनि की वजह से आपका पूरा घर पवित्र होता है। शरीर की बात करें तो हृदय रोग के मामले में और फेफड़ों की बीमारियों के मामले में लाभ होता है। ये बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाएं तो आपकी वाणी शुद्ध होगी, स्पष्ट होगी और आपका वाणी दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो शंख नियमित रूप से बजाने से इसके साउंड का बहुत फायदा मिलता है। हृदय मजबूत होता है, लंग्स मजबूत होते हैं और सेहत बेहतर बनी रहती है।
0: तो शंख के महत्व के बारे में ये जो चर्चा है यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, मानसिक तनाव से इस समय बचाव करिए, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, काम ज्यादा रहेगा, व्यस्तता ज्यादा रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए, अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न सुरेश भाई ने हमें लिखा है। सुरेश भाई हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1970। जन्म का समय शाम के 4 बजे। जन्म का स्थान है जामनगर गुजरात। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। सुरेश भाई कह रहे हैं कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मेरे ऊपर थोड़े कर्जे भी हो गए हैं, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर चलेगा और कर्ज से मुक्ति मुझे कब तक मिलेगी। सुरेश भाई, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका समय बेहतर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जुलाई 2026 के बाद से आपका व्यापार लगातार बेहतर होगा। इस व्यापार में आप लगातार उन्नति करते चले जाएंगे। कर्ज धीरे धीरे उतर पाएगा, लेकिन लगभग 1.25 साल में आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारा ये कार्यक्रम यानी कि गुड लक टुडे रोज देखते हैं, हमारे कार्यक्रम को काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए, बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न मीनाक्षी ने हमें हैदराबाद से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1986। जन्म का समय शाम के 7:55 जन्म स्थान है करीम नगर। ये कह रही हैं कि काफी दिनों से ये और इनके पति मिलकर के एक मकान लेना चाहते हैं, लेकिन मकान नहीं ले पा रहे हैं। बार बार प्रॉपर्टी खरीदने में लेने में अड़चने आ रही हैं। तो अपना मकान कब तक खरीद पाएंगे, अपने मकान का लाभ कब तक होगा? मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की कोशिश करें। साल 2026 के अंत तक आते आते आप कोई ना कोई मकान या फ्लैट खरीद लेंगी, ये संभावना कुंडली में बन रही है। सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि मकान का टोटल नंबर या फ्लैट का टोटल नंबर 8 नहीं होना चाहिए। एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार शंख कितने प्रकार के होते हैं और इनके अलग अलग तरह की महिमा क्या होती है।
1: देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं और हर तरह का शंख जीवन में अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। हर प्रकार के शंख की विशेषता अलग है। हर प्रकार के शंख से और शंख की पूजा करने का तरीका भी अलग है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। शंख 3 प्रकार के होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है, लक्ष्मी जी का शंख वामावर्ती है। वामावर्ती शंख सामान्यतः बजाया नहीं जाता। वामावर्ती शंख अगर आप अपने घर में स्थापित करें और इसकी पूजा करें तो धन का अभाव नहीं होता है। वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती शंख के अलावा महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है और इनका अलग अलग प्रयोग पूजा उपासना में किया जाता है। सामान्यतः जो वामावर्ती शंख है, अगर वो आप अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करें या मोती शंख अगर पूजा के स्थान पर स्थापित करें, तो ऐसा करने से जीवन की धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक को धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, कारोबार में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए काम का अवसर मिलेगा। यात्रा के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सामान्य रूप से अगर कोई शंख का प्रयोग करना चाहता है तो किस तरीके से किया जाए, क्या सही तरीका है इसका?
1: देखिए, आपको अगर शंख का प्रयोग करना है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना चाहिए। सफेद रंग का शंख बाजार से आप अपने घर पर ले आएं, इसको गंगा जल से और जरा सा दूध से धो करके शुद्ध कर लें। इसके बाद गुलाबी कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट करके पूजा के स्थान पर रखिएगा। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार शंख बजाइएगा और शंख बजाने के बाद इसको धो करके पुनः पूजा स्थान पर रखिएगा। शंख बजाने के बाद बिना धोए हुए पूजा स्थान पर नहीं रखेंगे, क्योंकि शंख जूठा हो जाएगा। धो करके दोबारा पूजा स्थान पर रख सकते हैं।
0: पंडित जी, अगर कोई शंख का प्रयोग कर रहा है तो किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: अगर आप शंख बजाते हैं या शंख बजाना चाहते हैं तो शंख के प्रयोग में क्या सावधानियां रखें? शंख को किसी वस्त्र में लपेटकर या पूजा स्थान पर आसन पर रखना ज्यादा बेहतर होगा। सुबह और शाम के समय में ही शंख बजाया जाता है पूजा के साथ, बाकी समय हर समय शंख न बजाएं। शंख को बजाने के बाद पूजा स्थान पर धो करके ही रखना चाहिए। अपना शंख किसी और को न दें और दूसरे का शंख स्वयं प्रयोग न करें। शंख जो है, अगर मोती शंख है या वामावर्ती शंख है तो वो बजेगा नहीं। उसको आप केवल पूजा स्थान पे रखें, नियमित रूप से उसे धोते रहें, साफ करते रहें। रोज पूजा के दौरान उसको धूप बत्ती दिखाते रहें। ऐसा करने से शंख के साथ जो शुक्र का तत्व है, जो बुध का तत्व है, वो मजबूत होगा और आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रिश्तों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बाधा आ सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, संयम और शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न इंदिरा जी ने हमें लिखा है और इंदिरा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 1962, जन्म का समय सुबह के 8:55, जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। इंदिरा जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं चल रही है, हर समय चिंता और तनाव के हालात बने रहते हैं, तो मेरी मानसिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा? इंदिरा जी, आपकी कुंडली में जो आपकी मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए आपको किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में साइकोलॉजिकल बीमारियां होने की संभावना बनी हुई है। तो सबसे पहले किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। दूसरे नंबर पर एक पन्ना धारण कर लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार या इससे ज्यादा नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो मानसिक समस्याओं से, मेंटल डिप्रेशन से आपको जल्दी छुटकारा मिल सकेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखेंगे कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानी है, तकलीफ है, जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, इसी ईमेल आईडी पर अपने सवाल लिख करके आप हमें भेज सकते हैं।

0: दिल्ली से, इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1973, जन्म का समय रात के 8 बजे, जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। अमरनाथ जी कह रहे हैं कि मैं काफी समय से एक नौकरी में काम कर रहा हूं, लेकिन अभी मेरी नौकरी जाने की नौबत आ गई है, तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी छूट जाती है तो आगे मैं क्या करूं और मेरा करियर कैसा रहेगा। अमरनाथ जी, आपकी कुंडली में इस समय नौकरी बदलने के योग चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर 2026 के पहले पहले आप नौकरी बदल के किसी और नौकरी में चले जाएं। अगर इस समय नौकरी में परिवर्तन करते हैं या नौकरी बदल करके कहीं और जाते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, भविष्य में करियर में दिक्कतें नहीं होंगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर इसका पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि कहते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्या ये सही है और इसके पीछे वजह क्या है?
0: जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई महिला शंख बजाती है तो उसका पाप पुण्य से या गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये कहा गया है कि गर्भावस्था में अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में हो या किसी महिला का ऋतु काल चल रहा हो, उसके पीरियड्स का समय चल रहा हो, तो उस समय शंख बजाने से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। तो गर्भावस्था और ऋतु काल को छोड़ करके कभी भी महिलाएं नियम के अनुसार शंख बजा सकती हैं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचाव करें, करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस साल आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि जो काम लंबे समय तक करना हो, जो स्थायी प्रकृति के काम हो, क्या वो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए? देखिए, सोमवार के दिन के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, तो सोमवार के दिन गति यानी स्पीड और जल्दी समाप्त होने वाले काम करने चाहिए। सोमवार के दिन वाहन खरीदना, यात्रा करना, रंगाई पोताई करने का काम अच्छा होता है। इस दिन नौकरी की शुरुआत और घर के निर्माण जैसे लंबे समय तक चलने वाले या लंबे समय तक फायदा देने वाले काम नहीं करने चाहिए।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर यानी कि अच्छा पहर कौन सा है।

0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की पढ़ाई लिखाई की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है वृषभ। इनको शिक्षा प्राप्त करने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। अगर ये नियमित रूप से श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करें तो शिक्षा कम संघर्ष में पूरी हो जाएगी।
1: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आखिर आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी संतान भटक रही हो, गलत संगति में हो, नशे की तरफ जा रही हो, गलत आदतें हो, आपका बेटा या बेटी अगर भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का जप करेंगे 108 बार या 27 बार। हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगा करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: इसी के साथ बुलेटिन में अब बात कावड़ यात्रा की कर लेते हैं। तो सावन के पावन महीने में आस्था की लहर देखने लगी है। जिधर देखो उधर कंधों पे कावड़ लिए शिव भक्त आपको नजर आ जाएंगे। बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पर निकल रहे हैं। तो बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंचने की राह पर भी हैं। तो चलिए आपको हरिद्वार में कावड़ यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखा देते हैं।

0: रंग बिरंगे कावड़, कोई छोटा तो कोई बड़ा, लड़ियों और फूलों से अनमोल सजावट। भोले के रंग में रंग जाने की बेफिक्री है, बिंदासपन है और भक्ति की अपार श्रद्धा। तभी तो हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य पर निकल रहे हैं कावड़िये। सावन का आज तीसरा दिन है। प्रशासन के मुताबिक अभी तक 10 लाख से ज्यादा कावड़िये गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। अलग अलग रंग और अलग अलग ढंग से हाथों से बनाई कावड़ लेकर निकले लोगों का जोश देखते ही बन रहा है।
1: हमें भिवानी के लोगों की खास आदत होती है जो कि हम हाथों से कावड़ बनाते हैं और बहुत सुंदर सजाते हैं। हम ये कावड़ हरिद्वार से चलकर पैदल जाएगी, एक कंधे की कावड़ है और भिवानी जाके प्रस्थान करें, अपने मंदिर के शिवालय में चढ़ा दें। मन में कामना लेके जा रहे हैं, भोले की इच्छा है, जो करेंगे अच्छा करेंगे। सब कुछ
2: कावड़ लेके जा रहे हैं, कावड़ बनाएंगे। क्या है किसी के मन में, क्या है आपके कावड़ लेके जा रहे हैं?
1: मन में तो भोले भोले की मर्जी है, भोले भोले खुला हुआ तो कावड़ लिया हुआ। हाँ,
3: ये हरिद्वार से रेवाड़ी
2: इतना लंबा सफर है, कोई परेशानी की?
3: ये 300 किलोमीटर का सफर है।
2: कोई परेशानी?
3: कोई परेशानी नहीं।
2: कैसे जाएंगे? पैदल भगवान से?
3: पैदल पैदल
2: कावड़ लेके जा रहे हो?
1: हाँ बोले।
2: कोई इच्छा करी है भगवान कब से?
1: इच्छा बोले मांग रखी, पूरी होगी जरूर, होगी पूरी।
2: कितनी दूर लेके जाओगे?
1: 350 किलोमीटर बोले।
2: कोई परेशानी नहीं?
1: कोई परेशानी नहीं।
0: हरिद्वार का जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने इस कावड़ उत्सव के लिए खास तैयारी कर रखी है। कावड़ मेला और घाटों और हाईवे पर ड्रोन के जरिए और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है। कावड़ियों के लिए इंतजामों और सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। यही नहीं, प्रशासन कावड़ियों से सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है।
4: हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से, जिलों से कांवड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं। जो हमारी कांवड़ पटरी है वो या हाईवे हो, वहाँ पर लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस हैं कि कांवड़ श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं दी जाएं, भले वो स्वास्थ्य की हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, और कोई भी समस्या अगर उनकी है तो उसको हम लोग उसको निस्तारण करें। 141 सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और उस क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमण करके समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। अभी तक करीबन 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु ऑलरेडी हमारे यहाँ से कांवड़ श्रद्धालु जल लेकर जा चुके हैं।
0: हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके मुताबिक आवश्यकता के अनुसार गंगा जल ले जाना, डीजे की आवाज कम रखना, नशा न करना जैसे एहतियात शामिल है।
5: और सावन के महीने में भगवान शंकर का वास हरिद्वार में माना गया है। आप देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह से हमारे भगवान शंकर के गण हरिद्वार में आ रहे हैं। यहाँ से जल लेके अपने अपने मंदिरों में जाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। और मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, कृपया 10-10, 12-12 मटके ना लेके जाए। जान है तो जान है, और मैं चाहूंगा आपकी यात्रा नशा मुक्त हो। और ये जो डीजे बड़े बड़े आ रहे हैं, जब ये डीजे बजता है हमारे पूरे मकान हिल जाते हैं। कृपया थोड़ा सा साउंड कम करें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, और भगवान शंकर का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे।
0: पंचांग के मुताबिक फिलहाल पंचक लग गया है, जिसके चलते कांवड़ियों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन फिर भी कांवड़ियों का आना और जाना जारी है। हरिद्वार से मदन अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, और शिव जैसा चाहते हैं भक्त अपनी श्रद्धा उसी अनुसार प्रकट भी करते हैं। और शायद इसीलिए अलग अलग तरह से अपनी आस्था के लिए लोग अलग अलग संकल्प लेते हैं और उसी के अनुसार कांवड़ यात्रा पूरा करते हैं, और भोलेनाथ भी उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कांवड़ यात्रा के रंग।
7: सावन महीने के आरंभ होते ही हर तरफ भगवा रंग की लहर हर ओर दिखाई देने लगी है। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर तरफ भगवाधारी कावड़ियों का झुंड दिखाई देने लगा है। हर कोई कावड़ रूपी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महादेव का जलाभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की है। यहाँ पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। यहाँ से कावड़ियों का हुजूम निकल रहा है देवघर के लिए, जहाँ वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचकर उनका जलाभिषेक करेंगे।
8: सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होते ही हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। चाहे शिवालय हो, सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, हर तरफ भगवाधारी शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर है। यहाँ से तमाम कांवरिये बाबा देवघर की तरफ रवाना हो रहे हैं, बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा माहौल भक्तिमय है स्टेशन पर।
7: बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़ा है। कामना यही है भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से ही भोले भंडारी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं।
9: बनारस में जल डालने हैं बाबा जी को, और उसके बाद जो है यहाँ से जाएंगे बाबा धाम सुल्तानगंज, वहाँ से जल भर के पैदल यात्रा करेंगे, उसके बाद जाएंगे देवघर बाबा धाम, वहाँ जल डालेंगे बाबा जी को।
7: इन लोगों की यात्रा की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक से हुई, जो बाबा बैद्यनाथ के अभिषेक के साथ समाप्त होगी। लेकिन बिहार के समस्तीपुर से भी युवाओं की एक टोली निकली है, वो भी स्केटिंग करते हुए। इन युवाओं का लक्ष्य देवघर में बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने का है। 30 जुलाई से शुरू हुई इनकी यात्रा उम्मीद के मुताबिक 6 अगस्त को समाप्त होगी। गेरुआ रंग के कपड़े, पीठ पर तिरंगा और भोले भंडारी का झंडा। स्केटिंग करते हुए ये टोला बाबा बैद्यनाथ के नगर की ओर बढ़ चला है। हाईवे पर स्केटिंग और जुबान पर भोले का जयकारा। जिस रास्ते से ये टोली निकल रही है, सबकी निगाह उत्सुकतावश उधर चली जा रही है। इस टोली के साथ कुछ युवा बाइक पर सामान और खाने पीने की वस्तुएं लेकर भी चल रहे हैं।
10: समस्तीपुर ताजपुर से यात्रा प्रारंभ हुआ 30 तारीख से हुआ। आज हम लोग यहाँ बेगूसराय मात्रम 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है। तीसरा दिन जल उठाएंगे और दूसरे 3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे।
7: करीब 420 किलोमीटर की यह यात्रा देवघर में महादेव की पूजा अर्चना के साथ संपन्न होगी। अब इस कावड़ दल से मिलिए। इस दल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 150 से ज्यादा कावड़िये हैं और सभी एक ही गांव के निवासी हैं और पूरे रास्ते एक परिवार की तरह यात्रा कर रहे हैं। यह लोग 22 जुलाई को उत्तराखंड के गौमुख से गंगा जल लेकर चले हैं और इनकी यात्रा गाँव जाकर पूरी होगी। उनकी यह यात्रा 800 किलोमीटर से अधिक की होने वाली है, जिसे पूरा करने में अभी और 10 दिन लगने हैं। ये जत्था हर रोज करीब 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।
11: गंगोत्री से कामल लाए, जिला मुरैना कुंवरपुर गांव है मेरा, सिद्ध बाबा के मंदिर पर ले जा रहे हैं जल। बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए बड़ी मस्ती में जा रहे हैं।
7: जैसी शक्ति वैसी भक्ति। इस दल में शामिल शिव भक्तों का कहना है कि ये पूरी तरह से बाबा की कृपा और बुलावे का परिणाम है। गांव के इतने लोगों ने संकल्प लिया और कारवां निकल पड़ा। जुबा पर भोले का नाम और श्रद्धा अपार, यही है इस पावन महीने में भक्ति का अनूठा परिणाम। चंदौली से उदय गुप्ता, बेगूसराय से सौरभ कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: शिव भक्ति में लीन कावड़िये अलग अलग तरह से अपनी आस्था जता रहे हैं। ऐसे ही एक कावड़िये विराट ने झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया गांव से राजदा धाम मंदिर से 51 लीटर गंगा जल लेकर 6 जुलाई से अपनी यात्रा की शुरुआत की। विराट अपने जिले के नदी से जल लेकर सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर से सुल्तानगंज के उत्तरी वाहनी गंगा से 51 लीटर जल लेकर बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा की बात करें तो ये यात्रा कुल 351 किलोमीटर की है। इससे पहले भी विराट सनातन एकता के संदेश के लिए 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं और 201 दिन की यात्रा में उन्होंने काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, अयोध्या, वैष्णो देवी, केदारनाथ, कामाख्या मंदिर समेत कई तीर्थ स्थलों के दर्शन वो कर चुके हैं। और देखिए ऐसा ही अनोखा दृश्य मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला। यहाँ पर एक ऐसी कार देखी जिसमें भगवान शिव सवार थे। देखिए ये कार करीब 5 करोड़ की बताई जा रही है, जो मैकलॉरेन स्पोर्ट्स कार के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये असल बात है कि ये डमी कार है, ये असली बात सामने आ रही है कि रियल कार नहीं है, ये डमी कार है। दरअसल दिल्ली के नवादा गांव के 6 शिव भक्तों की टोली 28 जुलाई को हरिद्वार के हर की पौड़ी से 40 लीटर गंगाजल लेकर स्पोर्ट्स कार में भगवान शिव शंकर को विराजमान कर अपनी कावड़ यात्रा पर निकली है। और इस टोली ने 8 लाख रुपए खर्च कर अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात संगम नगरी प्रयागराज की। यहाँ पर भोले भंडारी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, ये श्रद्धालुओं के ऋण भी माफ कर देते हैं। जी हाँ, देखिए इस मंदिर का नाम है मनकामेश्वर मंदिर। अकबर के किले के समीप यमुना तट पर स्थित प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर सावन मास में शिव भक्तों की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। देखिए मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन, उनके पूजन और जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं।
7: सावन का महीना चल रहा है और ये महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त भोले भंडारी का जल अभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी महीने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था, जिसके चलते उनके शरीर की गर्मी बढ़ गई थी। उसी गर्मी को ठंडा करने के लिए देवताओं ने उनका जल अभिषेक किया था। इसी परंपरा का निर्वाह करने और मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर की कुछ अलग ही मान्यता है। कहते हैं यहाँ पर जो भी भक्त अपनी इच्छा के साथ पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है, भोले भंडारी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, और शायद इसीलिए यहाँ के मंदिर का नाम मनकामेश्वर है।
12: यहाँ पे इसका नाम ही लाइक मनकामेश्वर मंदिर है। और मतलब यहाँ की मान्यता ये है कि जब राम जी सीता जी मतलब यहाँ पे आए थे, तो अक्षर वट पे जब वो रुके थे तो उन्होंने यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगी थी और पूरी हुई थी अभी। तो ये बहुत अच्छा टेंपल है और सावन के महीने पे यहाँ पे जल चढ़ाने आ रहे हैं, दर्शन करने पे यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है।
13: ये मनकामेश्वर मंदिर है, जो शिव जी की पूजा करते हैं वो उनकी इच्छा हमेशा पूरी करते हैं, और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी इसलिए हम लोग, मन्नत थी तो पूरी हुई, हम दर्शन करने आए हैं। और शिव तो अखड़दानी है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
14: ये मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ पे ये सावन में भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है, भक्त बहुत आते हैं यहाँ पे और सारी इच्छाएं पूरी होती है भोले बाबा के दरबार पे।
7: मान्यताओं के अनुसार मनकामेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद स्वयं विराजमान होकर स्थान को दिव्यता प्रदान की थी। मान्यता यह भी है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण प्रयाग पहुंचे थे। अक्षयवट के समीप विश्राम करने के बाद उन्होंने मनकामेश्वर महादेव का पूजन और जलाभिषेक कर अपने आगे के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की थी। मनकामेश्वर मंदिर परिसर केवल महादेव तक ही सीमित नहीं है, यहाँ सिद्धेश्वर महादेव, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, दक्षिणमुखी हनुमान जी, भैरव, यक्ष और किन्नर देवताओं की भी प्रतिष्ठित मूर्तियां विराजमान हैं।
15: पुराणों में इनका उल्लेख कामेश्वर तीर्थ के रूप में प्राप्त होता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र आए थे तो उन्होंने भी यहाँ सीता जी के साथ भगवान का पूजन अर्चन किया था, तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है। और मनोकामेश्वर के रूप में जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका पूजन अर्चन करता है, निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
7: एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि जब सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने प्रयाग क्षेत्र को तीर्थराज के रूप में स्थापित किया था, तब देवताओं ने इस पवित्र भूमि की रक्षा और कल्याण के लिए भगवान शिव से यहाँ निवास करने का आग्रह किया था। तब भगवान शिव ने देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्वीकार की और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थान पर प्रकट होकर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयं प्रकट यानी स्वयंभू है। श्रावण मास में तो इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। लाखों श्रद्धालु गंगा जल और यमुना जल से भगवान मन कामेश्वर का जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन यहां दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
6: तो चलिए बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए, राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। नौ जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती कर दी है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं। वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियरिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 MKI ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 MKI ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा। रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या KU बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन को, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
3: है। शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Schwarber to right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: and that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसी खबर की जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर नर्मदा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गिरने वाली रिमझिम फुहारें प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के दीदार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और बारिश के मौसम में तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और भी ज़्यादा भव्य और मनमोहक नज़र आता है। तो देखिए बात बारिश की हो रही है, मॉनसून सीजन की हो रही है, तो मॉनसून सीजन में गुजरात से दो और तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नवसारी की है, यहाँ डांग जिले में बारिश के बीच माँ तेंदुआ अपने दो शावकों को सड़क पार कराते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी सावधान और सुरक्षित तरीके से माँ तेंदुआ अपने दोनों शावकों को अपने साथ सड़क पार करा रही है। इसी बीच वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जब कोई वन्य जीव सड़क पार कर रहा हो, सड़क क्रॉस कर रहा हो, तो उसके पास ना जाएं और गाड़ी सावधानी से चलाएं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जूनागढ़ से सामने आई है और यहाँ पर मॉनसून के इस मौसम में जंगल का राजा यानी कि शेर घास खाता हुआ नजर आ रहा है। शेर को घास खाता देखना आपको अचंभित भी कर सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए यह आम बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेर, ले लीजिए बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के पेट में शिकार के बाल, चमड़ी और हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, तब वो पाचन तंत्र में सुधार के लिए फाइबर से भरपूर खास घास का सेवन करते हैं। चेन्नई में हुई पुलिस मेडल सेरेमनी में स्निफर डॉग रॉकी ने सबका दिल जीत लिया। देखिए जब उसने फूलों के गुलदस्ते से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का स्वागत किया, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित करने आए थे दरअसल, और इस कार्यक्रम में स्निफर डॉग रॉकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच की ओर जाते हुए अपने मुंह में फूलों की टोकरी लिए हुए नजर आ रहा है। मंच पर पहुंचने पर डॉग ने मुख्यमंत्री के सामने सिर झुकाकर उन्हें सलामी दी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें सल्यूट किया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2,117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं।

सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

0: जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन निलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन निलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address, and it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion, because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिल-ए-गौर है कि नंदन निलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तान

0: कंपनियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
1: आधार KYC was sufficient to open a bank account or to get a mobile connection. And in 2014, soon after Prime Minister Modi came to power, on August 28, 2014, he launched the Jan Dhan Yojana program, which is the world's largest financial inclusion program. And more than 400 million bank accounts were opened for people, and they were able to do that very quickly because with Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस DPI की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीलेकणी हैं। UPI ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। UPI कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए UPI के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन होता है। UPI के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो UPI के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ।
1: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
0: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में GST लागू करने के लिए जरूरी IT सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकड़ी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन नीलेकड़ी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन नीलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन नीलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन नीलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
2: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
0: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन नीलेकणी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन नीलेकणी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और UPI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
3: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में नीलेकणी ने IIT में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर IIT में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर नीलेकणी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में IIT क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे IIT क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
0: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन नीलेकणी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव नीलेकणी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन नीलेकणी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने IIT एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। IIT क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर IIT मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन नीलेकणी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
2: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइंड एनी IIT एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन IIT चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन IIT बॉम्बे। सो दैट्स हाउ, एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज़ आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर IIT बॉम्बे।
0: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन नीलेकणी ने किस मन स्थिति में की ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन निलेकड़ी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन निलेकड़ी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन निलेकड़ी को कर्नाटक के ही धारवार में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन निलेकड़ी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
1: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education. He put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
0: धारवाड़ में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन निलेकड़ी ने आईआईटी में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड़ जैसे छोटे शहर में ना तो आईआईटी की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
1: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
0: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन निलेकड़ी आईआईटी में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह बांह फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब आईआईटी बॉम्बे से नंदन निलेकड़ी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन की आईआईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
1: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
0: आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन निलेकड़ी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन निलेकड़ी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहां उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन निलेकड़ी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन निलेकड़ी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इंफोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इंफोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन निलेकड़ी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इंफोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन निलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इंफोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन निलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन निलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्लेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस IIT बॉम्बे के नंदन निलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन निलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन निलेकणी सिर्फ IT जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
3: तो बंदे में है दम में आज आपने नंदन निलेकणी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: तो चलिए अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रिकालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
2: जाए। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: जी खबर।
5: शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2,117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान। पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास। पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलतबेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में G20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं। वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशून इलाके में डिप्लॉय किया, शीगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है। हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना, और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है। J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं। तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: ऑल स्पोर्ट्स ऑल द टाइम राइट हियर ऑन TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
5: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
4: Big 12 Radio.
6: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
4: and
6: down.
4: Talk sports.
7: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
4: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसी खबर की जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर नर्मदा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गिरने वाली रिमझिम फुहारें प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के दीदार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और बारिश के मौसम में तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और भी ज़्यादा भव्य और मनमोहक नज़र आता है। तो देखिए बात बारिश की हो रही है, मॉनसून सीजन की हो रही है, तो मॉनसून सीजन में गुजरात से दो और तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नवसारी की है, यहाँ डांग जिले में बारिश के बीच मां तेंदुआ अपने दो शावकों को सड़क पार कराते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी सावधान और सुरक्षित तरीके से मां तेंदुआ अपने दोनों शावकों को अपने साथ सड़क पार करा रही है। इसी बीच वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जब कोई वन्य जीव सड़क पार कर रहा हो, सड़क क्रॉस कर रहा हो, तो उसके पास ना जाएं और गाड़ी सावधानी से चलाएं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जूनागढ़ से सामने आई है और यहाँ पर मॉनसून के इस मौसम में जंगल का राजा यानी कि शेर घास खाता हुआ नजर आ रहा है। शेर को घास खाता देखना आपको अचंभित भी कर सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए यह आम बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेर ले लीजिए, बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के पेट में शिकार के बाल, चमड़ी और हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, तब वो पाचन तंत्र में सुधार के लिए फाइबर से भरपूर खास घास का सेवन करते हैं। चेन्नई में हुई पुलिस मेडल सेरेमनी में स्निफर डॉग रॉकी ने सबका दिल जीत लिया। देखिए जब उसने फूलों के गुलदस्ते से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का स्वागत किया, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित करने आए थे दरअसल, और इस कार्यक्रम में स्निफर डॉग रॉकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच की ओर जाते हुए अपने मुंह में फूलों की टोकरी लिए हुए नजर आ रहा है। मंच पर पहुंचने पर डॉग ने मुख्यमंत्री के सामने सिर झुकाकर उन्हें सलामी दी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें सल्यूट किया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2,117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली की जादुई एहसास पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

0: जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन निलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन निलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address, and it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion, because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिल-ए-गौर है कि नंदन निलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी

0: 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
1: आधार केवाईसी वॉज सफिशियंट टू ओपन अ बैंक अकाउंट और टू गेट अ मोबाइल कनेक्शन एंड इन 2014 सून आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर ऑन August 28, 2014 ही लॉन्च द जनधन योजना प्रोग्राम विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम एंड मोर देन 400 मिलियन बैंक अकाउंट्स वर ओपन फॉर पीपल एंड दे वर एबल टू डू दैट वेरी क्विकली बिकॉज इट आधार ईकेवाईसी यू कुड डू एन ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ अ कस्टमर अकाउंट।
2: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस डीपीआई की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीलेकणी हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। यूपीआई कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 314,00,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ।
1: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
2: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैग अप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन नीलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन नीलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन नीलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन नीलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman
3: of the unique identification authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session where we talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
2: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकड़ी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन निलेकड़ी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन निलेकड़ी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
4: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में निलेकनी ने आईआईटी में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर आईआईटी में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर निलेकनी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में आईआईटी क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे आईआईटी क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
2: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन निलेकड़ी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव निलेकड़ी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन निलेकड़ी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। आईआईटी क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन निलेकड़ी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
1: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइंड एनी आईआईटी एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन आईआईटी चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आईआईटी बॉम्बे। सो दैट्स हाउ एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर आईआईटी बॉम्बे।
2: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने किस मन स्थिति में की, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन निलेकड़ी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन निलेकड़ी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन निलेकड़ी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन निलेकड़ी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
1: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12. And then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties and he had to keep finding new jobs time on. And therefore, he said for the stability of my education, he put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
2: धारवाड़ में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलेकणी ने आईआईटी में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड़ जैसे छोटे शहर में ना तो आईआईटी की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
1: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
2: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलेकणी आईआईटी में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे और जब चाह प्रबल होती है तो राह वहाँ फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब आईआईटी बॉम्बे से नंदन नीलेकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन के आईआईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
1: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
2: आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन नीलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहां उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन नीलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन नीलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन नीलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन नीलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन नीलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्लेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस आईआईटी बॉम्बे के नंदन नीलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन नीलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन नीलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
4: आज आपने नंदन नीलेकणी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: तो चलिए अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए, राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रि कालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर की दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर

0: से तैयार की गई इस स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं है? क्या महिलाओं को शंख नहीं क्या है शंख का महत्व और क्या है
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: मोड़

9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। नौ जुलाई 2026

0: शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए।
1: ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है।
0: होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
2: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
1: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है।
3: स्टेल तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं।
1: वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
2: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जेनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रेडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए जे ट्वेंटी को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज हैं जे ट्वेंटी की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
1: चीन का जे ट्वेंटी माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। जे ट्वेंटी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं, बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 जे ट्वेंटी थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 जे ट्वेंटी का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
2: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के जे ट्वेंटी डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है। हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
1: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना, और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के जे ट्वेंटी फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके।
3: भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे Sukhoi-30 MKI ने चीन के जे ट्वेंटी को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल BS Dhanoa ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से Sukhoi-30 MKI ने चीन के जे ट्वेंटी विमानों को डिटेक्ट कर लिया।
1: तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS Dhanoa के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है, बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता, बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
2: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा। रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
1: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहां विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता, जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है।
3: ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है, जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है।
1: भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए राफेल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही 5th जनरेशन ना हो, लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के राफेल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का राफेल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है। J-20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं राफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J-20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J-20 हथियार अंदर छिपाता है, जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं राफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह राफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J-20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है, जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं राफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ राफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J-20 में टाइप 1475 या KLG-5 आईएसआर रडार लगा है। राफेल में थैलिस RBE-2 आईएसआर रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J-20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। राफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है।
3: स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता, बल्कि J-20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है। और इसका नतीजा ये है कि J-20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल में ये ताकत है कि वो J-20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है।
1: राफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J-20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
2: भारत ने जब फ्रांस से राफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल राफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। राफेल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं, यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं। तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
1: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। राफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J-20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J-20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J-20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। राफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J-20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि राफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। राफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J-20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है। यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J-20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J-20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J-20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
2: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता क्योंकि आईआरएसटी में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है, उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन आईआरएसटी में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या टीवी में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन को, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
3: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसी खबर की जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर नर्मदा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गिरने वाली रिमझिम फुहारें प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के दीदार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और बारिश के मौसम में तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और भी ज़्यादा भव्य और मनमोहक नज़र आता है। तो देखिए बात बारिश की हो रही है, मॉनसून सीजन की हो रही है, तो मॉनसून सीजन में गुजरात से दो और तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नवसारी की है। यहाँ डांग जिले में बारिश के बीच मां तेंदुआ अपने दो शावकों को सड़क पार कराते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी सावधान और सुरक्षित तरीके से मां तेंदुआ अपने दोनों शावकों को अपने साथ सड़क पार करा रही है। इसी बीच वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जब कोई वन्य जीव सड़क पार कर रहा हो, सड़क क्रॉस कर रहा हो, तो उसके पास ना जाएं और गाड़ी सावधानी से चलाएं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जूनागढ़ से सामने आई है और यहाँ पर मॉनसून के इस मौसम में जंगल का राजा यानी कि शेर घास खाता हुआ नजर आ रहा है। शेर को घास खाता देखना आपको अचंभित भी कर सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए यह आम बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेर ले लीजिए, बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के पेट में शिकार के बाल, चमड़ी और हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, तब वो पाचन तंत्र में सुधार के लिए फाइबर से भरपूर खास घास का सेवन करते हैं। चेन्नई में हुई पुलिस मेडल सेरेमनी में स्निफर डॉग रॉकी ने सबका दिल जीत लिया। देखिए जब उसने फूलों के गुलदस्ते से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का स्वागत किया, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित करने आए थे दरअसल, और इस कार्यक्रम में स्निफर डॉग रॉकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच की ओर जाते हुए अपने मुंह में फूलों की टोकरी लिए हुए नजर आ रहा है। मंच पर पहुंचने पर डॉग ने मुख्यमंत्री के सामने सिर झुकाकर उन्हें सलामी दी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें सल्यूट किया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2,117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली की जादुई एहसास, पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन निलेकनी है। जी हाँ, आपको बता दें कि निलेकनी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी

0: जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन निलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन निलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address. And it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिल-ए-गौर है कि नंदन निलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी, वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
2: आधार KYC was sufficient to open a bank account or to get a mobile connection. And in 2014, soon after

0: After Prime Minister Modi came to power on August 28, 2014, he launched the Jan Dhan Yojana program, which is the world's largest financial inclusion program. And more than 400 million bank accounts were opened for people. And they were able to do that very quickly because in Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस डीपीआई की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीले कड़ी हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। यूपीआई कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीले कड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीले कड़ी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीले कड़ी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ।
0: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
1: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन नीले कड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीले कड़ी की अहम भूमिका रही है। नीले कड़ी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैग अप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन नीलेकड़ी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन नीलेकड़ी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन नीलेकड़ी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन नीलेकड़ी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
0: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses.
2: I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
1: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकड़ी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन निलेकड़ी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन निलेकड़ी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
3: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में निलेकनी ने आईआईटी में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर आईआईटी में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर निलेकनी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में आईआईटी क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे आईटी क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
1: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन निलेकड़ी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव निलेकड़ी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन निलेकड़ी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। आईआईटी क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन निलेकड़ी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
0: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइन्ड एनी आईआईटी एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन आईआईटी चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आईआईटी बॉम्बे। सो दैट्स हाउ एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर आईआईटी बॉम्बे।
1: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने किस मन स्थिति में की, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन निलेकड़ी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन निलेकड़ी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन निलेकड़ी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन निलेकड़ी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
0: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education
2: He put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
1: धारवाड में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलेकणी ने आईआईटी में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड जैसे छोटे शहर में ना तो आईआईटी की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
2: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
1: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलेकणी आईआईटी में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह बांह फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब आईआईटी बॉम्बे से नंदन नीलेकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन के आईआईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
2: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
1: आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन नीलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहां उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन नीलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन नीलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन नीलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन नीलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन नीलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्लेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस आईआईटी बॉम्बे के नंदन नीलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन नीलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन नीलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
3: खाते में है दम में आज आपने नंदन निलेकनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: तो चलिए अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए, राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रि कालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर की दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: Good news today.
5: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल, सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा, पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलतबेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं। वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशून इलाके में डिप्लॉय किया, शीगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना, और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा। रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही 5th जनरेशन ना हो, लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है, J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं। तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन को, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसी खबर की जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर नर्मदा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गिरने वाली रिमझिम फुहारें प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के दीदार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और बारिश के मौसम में तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और भी ज़्यादा भव्य और मनमोहक नज़र आता है। तो देखिए बात बारिश की हो रही है, मॉनसून सीजन की हो रही है, तो मॉनसून सीजन में गुजरात से दो और तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नवसारी की है। यहाँ डांग जिले में बारिश के बीच मां तेंदुआ अपने दो शावकों को सड़क पार कराते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी सावधान और सुरक्षित तरीके से मां तेंदुआ अपने दोनों शावकों को अपने साथ सड़क पार करा रही है। इसी बीच वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जब कोई वन्य जीव सड़क पार कर रहा हो, सड़क क्रॉस कर रहा हो, तो उसके पास ना जाएं और गाड़ी सावधानी से चलाएं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जूनागढ़ से सामने आई है और यहाँ पर मॉनसून के इस मौसम में जंगल का राजा यानी कि शेर घास खाता हुआ नजर आ रहा है। शेर को घास खाता देखना आपको अचंभित भी कर सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए ये आम बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेर ले लीजिए, बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के पेट में शिकार के बाल, चमड़ी और हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, तब वो पाचन तंत्र में सुधार के लिए फाइबर से भरपूर खास घास का सेवन करते हैं। चेन्नई में हुई पुलिस मेडल सेरेमनी में स्निफर डॉग रॉकी ने सबका दिल जीत लिया। देखिए जब उसने फूलों के गुलदस्ते से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का स्वागत किया, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित करने आए थे दरअसल, और इस कार्यक्रम में स्निफर डॉग रॉकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच की ओर जाते हुए अपने मुंह में फूलों की टोकरी लिए हुए नजर आ रहा है। मंच पर पहुंचने पर डॉग ने मुख्यमंत्री के सामने सिर झुकाकर उन्हें सलामी दी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें सल्यूट किया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
7: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
4: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
6: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली की जादुई एहसास पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और

0: दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकड़ी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकड़ी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन निलेकड़ी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन निलेकड़ी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address, and it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs their ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion, because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिल-ए-गौर है कि नंदन निलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी, वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
3: आधार KYC वाज सफिशिएंट टू ओपन अ बैंक अकाउंट और टू गेट अ मोबाइल कनेक्शन, एंड इन 2014 सून आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर ऑन August 28, 2014 ही लॉन्च द जनधन योजना प्रोग्राम विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम एंड मोर देन 400 million बैंक अकाउंट्स वर ओपन फॉर पीपल and they were able to do that very quickly because with Aadhaar eKYC you could do an online opening of a customer account.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस DPI की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन निलेकड़ी हैं। UPI ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। UPI कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर

0: उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन निलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन निलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन निलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ।
1: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
0: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन निलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में निलेकणी की अहम भूमिका रही है। निलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन निलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन निलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन निलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन निलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
0: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकणी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन निलेकणी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुलप्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन निलेकड़ी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
2: नंदन निलेकणी शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में निलेकणी ने आईआईटी में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर आईआईटी में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर निलेकणी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में आईआईटी क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे आईआईटी क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
0: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन निलेकणी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव निलेकणी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन निलेकणी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। आईआईटी क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन निलेकणी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
3: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइन्ड एनी आईआईटी एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन आईआईटी चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आईआईटी बॉम्बे। सो दैट्स हाउ, एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर आईआईटी बॉम्बे।
0: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन निलेकणी ने किस मना स्थिति में की, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन निलेकणी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन निलेकणी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन निलेकणी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन निलेकणी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन निलेकणी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
3: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education. He put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
0: धारवाड़ में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन निलेकणी ने आईआईटी में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड़ जैसे छोटे शहर में ना तो आईआईटी की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
3: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
0: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलेकणी आईटी में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह बांह फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब आईटी बॉम्बे से नंदन नीलेकणी के कुछ कजन बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन की आईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
3: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
0: IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन नीलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहाँ उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन नीलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन नीलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन नीलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन नीलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन नीलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्रेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस IIT बॉम्बे के नंदन नीलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन नीलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन नीलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने नंदन नीलेकणी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: तो चलिए अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए, राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रि कालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर की दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है, हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में,
4: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2,117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल, सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा, पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलतबेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं। वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशून इलाके में डिप्लॉय किया, शीगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है। हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा शत प्रतिशत तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रडार काम करते हैं। एक रडार एल बैंड पर काम करता है, एक रडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या केयू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर है, पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही फिफ्थ जेनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर फिफ्थ जेनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकम इन आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
3: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
5: Swing and a foul out of play off to the left.
4: Big 12 Radio.
6: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
4: Talk Sport.
7: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
4: And more. Search sports to find the stations covering your team.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
8: है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसी खबर की जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर नर्मदा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गिरने वाली रिमझिम फुहारें प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के दीदार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और बारिश के मौसम में तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और भी ज़्यादा भव्य और मनमोहक नज़र आता है। तो देखिए बात बारिश की हो रही है, मॉनसून सीजन की हो रही है, तो मॉनसून सीजन में गुजरात से दो और तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नवसारी की है, यहाँ डांग जिले में बारिश के बीच मां तेंदुआ अपने दो शावकों को सड़क पार कराते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी सावधान और सुरक्षित तरीके से मां तेंदुआ अपने दोनों शावकों को अपने साथ सड़क पार करा रही है। इसी बीच वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जब कोई वन्य जीव सड़क पार कर रहा हो, सड़क क्रॉस कर रहा हो, तो उसके पास ना जाएं और गाड़ी सावधानी से चलाएं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जूनागढ़ से सामने आई है और यहाँ पर मॉनसून के इस मौसम में जंगल का राजा यानी कि शेर घास खाता हुआ नजर आ रहा है। शेर को घास खाता देखना आपको अचंभित भी कर सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए यह आम बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेर, ले लीजिए बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के पेट में शिकार के बाल, चमड़ी और हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, तब वो पाचन तंत्र में सुधार के लिए फाइबर से भरपूर खास घास का सेवन करते हैं। चेन्नई में हुई पुलिस मेडल सेरेमनी में स्निफर डॉग रॉकी ने सबका दिल जीत लिया। देखिए जब उसने फूलों के गुलदस्ते से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का स्वागत किया, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित करने आए थे दरअसल, और इस कार्यक्रम में स्निफर डॉग रॉकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच की ओर जाते हुए अपने मुंह में फूलों की टोकरी लिए हुए नजर आ रहा है। मंच पर पहुंचने पर डॉग ने मुख्यमंत्री के सामने सिर झुकाकर उन्हें सलामी दी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें सल्यूट किया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American Zeitgeist. Get engaged on sports, politics,